FM 101.4 MHz पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आज बुधवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ माह के तीसरी तिथि तदनुसार 24 जून 2026 सुबह के 5:58 और 33 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। आज आकाशवाणी कुरुक्षेत्र अपना 35वां स्थापना दिवस मना रहा है, तो इस अवसर पर आप सभी को आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के 35वें स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है। 6 बजने को है। अब
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्ते नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है।

0: जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर सकेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है, और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
0: लखनऊ में हाल ही में हुई आग की दुर्घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट जल्द से जल्द कराया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि जब तक ईरान समर्थित गुट आतंकी गतिविधियों में लिप्त है और हमले जारी रखे हुए हैं, तब तक पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल नहीं हो सकती। अबुधाबी में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि लेबनान में संघर्ष विराम को लेकर चर्चा ईरान के साथ चल रही वार्ता से अलग है। श्री रूबियो ने कहा कि उन्होंने अमरीका के उपराष्ट्रपति जेरी वेंस और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन से बात की है और अमरीकी अधिकारी लेबनान में पहल कर रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि कोई भी कूटनीतिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्षेत्रीय सुरक्षा और ईरान समर्थित गुटों की गतिविधियों के मुद्दे पर कितनी प्रगति हो पाती है। पश्चिम एशिया में शांति बहाली को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच स्विट्जरलैंड में हाल ही में वार्ता हुई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में भी तेज हवा के साथ आज बारिश की संभावना जताई है। फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 101.4 MHz पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

इंसान अपने जीवन को संवारने के लिए न जाने कितनी प्रयास करता है। कोई धन जोड़ता है, कोई शोहरत कमाता है, कोई रिश्तों की दौलत बटोरता है, लेकिन जीवन की असली चमक तब आती है जब उसमें भक्ति का उजाला शामिल हो जाता है। किसी संत ने बहुत ही खूब कहा है कि जिस हृदय में हरि का नाम बस जाता है, वहाँ चिंताओं का अंधेरा नहीं टिक पाता।

साथियों, कई बार हम सुख की तलाश में दूर दूर तक भटकते हैं। हमें लगता है कि खुशी किसी बड़ी उपलब्धि, बड़ी दौलत या किसी खास मंजिल में छिपी है, लेकिन संतों और महापुरुषों ने हमें यही सिखाया है कि सच्चा सुख बाहर नहीं बल्कि हमारे धैर्य, संतोष और विश्वास में बसता है। जब मन में सब्र होता है तो मुश्किल से मुश्किल समय भी आसान लगने लगता है। सब्र हमें टूटने नहीं देता बल्कि हर परिस्थिति में मुस्कुराना सिखाता है। शायद इसी भाव को बहुत खूबसूरती से व्यक्त करता है हमारा ये अगला भजन। तो आइए सुनते हैं ये भजन।

अभी आप आनंद ले रहे थे भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं रामचरितमानस गान, जिसके संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया और स्वर दिया है राजन साजन मिश्रा एवं अनुराधा पौडवाल ने।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस, जिसके संगीत निर्देशक और निर्माणकर्ता थे सतीश भाटिया और स्वर दिया था राजन साजन मिश्रा एवं अनुराधा पौडवाल ने। FM 101.4 MHz पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आज बुधवार है, 24 जून 2026। आज विक्रम संवत 2083 के ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। और अब एक नज़र टुडेज अपडेट्स पर।

AKFI यानी कि कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत में कबड्डी के लिए सर्वोच्च नियामक संस्था है और पुनीत बालन है वे महाराष्ट्र में खेलों विशेषकर कबड्डी कुश्ती और फुटबॉल को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल कुल 65 विजेताओं को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया। इसमें 2 पद्म विभूषण और 7 पद्म भूषण शामिल थे। ये पुरस्कार इंडियन क्रिकेटर और टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा, टेनिस आइकन विजय अमृतराज, दिग्गज अभिनेता ममूटी और गायिका अलका याग्निक समेत 65 लोगों को दिए गए हैं।

नीति आयोग ने कल नई दिल्ली में वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही के लिए ट्रेड वॉच क्वार्टरली के नवीनतम संस्करण का विमोचन किया। तो ये थी कुछ एक टुडेज अपडेट्स।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अब जानिए आज दिन भर में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

प्रायोजित कार्यक्रम NCERT सुनिएगा सुबह 7:10 पर। NIILM यूनिवर्सिटी का प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा शाम 5:45 पर। आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के स्थापना दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम

सुनिएगा शाम 7 बजे। कार्यक्रम सुबह सवेरे का आनंद लीजिएगा सुबह 8:30 पर, और सजीव फोन इन कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे सुबह 10 बजे। कार्यक्रम युवावाणी का आनंद लीजिएगा शाम 5:30 पर, साढ़े 6:20 पर आनंद लीजिएगा श्रवण कीजिएगा गीता संदेश का। इसमें आज आप सुनेंगे 6 अध्याय के श्लोक 45-47 की व्याख्या, प्रस्तुति रहेगी डॉक्टर अशोक कुमार मिश्र की। शाम 6:30 पर समय रहेगा कार्यक्रम अन्नदाता का। संगीत के आकर्षण में सुबह 9:30 पर समय रहेगा स्वरांजलि का। गाने नए पुराने कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा शाम 5:05 पर। तो ये थे आज दिन भर में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

FM 101.4 MHz पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

वाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् परिवर्तनशील वैश्विक परिस्थितौ सुरक्षा सहकार्यं गभीरं कर्तुं तथा च आतंकवादात् अंतर्जालीय सुरक्षायाः च आरभ्य उदयमान प्रौद्योगिकी पर्यन्तं समाह्वानानां परिहारे ब्रिक्स इत्यस्य महत्वपूर्णा भूमिका वर्तते। प्रधानमंत्री श्री मोदी गतसायं नवदिल्ल्यां ब्रिक्स देशानां राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदैहि वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारिभिः सह मिलितवान्। सामाजिक माध्यम संदेशे श्री मोदिना प्रकाशितं यत् भारतस्य ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहकार्यं प्रवर्तयितुं वैश्विक दक्षिणस्य प्राथमिकतानां समर्थनं कर्तुं सुरक्षित समावेशीय विश्वे च योगदानं दातुं प्रयतते। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कतर देशस्य अमीरस्य शेख तमीम बिन हमद अल थानी इत्यस्य दूरभाषं प्राप्तवान्। कतरस्य रास लफान औद्योगिक नगरे दुर्घटनायां भारतीय नागरिकाणां निधन विषये कतरस्य अमीरः शोकं प्रकटितवान् तथा च घातितानां शीघ्रं स्वस्थतायाः आशां प्रकटितवान्। श्री मोदी प्रभावित परिवारेभ्यः सहानुभूति वचनानां कृते कतरमीराय धन्यवादं दत्तवान्। व्रणितानां कृते शीघ्र चिकित्सा सहायता प्रदानाय च प्रशंसितवान्। द्वौ नेतारौ स्वनागरिकाणां कल्याणं सुरक्षाञ्च सुनिश्चेतुं स्वप्रतिबद्धतायाः पुनः पुष्टिं कृतवन्तौ। भारतस्य खनिज मन्त्रालयेन 56 महत्वपूर्णानां सामरिक खनिज खण्डानां अथ 11 अन्वेषण अनुज्ञापत्र खण्डानां च सफल सघोष विक्रयणेन सह क्रिटिकल मिनरल मिशन इति दुर्लभ खनिज कार्यक्रमस्य महती गतिः प्राप्ता अस्ति। मन्त्रालयेन सघोष विक्रयणस्य 7 खण्डस्य अन्तर्गतं 10 महत्वपूर्ण सामरिक खनिज खण्डाः सफलतया सघोष विक्रयणं कृताः। भारतेन पाकिस्तान आक्रमित जम्मू कश्मीरस्य स्थिति विषये कृत टिप्पणी सम्बद्धं पाकिस्तानस्य रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ इत्यस्य घोर आलोचना कृता। विदेश मंत्रालयेन कथितं यत् एता

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खासतौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर चर्चा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगू के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर जोर दिया।
1: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
2: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
1: They all constitute an important threats for us.
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय

0: ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद किया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक और निराधार हैं। सरकार ने कहा है कि E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में तकनीकी खराबी की कोई भी व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल ने उज़्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। अमेरिका के ह्यूस्टन में हुए मुकाबले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी हो गए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. National security advisors and senior security officials from the BRIC nations called for stronger cooperation to address a widening range of global security challenges, including terrorism, cyber threats, during a high-level meeting hosted by India in the national capital. The 16th BRICS National Security Advisors meeting, held under India's chairship of the grouping led by India's NSA, Ajit Doval, brought together top security representatives from member countries to discuss both traditional and emerging threats confronting the international community. According to India's Ministry of External Affairs, the discussions focused on evolving security risks that increasingly transcend national borders. Prime Minister Narendra Modi received a telephone call from the Emir of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. He expressed condolences over the loss of lives of Indian nationals in the accident at Ras Laffan Industrial City in Qatar on Sunday and conveyed his wishes for the speedy recovery of those injured. Mr. Modi thanked the Qatari leader for his words of sympathy for the affected families and appreciated the prompt medical assistance extended to the injured. The two leaders also reaffirmed their commitment to ensuring the well-being and safety of their citizens and reiterated their solidarity and support for each other. India has strongly criticized Pakistani Defense Minister Khwaja Asif's remarks over the situation in Pakistan-occupied Kashmir, saying these remarks are desperate attempts by the neighboring country to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. Addressing media in New Delhi, Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, New Delhi categorically rejects these fabricated claims with the contempt they deserve.
2: The ongoing protests in Pakistan-occupied Kashmir are a direct consequence of Pakistan's decades-long policy of systemic economic exploitation, denial of fundamental rights, and administrative oppression. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses.
1: On India-UAE defense partnership, the spokesperson said India's relationship with UAE in recent several years has seen a major upswing.

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जय जोहार, जय हिंद। श्रोताओं आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं, शांत रहना कमजोरी नहीं, ये समझदारी की निशानी है, क्योंकि हर जवाब शब्दों से ही नहीं लेकिन व्यवहार से भी दिया जाता है। इतने सुंदर विचार के लिए आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से हमारा आभार। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, महताब जाटव, मिराज जाटव और अल्ताफ जाटव। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू। जेल रोड कानपुर से सरफुद्दीन फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम कुटरिया। भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल। तो श्रोताओं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। जैसा कि हम हर बार कहते हैं इस बार भी कहेंगे कि जुड़े रहिए आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। और आइए अब चलते हैं आज की श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं जहां तक गुफाओं की बात है, लगभग सभी अजंता और एलोरा की गुफाओं से परिचित हैं, लेकिन उमंग कार्यक्रम में हमारा उद्देश्य है उन जानकारियों को उपलब्ध कराना जो लोक संज्ञान में कम है लेकिन पुरातत्व और इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जी तो श्रोताओं कल हमने बात की थी भीम बैठका की गुफाओं के बारे में, आज हम बात करेंगे कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। कुटुम्बसर की गुफाओं को भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफाओं में गिना जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहाँ स्थित हैं। श्रोताओं ये गुफाएं स्थित हैं छत्तीसगढ़ राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, जगदलपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर। ये गुफाएं भूमि से लगभग 35 से 40 मीटर नीचे हैं। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं, लेकिन श्रोताओं जब भी हम ऐसे स्थानों की बात करते हैं तो ये जिज्ञासा जरूर मन में आती है कि इनकी खोज कैसे हुई। तो आपको बता दें कि कुटुम्बसर गुफा का जनजातीय नाम गोपनसर था। सन 1951 की बात है, कुछ स्थानीय चरवाहे एक साही का पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां ढेर सारी झाड़ियां थीं, पत्थर भी थे। जब उन्होंने झाड़ियों को थोड़ा हटाया तो क्या देखते हैं कि वहां एक बहुत बड़ी गुफा का प्रवेश द्वार है। जी चरवाहे उस गुफा की बनावट देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वहां चट्टानों के आकार विचित्र थे।

0: वे अद्भुत आकार के थे, जैसे किसी ने उन्हें तराश कर बनाया हो। तो आइए जानते हैं कि उन पत्थरों को तराशने वाला कौन था। श्रोताओं, यही तो खास और बड़ी अनोखी बात है कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। जब विशेषज्ञ यहाँ पर आए तो उन्होंने पता लगाया कि चट्टानों को तराशने वाली प्रकृति ही थी। यहाँ पानी हमेशा टपकता रहता है। पानी के लाखों वर्षों से टपकते रहने के कारण इन चट्टानों को आकार मिला। यहाँ की चट्टानें चूना पत्थर से बनी है। श्रोताओं, इन गुफाओं में कुछ आकृतियां तो ऐसी हैं जो किसी पशु, मुख्य रूप से हाथी, बाघ, विशाल मानव आकृति और शिवलिंग की तरह भी दिखाई देती हैं। जरा सोचिए श्रोताओं, कैसे इन आकृतियों को प्रकृति ने लाखों वर्षों से पानी की बूंदें टपकाकर बनाया। अद्भुत है ना जी। किसी ने लिखा है कि यदि प्रकृति को शिल्पकार के रूप में देखना है तो कुटुम्बसर की गुफाओं में जरूर जाइए। इन गुफाओं के ऊपर भूमि में कई भूमिगत जल के झरने हैं, जहां से निरंतर पानी की बूंदें गिरती रहती हैं। वैज्ञानिकों ने इन गुफाओं में अनेक दुर्लभ जीवों के जीवाश्म भी ढूंढे हैं। एक बात और आपको बता दें श्रोताओं, कि इन गुफाओं के अंदर हमेशा घुप अंधेरा रहता है। वहां जाने के लिए पर्यटक गाइड्स और शक्तिशाली बैटरियों वाले लैंप्स लेकर ही जाते हैं। अंदर पानी बहता रहता है, लेकिन एक बड़ी रोचक बात है इन गुफाओं की। आपको बताएं क्या है वो? वो ये कि यहाँ के पानी में जो मछलियां पाई जाती हैं वे अंधी होती हैं, देख नहीं पाती। यहाँ के अन्य जलज प्राणी भी देख नहीं सकते। लेकिन एक सवाल है श्रोताओं कि भला ऐसा क्यों है? ना ये बड़ी अजीब बात। जी हाँ श्रोताओं, वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ हमेशा अंधकार रहता है। इससे संभवतः मछलियों और जलज जीवों की आंखें तो हैं, लेकिन उनमें देखने की क्षमता का विकास नहीं हुआ, या फिर धीरे धीरे देखने की क्षमता समाप्त हो गई। एक सिद्धांत ये भी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अंधकार में रहने के कारण उनकी आंखें पूर्ण विकसित नहीं हुई, लेकिन दूसरी इंद्रियां अधिक विकसित हो गईं। मछलियां पानी में कंपन, स्पर्श और रासायनिक संकेतों जैसे गंध इत्यादि के माध्यम से रास्ता और भोजन तुरंत पहचान लेती हैं। इसलिए श्रोताओं, कुटुम्बसर की मछलियों को दुनिया भर में ब्लाइंड केव फिशेस के नाम से भी जाना जाता है। और हाँ, इन गुफाओं की एक और बड़ी खास बात है, यहाँ के कुछ भागों में यदि फुसफुसा करके भी कुछ कहा जाए तो बड़ी दूर तक ये आवाज सुनाई पड़ती है। श्रोताओं, यहाँ पर कार्यकर्ता इको या गूंज का सिद्धांत। श्रोताओं, ये कहा जा सकता है कि ये गुफाएं वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ के जंतु विकासवाद और भूविज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी भारत की एक और रहस्यपूर्ण और अनोखी गुफा कुटुम्बसर के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? आप हमें हमारे IVRS नंबर 8804405559 पर या ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर इस प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं आज के हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर शैक्षिक कार्यक्रम। तो सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम लीव्स ऑन द ट्री आर फॉलिंग। श्रोताओं, अंग्रेजी का ये सुंदर गीत पतझड़ और वसंत के मौसमों के बीच की प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करता है और विशेषकर संदेश देता है कि हमें प्रकृति का अवलोकन करके उनके सौंदर्य की प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसा करके हम प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। द लीव्स ऑन द ट्रीज।
1: Children, have you ever seen the leaves growing in the tree? The new tender leaves spurting out from the branches? Like the flowers blossoming? Yes, we want to see them as the flowers blossom and leaves grow. But we never see them growing closely. Here is a song which makes you feel that you notice the growing of leaves and blossoming of flowers. Come on, let's sing the song to know and notice. But before we sing it, let's recite the song. Repeat after me, all right?
2: Yes!
1: The leaves on the

0: इस खूबसूरत गीत के बाद आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान डॉक्टर कामिल बुल्के के जीवन और उनके द्वारा हिंदी साहित्य को दिए गए योगदान के बारे में, विशेषकर तुलसी साहित्य में उनके द्वारा लिखे गए शोध की विस्तार से जानकारी देता है।
1: यूरोप के पश्चिमी भाग में एक छोटा लेकिन खूबसूरत देश है बेल्जियम। बेल्जियम में एक

0: प्रांत है फ्लैंडर्स। इस प्रांत में एक छोटा सा शांत और सुंदर शहर है रम्स कपेला। 1 सितंबर 1909 को अडोल्फ और मारिया बुल्के के घर में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने बड़े प्रेम से उसका नाम रखा कामिल बुल्के।
1: कामिल का अर्थ होता है पूजा की वेदी और बुल्के का अर्थ है सुगंधित पुष्प। और सच में जैसा कि नाम था, उन्होंने अपने नाम को 100% चरितार्थ किया। बचपन से ही उनकी गहरी रुचि अध्यात्म और साहित्य में दिखाई देने लगी थी। माता पिता अक्सर उनके बारे में बातचीत किया करते।
2: मारिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कामिल का अध्यात्म की ओर कुछ ज्यादा ही झुकाव है?
1: मुझे तो अब ये लगने लगा है कि यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन वो चर्च में सन्यासी बन जाएगा।
2: मुझे भी ऐसा ही लगता है।
1: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने ल्यूवेन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी डिग्री प्राप्त की और 1930 में स्पष्ट दिव्य अनुभूति प्राप्त होने पर शिक्षक और पुरोहित बनाने वाले जेसुइट समाज में शामिल हो गए।
0: 6 नवंबर 1935 को 17 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई है। उन्होंने भारत को अपनी कर्मस्थली के रूप में चुना।
1: उन्होंने भारत भूमि को नमन किया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि है। दरअसल अपनी पढ़ने की आदत के कारण बेल्जियम में ही उन्होंने तुलसीदास जी की कई चौपाइयों का जर्मन अनुवाद पढ़ा था।
0: उनमें से एक चौपाई से वो बहुत प्रभावित हुए। चौपाई थी, धन्य जन्मु जग तीतल तासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु।
1: अर्थात उस बेटे का जीवन धन्य है जिसका यश और कीर्ति सुनकर पिता आनंदित होता है। इन पंक्तियों से वे इतने प्रभावित हुए कि कवि तुलसीदास जी के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने लिखा था,
3: विश्व साहित्य में माता और पुत्र के संबंधों की बहुत सारी चर्चा मिल जाएगी, लेकिन पिता पुत्र के संबंधों की ऐसी व्याख्या और ऐसा ऊंचा आदर्श मुझे सिर्फ भक्त कवि तुलसीदास जी की रामायण में ही मिला।
1: भारत आने पर उन्होंने जो देखा, उसने उनके संपूर्ण जीवन के चिंतन और दर्शन को एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने अपने भारत आगमन के समय को याद करते हुए अपनी एक पुस्तक एक ईसाई की आस्था राम कथा और हिंदी में लिखा है,
3: 1935 में मैं जब भारत पहुंचा, मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि रास्ते में सभी संकेत पट्टों पर सूचनाएं और स्थानों के नाम अंग्रेजी में थे। मैंने ये जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना गर्व की बात समझते थे। मैंने विचार किया कि मैं हिंदी भाषा में सिद्धता को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। हिंदी स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में जो ज्ञान प्रणाली और सीखने की सामग्री अंतर्निहित है, उनके संरक्षण और पुनरुत्थान से ही हमारा विकास संभव है।
1: मुंबई से वे दार्जिलिंग गए और अल्प प्रवास के बाद अंततः गुमला आ गए, जो आज के झारखंड राज्य में है। उन्होंने गुमला के सेंट इग्नेसियस विद्यालय में 3 साल तक गणित और भौतिकी पढ़ाया और हिंदी की कक्षा में अपने ही विद्यार्थियों को सहपाठी बनाकर हिंदी सीखने लगे। गणित पढ़ाया

0: ने के बाद वे हिंदी की कक्षा में सबसे पीछे बैठ जाते थे और पूरी तन्मयता से हिंदी सीखते थे।
1: हिंदी के मूल रूप को समझने के लिए धीरे धीरे उन्होंने ब्रजभाषा और अवधी भी सीखी।
0: रांची आकर वे कुछ समय के लिए सन 1938 में झारखंड के ही एक शहर हजारीबाग गए और सेंट कोलंबस कॉलेज में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री के निर्देशन में संस्कृत और स्वामी तुलसीदास की दो प्रमुख रचनाओं रामचरितमानस और विनय पत्रिका का गहन अध्ययन करने लगे।
1: फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उच्च अध्ययन के अभिप्राय से वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा से मिले।
2: आइए आइए फादर बुलके, आपका स्वागत है।
3: जी डॉक्टर धीरेंद्र, आपके स्वागत से मैं अनुग्रहित और कृतार्थ हुआ। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं हिंदी में अपना स्नातकोत्तर अध्ययन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करूं।
2: ठीक है, लेकिन उम्मीदवार की कुछ परीक्षा तो लेनी ही होगी।
3: जी मैं प्रस्तुत हूं।
2: तो फादर, मैं चाहता हूं कि आप तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के दो पदों की इसी समय सप्रसंग व्याख्या करें। ये लीजिए।
3: जी अवश्य।
0: फादर कामिल बुलके ने कुछ ही देर में उन पदों की लिखित व्याख्या कर दी। इस यूरोपीय श्वेत वर्णीय ईसाई पुरोहित को डॉक्टर वर्मा ने प्रारंभ में नौसिखिया समझा था, लेकिन जब उन्होंने व्याख्या पढ़ी तो
4: ओह अद्भुत। तो फादर, अब विलंब कैसा? आप इसी समय से विश्वविद्यालय के हिंदी संकाय में अध्ययन के लिए आमंत्रित हैं।
3: धन्यवाद डॉक्टर धीरेंद्र, ये मेरा सौभाग्य होगा।
4: जी।
0: स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद फादर कामिल बुलके ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा की प्रेरणा से डॉक्टर माता प्रसाद के निरीक्षण में शोध कार्य किया।
1: इससे जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है। फादर कामिल बुलके चाहते थे कि उनका शोध हिंदी में प्रकाशित हो, लेकिन उन दिनों सभी शोध अंग्रेजी में ही हुआ करते थे।
0: उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा थे। फादर कामिल बुलके ने इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने का समय मांगा।
3: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कुलपति महोदय?
5: आइए आइए फादर बुलके। मुझे बताया गया है कि राम कथा पर आपका शोध बहुत अच्छा बन पड़ा है। आपने इसमें बहुत से नए आयाम भी जोड़े हैं।
3: जी कुलपति महोदय, मैं अपने शोध पत्र को प्रकाशित करने के बारे में ही आपसे विमर्श करने आया हूँ।
5: जी जी,
3: मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने शोध पत्र को देवनागरी में प्रकाशित करने की अनुमति दी जाए।
5: मगर फादर, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार शोध पत्र सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रकाशित किए जा सकते हैं।
3: कुलपति महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा शोध का विषय ही रामकथा की उत्पत्ति और विकास है।
5: जी,
3: मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं रामकथा और तुलसी की आत्मा के विराट सौंदर्य के दर्शन केवल और केवल उनकी मातृभाषा में ही हो सकते हैं।
5: जी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं फादर बुलके।
3: तो मैं आपकी इस प्रतिक्रिया को एक सकारात्मक उत्तर के रूप में देखने की अपेक्षा करता हूं।
5: जी,
0: तो फिर क्या था? विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद की सभा बुलाई गई और लंबे विचार विमर्श के बाद नियमावली में विधिवत परिवर्तन किया गया। फादर का ये अनुरोध मान लिया गया। भारत के शोध परिदृश्य में ये एक महत्वपूर्ण

0: घटना थी, क्योंकि इसके द्वारा देवनागरी में शोध प्रबंध लिखने का रास्ता सबके लिए साफ हो गया और आदिवासी भाषाओं में भी पीएचडी स्तर तक पढ़ाई होनी शुरू हो गई।
1: उन्होंने राम और राम कथा के बारे में अपने शोध ग्रंथ में लिखा है।
2: देखिए, राम वाल्मीकि कथा के मिथकीय पात्र नहीं हैं, बल्कि वे तो इतिहास पुरुष हैं, जिनकी व्याप्ति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। रामायण सिर्फ धार्मिक साहित्य ही नहीं है बल्कि जीवन जीने के तरीके का दस्तावेज है।
0: उनके शोध की विशेषता ये है कि उन्होंने रामायण से संबंधित किसी भी विषय को छोड़ा नहीं है। हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, कश्मीरी, सिहली आदि भाषाओं के साहित्य में भी उपलब्ध राम कथा की गहन छानबीन की है।
1: उन्होंने तेलुगु में रचित श्री रंगनाथ रामायण और महर्षि कम्बन द्वारा तमिल में रचित कम्ब रामायण को भी संदर्भित किया। चार भागों में विभक्त 600 पृष्ठों में छपी उनकी ये थीसिस एक प्रतिनिधि शोध ग्रंथ साबित हुई और भारत सहित पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। इसके बाद सारी दुनिया फादर बुल्के को जानने लगी।
0: अब जहां भी राम कथा होती, फादर कामिल बुल्के का नाम वक्ताओं की सूची में सबसे ऊपर होता। उन्होंने देश भर में राम कथा पर व्याख्यान दिए। वे कहा करते थे,
2: सब हैं नचावत राम गोसाई, मोहे नचावत तुलसी गोसाई।
0: सन 1950 में उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इसी वर्ष वे रांची के सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए और आजीवन उसी पद पर रहे। वे हमेशा अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा में ही बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित करते थे।
1: सबसे मशहूर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने वाले फादर कामिल बुल्के ही हैं। 30 वर्षों की उनकी हिंदी साधना का जीवंत दस्तावेज उनका शब्दकोश माना जाता है।
0: उन्होंने इसमें 40,000 शब्द जोड़े और उसे प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से अद्यतन करते रहे। फादर कामिल बुल्के बहुभाषाविद थे। वो अपनी मातृभाषा फ्लेमिश के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और हिंदी पर भी संपूर्ण अधिकार रखते थे। इन भाषाओं के ज्ञान के कारण ही उन्हें शब्दकोश बनाने में बहुत सहायता मिली। उन्होंने लिखा था,
2: जब मैं अपने जीवन पर विचार करता हूं तो मुझे लगता है ईसा मसीह, हिंदी और तुलसीदास ये वास्तव में मेरी आध्यात्मिक साधना के 3 प्रमुख घटक हैं और मेरे लिए इन 3 तत्वों में कोई विरोध नहीं है बल्कि गहरा संबंध है। मैं ईसा मसीह का परम भक्त हूं, हिंदी मेरा अनुराग है और गोस्वामी तुलसीदास मेरी प्रेरणा।
0: कामिल बुल्के की हिंदी सेवाओं के लिए 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। जब लोग उन्हें फादर कहते तो वे किंचित संकोच से बोल उठते,
2: फादर अंग्रेजी शब्द है, यदि मुझे कामिल बाबा कहो तो सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
0: 17 अगस्त 1982 को दिल्ली में इस अद्भुत शोध शिल्पी, राम कथा अनुरागी, बहुभाषाविद और हिंदी भाषा के अनन्य सेवक का निधन हो गया। उनकी मृत्यु शैया पर मात्र 2 पुस्तकें थीं, बाइबल और गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। उन्हें दिल्ली में ही दफनाया गया।

0: 36 साल बाद वर्ष 2018 में पद्म भूषण फादर कामिल बुल्के का पार्थिव अवशेष दिल्ली से उनकी कर्मभूमि रांची लाया गया। उनके अवशेष को पूरे सम्मान के साथ रांची सेंट जेवियर कॉलेज में दफनाया गया।
1: महान शब्द शिल्पी और हिंदी साहित्य के इस पुरोधा फादर कामिल बुल्के बाबा को हमारा आभार सहित शत शत नमन।
2: डॉक्टर कामिल बुल्के, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए अब सुनते हैं हरियाणवी लोक गीतों का कार्यक्रम बाजे नगाड़ा। इसमें हमारे आज के कलाकार हैं रामचंद्र और उनके साथी।

0: जिंदगी अनमोल है, इलाज भी भरोसेमंद होना चाहिए।
1: सिर की चोट, नसों की हर समस्या, ब्रेन स्ट्रोक व दिमाग से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज
0: ब्रेन एवं स्पाइन सर्जन डॉक्टर हिमांशु जैन द्वारा
1: हरियाणा सरकार एवं सभी प्राइवेट TPA पैनल पर उपलब्ध।
0: डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र।
1: 8708903436।
2: अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा, सफल भविष्य की नींव और उज्जवल करियर बनाने के लिए अब प्रवेश लें NIILM विश्वविद्यालय में,
3: जहां अनुभवी शिक्षकों व इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स द्वारा विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।
2: इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, लॉ, IT, साइंस, पत्रकारिता, मैनेजमेंट सहित 100 से अधिक करियर ओरिएंटेड कोर्स उपलब्ध हैं।
3: तो देर किस बात की, अपने सपनों को दे नई उड़ान, आज ही प्रवेश ले NIILM यूनिवर्सिटी कैथल।

0: अब दर्द नहीं, जिंदगी फिर चलेगी।
1: फ्रैक्चर, हड्डियों व जोड़ों, घुटनों और कंधों का आधुनिक इलाज अनुभवी विशेषज्ञों के साथ।
0: अब अस्पताल हरियाणा सरकार व सभी प्राइवेट टीपीए पैनल पर उपलब्ध।
1: संपर्क करें डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र, 8708903436।

0: मर जाओ।
1: अभी आप सुन रहे थे हरियाणवी लोक गीतों का कार्यक्रम बाजे नगाड़ा FM 101.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की, कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक, और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के बीच मैच बगैर किसी गोल के बराबरी पर छूटा। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खास तौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर भी चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उनके परिणामों की भी समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया।
1: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
2: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
1: They all constitute an important threats for us.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: निर्मला सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सभी देशों की घरेलू जरूरतें अलग अलग होती हैं और लगातार बने रहने वाले वैश्विक असंतुलन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की विकास दर मुख्य रूप से घरेलू मांग के कारण है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और मध्यम अवधि में इसके सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर लगभग 7% रहने का अनुमान है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने हिस्सा लिया। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, केन्या, दक्षिण कोरिया जैसे G7 देशों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारियां कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि जुलाई में भी मॉनसून के कमजोर रहने की आशंका है।
2: ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है। इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले मतलब जहां 25-50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं ऐसे 76 जिले हैं, और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
1: सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक हैं, निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में किसी तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कोचिंग संस्थानों के नियमन को मजबूत करने और अवैध कोचिंग सेंटर्स के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरे राज्य में आग से बचाव के उपायों की जांच मिशन मोड में की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से पद्म सम्मान ग्रहण करने वाली हस्तियों की तस्वीरें और होर्मुज को पार कर भारत की ओर आगे बढ़ रहे 11 ईंधन वाहक जहाजों की खबरें सबसे ऊपर छाई हैं। दैनिक भास्कर ने CUET परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक अंक पाने वाली देवीना गहलोत का चित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है 100% वाले 20% बढ़े, प्रीमियम संस्थानों में दाखिला कठिन होगा। नवभारत टाइम्स ने परीक्षा में सफल रहे कुछ छात्रों के चित्र के साथ इस समाचार को शीर्षक दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के दाखिले में CUET के बाद भी 100% की रेस। देशबंधु ने मौसम के मिजाज को पहले पन्ने पर जगह दी है। खबर को शीर्षक दिया है दिल्ली NCR में मौसम ने ली करवट और 12 दिन की देरी से मुंबई पहुंचा मानसून, जबकि दैनिक भास्कर का कहना है मानसून 3 दिन देरी से मुंबई पहुंचा। पत्र ने दिल्ली NCR में अभी हफ्ते भर और गर्मी और उमस बने रहने का अनुमान प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने संकट के बीच शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में कहा है कि पश्चिम एशिया में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाने की वजह से देश में बढ़ती महंगाई के बीच अब इसका असर औद्योगिक उत्पादन पर भी दिखने लगा है। पत्र की राय में मौजूदा संकट के लिए भले ही वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार हों, लेकिन इसके समाधान के लिए कारगर कदम उठाने के बजाय इसका बोझ जनता पर डाल देने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। वहीं राजस्थान पत्रिका ने कृषि क्षेत्र में भारत की उपलब्धि को प्रमुख प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वैज्ञानिक

दोस्तों स्वागत है आप सभी का एफएम 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कुरुक्षेत्र की पेशकश सुबह सवेरे में। मैं हूं आरती, आपकी रेडियो मित्र आपके साथ में। तो कीजिए स्वीकार आरती का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों कहते हैं कि लोहा आग में तपकर मजबूत बनता है, सोना तपकर अपनी चमक बिखेरता है और एक छोटा सा बीज समय के साथ विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है। ठीक इसी तरह से रिश्ते भी विश्वास, अपनत्व और निरंतर संवाद से मजबूत होते हैं। यही रिश्ता वर्षों से आकाशवाणी कुरुक्षेत्र यानी हमारे और आपके बीच भी बना हुआ है। आपकी मुस्कानों में, आपकी भावनाओं में, आपके सुख दुख में और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आकाशवाणी कुरुक्षेत्र हमेशा एक सच्चे साथी की तरह शामिल रहा है। जब भी आपको जानकारी की जरूरत हुई, मनोरंजन की चाह हुई या फिर अपनेपन से भरी आवाज सुनने का मन हुआ तो आकाशवाणी कुरुक्षेत्र ने आपके दिल तक पहुंचने का पूरा पूरा प्रयास किया है और बदले में आपने भी हमें अपना स्नेह, विश्वास और भरपूर प्यार दिया है। आज का दिन हम सभी के लिए बेहद खास है क्योंकि आज आकाशवाणी कुरुक्षेत्र अपना 35वां स्थापना दिवस मना रहा है। ये केवल एक संस्थान की वर्षगांठ नहीं बल्कि उन अनगिनत यादों, आवाजों और भावनाओं का उत्सव है जो पिछले 35 वर्षों से हम सबको एक सूत्र में बांधती आई है। तो आइए इस विशेष अवसर पर आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के गौरवशाली सफर को याद करें, कुछ खूबसूरत स्मृतियों को ताजा करें और आपके साथ मिलकर इन खुशियों को साझा करें। तो आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के स्थापना दिवस की आप सभी को ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं। और तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं इस गीत के साथ।

दोस्तों, पिछले 35 वर्षों से आकाशवाणी कुरुक्षेत्र केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं रहा, बल्कि ज्ञान, जागरूकता और जनहित की जानकारी का भी विश्वसनीय साथी रहा है। और जब बात जागरूक नागरिक बनने की हो तो अपने अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी होना बेहद जरूरी है, क्योंकि अधिकार तभी सार्थक होते हैं जब उनकी रक्षा का भी पुख्ता प्रबंध हो। भारतीय संविधान को विश्व के सबसे विस्तृत और लोकतांत्रिक संविधानों में गिना जाता है। ये केवल कानूनों का संकलन नहीं, बल्कि देश के करोड़ों नागरिकों के अधिकारों, स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षक भी है। संविधान ने नागरिकों को अनेक मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, लेकिन इन अधिकारों का महत्व तभी है जब उनके संरक्षण की प्रभावी व्यवस्था भी मौजूद हो। यही कारण है कि भारतीय संविधान में एक ऐसा अनुच्छेद भी शामिल किया गया है जिसे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के आत्मा और हृदय की संज्ञा दी थी। तो यही है हमारा आज का सवाल कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है। सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा आज का सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है। इस सवाल का जवाब आप हमें भेजेंगे SMS के द्वारा हमारे फोन नंबर 9466021336 पर 8:45 तक। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक SMS में सिर्फ 3 ही नाम हो और सही जवाब हो, और आपके SMS हमें 8:45 तक मिल जाने चाहिए, और आपको सिर्फ एक ही बार SMS करना है। अगर आप बार बार SMS करते हैं तो होता क्या है, जब आपने पहले SMS भेजा होता है तो आपका नाम आखिरी में चला जाता है, तो इसीलिए SMS को एक ही बार किया कीजिए।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी

0: पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
4: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
3: क्या ये जांच उपलब्ध है?
5: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
6: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
5: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
6: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
7: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
8: दोस्तों, स्वरों का सफर जब विश्वास से जुड़ जाए तो वो केवल प्रसारण नहीं बल्कि पीढ़ियों की यादों का हिस्सा बन जाता है। दोस्तों, 24 जून का ये दिन आकाशवाणी कुरुक्षेत्र परिवार और इसके असंख्य श्रोताओं के लिए बेहद खास है। आज हमारा अपना साथी, अपना हम सफर, अपना दोस्त आकाशवाणी कुरुक्षेत्र अपने गौरवपूर्ण सफर के 35 वर्ष पूरे कर रहा है। दोस्तों, बात करते हैं अपने उस दोस्त के जन्मदिवस की जिसकी वजह से हम और आप मिले, दोस्त बने। जी हाँ, आज आकाशवाणी कुरुक्षेत्र का 35वां स्थापना दिवस है। आज ही के दिन 24 जून सन 1991 को कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर श्रीमद् भागवत गीता और रामचरितमानस के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस केंद्र की स्थापना की गई थी। शुरुआत में इस केंद्र से केवल शाम की सभा का प्रसारण किया जाता था, फिर कुछ वर्षों के बाद सुबह और शाम की दो सभाओं का प्रसारण होने लगा और एक समय तो ऐसा भी आया जब आपने आकाशवाणी कुरुक्षेत्र की तीन तीन सभाओं का आनंद लिया। आज आप सुबह 5:53 से लेकर के रात्रि 11:10 तक अलग अलग वर्गों और आयु समूहों के लिए अनेक कार्यक्रम प्रसारित सुनते हैं। महिलाओं के लिए शक्ति मंच, बच्चों के लिए बाल सभा, युवाओं के लिए युववाणी, सुबह सवेरे और शाम के समय कुछ बातें कुछ गीत जैसे कार्यक्रम श्रोताओं का मनोरंजन और मार्गदर्शन करते हैं। आकाशवाणी कुरुक्षेत्र की दीवानों के लिए सजीव फोन इन कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र और संदेशों पर आधारित कार्यक्रम चांदनी रातें विशेष रूप से लोकप्रिय रहे हैं। दिव्यांगजनों के मनोबल को बढ़ाने, सैनिकों के सम्मान, किसानों के उत्थान और शिक्षा व स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए भी समय समय पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जाते रहे हैं। हमारे स्टूडियो में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है और आपको उनसे सीधी बातचीत सुनने का अवसर मिलता है। आपकी राय, आपके सुझाव, आपकी शिकायतें और आपका प्यार हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यही कारण है कि आपकी सहभागिता पर आधारित कार्यक्रम आपकी बात श्रोताओं के बीच अपनी विशेष पहचान बनाए हुए है। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में आकाशवाणी कुरुक्षेत्र ने अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियां भी हासिल की है। जन जागरूकता के लिए आयोजित आकाशवाणी के 90 वर्षों के अवसर पर वॉकथॉन, राष्ट्रीय हुकअप पर प्रसारित प्रधानमंत्री रेडियो रिपोर्ट, विश्व स्वास्थ्य दिवस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के विशेष संदेश और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति के प्रेरक विचारों ने श्रोताओं तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई है। मन की बात कार्यक्रम में मलेरिया उन्मूलन और जन जागरूकता में रेडियो की भूमिका का उल्लेख भी इस माध्यम की प्रभावशीलता को दर्शाता है। गीता जयंती विशेष कार्यक्रमों ने हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम किया है। किसान वाणी ऑडिशन के माध्यम से नई प्रतिभाओं और नए कंपेयर्स को मंच मिला है। वहीं श्रोताओं की रिकॉर्डिंग्स और उनकी सक्रिय भागीदारी ने रेडियो और श्रोताओं के रिश्ते को और भी मजबूत बनाया है। खेल जगत में भी आकाशवाणी कुरुक्षेत्र ने प्रेरणादायक पहल की है। पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी के विशेष साक्षात्कार ने संघर्ष, आत्मविश्वास और सफलता की प्रेरक कहानी लाखों श्रोताओं तक पहुंचाई है। दोस्तों, हरियाणवी संस्कृति को सहेजने और आगे बढ़ाने के लिए हम आपके लिए बाजे नगाड़ा और ग्राम संसार जैसे कार्यक्रम लेकर आते हैं। हरियाणवी लोक संस्कृति को उभारने और लोकप्रिय बनाने में इस केंद्र का योगदान हमेशा सराहनीय रहा है। समय के साथ साथ कार्यक्रमों के स्वरूप, प्रसारण तकनीक और गुणवत्ता में भी निरंतर सुधार हुआ है। पहले आकाशवाणी कुरुक्षेत्र की पहुंच सीमित क्षेत्र तक थी, लेकिन आज न्यूज ऑन AIR ऐप और डिजिटल माध्यम के जरिए आप हमें दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं। यही कारण है कि आज हमारे श्रोता केवल हरियाणा या भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि विदेशों में बसे रेडियो प्रेमी भी इस परिवार का हिस्सा है।

भी बहुत से पुराने और नियमित श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं और निरंतर नए नए श्रोता इस परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। यही बढ़ता हुआ परिवार और आपका अटूट विश्वास हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के 35वें स्थापना दिवस पर हम अपने सभी पूर्व और वर्तमान अधिकारियों, अभियंताओं, कार्यक्रम निर्माताओं, उद्घोषकों, कलाकारों, साहित्यकारों, तकनीकी कर्मचारियों और सबसे बढ़कर अपने प्रिय श्रोताओं का हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपका स्नेह, आपका विश्वास और आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। आइए मिलकर यही कामना करें कि आकाशवाणी कुरुक्षेत्र आने वाले वर्षों में भी अपने मधुर स्वरों के माध्यम से जन जन को जोड़ता रहे, संस्कृति और मूल्यों को संजोता रहे तथा जनसेवा के अपने संकल्प को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता रहे। तो चलिए दोस्तों, अब समय हो चुका है आकाशवाणी कुरुक्षेत्र को बधाई देने का, हैप्पी बर्थडे कहने का। तो गुनगुनाइए इस गीत को।

0: और अब लीजिए सुनिए आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के स्थापना दिवस पर माननीय सांसद श्री नवीन जिंदल का शुभकामना संदेश।
1: मेरे प्यारे कुरुक्षेत्र वासियों, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के 35 वर्ष पूर्ण होने पर मैं समस्त श्रोताओं, कलाकारों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पिछले 35 वर्षों से आकाशवाणी कुरुक्षेत्र ने समाचार, संस्कृति और लोक परंपराओं को जन जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। आकाशवाणी कुरुक्षेत्र ने जनमानस के मनोरंजन के साथ साथ हरियाणा की संस्कृति, लोक भाषा और कुरुक्षेत्र की आध्यात्मिक विरासत को सहेजने का सराहनीय कार्य किया है। मुझे विश्वास है कि यह संस्थान आने वाले वर्षों में भी आधुनिक तकनीक के साथ आगे बढ़ते हुए जन जागरूकता का यह अभियान निरंतर जारी रखेगा। एक बार फिर आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के 35 सफल वर्षों पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।
0: दोस्तों, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के 35 वर्षों के इस गौरवशाली सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है समाज के हर वर्ग की आवाज़ को मंच देना, जागरूकता का संदेश पहुंचाना और सकारात्मक बदलाव की दिशा में संवाद को आगे बढ़ाना। बातों से बनते हैं रिश्ते, संवाद से बनती है पहचान। जब जुड़े दिल से दिल, तब मजबूत होता है जहान। और जब संवाद की बात हो तो वो केवल व्यक्तियों के बीच ही नहीं बल्कि देशों के बीच भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। देशों के बीच विश्वास, सहयोग और शांतिपूर्ण संबंधों की यही कला कूटनीति कहलाती है। आज के समय में इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी लगभग लगातार बढ़ रही है और वे अपने नेतृत्व, संवेदनशीलता और दूरदर्शिता से वैश्विक मंच पर नई मिसालें स्थापित कर रही हैं। इसी महत्वपूर्ण विषय से जुड़ा है हमारा आज का एक और विषय, वो है कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। जी हाँ, जब संवाद, विश्वास और सहयोग की बात होती है तो महिलाओं की संवेदनशीलता, नेतृत्व क्षमता और दूरदर्शिता विश्व को नई दिशा देने का काम करती है। यही कारण है कि आज वैश्विक कूटनीति में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को विशेष महत्व दिया जा रहा है। इन्हीं योगदानों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। हर साल 24 जून को विश्व भर में कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 में अपने प्रस्ताव के द्वारा इस दिवस की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में महिलाओं की पूर्ण, समान और सार्थक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। हालांकि लंबे समय तक ये क्षेत्र मुख्य रूप से पुरुषों के वर्चस्व वाला माना जाता रहा है, लेकिन बदलते समय के साथ महिलाओं ने अपनी प्रतिभा, नेतृत्व क्षमता और संवाद कौशल के बल पर इस क्षेत्र को एक अलग पहचान दी है और इस क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई भी है। आज महिलाएं राजदूत, विदेश मंत्री, वार्ताकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की प्रमुख के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी महिलाएं भी निभा रही हैं। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि शांति स्थापना और निर्णय निर्माण की प्रक्रियाओं में महिलाओं की समान भागीदारी से अधिक समावेशी और प्रभावी परिणाम सामने आते हैं। यही कारण है कि विश्व समुदाय महिलाओं के नेतृत्व और प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने पर विशेष बल दे रहा है। भारत की बात करें तो अनेक भारतीय महिलाओं ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अपने प्रभावशाली कार्यशैली और मानवीय दृष्टिकोण से भारतीय कूटनीति को नई पहचान दी थी। वहीं संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कम्बोज ने भी वैश्विक मंचों पर देश का सशक्त प्रतिनिधित्व किया है। ये दिवस हमें याद दिलाता है कि विविधता और समान अवसर किसी भी समाज और विश्व व्यवस्था को अधिक मजबूत और समावेशी बनाते हैं। जब महिलाएं और पुरुषों को समान रूप से नेतृत्व का अवसर मिलता है, तब शांति, सहयोग और विश्वास की संभावनाएं और भी सशक्त हो जाती हैं। तो आइए कूटनीति में महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर हम महिलाओं के योगदान का सम्मान करें और एक ऐसे विश्व के निर्माण का संकल्प लें जहां हर महिला को नेतृत्व और निर्णय निर्माण के क्षेत्र में आगे बढ़ने का समान अवसर प्राप्त हो।

0: भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन।
1: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: हर नारी की मुस्कान हमारी पहचान। पेनलेस डिलीवरी हो या गर्भावस्था जांच, महिलाओं से संबंधित हर समस्या का समाधान अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रुचि जैन के साथ।
3: अब अस्पताल हरियाणा सरकार व सभी प्राइवेट टीपीए पैनल पर उपलब्ध।
2: डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र। 8708903436।
4: और अब दोस्तों, बारी है आप सभी श्रोताओं के नामों की, जिन्होंने भेजा है आज के सवाल का सही जवाब। और आज का जो आप सभी के एसएमएस है, यानी कि जो हमारा एसएमएस बॉक्स है, वो सिर्फ सवाल के जवाब से नहीं बल्कि आप सभी की ढेरों शुभकामनाओं से भी भरा हुआ है। तो चलिए, आप सभी की शुभकामनाओं को भी हम स्वीकार करते हैं और आपको भी आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। और इसी के साथ शुरू करते हैं आप सभी के नामों का सिलसिला, जिन्होंने भेजा है आज के सवाल का सही जवाब। तो गांधीनगर गुजरात से हैं सुरेश राठौड़। ढाणे कुतुबपुर हांसी से हैं रामधारी अवाना, अनाया ओजस अवाना। सुंदरनगर हिसार से मोनिका गुर्जर, पंकज गुर्जर और कीरत। योगी मोहल्ला बराड़ा अंबाला से हमारे साथी हैं रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, गुरशब्द सिंह राहुल, सुदर्शन शाह और पल्लवी शाह है पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से। दत्रेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, विक्रम योग भारती, संध्या सैनी, हरमन योग भारती और इनके साथी हैं फालसंडा जाटान कुरुक्षेत्र से। अरुणा और रोमा ये हमारे साथी हैं कुरुक्षेत्र से। उसके आगे हैं जी जगूडी से रणधीर बांगर, युगम और इंदराज का, जो कि नागल से हैं। उसके बाद है जी अगला सही जवाब साबित खान और धर्मेंद्र प्रजापति, जो कि खमरिया छत्तीसगढ़ से हमसे जुड़े हैं। तन्मय सिंह और सिद्धांत सिंह ये हमारे साथी हैं शिलाई हिमाचल प्रदेश से। लालपुर मारो छत्तीसगढ़ से कीर्ति कुमार ध्रुव, संतोषी ध्रुव और निशांत ध्रुव। दरियापुर बाबली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले। भाणा ब्राह्मणावाला से हैं, नरवाना से हैं मेघराज शर्मा। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंह रोल, नारायणी सिंह रोल, वान्या सिंह रोल। बिहार स्टेट डब्बू से हैं डब्बूवली बेलदार, उल्हावली बेलदार और सोनमवली बेलदार। आखली दीवान मध्य प्रदेश से हैं रामलाल चंद्रवंशी, कृष्णा चंद्रवंशी। ललिता सिंह और भगवान सिंह हैं शिलाई हिमाचल प्रदेश से। कल्याण मुंबई से हैं किशोर हिवराले, सुजाता हिवराले, प्रतीक हिवराले, विनोद मूनत, नेहा जैन और दीपक हैं बोरखेड़ा पित्रामल, उज्जैन मध्य प्रदेश से। रामनगर कैथल से हैं सुनील दत्त, विनायक दत्त और आशा रानी। रावर करनाल से हमारे साथी हैं ज्ञानभूषण शर्मा और सोमनाथ कालिया। शाहूनगर यवतमाल महाराष्ट्र से हैं राहुल मनवर, सरला मनवर, बेबी प्रियांशी। MLB रोड ग्वालियर से हैं सुरेश खुराना, पप्पी किरण खुराना, लाव्य और समस्त साथी इनके। इसके अलावा सांगली जिले के जतशहर से अल्ताफ हुजरे, सफुल्ला हुजरे, सबाहत हुजरे। शर्मा परिवार है भिलाई छत्तीसगढ़ से, मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा। शनि मंदिर चौक खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, गौरव सैनी ये हमारे साथी हैं। अगला नाम हम शामिल कर रहे हैं सही जवाब भेजने वाले साथी का, जिन्होंने जो है महसूल सीता मणि से अकरम हुसैन प्रिंस, इशरत अकरम और वसीम अकरम और इनके साथी। दोस्तों, बार बार निवेदन करते हैं कि आप सिर्फ 3 नाम भेजा कीजिए, फिर भी आप बहुत ज़्यादा नाम भेजते हैं, तो ऐसा ना करें। गजराज पानू, कार्तिकेय पानू और हर्षित पानू ये हमारे साथी हैं फुरलक करनाल से।

मुरिया, तुषार देव तामुरिया हमारे साथ ही हैं। डोनी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से, पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से हैं। राधेश्याम पांडे, विनय पांडे, विनय शंकर पांडे डेर पाटन गुजरात से हैं। धीरज वीर अबारी वडिंगखेड़ा पंजाब से हैं। मिंटू टॉमस, पिंकी और लवली। एस एम जावेद हमारे साथ ही हैं गुमला झारखंड से। मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज और शरीफ नवाज ये हैं दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से। बडवाह मध्य प्रदेश से हैं प्रवीण श्रीमाली और आनंद जोशी। कैलाश नगर कुरुक्षेत्र से हैं सुरेंद्र दत्ता, बंटी और शंटी लाडी। कौरासी छत्तीसगढ़ से हैं पवन क्रांति साहू, पंकज साहू, सुष्मिता साहू। किशन सबकाल, आशा सबकाल, विशाल सोनिया सबकाल हैं शास्त्री नगर बीड शहर से। माफ़ कीजिएगा, ये सोनिया विशाल सबकाल हैं। फिर हैं जी रोशन लाल शर्मा, प्रवीण शर्मा, अर्जुन शर्मा और इनके समस्त साथी। और अच्छा, इन्होंने कार्यक्रम की लिए बधाई भी भेजी है। इन्हें हमारा कार्यक्रम बहुत पसंद आता है, अच्छी बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम पसंद करने के लिए। फिर हैं जी धाणी नादूरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे और संदीप बाठे। तेलंगाना निज़ामाबाद से हैं शेख अल्लाह बख्श और राजेश साबले पाटिल। मोटला महाराष्ट्र से हमारे साथी हैं विजय सुरलकर और रतनमाला। बल्लारपुर जिला चंद्रपुर महाराष्ट्र से हैं हेमंत कुमार भारशंकर, प्रिया भारशंकर, समीक्षा भारशंकर। बिहारी कॉलोनी शाहदरा से हैं तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, रचिता और इसके अलावा अगला नाम हम शामिल कर रहे हैं कार्यक्रम में। बस्ती गंज डुंडवारा से जो कि हमारे साथी हैं मोहम्मद यासीन हाशमी, बेगम हाशमी और माफ़ कीजिएगा नाजमा बेगम हाशमी और मोहम्मद तौसीफ हाशमी। उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीशु ताशु है पाकुड़ झारखंड से। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से है पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके और श्राव्या रामटेके। हीरावाली फजिल का पंजाब से हमारे साथी हैं। सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा और इंदु पार्वती और इनके साथी। हेमलता और हर्षित और लालगिरी गोस्वामी ये हैं रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर राजस्थान से। गुजरात गांधी ग्राम से हमारे साथी हैं प्रवीण सोनी, जगदीश जोहरी, लड्डू कुमारी। सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, राजकुमार पुजारा, अनिता पुजारा, साहिल पुजारा हैं रादौर यमुनानगर से। नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, अंजलि करवाइए हैं बीड शहर महाराष्ट्र से। टीआर और कृष्णा हैं सोलन हिमाचल प्रदेश से। श्वेता भगत, देखिए दोस्तों बार बार एसएमएस ना किया कीजिए, आपको सिर्फ एक ही बार एसएमएस करना है। फिर है लाडवा से चांद ढींगरा, ईशू और एमी। राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी ये हैं जैन मंदिर वाली गली कुरावली से। नारायण कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय और अमित कुमार राय। गाडगे नगर नगर यवतमाल महाराष्ट्र से हैं लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई लोखंडे और शैलेश लोखंडे। मुरादाबाद से हैं मुकेश कश्यप, लक्ष्य सोनी। और आप बार बार एसएमएस करते हैं तो बार बार ही आपका नाम सामने आ जाता है। हमारे बहुत से श्रोता ऐसा करते हैं तो हम आपसे बार बार निवेदन करते हैं कि आपको सिर्फ एक ही बार एसएमएस करना होता है, बार बार एसएमएस ना भेजा कीजिए। फिर है जी अगला सही नाम सुधा, सही जवाब भेजने वाला नाम सुधा नारायण के हाली बेंगलोर से। नरेश मल्होत्रा, नीटू भावना मल्होत्रा, अनिल कटारिया ये हैं खैल बाजार पानीपत से। डोंडी लोहारा से हैं तुषार, हाँ ये हैं तुषार डोम और आरती डोम। और खंडवा से हैं निशा जाटव। स्टेशन रोड जमशेदपुर से हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया। भेरूलाल वाकतरिया धाकड़, भोला वाकतरिया, प्रवीण वाकतरिया हैं उन्हेल उज्जैन मध्य प्रदेश से। अंग्रेज संदीप दत्ता और बंसी हैं कैलाश नगर कुरुक्षेत्र से। नल्लेश्वर नगर

नरवेल महाराष्ट्र से हैं, पीएस नाहमकर, निर्मला नाहमकर और विशाल नाहमकर, वीना ढींगरा, कृतिका विशु और विजय हैं सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से, उगाला अंबाला से हैं राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी और राघव, माघिरम सैनी, पूनम सैनी ये हैं प्रतापगढ़ कुरुक्षेत्र से, फिर हैं जी किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, वर्षा सुमन, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से उषा राय, ओम प्रकाश राय और हैप्पी राय, सुनीता सैनी, रत्नी देवी, पृथ्वी सिंह सैनी ये हैं फालसंडा जाटान कुरुक्षेत्र से, बांडी वाला फजिल का पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, गरिमा अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस रेहान, सौराष्ट्र राजकोट से प्रवीण गुजराती, जगदीश गुजराती और हिरेन भाई, उसके बाद है जी रसेड़ा छत्तीसगढ़ से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार साहू, भुवन प्रकाश गौतम, श्रेय गौतम, गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से हैं, पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, पुराना तालाब डुमराव से हमारे साथी हैं वलीउल्लाह अंसारी और बक्सर बिहार से हैं राज एस डी अंसारी, रानीगंज बंगाल से हैं रवि और इंद्र, चोहल्दा बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, असलम सैफी हैं कासगंज उत्तर प्रदेश से, मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर यमेकर, प्रमोद यमेकर, प्रदीप यमेकर, यवतमाल महाराष्ट्र से वृंदा रामटेके, पूजा रामटेके, पप्पू रामटेके, राजकोट से जैमिन कुमार, भावसार जुली और जूली जैन, भीमखोज सरपोंगी से हैं संतोष गुप्ता, देवकी गुप्ता, शरफुद्दीन अंसारी ये हैं बक्सर बिहार से, कासगंज उत्तर प्रदेश से अनुपमा, कुसुम और अपूर्वा, आरसी कामड़े, करुणा कामड़े ये हैं जवाहर नगर दुर्ग से, रायसेन करनाल से हैं रजनीश बत्रा, दीपक बत्रा और इनाया बत्रा, कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी ये हैं भाटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से, सांतड़ी से हैं ईश्वर दयाल काम्बोज, राजवंती काम्बोज और भव्य काम्बोज, सुनील पाठक, कमल पाठक, गाव्य मल्होत्रा है अनारकली बाजार जगराम से, सदर बाजार कुरावली से हैं अनिल कुमार वर्मा, मारहरा दरवाजा एटा से हैं नबी हसन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, नवेद सुहेल अब्बासी, राजा जी नगर बेंगलोर से हैं एन आर प्रसाद, अखिला प्रसाद, मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज अब्बासी और समस्त अब्बासी परिवार है ऊपर कोट बुलंदशहर से, कनेरा मोहल्ला पटियाला से हमारे साथी हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, समस्त बत्ता परिवार, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, ध्वनि और सानवी, समस्त छाबड़ा परिवार, उसके बाद है जी बोरसरा नैला से छत्तीसगढ़ से प्रमोद साहू, बीमा साहू, शंभू दयाल खटक और विमला योगेश और समस्त साथी हैं जाखोद से, गौतम है कुरुक्षेत्र से, राजस्थान भोपालगढ़ से हैं धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, पूजा परिहार, बीपी गौतम, सरिता गौतम है एटा रोड गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से, फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, हियांश कुमार चंदन चंदन है सोंगा मगरलोड छत्तीसगढ़ से, बुल्ढाना वर्षिंगी से अमोल मानकर और बुल्ढाना इस्लामपुर से हैं सहदेव दामोदर। जय श्री सुनील हैं बेंगलोर से, मुरादगढ़ से हैं रमेश कुमार कंबोज, वंश भुवेश कुमार कंबोज, इसके अलावा नेहरू चौक पेंटर से सुरेश जाधव, अनिता जाधव, सोनल प्रसाद जाधव, मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, छप्पर वाली मस्जिद कासगंज से मोहम्मद जाहिद अली सैफी, जोहान सैफी, लीबा मलिक, आबाद खान, प्रमोद कुमार साहू और कबीता साहू है कदू आपड़ा जगत सिंहपुर ओडिशा से, उसके अलावा जी हमारे पास नाम आया है प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा का जो कि छत्तीसगढ़ पलारी से हैं, सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, निमित दिशानी है जलालाबाद वेस्ट से, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खट से, विनोद खट से, गांधीनगर गुजरात से हैं सुरेश राठौड़, अच्छा ये तो नाम शामिल हो गया था इसीलिए हम आपको कहते हैं कि बार बार SMS ना किया कीजिए, योगेश सारवा और आशा सारवा हैं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, तो इसी के साथ हमारे पास और भी ढेरों नाम आए हैं लेकिन वो सभी समय बीत जाने के बाद आए हैं, तो इतनी लेट आप 9 बजे के बाद भी आप SMS कर रहे हैं, जवाब भेज रहे हैं, तो ज़रा सोचिए हम आपके नाम ही शामिल करते रह जाएंगे तो आपके साथ जानकारी कब साझा करेंगे और आपको मनोरंजन के लिए गीत कब सुनवाएंगे हम, है ना, तो इसीलिए जो समय हम आपको देते हैं उस समय सीमा का ध्यान रखा कीजिए।

जी, उसी के अंतर्गत आप हमें एसएमएस किया कीजिए, हमारे सवाल का जवाब भेजा कीजिए, ताकि आपके नाम जो है वो कार्यक्रम में शामिल हो सके, ताकि आप हमें भी पढ़ने में सहूलियत रहे, समय भी पूरा रहे और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आती रहे, क्योंकि आकाशवाणी कुरुक्षेत्र तो बना ही है आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए।

दोस्तों आज हमने आपसे सवाल ये किया था कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है, तो इसका सही जवाब था अनुच्छेद 32। तो चलिए इससे जुड़ी थोड़ी सी जानकारी आपके साथ साझा कर लेते हैं। भारतीय संविधान हमारे देश के नागरिकों को कई महत्वपूर्ण अधिकार देता है, लेकिन जरा सोचिए अगर इन अधिकारों का उल्लंघन हो जाए तो उनकी रक्षा कौन करेगा। इसी सवाल का जवाब देता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32, क्योंकि अनुच्छेद 32 नागरिकों को ये अधिकार देता है कि यदि उनके किसी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वे सीधे सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकते हैं, और इसीलिए अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा गया है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान के आत्मा और हृदय कहा था। उनका मानना था कि यदि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था ही न हो तो उन अधिकारों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक आदेश जारी कर सकता है और यह सुनिश्चित करता है कि किसी के साथ अन्याय न हो। एक और महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि अनुच्छेद 32 स्वयं भी एक मौलिक अधिकार है और यह भारतीय संविधान के भाग 3 में शामिल है जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इस प्रकार अनुच्छेद 32 नागरिकों के अधिकारों का रक्षक है और यही कारण है कि इसे भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है।

दोस्तों 35 वर्षों के इस सफर में आकाशवाणी कुरुक्षेत्र ने न जाने कितनी प्रेरक कहानियां, विचारों और महान व्यक्तित्वों की गाथाएं आप तक पहुंचाई हैं, क्योंकि इतिहास केवल तारीखों से नहीं बनता, उन्हें गढ़ते हैं वे लोग जो अपने कर्मों से समाज पर अमिट छाप छोड़ जाते हैं। कुछ दीप खुद जलते हैं ताकि औरों को राहत दिखा सके, और कुछ लोग खुद संघर्ष करते हैं ताकि दूसरों का जीवन संवर सके। ऐसे ही एक व्यक्तित्व थे जिन्होंने श्रमिकों की आवाज को शक्ति दी, लोकतांत्रिक मूल्यों को सम्मान दिया और देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचकर भी सादगी को अपना आभूषण बनाए रखा। तो अब बात हम कर रहे हैं भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी के बारे में। देश की प्रगति का आधार केवल बड़े उद्योग नहीं बल्कि उन उद्योगों से जुड़े श्रमिकों का सम्मान और उनका कल्याण भी है। तो इसी विचार को अपने जीवन का ध्येय बनाने वाले महान व्यक्तित्व थे वराहगिरी वेंकट गिरी, जिन्हें हम वीवी गिरी के नाम से भी जानते हैं। आज हम उन्हें स्मरण कर रहे हैं उनकी जयंती पर। जी हाँ, 10 अगस्त 1894 को ओडिशा के बेरहामपुर में जन्मे वीवी गिरी ने प्रारंभिक शिक्षा के बाद आयरलैंड के डबलिन विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई की। वहीं वे स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के विचारों से प्रभावित हुए और भारत लौटकर महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े। स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाने के साथ साथ उन्होंने श्रमिकों के अधिकारों के लिए भी उल्लेखनीय कार्य किया। वे भारतीय ट्रेड यूनियन आंदोलन के अग्रणी नेताओं में गिने जाते थे। उनका मानना था कि श्रमिकों और प्रबंधन के बीच सहयोग और विश्वास ही देश के आर्थिक विकास का आधार है। स्वतंत्र भारत में उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। वे श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त रहे, उत्तर प्रदेश, केरल और मैसूर के राज्यपाल बने। सन 1967 में देश के उपराष्ट्रपति वो निर्वाचित हुए। सन 1969 में वे भारत के चौथे राष्ट्रपति बने और वर्ष 1974 तक इस पद की गरिमा को उन्होंने सुशोभित किया। उनके सार्वजनिक जीवन की पहचान सादगी, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता और समाज के कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता रही। देश के प्रति उनके अमूल्य योगदान के सम्मान में भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 1975 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया। 24 जून 1980 को वे इस संसार से विदा हो गए, लेकिन श्रमिक कल्याण, सामाजिक न्याय और राष्ट्र सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता आज भी प्रेरणा का स्रोत है। वीवी गिरी जयंती हमें यह संदेश देती है कि जनसेवा, सादगी और समर्पण के माध्यम से समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है। तो वीवी गिरी जी को, भारत के चौथे राष्ट्रपति श्री वीवी गिरी जी को हम सभी का नमन।

साथियों, आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है aapkibaat@gmail.com। और अब कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने का समय हो चला है, तो आरती को इजाजत दीजिए और आपको एक बार फिर से आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के 35वें स्थापना दिवस की ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं।

अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे का FM 101.4 MHz पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वरांजलि।

कार्यक्रम स्वरांजलि में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आरती, आपके रेडियो मित्र। और चलिए करते हैं कार्यक्रम का आगाज यूफोरिया बैंड के इस गीत के साथ।

Dyn a dyn.

बिल्कुल दोस्तों, जब जब आप आकाशवाणी कुरुक्षेत्र की गलियों में आएंगे तो आपका दिल से स्वागत किया जाएगा। और अब सुनिए, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के स्थापना दिवस पर माननीय सांसद श्री नवीन जिंदल का शुभकामना संदेश।

0: मेरे प्यारे कुरुक्षेत्र वासियों, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के 35 वर्ष पूर्ण होने पर मैं समस्त श्रोताओं, कलाकारों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पिछले 35 वर्षों से आकाशवाणी कुरुक्षेत्र ने समाचार, संस्कृति और लोक परंपराओं को जन जन तक पहुँचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। आकाशवाणी कुरुक्षेत्र ने जनमानस के मनोरंजन के साथ साथ हरियाणा की संस्कृति, लोक भाषा और कुरुक्षेत्र की आध्यात्मिक विरासत को सहेजने का सराहनीय कार्य किया है। मुझे विश्वास है कि यह संस्थान आने वाले वर्षों में भी आधुनिक तकनीक के साथ आगे बढ़ते हुए जन जागरूकता का यह अभियान निरंतर जारी रखेगा। एक बार फिर आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के 35 सफल वर्षों पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।

0: हर नारी की मुस्कान हमारी पहचान। पेनलेस डिलीवरी हो या गर्भावस्था जांच, महिलाओं से संबंधित हर समस्या का समाधान अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रुचि जैन के साथ।
1: अब अस्पताल हरियाणा सरकार व सभी प्राइवेट टीपीए पैनल पर उपलब्ध।
0: डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र, 8708903436।
2: अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा, सफल भविष्य की नींव और उज्जवल करियर बनाने के लिए अब प्रवेश लें NIILM विश्वविद्यालय में,
3: जहां अनुभवी शिक्षकों व इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स द्वारा विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।
2: इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, लॉ, IT, साइंस, पत्रकारिता, मैनेजमेंट सहित 100 से अधिक करियर ओरिएंटेड कोर्स उपलब्ध हैं।
3: तो देर किस बात की, अपने सपनों को दे नई उड़ान, आज ही प्रवेश ले NIILM यूनिवर्सिटी कैथल।
1: अब दर्द नहीं, जिंदगी फिर चलेगी।
0: फ्रैक्चर, हड्डियों व जोड़ों, घुटनों और कंधों का आधुनिक इलाज अनुभवी विशेषज्ञों के साथ।
1: अब अस्पताल हरियाणा सरकार व सभी प्राइवेट टीपीए पैनल पर उपलब्ध।
0: संपर्क करें डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र, 8708903436।
4: दोस्तों, आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है aapkibaat@gmail.com। और अब दीजिए अपनी दोस्त आरती को कार्यक्रम स्वरांजलि यहीं संपन्न करने की इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वरांजलि FM 101.4 MHz पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। सुबह के 9:45 हुए हैं। अब आप सुनिएगा अगला कार्यक्रम विविध भारती से।

0: अपने अभिनय का एक और रूप उन्होंने दिखाया शाहरुख और माधुरी के साथ, फिल्म थी दिल तो पागल है।
1: मुझको हुई ना खबर।

करिश्मा कपूर की कुछ और चर्चित फिल्में थीं अनाड़ी, खुद्दार, राजा बाबू, कुली नंबर वन, बीवी नंबर वन, शक्ति, राजा हिंदुस्तानी, साजन चले ससुराल। आइए सुने कुछ सुरीली झलकें।

करिश्मा के करिश्माई हुस्न और जादुई अदाकारी का दीवाना तो पूरा जमाना है, और शायद ये बात वो भी अच्छी तरह जानती हैं, इसीलिए फिल्मों से नाता तोड़ना वो भी नहीं चाहेंगे।

0: रमेश गोखले द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम के लिए आलेख और स्वर अमरकांत का था। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के फनकार, जिसे विविध भारती से रिले किया गया था। FM 101.4 MHz पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहिते कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र में, और मैं हूं आरती, आपकी रेडियो मित्र। सुरों से सजी है पहचान हमारी, शब्दों से बनी है दुनिया प्यारी। 35 वर्ष के दिलों तक पहुंची है जो आवाज, वो है आकाशवाणी कुरुक्षेत्र की मधुर पुकार हमारी। दोस्तों, 24 जून 1991 को शुरू हुआ ये सफर आज 35 वर्षों की सुनहरी मंजिल तक पहुंच चुका है। इन वर्षों में कभी गीत बनकर, कभी विचार बनकर, कभी जानकारी और कभी प्रेरणा बनकर आकाशवाणी कुरुक्षेत्र आपसे जुड़ता रहा है। ये रिश्ता सिर्फ प्रसारण का नहीं बल्कि अपनत्व, विश्वास और भावनाओं का रिश्ता है। और आज इसी खूबसूरत रिश्ते का उत्सव बनाने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए सजी फोन इन कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र। तो कुछ यादें हो पुरानी, कुछ बातें हो सुहानी, आज मिलकर करें उन लम्हों की मेहरबानी। आपकी आवाज से ही तो महफिल सजती है, और आपके बिना कहां पूरी होती है कहानी। तो आइए इस जश्न में आप भी शामिल हो जाइए। आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से जुड़ी अपनी यादें, अपने अनुभव और अपनी शुभकामनाएं और अपने मन की बातें हम तक पहुंचाइए। हमारा फोन नंबर है 0174421322। जी हाँ, इसी नंबर पर आपको कॉल करना है और हम तक पहुंचना है और अपनी आवाज को पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। अपनी आवाज को, अपने मन की बात को, अपने आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से जुड़े हुए आपके अनुभवों को। तो और अब माइक है तैयार, तिरंगे भी हैं बेकरार, बस आपकी आवाज का है इंतजार। तो मिलाइए हमारा फोन नंबर 0174421322 और बन जाइए आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के 35वें स्थापना दिवस के यादगार उत्सव का हिस्सा। और जब तक आप हमें कॉल करते हैं, तब तक हम अपनी और आपकी तरफ से आकाशवाणी कुरुक्षेत्र को दे देते हैं बधाई इस गीत के साथ।

0: जिंदगी अनमोल है, इलाज भी भरोसेमंद होना चाहिए।
1: सिर की चोट, नसों की हर समस्या, ब्रेन स्ट्रोक व दिमाग से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज
0: ब्रेन एवं स्पाइन सर्जन डॉक्टर हिमांशु जैन द्वारा
1: हरियाणा सरकार एवं सभी प्राइवेट TPA पैनल पर उपलब्ध।
0: डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र।
1: 8708903436।
2: हेलो हेलो हेलो
3: हेलो आरती जी, नमस्कार।
2: नमस्कार जी, कैसे हैं आप? और आपकी आवाज बता रही है कि आप बोल रहे हैं अशोक कुमार कोलकाता से।
3: कोलकाता
2: जी, कैसे हैं आप?
3: बहुत बढ़िया जी। सर्वप्रथम आकाशवाणी के स्थापना देश का देश और देश में रहने वाले सभी भारतीयों को हार्दिक शुभकामनाएं।
2: जी जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज गीत कौन सा सुनना चाहेंगे आप? हेलो हेलो हेलो अशोक जी, थोड़ा सा रेंज में आइए, आपकी आवाज कट गई है। हेलो,
3: देश में भी और विदेशों में भी मोबाइल ऐप के जरिए सुन रहे हैं जी आपके कार्यक्रम।
2: बिल्कुल जी, बिल्कुल
3: जी, पहले रेडियो पे सुनते थे और सभी कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किए जा रहे हैं
2: जी। तो आप तो हमारे नियमित श्रोता है, हम जानना चाहेंगे कि आपको कितने साल हो गए हैं आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से जुड़े हुए?
3: वैसे तो हम मतलब गेजी से सुन रहे हैं, जैसे आकाशवाणी पे कमेंट्री चलती थी, लेकिन प्रोग्राम तो जैसे अभी 5-6 साल से तो लगातार ही सुन रहे हैं जी।
2: अच्छा अच्छा,
3: हाँ जी, पहले जैसे क्रिकेट कमेंट्री आती थी जब भी सुनते थे और आज भी सुनते हैं, रेडियो के माध्यम से हम आर्थिक कार्यक्रम पे सुनते हैं
2: जी। और तो सबसे ज्यादा आपको कौन सा कार्यक्रम पसंद है?
3: जैसे ये अस्ते नमस्ते कुरुक्षेत्र है, सुबह सवेरे है और चांदनी रातें हैं, मतलब ये तो प्रोग्राम हर रोज ही सुनते हैं जी, टाइम लगता है तो।
2: हाँ जी हाँ जी
3: हाँ जी, और कोई लाइव फोन कार्यक्रम पहले जैसे रिकॉर्डिंग की जाती थी, अब तो नहीं होता, उसमें भी भागीदारी कराते थे।
2: चलिए, बहुत अच्छी बात है। और अब हम आपकी पसंद का गीत जानना चाहेंगे।
3: गीत सुना दो जी, हैप्पी बर्थडे स्थापना दिवस पर।
2: चलिए ठीक है, आपकी पसंद को पूरा करते हैं। कॉल करने के लिए धन्यवाद।
3: धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।

लीजिए अब सुनिए आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के स्थापना दिवस पर माननीय सांसद श्री नवीन जिंदल का शुभकामना संदेश।

मेरे प्यारे कुरुक्षेत्र वासियों, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के 35 वर्ष पूर्ण होने पर मैं समस्त श्रोताओं, कलाकारों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पिछले 35 वर्षों से आकाशवाणी कुरुक्षेत्र ने समाचार, संस्कृति और लोक परंपराओं को जन जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। आकाशवाणी कुरुक्षेत्र ने जनमानस के मनोरंजन के साथ साथ हरियाणा की संस्कृति, लोक भाषा और कुरुक्षेत्र की आध्यात्मिक विरासत को सहेजने का सराहनीय कार्य किया है। मुझे विश्वास है कि यह संस्थान आने वाले वर्षों में भी आधुनिक तकनीक के साथ आगे बढ़ते हुए जन जागरूकता का यह अभियान निरंतर जारी रखेगा। एक बार फिर आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के 35 सफल वर्षों पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।

हेलो हेलो हेलो। लगता है साथियों, हमारे एक साथी थे धीरज वी रबारी गुजरात से, जिनकी कॉल हमें लगी थी और उन्होंने भी आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। और अब हम सुनवा रहे हैं उन्हीं की पसंद पर आपको ये गीत।

अब सुनिए आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के स्थापना दिवस पर माननीय सांसद श्री नवीन जिंदल का शुभकामना संदेश।

मेरे प्यारे कुरुक्षेत्र वासियों, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के 35 वर्ष पूर्ण होने पर मैं समस्त श्रोताओं, कलाकारों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पिछले 35 वर्षों से आकाशवाणी कुरुक्षेत्र ने समाचार, संस्कृति और लोक परंपराओं को जन जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। आकाशवाणी कुरुक्षेत्र ने जनमानस के मनोरंजन के साथ साथ हरियाणा की संस्कृति, लोक भाषा और कुरुक्षेत्र की आध्यात्मिक विरासत को सहेजने का सराहनीय कार्य किया है। मुझे विश्वास है कि यह संस्थान आने वाले वर्षों में भी आधुनिक तकनीक के साथ आगे बढ़ते हुए जन जागरूकता का यह अभियान निरंतर जारी रखेगा। एक बार फिर आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के 35 सफल वर्षों पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।

0: अब दर्द नहीं, जिंदगी फिर चलेगी।
1: फ्रैक्चर, हड्डियों व जोड़ों, घुटनों और कंधों का आधुनिक इलाज अनुभवी विशेषज्ञों के साथ।
0: अब अस्पताल हरियाणा सरकार व सभी प्राइवेट टीपीए पैनल पर उपलब्ध।
1: संपर्क करें डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र, 8708903436।
2: हेलो,
3: हाँ जी, मैं बलदेव।
2: हेलो,
3: हाँ जी,
2: हाँ जी, नमस्कार जी, स्वागत है कार्यक्रम में, आपका नाम बताएं।
3: हाँ, नाम बलदेव सिंह, पिंड भगवानगढ़ और भुखमड़ी, जिला बठिंडा
2: जी। कैसे हैं आप?
3: बहुत बढ़िया जी।
2: जी, गीत कौन सा सुनना चाहेंगे?
3: गीत फिल्म आगे जी, कुछ कुछ होता है, उसमें गीत है, तुझे याद ना मेरी आई, किसी से अब क्या कहना, दिल रोया थे अक पर आई, मैं दो दो दोस्तों ने नाम लेना चाहता जी, रोक दे जी।
2: बिल्कुल जी, लीजिए।
3: हाँ जी, एक था रणधीर सिंह है दंगूड़ी तो जमुना नगर तो
2: जी,
3: ते बंसी लाल है तेजा मुड़ी तो हमारे तो जी।
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: लाडी सिंह है जी धारीवाल समाणे तो
2: जी,
3: ते मिट्टू सिंह मेरे पिंड दे है भगवानगढ़ भुखाली दा जी।
2: हाँ जी, हाँ जी,
3: मेरा खास दोस्त है, वो भी सुनी जांदा जी, ऐप से सुन रहे हैं।
2: हाँ, ठीक ठीक, आप सभी ऐप से हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं।
3: हाँ जी, ऐप दी आवाज आउंदी है, शहर च आ जांदी है जी आवाज थोड़ी।
2: चलिए, बहुत अच्छी बात है, और हमें भी जानकर खुशी हुई कि आप हमारे बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जो अब भी हमें इस वक्त न्यूज ऑन AIR ऐप पर सुन रहे हैं। और
3: हाँ जी, हाँ जी
2: जी, तो आप कब से आकाशवाणी कुरुक्षेत्र सुन रहे हैं?
3: मैं तो जी दो तीन साल ही हुए, बड़ा चिर नहीं होया, मेरा यार दोस्त है और सदा तो दरबार सिंह चीमा, उन्हें जोड़िया सी मैंने थोड़े नाल।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, तो देखिए
3: ने प्रोग्राम दसे जी, हाँ वो कुछ चला जा रहा है दरबार सिंह चीमा
2: जी जी जी जी, हाँ वो हमारे पास कॉल करते हैं और अपनी वो कुछ कविताएं लिखते हैं। हाँ जी, वो कविताएं लिखते हैं गुरबाज सिंह चीमा जी, तो वो जब हमारी कॉल लगती है। अच्छा अच्छा,
3: चलो जो कानपुर से हुक्मा जी बस चली जाता है।
2: हाँ जी, हाँ जी, तो चलिए अब आपके पास। हाँ जी,
3: 70 साल की उम्र है जी, छोटे प्रोग्राम का आनंद माणी है।
2: हाँ जी, हाँ जी, चलिए आपकी पसंद का गीत सुनवाया जाए अब।
3: हाँ जी,
2: चलिए, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: थोड़ा ही बहुत बहुत धन्यवाद जी।

लीजिए अब सुनिए आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के स्थापना दिवस पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष माननीय श्री हरविंदर कल्याण जी का शुभकामना संदेश।

0: नमस्कार, मैं हरविंदर कल्याण, अध्यक्ष हरियाणा विधानसभा। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर तथा आकाशवाणी कुरुक्षेत्र जो 24 जून 1991 को स्थापित हुआ था, उसके स्थापना दिवस पर पूरे आकाशवाणी परिवार व सभी श्रोताओं को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। आकाशवाणी कुरुक्षेत्र ने बीते 35 वर्षों में जन जन तक सूचना, शिक्षा, संस्कृति और मनोरंजन का सशक्त संदेश पहुंचाने का सराहनीय कार्य किया है। आकाशवाणी केवल प्रसारण का माध्यम नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने, लोक भाषा, लोक संस्कृति और जन भावनाओं को अभिव्यक्ति देने का एक विश्वसनीय मंच रहा है। मैं आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और इसके 35वें स्थापना दिवस पर पुनः आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। जय हिंद, जय हरियाणा।
1: हेलो हेलो
2: हेलो,
1: हाँ जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका नाम बताएं।
2: चलो आज मिलकर इस महफिल को प्यार से सजाए, जो सभी दोस्तों के दिल में ये याद बन जाए। और आपको मेरी तरफ से आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के स्थापना दिवस।
1: हेलो, थोड़ा सा रेंज में आ जाइए, आपकी आवाज कट गई है।
2: ओके मैम।
1: हाँ जी, दोबारा अभी जो आप शायरी कह रहे थे उसको एक बार फिर से कहिए।
2: चलो आज मिलकर, चलो आज मिलकर इस महफिल को प्यार से सजाए, सभी दोस्तों के दिल में याद बन जाए। और आज
1: जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके इस प्यार भरी शायरी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गीत कौन सा सुनना चाहेंगे और अपना नाम तो पहले बताएं हमें।
2: भारती जी जय नाम, और मैं नरेश कुमार जिला।
1: जी, बड़े दिनों बाद मेरी आपसे बात हो रही है आज। हेलो हेलो साथियों, नरेश कुमार जी की कॉल तो हमारे साथ कनेक्ट है, लेकिन शायद नेटवर्क की वजह से उनकी आवाज अच्छे से हम तक नहीं पहुंच रही। हेलो, हाँ जी, हेलो। तो इसीलिए उन्हें हम सुनवा रहे हैं साजन फिल्म का ये गीत, और साथ ही साथ उनकी शुभकामनाओं और उनकी प्यार भरी शायरी के लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं।

0: मेरे प्यारे कुरुक्षेत्र वासियों, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के 35 वर्ष पूर्ण होने पर मैं समस्त श्रोताओं, कलाकारों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पिछले 35 वर्षों से आकाशवाणी कुरुक्षेत्र ने समाचार, संस्कृति और लोक परंपराओं को जन जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। आकाशवाणी कुरुक्षेत्र ने जनमानस के मनोरंजन के साथ साथ हरियाणा की संस्कृति, लोक भाषा और कुरुक्षेत्र की आध्यात्मिक विरासत को सहेजने का सराहनीय कार्य किया है। मुझे विश्वास है कि यह संस्थान आने वाले वर्षों में भी आधुनिक तकनीक के साथ आगे बढ़ते हुए जन जागरूकता का यह अभियान निरंतर जारी रखेगा। एक बार फिर आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के 35 सफल वर्षों पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।
1: और अब दोस्तों आपके साथ जानकारी साझा करते हैं हरियाणा में वृक्ष दिवस के बारे में, जो कि हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है। पेड़ है तो कल है, पेड़ है तो जीवन है, धरती की हरियाली में ही हमारा सुरक्षित भविष्य है। इसी संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए हरियाणा में प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को वृक्ष दिवस मनाया जाता है। ये दिन लोगों को पेड़ों के महत्व और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए समर्पित है। दोस्तों, पेड़ केवल हमें छाया नहीं देते बल्कि स्वच्छ वायु, वर्षा, मिट्टी संरक्षण और जैव विविधता के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन में कि इस दौर में वृक्षों का महत्व और भी बढ़ जाता है। हरियाणा में वृक्ष दिवस का आयोजन वन महोत्सव की भावना के साथ किया जाता है। इस अवसर पर राज्य भर में पौधारोपण अभियान चलाए जाते हैं और लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने तथा उनकी देखभाल करने के लिए प्रेरित किया जाता है। हरियाणा सरकार ने राज्य में वन एवं वृक्ष आच्छादन बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, क्योंकि हरियाणा प्राकृतिक वनों की दृष्टि से अपेक्षाकृत कम वन क्षेत्र वाला राज्य है। ऐसे में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी अत्यंत आवश्यक हो जाती है। एक पेड़ लगाना केवल पर्यावरण की सेवा नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अनमोल उपहार है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करे तो हरियाणा ही नहीं पूरा देश हरियाली से भर सकता है। तो आइए इस 15 जुलाई को हरियाणा वृक्ष दिवस पर हम सब भी ये संकल्प लेंगे कि एक पौधा लगाएंगे, उसे वृक्ष बनाएंगे, धरती को हरा भरा और भविष्य को सुरक्षित बनाएंगे। और अब चलिए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन से हैं। हेलो हेलो हेलो, लगता है दोस्तों हमारे एक और श्रोता जो साथी जो फोन लाइन पर मौजूद थे उन्होंने कॉल कट कर दिया है। खैर कोई बात नहीं, उनके लिए हम चलाते हैं फिल्म जब वी मेट का ये गीत।

0: अब सुनिए आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के स्थापना दिवस पर माननीय सांसद श्री नवीन जिंदल का शुभकामना संदेश।
1: मेरे प्यारे कुरुक्षेत्र वासियों, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के 35 वर्ष पूर्ण होने पर मैं समस्त श्रोताओं, कलाकारों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पिछले 35 वर्षों से आकाशवाणी कुरुक्षेत्र ने समाचार, संस्कृति और लोक परंपराओं को जन जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। आकाशवाणी कुरुक्षेत्र ने जनमानस के मनोरंजन के साथ साथ हरियाणा की संस्कृति, लोक भाषा और कुरुक्षेत्र की आध्यात्मिक विरासत को सहेजने का सराहनीय कार्य किया है। मुझे विश्वास है कि यह संस्थान आने वाले वर्षों में भी आधुनिक तकनीक के साथ आगे बढ़ते हुए जन जागरूकता का यह अभियान निरंतर जारी रखेगा। एक बार फिर आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के 35 सफल वर्षों पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।

हेलो हेलो हेलो हेलो।

0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी, स्वागत है कार्यक्रम में। नाम बताएं
1: जी। मैं मनोहर लाल गांधी, विजयनगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से बोल रहा था।
0: जी। मनोहर जी, कैसे हैं आप?
1: बस ठीक है जी। और सबसे पहले आकाशवाणी कुरुक्षेत्र की स्थापना दिवस पर मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा।
0: जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के स्थापना दिवस की। और कब से सुन रहे हैं आप हमारे कार्यक्रम?
1: मैं तो 50 साल से जो है रेडियो से जुड़ा हुआ हूँ।
0: जी
1: बाकी कुरुक्षेत्र मैंने अभी 1-2 साल से सुनना शुरू किया। बहुत
0: तो कैसा अनुभव रहा आपका हमारे कार्यक्रमों के साथ? हेलो हेलो हेलो। लगता है दोस्तों आज नेटवर्क की समस्या कुछ ज़्यादा ही हो चुकी है, और इसीलिए हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने आज हमें कॉल किया था, लेकिन सबकी कॉल्स शामिल नहीं हो पाई कार्यक्रम में नेटवर्क की वजह से, क्योंकि कॉल बहुत जल्द जल्द कट हो जा रही हैं आज, पता नहीं क्यों। और खैर कोई बात नहीं, अब हम बात करते हैं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। और दोस्तों कल्पना कीजिए कि एक ऐसी जगह की जहाँ सुबह की शुरुआत पक्षियों की मधुर चहचहाट से होती है, जहाँ दूर दूर देशों से मेहमान आए पक्षी प्रकृति की गोद में विश्राम करते हों, और जहाँ हर ओर हरियाली और शांत वातावरण मन को सुकून देता हो। ऐसी ही एक अनमोल धरोहर है हरियाणा के गुरुग्राम जिले में, जिसे का नाम है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। दिल्ली से लगभग 50 किलोमीटर दूर ये दूर स्थित ये राष्ट्रीय उद्यान पक्षी प्रेमियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। वर्ष 1971 में इसे पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था और 1991 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान लगभग 142 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ 250 से अधिक पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। सर्दियों के मौसम में साइबेरिया, यूरोप और मध्य एशिया जैसे दूरस्थ क्षेत्रों से हजारों प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं। इनमें बार हेडेड गूंज, नॉर्दर्न पिनटेल, पेलिकन, फ्लेमिंगो और अनेक तरह के बत्तख हैं शामिल हैं। दोस्तों सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान केवल पक्षियों का आश्रय स्थल नहीं बल्कि जैव विविधता संरक्षण का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। वर्ष 2021 में इसे अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि यानी रामसर स्थल का दर्जा भी प्राप्त हुआ, जो इसकी वैश्विक महत्ता को दर्शाता है। नवंबर से फरवरी तक का समय यहाँ भ्रमण करने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि इसी दौरान प्रवासी पक्षियों का सबसे अधिक चहल पहल यहाँ पर देखने को मिलती है। पार्क में बने वॉच टावर और प्रकृति पथ आगंतुकों को पक्षियों को नजदीक से देखने का अवसर प्रदान करते हैं। तो अगली बार जब भी आप प्रकृति के करीब कुछ पल बिताना चाहें तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की सैर अवश्य करें। ये जगह जो है हमें न केवल प्रकृति की सुंदरता से परिचित करती है बल्कि पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देती है। तो ये हुई बात हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क के बारे में। और दोस्तों आज आकाशवाणी कुरुक्षेत्र का 35वां स्थापना दिवस है, इसी की हम आप सभी को एक बार फिर से ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। और कार्यक्रम को संपन्न करने का समय हो चला है, तो आपको कार्यक्रम कैसे लगते हैं, आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है aapkibaat@gmail.com। और अब दीजिए अपनी दोस्त आरती को अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र, FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। सुबह के 11 बजे हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। कृपया रेले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रंग तरंग में।

हम सुन रहे थे श्री राम भजन चंदन दास की आवाज में। राजेंद्र राजवंशी ने इसे लिखा और सरस्वती कुमार दीपक ने इसे संगीतबद्ध किया। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम रंग तरंग।

0: हम सुन रहे थे स्वर बहार एल्बम से यह नगमा, जिसे गाया सुमन कल्याणपुर ने, अनजान के बोल और श्याम शर्मा ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
5: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
4: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
5: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
4: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
5: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
4: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग और सुनते हैं रंग तरंग का अगला नगमा, नुमाइश एल्बम से, पंकज उदास की आवाज है, जफ्फार गोरखपुरी ने इसे लिखा है और संगीतबद्ध किया है पंकज उदास ने।

0: सीमा शर्मा का गाया हुआ ये नगमा हम सुन रहे थे। दलीप ताहिर ने इसे लिखा और जगजीत सिंह ने इसे संगीतबद्ध किया।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में गीत गजल एल्बम से दिलराज कौर की आवाज में, जिसे बेनी सतामकर ने संगीतबद्ध किया है। सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को।

शेर पे मुकर्रर की आवाज आई तो वे शेर दोबारा पढ़ दिया गया। उसके बाद फिर मुकर्रर की आवाज आई तो गाने वाले ने फिर दोबारा शेर पढ़ा। उसके बाद फिर मुकर्रर की आवाज आई तो गाने वाले ने तीसरी दफा फिर पढ़ा, लेकिन फिर मुकर्रर की आवाज आई तो गाने वाला बोलता है कि साहब मुझे अगला शेर भी पढ़ने दीजिए अभी। तो ऑडियंस में से आवाज आती है कि जब तक आप इसको सुर में नहीं पढ़ेंगे हम मुकर्रर ही बोलते रहेंगे।

0: हम सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में इस नगमे को, जिसे खयाम ने संगीतबद्ध किया और मधुकर राजस्थानी ने जिसे लिखा है। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक बेटी की यादों में उसके पिता
4: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
3: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
4: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
3: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
4: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा,
5: रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
3: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं अगला नगमा सुधा मल्होत्रा की आवाज में। पीरजादा शफक लखनवी ने इसे लिखा है और जगजीत सिंह ने इस नगमे को संगीतबद्ध किया है।

हम सुन रहे थे नाम फिल्म का यह गीत पंकज उदास और साथियों की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से जुड़ा हुआ यह गीत। आइए सुनते हैं अगला नगमा, यानी आज के कार्यक्रम रंग तरंग का यह आखिरी गीत है जिसे हमने चुना है वेलवेट वॉइस हरिहरन एल्बम से, जिसे गाया और संगीतबद्ध किया है हरिहरन ने और इसे लिखा है मुशीर ने। चलिए सुनते हैं ये नगमा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, हम थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सह अध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है।

0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
1: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 285,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को वहां से निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेस ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खासतौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता भी दोहराई। ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए एक नया परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। देश में रह रहे भारतीय नागरिकों और बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर रखने को कहा गया है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा है कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा, सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में।

हम सुन रहे थे गीतबाजी फिल्म से गीता दत्त की आवाज़ में साहिर लुधियानवी के बोल और संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन। आज के कार्यक्रम यादों की महफिल में आइए याद करते हैं गीता दत्त को उनके गीतों के साथ। तो चलिए सुनते हैं उनके ही द्वारा गाया गया ये और एक और गीत।

0: हम सुन रहे थे प्यासा फिल्म का यह गीत गीता दत्त की आवाज़ में साहिल लुधियानवी के बोल और सचिन देववर्मन के संगीत से सजा हुआ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। यादों की महफिल में और भी नगमे हम सजाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
4: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
3: सखी सहेली?
4: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
3: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
5: सखी सहेली।
0: और कार्यक्रम यादों की महफिल में लेते हैं एक छोटा सा विराम।

सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल और हमने आज की यादों की महफिल सजाई है गीता दत्त के द्वारा गाए हुए गीतों के साथ। तो आइए सुनते हैं सुजाता फिल्म का यह गीत जिसे गाया है गीता दत्त ने। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और सचिन देववर्मन ने इसे संगीत दिया है।

आइए सुनते हैं गीता दत्त के द्वारा गाया हुआ, जिसमें मोहम्मद रफ़ी और साथियों ने उनका साथ दिया है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, ओपी नैयर का संगीत, और फिल्म का नाम है मिस्टर एंड मिसेस 55।

0: हम सुन रहे थे आर पार फिल्म का यह गीत गीता दत्त की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर का संगीत।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।

0: के जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
1: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
2: सुहानी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल और आज सजाई है यादों की महफिल गीता दत्त के गानों के साथ। तो आइए सुनते हैं फिल्म CID का यह गीत, जिसे लिखा है मजरूर सुल्तानपुरी ने, संगीतकार हैं OP नैयर और गाया है गीता दत्त ने।

हम सुन रहे थे हावड़ा ब्रिज फिल्म का यह गीत गीता दत्त की आवाज में कमर जलालाबादी के बोल और ओपी नैयर के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का यह अगला गीत जो कि है 12 o'clock फिल्म से। गीता दत्त की आवाज़ है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और ओपी नैयर का संगीत।

हम सुन रहे थे ये गीत श्रीमती 420 फिल्म से गीता दत्त की आवाज़ में जानिसार अख्तर के बोल और ओपी नैयर के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं एक और गीत गीता दत्त की आवाज़ में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर का संगीत।

हम सुन रहे थे ये गीत आज के इस कार्यक्रम यादों की महफिल में गीता दत्त की आवाज में, और आज हम उन्हें याद कर रहे हैं उन्हीं के गीतों के साथ। तो आइए सुनते हैं अनुभव फिल्म का यह गीत, जिसे गाया है गीता दत्त ने, लिखा है गुलजार ने, और कनु रॉय ने इसे संगीतबद्ध किया है।

हम सुन रहे थे साहेब बीबी और गुलाम फिल्म का यह गीत गीता दत्त की आवाज में शकील बदायूनी के बोल और हेमंत कुमार के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का यह अंतिम गीत कागज के फूल फिल्म से गीता दत्त की आवाज में कैफी आजमी के बोल और सचिन देवर्मन का संगीत।

0: भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। सुरीला सफर, एक सफर जहां हम अपनी यादों को भी याद करते हैं और बड़े प्यारे से गीतों और जज्बातों के साथ बात करते हैं। आज सुरीला सफर की इबारत कुछ अलग तरीके से हम लिखकर लाए हैं और उस इबारत पर आप सभी ने बहुत सारे संदेश भेजे हैं, उसके लिए धन्यवाद। और अब हम चलते हैं उस इबारत की ओर जो हमने आपको सौंपी थी। इबारत कुछ ऐसी है कि फिल्में बदलती हैं, किरदार बदलते हैं, मगर कुछ फैशन ऐसे होते हैं जो समय नहीं इतिहास बन जाते हैं। और जब बात फैशन की हो तो हिंदी सिनेमा का जिक्र भला कैसे ना हो। दशकों से हमारी फिल्में सिर्फ कहानियां नहीं सुनाती, वे ट्रेंड भी गढ़ती हैं, सपने भी बुनती हैं और अलमारियों का रंग रूप भी तय करती हैं। कभी अनारकली की अनारकली कुर्तियां दिलों पर राज करती हैं तो वक्त का हेयर कट युवाओं के आईने का सपना बन जाता है। ब्रह्मचारी की सादगी भरी साड़ी हो या बॉबी का चंचल पोल्का डॉट्स, हर दौर ने अपने हिस्से का एक फैशन इतिहास लिखा है। कुर्बानी के जंपसूट ने आत्मविश्वास को नया रूप दिया तो चांदनी के शिफॉन की साड़ियों ने हवाओं को भी रुमानी बना दिया। रंगीला का रंग हो या तेरे नाम के राधे का अंदाज, हर गली में उनकी झलक दिखाई देती थी। देवर की भाभी की बहन की बैंगनी साड़ी से लेकर जफी महट के बेफिक्र और सुकून भरे कपड़ों तक, फिल्मों ने हमारे वार्डरोब ही नहीं हमारी सोच को भी सजाया है। और फिर ये जवानी है दीवानी की साड़ियाँ जो आज भी अनगिनत अलमारियों में अपनी जगह बनाए हुए हैं, वहीं डोला रे डोला की भव्य साड़ी वह तो मानो हर फैशन प्रेमी के सपनों की अलमारी में टंगी हुई एक अधूरी ख्वाहिश है। तो आइए यादों की इस रैंप वॉक में आप भी शामिल हो जाइए। बताइए कौन सा फिल्मी फैशन को अपनाया था आपने, कौन सा अंदाज आज भी आपके दिल के किसी भी कोने में सजा हुआ है। तो ये दो प्रश्नों के उत्तर आप बहुत देर से दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे इस बात की ख्वाहिश है। पर हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छा अच्छा लिखा है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। मेरे श्रोता लिखते हैं, आज तो फैशन का जलवा ही है, शुरुआत से लेकर आज तक हर 20 साल बाद पलट कर आती है। तो हर चीज़ जो पुरानी फिल्मों में दिखाई देती थी आज वही चलन में है। बड़े प्रिंट वाले कपड़े, साड़ियाँ, बालों की भी वही फैशन। पर एक बात है, साड़ी नहीं बदलती, वो विभिन्नता लेकर आती है, पर कुछ साड़ियाँ राज्यानुसार वो की वो ही रहती हैं। जैसे महाराष्ट्र की पैठणी, नवारी, बंगाल की बंगाली, तमिल की कांजीवरम, गुजरात की बांधनी और सभी परंपरागत रूप से बनकर आई हैं। ये सारी बातें यहाँ पर कहती हैं। इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं कि दिन बदलते हैं, हालात बदलते हैं, साथ साथ में मौसम के फूल और पाठ बदलते हैं, उसी तरह फैशन के युग बदलते हैं, ज़माना बदलता है, हालात बदलते हैं, साथ साथ इंसान के दिमाग और पहनावे में भी बदलाव आता जाता है। जी, हमारे एक श्रोता ने जानकारी दी है कि भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्मित राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली मूक फिल्म थी जो 3 मई 1913 को रिलीज हुई और वर्ष 1931 में बनी आलमारा देश की पहली बोलती फिल्म थी। इस जानकारी के लिए आपको बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। वो
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारियां कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि जुलाई में भी मानसून के कमजोर रहने की आशंका है।
2: ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है। इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले मतलब जहां 25-50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं ऐसे 76 जिले हैं और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले, इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
1: हरियाणा के सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई विभागीय उच्च अधिकार प्राप्त खरीद समिति की बैठक में प्रदेश में आगामी मानसून को देखते हुए बाढ़ नियंत्रण के लिए कई निर्णय लिए गए। बैठक में विभागीय उच्च अधिकार प्राप्त खरीद समिति के सदस्य और प्रदेश के शिक्षा मंत्री श्री महिपाल ढांडा भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक के दौरान

समिति ने जल भराव और बाढ़ जैसी स्थितियों से निपटने के लिए पाइपों तथा उच्च शक्ति वाले जल पंपों की खरीद से संबंधित सभी 16 एजेंडा को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। इन उपकरणों और सामग्रियों की खरीद पर प्रदेश सरकार द्वारा 30 करोड़ रुपए से अधिक की राशि व्यय की जाएगी। मंत्री ने कहा कि सरकार के इस कदम से प्रदेश के संवेदनशील और निचले इलाकों में जल निकासी व्यवस्था को भारी मजबूती मिलेगी। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाढ़ नियंत्रण से जुड़ी सभी सामग्रियों की आपूर्ति समय पर सुनिश्चित की जाए। भारतीय सूचना सेवा के सेवामुक्त अधिकारी श्री जीएस टिवाना की आज 88 वर्ष की आयु में कनाडा में निधन हो गया। उन्होंने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दी। वे 1998 में दूरदर्शन जालंधर से निदेशक समाचार के पद से सेवामुक्त हुए थे। हरियाणा के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने अधिकारियों को बरसात के मौसम के दौरान हर हाल में सभी प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय औपचारिकताएं पूरी कर लेने के निर्देश दिए हैं, ताकि मौसम अनुकूल होते ही सड़क निर्माण एवं सुधार कार्यों को तेजी से शुरू किया जा सके। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखा जाए। श्री रणबीर गंगवा लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप राज्य के सभी 22 जिलों में विकसित की जाने वाली आदर्श सड़क परियोजनाओं के साथ साथ अन्य परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। श्री रणबीर गंगवा को अधिकारियों ने बताया कि इन दो सड़कों की कुल लंबाई लगभग 115 किलोमीटर होगी। इन सड़कों को सौंदर्यकरण, आधुनिक सुविधाओं और सड़क सुरक्षा के लिहाज से प्रदेश की आदर्श सड़कें बनाया जाएगा। अधिकारियों ने जानकारी दी कि चयनित 8 सड़कों का विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा सर्वेक्षण जुलाई माह में पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही जुलाई तक आदर्श रोड परियोजनाओं को प्रशासनिक मंजूरी भी मिलने की संभावना है, जिसके बाद निर्माण कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। अधिकारियों ने वर्ष 2026-27 के कार्य की प्रगति को लेकर बताया कि प्रस्तावित 1633 सड़कों में से 1042 सड़कों के अनुमान तैयार कर भेजे जा चुके हैं, जबकि शेष सड़कों की प्रक्रिया भी तेजी से पूरी की जा रही है। अंबाला जिला रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा कल अंबाला शहर के पंचायत भवन में सुबह 9 बजे से दिव्यांगजनों के लिए विशेष मापन एवं उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया जाएगा। रेडक्रॉस सोसाइटी से कार्यक्रम के जिला संयोजक सुनील कुमार ने बताया कि शिविर में अंबाला जिले के अंबाला, नारायणगढ़, बराड़ा, मुलाना सहित सभी 6 खंडों के पात्र दिव्यांगजनों को आवश्यकता के अनुसार ट्राईसाइकिल, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, बैसाखियां तथा अन्य सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इस बार विशेष प्रयास किया जा रहा है कि मापन के बाद लाभार्थियों को उपकरण उसी दिन अथवा अगले दिन उपलब्ध करा दिए जाएं, लोगों को कई महीनों तक इंतजार न करना पड़े। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत MY यानी माय भारत चंडीगढ़ ने युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने तथा संगठित युवा समूहों के माध्यम से सामुदायिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पूरे चंडीगढ़ में यूथ क्लब विकास अभियान की शुरुआत की है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम सुन रहे थे बढ़िया सा गीत जिसे हमने लिया मुगले आजम फिल्म से, और हमारे श्रोता ने सही कहा कि इसमें मधुबाला ने अनारकली सूट पहना हुआ है। लता मंगेशकर की आवाज़ और साथियों की आवाज़ में सुन रहे थे इस गीत को। शकील बदायूं ने लिखा और नौशाद ने संगीत से सजाया। हम जो ये गीत सुन रहे थे, इस गीत में यानी इस फिल्म में मुगले आजम फिल्म की पोशाकें मक्खन लाल एंड कंपनी के द्वारा डिज़ाइन की गई थी। दिल्ली के कारीगरों ने इसे सिला था और इसके लिए जरदोजी जरी सूरत के विशेषज्ञों ने इसका काम किया था। मखमल रेशम ब्रोकेट जैसे महंगे और प्रामाणिक कपड़ों का भी इस्तेमाल किया गया था। मैं आपको बता दूँ, पहले जो होता था कि कोई कंपनी वाले फिल्मों को डिज़ाइन करते थे।

में हम क्या कमेंट करें, पर हमारे एक श्रोता ने बड़ी संजीदगी से बड़ा प्यारा कमेंट किया है। वो लिखते हैं कि प्राचीन काल में बिना ब्लाउज और पेटीकोट की साड़ी शरीर पर लपेटी जाती थी। हाँ, ये नौगजी साड़ी होती थी जिसे पूरे शरीर पर लपेटा जाता था, उसी से एक ब्लाउज नुमा एक तैयार कर लिया जाता था और वही पेटीकोट बन जाता था, वही साड़ी होती थी, एक ही साड़ी होती थी, एक ही कपड़ा होता था। उसके बाद फिर ब्रिटिश काल में ब्लाउज पेटीकोट का प्रचलन चालू हुआ। उसके बाद अब वो कहते हैं कि आजकल महिलाएं प्री ड्रेप्ड साड़ी, कैप स्टाइल, रफेल और जैकेट स्टाइल साड़ी पहनना पसंद करती हैं। इसके अलावा साड़ी को बेल्ट के साथ पहनना भी एक बहुत बड़ा फैशन स्टेटमेंट बन गया है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, फैशन बदलता जा रहा है पर कपड़े तो लगभग वही हैं। तो इसके साथ साथ हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्मों में महिलाओं के फैशन का नाम आते ही सबसे पहले उन्हें याद आती हैं साधना। अच्छा, माथे पर हल्की जुल्फें, फैशन कौन भूल सकता है। और इसके साथ ही वो बहुत सारी बातें इसमें लिखते हैं, इसके साथ ही वो लिखते हैं कि फैशन का क्या कहना, हमारे हर ज़माने में फिल्मी सितारों का फैशन देखते हुए अपनाया गया। मेरी मम्मी को नरगिस जैसी साड़ियां पहनने का शौक था और उन्हें, यानी वो लिखती हैं कि मुझे इंदिरा गांधी जी की साड़ी का स्टाइल पसंद है और आज भी उसी स्टाइल में साड़ी पहनती हूँ। क्या बात है, बढ़िया बात है, ऐसी फैशन ही तो हमें बनाता है, जोड़ता है किसी के साथ में। हमारे श्रोता लिखते हैं कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा बदली है वो फैशन है। आज स्कर्ट का कुर्ता तो कल स्कर्ट का, सही बात है, फैशन के पीछे पागल होते रहते हैं। लेकिन वो बहुत अच्छी बात कहती हैं, कहती हैं कि फैशन चाहे जितना बदले मगर मेरा तो मानना है कि फैशन कितना भी बदले आप वही पहने जो आप पर फबे फबे भी। और दूसरी बात ये भी होता है, एक बहुत अच्छा शब्द का प्रयोग करते हैं, कैरी करना यानी संभाल पाना। हम जिस वस्तु को अच्छे से संभाल सकें वो पहने तो कितना अच्छा होगा। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमने जो फैशन अपनाया वह अमिताभ बच्चन से प्रेरित होकर अपनाया, उनके बालों का हेयर स्टाइल, आधे कान ढके हुए और इस टाइप की कटिंग और पैंट में जो बेल बॉटम टाइप का था उसके नीचे काफ़ी फैला हुआ रहता था, पैंट की मोहरी ज़्यादा बड़ी होती थी जी, वो फैशन बहुत चला और बहुत लोगों ने उसे अपनाया। और हमने आपसे प्रश्न पूछा था बड़ा सरल सा कि आपको ऐसा कौन सा है स्टाइल जो पसंद आया था पहन नहीं पाए, तो हमारे श्रोता कहते हैं कि अच्छा एक बहुत अच्छी बात लिखिए, अनारकली अब फैशन में आई है नए कलर में, स्त्री वर्ग पहनती नहीं है, अब आम वर्ग में फैशन में इसे ज़्यादा अपनाया है, ज़्यादा मोटी स्त्री अपना पेट छुपा सकती है। नहीं देखिए क्या है, ये जो चीज़ें हैं जैसे अनारकली है वो बड़ा अगर उसे हमारे कॉटन के कपड़ों में, सूती कपड़ों में बना लिया जाए तो कितना अच्छा होता है ना, पहनने में कितना सुकून मिलता है। इसके साथ हमारे श्रोता बहुत सारी बातें यहाँ पर लिख रहे हैं फैशन के बारे में। और मुमताज़ जी दुपट्टा बालों में लगाती थी, वो उन्हें बहुत पसंद है, और पर ना बाल तब वैसे थे ना कॉपी करना आया, सो मन की बात मन में रह गई। मुमताज़ की अदायगी को कौन नहीं अपनाना चाहेगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले गीत की तरफ, और ये अगला गीत है उसी हेयर स्टाइल को लेकर जो हेयर स्टाइल तब से लेकर आज तक फैशन में है। एक टाइम था जब ये आई थी और आज का वक्त है जब ये है, और इस स्टाइल को केवल इसलिए बनाया था क्योंकि माथा चौड़ा था अभिनेत्री का और माथा छुपाना था। चलिए सुनते हैं ये गीत। फिल्म का नाम बता दीजिए।

हम सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में यह गीत साहिल लुधियानवी के शब्दों से सजा और संगीतकार रवि ने इसे संगीतबद्ध किया। और हमने आपसे पूछा था एक प्रश्न कि ये कौन सी फिल्म का गीत है, और बहुत सारे लोग बड़े प्रसन्न हैं इस गीत को सुनकर। हमें भी प्रसन्नता होती है जब आपके मन का कुछ हम सौंप पाते हैं। तो हमारे श्रोता ने लिखा कि उन्हें बहुत पसंद है ये गीत और ये है वक्त फिल्म का खूबसूरत सा गीत। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया बातें आप लिखते जा रहे हैं। और हमारे श्रोता ने बताया कि दिल को छू लेने वाला ये गीत है। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि साड़ी की फैशन रैपिंग सब चल रही है और बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे एक और श्रोता ने लिखा कि उन्हें पैंट पहनना अच्छा लगता है और स्पोर्ट्स लुक में दिखना अच्छा लगता है। तो बढ़िया बात है, अगर आपको स्वयं को उसमें देखकर अच्छा लगता है तो अवश्य वैसे दिखें। और हमारे श्रोताओं ने कहा कि एक श्रोता ने कहा कि फैशन तो रोज़ बदलते हैं, इसलिए इसमें ना ही फंसो तो अच्छा है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। ये बात भी आपकी सही है कि वैसे जिसको जो अच्छा लगे सो वही करें, ये ज़्यादा अच्छा होगा। हमारे श्रोता लिखते हैं पहले फिल्मों में देखा है कि हीरोइन कुर्ता साइड से बंद होता था और टाइट भी बहुत होता था और उनका बैक वाला हिस्सा अलग से दिखाई देता था। जी, ये फैशन का ट्रेंड बदलता जा रहा है। और यही फैशन वाली बात में हमारे श्रोता लिखते हैं कि मैं तो बचपन से बचपन तक फैशनेबल हूँ, चाहे कुछ भी हो। पिता की पहली संतान थी तो 70 के ज़माने में फ्रॉक वेल बॉटम दिखते थे। बचपन से लेकर 10वीं तक 12वीं तक फ्रॉक्स मिडी फ्रॉक्स पहने थे, साथ में को कलर की सैंडल गॉगल्स फ्रेम वाले अब तक नहीं छूटे, बस सैंडल छोड़ के पैर तोड़ने क्या इसलिए वो सैंडल नहीं पहनती, HMT टाइटन की घड़ी के साथ। अब बालों का बताएं रीना राय वाली स्टाइल अपनाई है, तो सामने के कटवा के कानों के पीछे रखवाए थे, बाबा के हाथ से कई बार मार भी खाई लेकिन फैशन नहीं छोड़ी, क्या बात है। और हमारे श्रोता ने लिखा कि फैशन से याद आई 1983 में जितेंद्र श्रीदेवी की मवाली फिल्म आई थी, फिल्म देखी, उनके गाने की ड्रेस पसंद आई, अगली दीपावली पर वही ड्रेस अपनी दीदी को दिखाकर बनवा ली और इन्होंने उस ड्रेस को पहना, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। और हमारे श्रोता ने कहा कि अनारकली के बारे में वो लिखती हैं।

वार्डरोब भरा रहता है और शिफॉन और सिल्क की साड़ियाँ, बनारसी कॉटन, क्या ये तो बात सही है कि अलग ही बात है। उन्हें घूंघट में फिल्म घूंघट की वीना रॉय की शिफॉन की लहरिया साड़ी पहनती हैं जो इन्हें पसंद आ गई थी हमारे एक श्रोता को, और शादी के बाद उन्होंने वही साड़ी बाजार में दिख गई, झट से खरीद लिया और पहनकर सबको बताई कि घूंघट वाली यही वीना रॉय ने पहनी है, और रंगोली चित्र का चित्रहार में उस गाने को देखती हैं तो उन्हें अपनी वो साड़ी याद आ जाती है। क्या बात है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश के कस्बा नुमा शहर में रहते थे, महिलाएं आपस में मिलकर मैटनी शो फिल्म देखने जाया करती थी, बगल वाली एक मुंह बोली बुआ थी वह उनके साथ गई, साधना और अनीता का पहना हुआ घाघरा सेट अच्छा लगा, अब उसके डिजाइन को कैसे आंखों में बसा जाए, तो फिर से वह जुगाड़ करके लगातार 3 बार उस फिल्म को देखने गई, तब उन्हें डिजाइन ने एकदम से वही गरारा बनाया था अपने लिए, और जब कॉलेज पहनकर गई तो बड़ी फक्र से कहती थी यह मैंने महबूब की हीरोइन में जो पहनी है उसी को देखकर बनाए। बहुत बढ़िया बात है, यह भी अपने आप में प्यार है। और 10 साल पहले बहन की हेयर स्टाइल पापा ने चेंज करवाई थी और साधना कट करवाई थी, ऐसा हमारे श्रोता लिखते हैं। अब यही श्रोताओं की बातों के बीच में मुझे एक बात याद आती है कि एक बार पढ़ा था कहीं कि भानु अथैया जो थी वो भारत की सबसे पहली और प्रतिष्ठित कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी, और 1956 में आई गुरुदत्त की सुपरहिट फिल्म CID से उन्होंने शुरुआत की थी, और उन्हें गांधी फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड भी मिला था 1982-83 में, और उसके बाद 1973 में उसके बाद उन्होंने कई सारी फिल्मों के लिए बहुत सारे कपड़े बनाए थे और डिज़ाइन किए थे। तो ये भानु अथैया जो थी इन्होंने ही 1968 में आई ब्रह्मचारी फिल्म की इस ड्रेस को बनाया था, यानी इस साड़ी को बनाया था जो गीत में हम देखने वाले हैं। अब आपसे मेरे पास से 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो ये है कि अगला जो गीत है वो किस फिल्म का है, तो बस उस फिल्म का नाम बता दीजिएगा, ज़्यादा कठिन नहीं है, आप फटाक से पहचान जाएंगे। और दूसरा प्रश्न ये है कि एक पल के लिए आँख बंद कीजिए, आँख बंद कर ली, अब कौन सी हीरोइन दिखी है आपको, ज़रा उसका नाम लिख दीजिए। ये बात पुरुष और महिलाओं दोनों श्रोताओं पर लागू होती है, कौन सी हीरोइन आपको दिखी जिस जो आपको बहुत पसंद है, ज़रा उसका नाम हमें लिख भेजिए। तब तक सुनिए ये गीत और बताइए इस फिल्म का नाम।

हम सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में हसरत जयपुरी के बोलों को, और हमने आपसे पूछा ये प्रश्न कि ये किस फिल्म का गीत है, तो आपने तो बहुत जल्दी पहचान लिया। हमारा गीत शुरू नहीं हुआ उसके पहले हमारे पास संदेश आ गया था कि ये बहुत बढ़िया गीत ब्रह्मचारी फिल्म का यह गीत है, आपने पसंद किया। उसके साथ ही हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था, हमने कहा था कि आँख बंद कीजिए और बताइए कौन सी हीरोइन दिखाई दे रही है। तो एक श्रोता तो लिखते हैं, मुझे हर हीरोइन की सूरतें एक जैसी सुंदर दिखती हैं। सही बात है, इसमें आपके घर में रहने वाली हीरोइन भी होनी चाहिए। उसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं, श्रीदेवी, मीना कुमारी, किसी को श्रीदेवी की ड्रेसेस याद आ गई, किसी को, अच्छा हमारे एक श्रोता लिखते हैं, बंद आँख से मैसेज कैसे लिखें, आँख खोलने के लिए तो कहीं, हाँ हाँ आप आँख खोल सकते हैं और आँख खोलकर संदेश भेज सकती हैं। इसके साथ ही बहुत सारे श्रोताओं को, किसी को साधना पसंद आई है, किसी को हेमा मालिनी, किसी की नज़रों में कृति सेनन भी है, और कोई कहता है शिल्पा शेट्टी की फिटनेस जो है वो उन्हें प्रेरित कर रही है आँख बंद करने पर, किसी को मधुबाला दिखाई देती हैं, तो ब्रह्मचारी में मुमताज़ की साड़ी किसी को याद आ रही है, किसी को हरे रंग के दुपट्टे याद आ रहे हैं, तो किसी को कुछ नया बड़ा खूबसूरत सा दिखाई दे रहा है जो याद आ रहा है। देखिए ये जो बात है ना, ये बात हमें हमारे सेंसेस से जोड़ती है कि हमें किसका क्या पसंद आ रहा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बंगाली सीनियर सिटीजन अपने हर वैवाहिक सांस्कृतिक फंक्शन में धोती कुर्ता पहनते हैं। जी बिल्कुल, और उसी का प्रयोग कई सारी फिल्मों में भी किया गया है, इस बात को हम मानते हैं। चुन्नी बाबू को ये याद कर रही हैं, जैकी श्रॉफ को उन धोती दुपट्टे के साथ में। हमारे श्रोता कहते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती के कपड़ों की बहुत नकल करी है उन्होंने, टाइट पैंट, टाइट शर्ट, हील वाले शूज़ और उन्हीं की तरह इतरा के चलना। अच्छा, और किसी ने लिखा है कि हमें तो काजोल याद आई देखकर। जी ये देखने की बात है, सोचने की बात है कि हमें कब कौन कहाँ कैसे याद आता है। पर हमारे श्रोता लिख रहे हैं कुछ और कि मेरे दोनों लड़कियां और पत्नी जब कभी बाहर घूमने जाती हैं तो सलवार सूट और जीन्स पहना कर ले जाती हैं बेटियां माँ को, क्योंकि घूमने फिरने में आसानी होती है, बस और ट्रेन में चढ़ने उतरने में आसानी होती है, हालांकि वो घर पर तो साड़ी ही पहनती हैं। और हमारे श्रोता बड़ी अच्छी बात लिख रहे हैं, लिखते हैं कि कभी कभी हम ओल्ड फैशन समझ कर ड्रेस अलमारी के कोने में रख देते हैं।

0: जो बाद में कभी नए फैशन के रूप में लौटता है तो फिर हम उसे फिर से ड्राई क्लीन करा कर पहन लेते हैं। कितना बढ़िया आइडिया दिया है आपने वस्त्रों के फिर से उपयोग का। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, आज का टॉपिक बड़ा अच्छा है। अगर हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले तो भाषा के साथ कपड़े, बोली, सब मशकूस बदला हुआ दिखाई देता है। फैशन बदलता है लोगों की संस्कृति, आराम और व्यक्तित्व को दर्शाता है। आजकल सस्टेनेबल फैशन यानी पर्यावरण के अनुकूल कपड़ों का चलन है, लेकिन फैशन सिर्फ महंगे कपड़े नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी पसंद और बॉडी टाइप के हिसाब से कोई भी स्टाइल आप चुन सकते हैं। हमारे एक श्रोता ने पूछा, शर्मिला के जूड़े सबसे अलग थे, पता नहीं सच होते थे या विक पहनती थी। हालांकि उनके बाल तो बड़े दिखाई देते हैं, पर कौन जाने उनके जूड़े असली थे या वो बिक पहनती थी, ये बात तो हमें भी नहीं पता। पर चलिए, पसंद तो सबकी अपनी अपनी है। तो अब हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ। इसके गीतकार का नाम बता दीजिएगा, इस गीत के गीतकार कौन है। फिल्म बॉबी से लिया गया ये गीत है। और दूसरा प्रश्न, जैसे मैं हमेशा दो प्रश्न आपको देती हूँ, दूसरा प्रश्न ये है कि आप घूमने तो गए होंगे, भारत की कई जगह पर घूमे भी होंगे, कहीं कश्मीर, कहीं मनाली या दक्षिण भारत में, या कहीं तो घूमे होंगे। जहाँ भी घूमने गए वहाँ पर सामान्यतः ऐसा होता है कि फोटोग्राफर कुछ कपड़े अपने पास रखते हैं, उन्हें आप ऊपर से पहनते हैं, फिर आपकी एक फ़ोटो खिंच जाती है और उसे यादों के तौर पर आप अपने पास सहेज कर रखते हैं। हुआ होगा ना, ऐसी कौन सी ड्रेस है जो आपने पहनी थी कभी और उसके साथ फ़ोटो खिंचाई थी। भारत के या विदेश के कहीं भी आप गए हो घूमने के लिए और वहाँ की ड्रेस पहनकर फोटो खिंचाई हो आपने, आपके परिवार में किसी ने, तो ज़रूर साझा कीजिएगा और बताइए अगले गीत के गीतकार कौन है।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप घर से निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कैसी हूँ?

हम सुन रहे थे बॉबी फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर शैलेंद्र सिंह की आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ और आप सबने सही पहचाना आनंद बख्शी के बोल। अब एक रोचक जानकारी इस फिल्म को लेकर इसकी ड्रेसेस को लेकर मिली कि इस फिल्म के जो कपड़े हैं लुक्स हैं उनको मुख्य रूप से राज कपूर ने खुद ने डिज़ाइन और स्टाइल किया था पर इसमें इनका साथ करने वाले बिन रामानी जिन्होंने वार्डरोब स्टाइल सजाई थी सत्यवान और बी आर लक्ष्मण इसके टेलर थे और उन्होंने पूरे इन ड्रेसेस को बनाया था। कितना दिमाग और कितनी सोच लगती है एक फिल्म की एक ड्रेस को बनाने के लिए, ये भी अद्भुत कला है अपने आप में और इस कला को भी हम सब याद रखते हैं। और जब हम याद रख ही रहे हैं तो हमें याद है कि हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था और वो प्रश्न बड़ा प्यारा सा था, बड़ा रोचक सा था कि आपने कभी कोई ऐसी तस्वीर खिंचाई है क्या। तो हमारे श्रोताओं ने बड़े अच्छे अच्छे उत्तर दिए कि वो एक बार शिमला गई थी, बहनों के साथ फोटो खिंचाई थी, वह उनके पास में है, कोई असम घूमने गया था तो फोटो खिंचाई थी, उसे संभाल कर रखा है, कश्मीरी लिबास में 300 रुपए के फैशन के साथ रोजी रोटी भी चलती है और उन्होंने वहाँ जाकर फोटो खिंचाई थी, क्या बात है। मणिपुर में भी फोटो खिंचाई हमारे एक श्रोता ने, उनकी जेठानी, किसी की जेठानी कश्मीर गई थी तो वहाँ के कपड़े पहनकर उन्होंने फोटो खिंचाई और पर्स वहीं भूल कर आ गई जो कि उन्हें बाद में मिला नहीं, इस बात का जिक्र भी वो कर रही हैं। उसके साथ ही हमारे श्रोता बताते बहू जापान गई थी तो वहाँ की पारंपरिक पोशाक किमोनो में फोटो खिंचाई थी, वही पोशाक जो आशा पारेख ने सायोनारा वाले इस गीत में पहनी थी। इसके साथ ही हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी जानकारी दी, वो कहते हैं बॉबी के इस गाने में अकार्डियन जो है वो स्वर्गीय सुमित मित्रा ने बजाया था। जी बहुत रोचक जानकारी आपने दी है। हमारे श्रोता ने बताया कि छठी कक्षा में थे तब उन्होंने बॉबी देखी थी और श्रोता बता रहे हैं कि संदर्भ मुझे याद आता है जब बॉबी पिक्चर लगी थी तो ये लोग ये नहीं पूछ रहे थे कि बॉबी देखी या नहीं, लोग ये पूछ रहे थे कितनी बार बॉबी फिल्म देखी। बिल्कुल सही बात है, हमारे श्रोता ने किसी ने कश्मीर में फ़ोटो खिंचाई है और किसी ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं तो बताया बहुत सारी बातों को। उन्हें एक श्रोता लिखते हैं कि उन्हें सबसे अच्छा ड्रेस सैनिकों का लगता है, उन्हें देखते ही अपने आप हाथ सैल्यूट करने लग जाते हैं, क्या बढ़िया बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि डल झील में उन्होंने फोटो

बिछाई थी। और हमारी श्रोता बताती है, बॉबी फिल्म का याना, इसकी ड्रेस मैंने और मेरी दीदी ने एक बार बनवाई थी। नोट बैंक की टॉप पहनते थे, स्काउट पहनते थे और बड़े फोटो भी उन्होंने इस बात को लेकर खिंचाई है। तो ये सारे हमारे श्रोताओं ने उत्तर दिए हैं और इन श्रोताओं की उत्तरों के साथ में हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ। और हमारे श्रोता बता रहे हैं कि फैशन हर वक्त बदलता रहता है और स्कूल कॉलेज भी मैं भी बहुत फैशनेबल रहे हैं। वो बड़े बाल रखते थे, स्टाइलिश कपड़े पहन के स्कूल जाते थे, कई बार स्कूल में गुरुजी से पिटाई भी होती थी। हाँ, वो दौर बड़ा अच्छा था जब गुरुजी पीटा करते थे। और हमारे गुरुजी तो कहते थे, गुरुजी मारे धम्म धम्म विद्या आवे छम छम, शायद आती होगी, इस बात से ऐसा हम मान कर चलते हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि फैशन कभी पुराना हो नहीं सकता। फैशन एक शब्द है और उसके साथ में उनका, उन्होंने ब्लाउज की बड़ी अच्छी वो बताई है कि पहले पफ वाली बाह और जो दादी नानी पहनती थी वो वाले ब्लाउज अब फिर से आ गए हैं। हाँ, कॉलेज में पैरेलल पहनते थे, प्लाजो पहनते थे, अब वापस आ गए हैं। और रेखा की दो चोटी वाले बालों की स्टाइल बहुत लोकप्रिय है। जी, इतनी अच्छी बातें आप हमारे साथ साझा कर रहे हैं। अब एक बात और हमारे मन में आती है कि जो कपड़े होते हैं वो कभी कभी बड़ी तरीके से दिखा देते हैं। जब रंगमंच में आप होते हैं या फिल्मों में होते हैं तो कपड़े आपकी स्टाइल को बताते हैं कि अगला मूड क्या है। अब हम अगर अगली फिल्म का ये गाना ले लें तो इसमें जो कपड़े हैं उन कपड़ों को मनीष मल्होत्रा ने डिज़ाइन किया है और उन्होंने पहले जो एक्ट्रेस है यानी हीरोइन जीत यानी करीना कपूर के कपड़ों को बड़ा बेफिक्री वाले कपड़ों में दिखाया है और थोड़ी देर बाद जब उनका दिल टूट जाता है तो सलवार सूट में दिखाया है। कपड़े भी आपकी संजीदगी को दिखा देते हैं। वैसे ही अभिनेता आदित्य यानी शाहिद कपूर को भी पहले बड़े संजीदा कपड़ों में और बाद में बेफिक्री में दिखा दिया है। तो ये दोनों चीज़ें आपके मूड को भी यानी आपकी फिल्म की कहानी को भी दिखाते हैं, तो कपड़े कुछ इस तरह से दिखाते भी हैं। तो चलिए सुनते हैं अगला ये गीत, बताइए इसके गायक कलाकार कौन है। और एक बात और, सबसे सुकूनदायक वस्त्र कौन सा है जो पहनकर आप अपनी पूरी जिंदगी रह सकते हैं? सबसे सुकूनदायक वस्त्र आपका कौन सा है? अगर हमसे पूछा जाए या आपसे पूछा जाए, तो हमसे पूछा जाए तो हम कहेंगे हमें सलवार सूट में बड़ा आराम मिलता है, सुकून मिलता है। आपको ऐसा कौन सा वस्त्र है जिसमें आराम मिलता है, बताइएगा।

हम सुन रहे थे जवी मैट फिल्म का यह गीत इरशाद कामिल के बोल प्रीतम के संगीत के साथ, और हमने आपसे पूछा किसके गायक कलाकार कौन है, आपने सही पहचाना उस्ताद राशिद खान। और इसके साथ हमारे श्रोताओं से हमने एक और प्रश्न पूछा था कि आपको ऐसा कौन सा वस्त्र है जो बड़ा कंफर्टेबल लगता है, बड़ा सुकूनदायक होता है तो वो आप पहनते हैं। तो हमारी श्रोता लिखती हैं कि उन्हें हल्के रंग की सूती साड़ी जो है वो उन्हें पसंद है। इसके साथ ही कोई लिखता है कि हाई हील वाले जूते, हीरो जूते पहनते थे वो उन्हें बहुत पसंद थे, उन्होंने मंगाए भी थे, और जिप वाले जूते, हाँ एक चैन वाले जूते हुआ करते थे, अभी भी फैशन में है, लड़कियाँ पहना करती हैं उस फैशन को आजकल। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्हें सुकून और आरामदायक जो है वो साड़ी ही लगती है और उनके ऊपर भी अच्छी लगती है। वैसे एक बात कही जाए तो भारतीय महिलाओं के ऊपर साड़ी बहुत अच्छी लगती है, सुंदरता, बड़ी सुंदरता के साथ दिखाई देते हैं। उसके साथ कई लोगों ने साड़ी को बोला, किसी ने कुर्ती प्लाजो को बोला। जवी मैट में करीना कपूर ने पटियाला सूट पहना है जो देखते बनता है, जी बिल्कुल। कुछ हमारी एक और श्रोता लिखती है, कुछ कुछ होता, मैं भी काजोल ने शुरू में डंगरी पहनी और बाद में खूबसूरत साड़ियाँ, मूड के मुताबिक उसको पहना गया था, जी बिल्कुल, यही तो बदलाव दिखाने का एक बड़ा अच्छा तरीका होता है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं, ये बात तो कई लोगों ने लिखी कि सफ़ेद कुर्ता पजामा और बिल्कुल ढीला पहनने में बहुत सुकून होती है, पर गंदा भी तो बहुत होता है ना पर ठीक है, सबकी अपनी पसंद है। लॉन्ग टी शर्ट और पटियाला वाला फैशन इससे ही आया था। हमारे कुछ श्रोताओं का ऐसा कहना है कि उनका कोई गीत सुनने में नहीं आया, तो मैं क्षमा चाहूँगी, सुनते जाइए, ये गीत भी तो अच्छे ही हैं, कभी कभी ऐसा भी होना

अच्छा है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्हें गाउन पहनना अच्छा लगता है लेकिन किसी और के सामने जाना अच्छा नहीं लगता, गाउन उन्हें बड़ा कंफर्टेबल लगता है। जी बिल्कुल, हल्का फुल्का सा वस्त्र होता है। कोई अपनी पत्नी के कपड़ों के बारे में बता रहा है कि उन्हें सलवार सूट पसंद हैं, और कोई अपने बारे में बता रहा है, कोई कह रहा है लुंगी अच्छी लगती है पहनने में, तो किसी ने बताया बनियान और वो पट्टे वाला हाफ पैंट जो होता है वो लोगों को पसंद आता है, किसी को सूती कुर्ती और लेगिंग पसंद है, तो किसी को एक लोअर टी शर्ट में वो किसी भी फैशन में किसी भी कार्यक्रम में भी जा सकते हैं। तो ऐसी कई सारी चीज़ें लोग बता रहे हैं। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि उनका विवाह जो है वो चित्तौड़गढ़ में हुआ था, ससुराल भी वहीं है, तो उनकी पत्नी के साथ चित्तौड़गढ़ गए थे और वहाँ बहुत सारी फ़ोटो खिंचाई थी जिसका उन्हें याद है। एक श्रोता लिखते हैं, हमारे एक समय था जब ग्राहक डिज़ाइन देखने के लिए फिल्म दिखाने के लिए आता था और कहता था ये वाली डिज़ाइन बना दो, यानी हमारे जो कपड़े सिलने वाले थे उनको फिल्में देखनी पड़ती होंगी उस समय पे क्योंकि वो डिज़ाइन बनानी होती थी। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हमारे श्रोता लिखते हैं। ऋषि कपूर की स्वेटर और देवानंद की मफलर का फैशन लाकर छा गए थे। जी बिल्कुल, और देवानंद के तो कपड़ों पर बैन भी लगा था, शायद ऐसा कुछ किस्सा भी सुनने में आता है, शायद आपको भी पता हो, किसी को लोअर टी शर्ट में आराम मिलता है और किसी को शर्ट में, किसी को सलवार कुर्ता, किसी को कुछ, किसी को कुछ, हर किसी का अपना अलग विधान है कि उसे ये पसंद है। और अब हम चल रहे हैं आज के शाम के, आज के इस कार्यक्रम के कुछ अंतिम गीतों की तरफ, और ये अगला गीत आप सुनिए और बस बता दीजिए ये कौन सी फिल्म से है। और इस फिल्म के बारे में एक बड़ी रोचक सी जानकारी हमें कहीं से मिली थी तो वो हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं कि इस फिल्म के लिए, चांदनी के लिए भी कपड़े जो बनाए थे भानु अथैया ने बनाए थे, और नीता लुल्ला ने भी इसमें बहुत मदद की थी उन कपड़ों को बनाने के लिए, और बड़ा स्टाइल फेमस हो गया था, मतलब वो बड़ी अच्छी साड़ियाँ थी और लोगों ने उस समय बहुत पहनी भी ये साड़ियाँ। तो चलिए सुनते हैं इस गीत को और बताइएगा ये इस गीत के संगीतकार कौन हैं, नाम पूरा लिखिएगा संगीतकार का।

और इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम सुरीला सफ़र यहीं पर समाप्त होता है, परंतु हम आपके साथ वो साझा करना चाहेंगे जो आपने बताया है जी। हमने पूछा था कि इसके गीत संगीतकार कौन है, पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, ये दोनों बातें आपने हमें बताई, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और आज के दिन हमने बहुत सारी फैशन डिज़ाइन और इन सब की बात की। हमारे श्रोता ने बताया कि पहले तो लड़कियां पैसे भी देती थी कि जाकर आप यह फिल्म दिखाइए मास्टर जी और फिर वैसा कपड़ा बना दीजिए, तो ये इतनी अच्छी रोचक जानकारियां हमें मिली, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। सदा मंगल हो, नमस्कार, प्रणाम, सदा खुश रहिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सहअध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सहअध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद के टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारतीय दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। विश्वसनीय स्रोतों के जरिए स्थानीय घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। लोगों से दूतावास को अपने बारे में जानकारी देने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक

0: व्यापारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा गया है। किसी भी तरह की सहायता के लिए दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है +98912810915। दूसरा नंबर है +98912810909। तीसरा नंबर +98912810902। और चौथा नंबर है +99932179359। इसके अलावा भारतीय नागरिक cons.tehran@mea.gov.in पर ईमेल के जरिए भी दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि समान मूल्यों और आपसी विश्वास वाले देशों को और अधिक निकटता से मिलकर काम करना चाहिए। सियोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही।
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है।
2: 4 महीने से जारी पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। श्री रूबियो कल देर रात अबू धाबी पहुंचे। उनका संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में बातचीत का कार्यक्रम है। इस सप्ताह के अंत में वे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अधिकारियों से मिलेंगे। इस दौरान वे क्षेत्रीय सहयोगियों को अमरीका और ईरान के बीच लागू अंतरिम शांति समझौते और संभावित अंतिम समझौते के ढांचे के बारे में जानकारी देंगे। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। सप्ताहांत में स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत सकारात्मक रही, हालांकि दोनों पक्षों ने बैठक के बारे में अलग अलग राय व्यक्त की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर कर्नाटक में उनके परिवार द्वारा संचालित एक ट्रस्ट को भूमि आवंटन से जुड़े कथित घोटाले में संलिप्त होने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आज नई दिल्ली में कहा कि वर्ष 2024 में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास के लिए ट्रस्ट को लगभग 5 एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटित की थी। श्री भंडारी ने आरोप लगाया कि इन क्षेत्रों में कोई पूर्व अनुभव न होने के बावजूद ट्रस्ट को लगभग 100 करोड़ रूपये की अनुमानित कीमत की भूमि आवंटित की गई। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए

0: उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
1: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है, जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है, सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग, उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए आज भूमि पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है। और ये जब कम्प्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती हैं उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आरके आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक, जिसके अंदर 9 स्टेशंस हैं।
0: केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला के पास निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने से 5 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मलबे में कुछ और लोग फंसे हुए हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा कर्मी तथा पुलिस बल मौके पर पहुंच चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन, चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा, सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थी। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा में अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। असम, मेघालय, कर्नाटक के भीतरी भाग, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 29 तारीख तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती जिले के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि असम में सभी संबंधित विभाग हाई अलर्ट पर हैं।
2: अरुणाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद असम में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी संभावित एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। इसके परिणाम स्वरूप असम में धेमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ और सोनितपुर सहित निचले क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर और प्रवाह की गति में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। अगले 1 से 2 दिनों में बाढ़ का पानी और आगे के क्षेत्रों की ओर बढ़ सकता है। SDRF, NDRF और अन्य इमरजेंसी रेस्पॉन्स दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिला प्रशासन को संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखने और आवश्यक एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया है। निचले तथा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने, प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश पालन करने, जलमग्न क्षेत्रों से दूर रहने तथा छोटी नावों से यात्रा न करने की सलाह दी गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम वाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। खैदिम शिलेमा जानू टीम की कमान संभालेंगी, जबकि निधि और एंगल हर्षारानी मिंज गोलकीपर की जिम्मेवारी संभालेंगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मैक्सिको में खेले गए ग्रुप के मैच में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली। डैनियल मनोज के दूसरे हाफ में किए गए

0: गोल की मदद से कोलंबिया ने लगातार दूसरी जीत हासिल करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। इससे पहले पुर्तगाल ने ह्यूस्टन में इसी ग्रुप के एक मैच में उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 शानदार गोल की बदौलत पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान पर 5-0 से जीत दर्ज की। रोनाल्डो अब 6 अलग अलग विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 908 अंक की उछाल के साथ 77,109 पर, जबकि निफ्टी 241 अंक बढ़कर 24,065 पर कारोबार कर रहा था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में स्थित ऐतिहासिक हेमिस मठ में आज उत्साह और श्रद्धा के साथ हेमिस उत्सव की शुरुआत हुई। 2 दिन के उत्सव में देश विदेश के हजारों श्रद्धालु, पर्यटक, संस्कृति प्रेमी और बौद्ध विद्वान शामिल हो रहे हैं। प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला हेमिस उत्सव लद्दाख के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में से एक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का यह पहला गीत, जो कि है उजाला फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज है, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में यह अगला गीत, जिसे लिया है फिल्म नागमणि से। गीता दत्त की आवाज है, प्रदीप के पुल हैं और अविनाश व्यास ने इसे संगीतबद्ध किया है।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों

0: के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

इंद्र के पोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ आइए कार्यक्रम सदाबहार नगमे में सुनते हैं गूंज उठी शहनाई फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में भरत व्यास के बोल और वसंत देसाई के संगीत के साथ।

हम सुन रहे थे धूल का फूल फिल्म से यह गीत आशा भोसले महेंद्र कपूर की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल और एन दत्ता ने इसे संगीतबद्ध किया।

0: अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदा बहार नगमे।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अंतिम गीत आइए सुनते हैं संतान फिल्म से लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में हसरत जयपुरी के बोल और दत्तराम के संगीत के साथ और इसी के साथ कार्यक्रम सदाबहार नगमे समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए सदा सुखी रहिए नमस्कार।

0: सहेली कार्यक्रम सखी सहेली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी और मेरे साथ हैं
1: सोनाली पाठक। तो आप सभी को सोनाली पाठक का
0: और मंदाकिनी जोशी का
1: नमस्कार।

0: नमस्कार, क्या कर रही हो सोनाली?
1: बैठी हुई हूँ आपके सामने बैठी
0: भाई मेरे सामने तो बैठी हूँ, इन दिनों क्या कर रही हो? मैंने ये जानना चाहा क्योंकि बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हुई है।
1: बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है और बहुत खूबसूरती के साथ आप सामने बैठे हुई हैं, तो इतना अच्छा लग रहा है, एक सुखद अनुभूति मिल रही है।
0: अरे वाह, यही तो होना चाहिए कि जब दो दिल मिलते हैं, दो इंसान मिलते हैं, दो दिमाग मिलते हैं तो सुखद अनुभव होना चाहिए। और ये हमारी जिंदगी में होता भी है सोनाली, हमारे श्रोता भी इस बात को कहते हैं जब हम अपने श्रोताओं के लिए आते हैं, उनसे कार्यक्रम के जरिए मिलते हैं तो कितना सुखद एहसास होता है हमें।
1: और हम है ना कल्पनाओं के माध्यम से महसूस भी करते हैं ना मंदाकिनी जी,
0: हाँ?
1: कि हमारे बहुत सारी सखियां बैठी हुई होगी, श्रोतागण बैठे हुए होंगे और वो क्या कर रहे होंगे,
0: हमें सुन रहे होंगे,
1: हमें सुन रहे हैं,
0: कुछ आचार भी डाल रहे हैं।
1: हाँ, हमारी सखियां जो है आचार भी डाल रही होगी कि चलिए इधर रेडियो भी ऑन है किचन में और इधर अचार बन रहा है, क्योंकि इन दिनों तो घर में अचार और मुरब्बे बनते ही हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और ये बहुत जरूरी भी होता है घर के लिए, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं या हमारे घर की जो महिलाएं हैं, पुरुष भी जब ऑफिस जाते हैं तो अचार और परोठा एक ऐसा भोजन है जो लगभग हर लोग लेके जाते हैं अपनी टिफिन।
1: और कभी कभी ऐसा होता है ना कि सब्जी थोड़ी सी फीकी बन गई है तो उसमें जो अचार है ना वो उसका स्वाद बहुत बढ़ा देता है खाने का।
0: और कई बार ये भी होता है कि जब घर की गृहिणियां सब्जी बनाने में थोड़ी सी आलस बरत लेती है ना तो दाल और अचार से काम हमारे घर के पुरुष चला लेते हैं, पता
1: या
0: है?
1: फिर कभी सब्जी कम पड़ गई तब भी अचार से काम चला सकते हैं।
0: और या प्याज का सलाद खाना हो ना उसमें भी अचार डालकर
1: खा सकते हैं,
0: मस्त।
1: और साथ में मुरब्बा, वो मीठे मीठे मुरब्बे तो बहुत, यानी उसमें आम का मुरब्बा बनता है, फिर करौंदे का मुरब्बा बनता है, आंवले का मुरब्बा बनता है, अलग अलग तरह के मुरब्बे बनते हैं जो भी हर घर की शान होती
0: है। शान होते हैं। तो अभी थोड़ी देर बाद जब हम व्यंजनों पर आएंगे ना तो हमारे श्रोता या हमारी सखियां और सखा तब तक आचार और मुरब्बे पर अपनी जो है रेसिपी लिख कर भेज चुके होंगे
1: कि आपके घर में किस तरह का मुरब्बा या किस तरह का अचार बनता है। कोई मीठा अचार बनाते हैं, कोई तीखा बनाते हैं, कोई कद्दूकस करके अचार बनाते हैं, तो कौन से तरह का अचार आपके घर में पसंद किया जाता है उस पर हमें लिख कर भेजिए।
0: बिल्कुल। और इसके अलावा हमारे क्या और विषय हैं आज के?
1: शब्द हमारा विचार आपके, इसमें विषय है संयम।
0: संयम
1: से कहना बहुत आसान है और उसे अपनाना बहुत ही मुश्किल
0: है। बहुत मुश्किल है। और वैसे हमारे श्रोताओं ने संयम पर बहुत कुछ लिखकर भेजा भी है, लेकिन हम तो ये जानना चाहते हैं सोनाली हमारी सखाओं से, हमारी सखियों से, कि जब आपके जीवन में संयम बरतने की बारी आई तो आपने कहां कहां संयम खो दिया था
1: या फिर झुंझला उठे।
0: वही बात कि मसलन आपको बाजार जाना है, किसी पार्टी में जाना है और आपकी धर्मपत्नी ने तैयार होने में थोड़ा सा ज्यादा समय ले लिया और आप झुंझला गए,
1: संयम टूट गया।
0: बिल्कुल। या फिर ट्रैफिक में जब आप
1: फंस गए हो और सामने वाली, आपको पता ही नहीं है कि सामने की यानी दो गाड़ियां छोड़ के उसके आगे की गाड़ी बंद पड़ गई है और आप जोर जोर से हॉर्न देते जा रहे हैं, ये क्यों नहीं चला रहा है, क्यों नहीं चला रहा है, क्या हो रहा है।
0: और दुनिया भर की बातें हमारे मन से निकलती है उस वक्त, है ना, जब हम फंस जाते हैं तो हम धैर्य खो देते हैं, संयम खो देते हैं ना। और भी बहुत से ऐसे विषय हैं जहां हम अपना आपा खो देते हैं, तो हमारे श्रोताओं से हम चाहते हैं वो लिखें। संयम क्या है? हां, संयम तो सबको पता है क्या है, लेकिन संयम की डेफिनेशन नहीं लिखनी है, हमें ये बताना है कि हमने जिंदगी में कब कब संयम रखा और ये कितना काम आया
1: और कब कब खो दिया संयम,
0: वो तो बताना ही क्योंकि इसकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों
1: भी है
0: ना।
1: जी। और साड़ियों का संसार, इसमें हम इलकल साड़ी कर्नाटक के बारे में जानकारी देंगे और हमारे बहुत सारे कुछ श्रोताओं ने लिखकर भी भेजी है इस बारे में।
0: बहुत अच्छी साड़ी होती है इलकल साड़ी,
1: बहुत नरम मुलायम, बहुत सुंदर।
0: तो सोनाली इस बार हम जब बाजार जाएंगे ना तो ये साड़ी खरीद कर लाएंगे।
1: बिल्कुल खरीदेंगे, इतने सुंदर कलर होते हैं इलकल साड़ी के,
0: क्या बात है। तो और देखिए, सोशल मीडिया पर वाद विवाद और समय की बर्बादी हम बहुत करते हैं,
1: बहुत ही ज्यादा। यानी हमने सोशल मीडिया ऐप खोले कि उसमें कोई एक विषय पे या कोई एक रील पे इतने लोग लिखते हैं, उसमें घंटों बाद, और फिर लोग वो मैसेज भी पढ़ते हैं किसने क्या लिखा, किसने क्या लिखा, उस पे भी 250-300 हजारों के लाइक्स होते हैं। तो ये समय की बर्बादी ही,
0: बिल्कुल मिलता कुछ नहीं है, है ना। लेकिन हम अपने विचार वहां थोप देते हैं और अनावश्यक, कई बार क्या होता है, साधारण सी न्यूज होती है उसको हम बहुत बड़ी बना देते हैं और बहुत ज्यादा सेंसिटिव बना देते हैं, या फिर कोई बहुत ही सेंसिटिव घटना हो गई है किसी की जिंदगी में, उस पर हम अपने विचार अनाप शनाप थोप देते हैं।
1: और कभी कभी ऐसा होता है मंदाकिनी जी, आपस में लड़ाई भी हो जाती है लोगों की, ये तुमने ऐसे क्यों लिखा, तुमने ऐसे क्यों बोला, ये तो ऐसा है वैसा है, और उसमें हमारा बहुत सारा वक्त,
0: समय, और सोचिए दिमागी हालत कैसी हो जाती है उसके बाद।
1: अगर हमें क्रोध आ गया तो हम खुद का बहुत

0: नुकसान कर लेते हैं।
1: बिल्कुल, तो सोशल मीडिया पे लिखते वक्त पहले तो हमें खुद ही सोच लेना चाहिए कि हम लिख क्या रहे हैं, फिर ये भी उम्मीद कर लेनी चाहिए कि किस तरह के विचार आने वाले हैं। इन सब में अपना समय बर्बाद करने की बजाय हम कुछ क्रिएटिव लिखे, हाँ कुछ मुद्दों पर आप आवाज उठाएं, लेकिन उस आवाज का असर दूर तक होना चाहिए।
0: और बस मैसेज किया और छोड़ दिया, उसके लिए पूरा दिन बर्बाद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है
1: कि किसने क्या लिखा और किसने लाइक किया किसने नहीं किया। हम नाराज हो जाते हैं, पर अब हमारे श्रोता नाराज होने वाले हैं अगर हमने गाना नहीं सुनाया।
0: सुनवा देते हैं।

0: तो चलिए दरिया में फेंक दी हमने चाबी पर हमने अपनी अलमारी की चाबी संभाल के रखना है जिसमें बहुत सारी साड़ियां होती
1: हैं। हाँ, वही तो मैं कहने वाली थी कि दरिया में चाबी फेंक दोगे तो हम अपनी साड़ियां और अपने कपड़े कैसे निकालेंगे भाई
0: भाई हमारी जो अलमारी होती है उसमें अलग अलग तरह की अलग अलग प्रांत की साड़ियां होती है। तो कर्नाटक की साड़ी इल्कल अगर आपने नहीं खरीदी है तो आपको जरूर
1: खरीदनी पड़ेगी।
0: बहुत सुंदर साड़ियां होती है और भारत की संस्कृति में साड़ियों का वैसे विशेष स्थान होता है। हर प्रदेश की साड़ी अपने रंग बुनाई और परंपरा के कारण अपनी अलग पहचान रखती है और इन्हीं में से एक है इल्कल साड़ी जो कर्नाटक राज्य की प्रसिद्ध पारंपरिक हथकरघा साड़ी है। ये साड़ी अपनी सुंदर बनावट पारंपरिक रंगों और अनोखी बुनाई के लिए जानी जाती है।
1: हाँ बिल्कुल सोनाली, और इल्कल साड़ी का जो संबंध है वो कर्नाटक के बागलकोट जिले के इल्कल नगर से है और इसी स्थान के नाम पर इसका नाम इल्कल साड़ी पड़ा और ये कर्नाटक की ग्रामीण संस्कृति और हथकरघा परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
0: और इल्कल में साड़ी बुनने की परंपरा कई पीढ़ियों से चली आ रही है। स्थानीय बुनकर परिवारों ने इस कला को वर्षों की मेहनत और अनुभव से जीवित रखा है। पहले ये साड़ियां विशेष रूप से महिलाओं के पारंपरिक पहनावे का हिस्सा थी लेकिन आज देश विदेश में भी इनकी मांग
1: हो गई है। बिल्कुल सही कहा, और इल्कल साड़ी की सबसे बड़ी पहचान है इसकी अनोखी बुनाई तकनीक। इसमें साड़ी के जो मुख्य भाग है बॉर्डर है और पल्लू को एक विशेष तरीके से तैयार किया जाता है और पारंपरिक रूप से इसमें टोपे तेनी तकनीक का उपयोग किया जाता है जो इसे अन्य साड़ियों से अलग बनाती है।
0: और पारंपरिक इल्कल साड़ियों में सूती और रेशमी धागों का सुंदर मेल देखने को मिलता है। साड़ी का मुख्य भाग अक्सर सूती धागों से और पल्लू और बॉर्डर रेशमी धागों से बनाया जाता है और इसकी हल्की और आरामदायक बनावट इसे रोजमर्रा के पहनावे के लिए भी उपयुक्त बनाती है।
1: हाँ बिल्कुल, और इल्कल साड़ियों में लाल रंग मिलता है, हरा है, नीला है, बैंगनी और मरून जैसे पारंपरिक रंग जो है बहुत ज्यादा लोकप्रिय है और इसके पल्लू पर सुंदर धारियां और पारंपरिक आकृतियां भी बनाई जाती हैं। बॉर्डर पर विशेष डिजाइन इसकी पहचान बनाते हैं और कई साड़ियों में मंदिर कला या ज्यामितीय पैटर्न की झलक भी देखने को मिलती है।
0: और एक इल्कल साड़ी केवल एक कपड़ा नहीं है मंदाकिनी जी, बल्कि बुनकरों की कला, धैर्य और मेहनत का परिणाम होती है। हथकरघे पर बैठकर बुनकर धागों को जोड़कर एक सुंदर कलाकृति तैयार करते हैं और इस काम में अनेक बुनकर परिवारों की आजीविका भी जुड़ी हुई है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और इल्कल साड़ी जो है कर्नाटक की पहचान है और उसकी परंपरा का प्रतीक है। विवाह के अवसरों, त्योहारों या विशेष अवसरों इसमें पहनने की परंपरा रही है और ये साड़ी जो है भारतीय हस्तशिल्प की सुंदरता और सादगी को भी दर्शाती है।
0: और आज इल्कल साड़ी पारंपरिक रूप से कई नए डिजाइनों में भी उपलब्ध है। आधुनिक रंगों और नए पैटर्न के कारण युवा पीढ़ी में भी इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है और ये भारतीय हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है ताकि जो हमारे ग्रामीण तबके के लोग हैं उन्हें उनकी जो है
0: घर चल सके
1: उनको एक आजीविका का साधन मिल सके। और इल्कल साड़ी केवल पहनने का वस्त्र नहीं, जैसा भी आपने कहा था ये कर्नाटक की मिट्टी, वहाँ की संस्कृति और बुनकरों के कौशल की कहानी मानी जाती है और इसके हर धागे में सोनाली परंपरा की गर्माहट है और कलाकारों के हाथों की मेहनत छिपी होती है और ये भारतीय हथकरघा विरासत का एक सुंदर उदाहरण है जिसे सहेजना हमारी सांस्कृतिक जिम्मेदारी है।
0: ये बिल्कुल हमें जिम्मेदारी हम महिलाओं को उठाना चाहिए कि जब भी कभी कर्नाटक घूमने गए तो आपको इल्कल साड़ी जरूर खरीदना चाहिए। और क्या होता है ना मंदाकिनी जी, हम साड़ियां तो खरीद ले आते हैं लेकिन उसे पहनते नहीं है। तो साड़ियों को पहनना भी उतना ही जरूरी है। कि कोई भी त्योहार हो, उत्सव हो या फिर कोई पार्टी हो तो साड़ियां जरूर महिलाओं को पहनना चाहिए। अब क्या होता है कि महिलाओं का ऐसा लगता है कि वक्त बहुत
1: ज्यादा लगता है,
0: पर थोड़ी तैयारी हमने थोड़ी 1-2 घंटे पहले तैयारी करके रख ली कि पहले से हमने साड़ी अच्छे से प्रेस कर ली, ब्लाउज प्रेस कर लिया, उसके जो उसमें पहनने वाले जो गहने वहने सब निकाल के रखे तो हम आराम से पहन के जा सकते
1: हैं। जिनको साड़ी पहनने का अभ्यास है तो वो बहुत जल्दी पहन लेते हैं, कुछ बहनों को अभ्यास कम होता है तो सीखा भी जा सकता है
0: और आजकल तो सिलवा भी सकते हैं हम साड़ियाँ। यानी आप उसमें बिल्कुल एक हुक लगाना है और पल्लू भी उसमें सिला हुआ ही होता है तो बिल्कुल जितना समय हमें सूट पहनने में लगता है उतना ही समय में साड़ियां भी पहन सकते
1: हैं, उसी तरह से पहना भी जाता है। लेकिन वो खुद जब पहना जाता है ना सोनाली, जब खुद प्लीट्स लगाई जाती है और पल्लू को सजाया जाता है ना, उसका मजा कुछ और होता है।

0: हाँ तो सोनाली, हम बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया पर हम इतने बिजी हो जाते हैं कि दैनिक जीवन में क्या कुछ करना है इस पर ध्यान हमारा थोड़ा कम हो जाता है और हम सोशल मीडिया की बहसों में उलझे रहते हैं।
1: और हमारी जो सखी है, हमने पूछा था ना कि क्या कर रहे हैं मंदाकिनी जी, तो हमारी एक सखी ने कहा कि हम अचार नहीं बना रहे, हम प्रेस करते हुए प्रोग्राम सुन रहे हैं। और एक साथी लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर वाद विवाद

0: हम तो विविध भारती के पेज पर श्रोताओं के अच्छे विचारों को पढ़ते हैं, जिससे जानकारी भी मिलती है और आनंद भी आता
1: क्या
0: है।
1: क्या बात है, क्या बात है, छा गया, बहुत अच्छी बात आपने कही, सही बात है।
0: तो ऐसी जब
1: बेतुकी बहसों में पढ़ने से अच्छा है कि हम कुछ सार्थक सुने, और विविध भारती एक ऐसा उनके लिए प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सब कुछ सार्थक होता है, कोई वाद विवाद नहीं,
0: और मनोरंजन के साथ में ज्ञानवर्धन भी होता है।
1: एक पॉइंट दो का है ना। तो आज हम सोशल मीडिया के वाद विवाद पर, समय की बर्बादी पर बात करने वाले हैं, क्योंकि सोशल मीडिया जो है सोनाली, हमारे जीवन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है, महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, और इसके माध्यम से हम दुनिया भर की जानकारी है, समाचार और विचारों को तुरंत जान भी लेते हैं, जुड़ भी जाते हैं, जरूरी भी है, और लोगों को अपनी प्रतिभा को और विचार को व्यक्त करने का ये अवसर भी देता है, मौका भी देता है।
0: मंदाकिनी जी, ऐसा होता है कि विचारों में अंतर होना बहुत स्वाभाविक सी बात है। हर व्यक्ति की सोच, अनुभव और दृष्टिकोण अलग अलग होता है, अलग अलग विचार समाज की सुंदरता है, लेकिन उन्हें सम्मान के साथ स्वीकारना उतना ही आवश्यक है।
1: हाँ, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना चाहिए। कोई किस विचारधारा का हो सकता है, कोई किसी विचारधारा का, हम अपनी विचारधारा उस पर थोपे नहीं, और विचारों में आपने का अंतर होना स्वाभाविक है, लेकिन छोटी छोटी बातों से जो बड़े विवाद होते हैं उनसे भी हमें बचना चाहिए। कई बार क्या होता है, किसी पोस्ट पर, किसी फोटो पर, वीडियो पर या समाचार पर एक छोटी सी टिप्पणी से बहस शुरू हो जाती है, और वो बहस इतनी लंबी हो जाती है कि व्यक्तिगत हो जाती है ये चीजें, और एक दूसरे को हम भला बुरा कहने लग जाते हैं, आरोप देने लग जाते हैं।
0: और एक बात है ना मंदाकिनी जी, कि जो शब्द होते हैं ना उसमें भावनाएं नहीं होती। अब जैसे मैंने आपको ऐसी कोई बात हंसते हंसते बोल दी तो आपको बुरा नहीं लगेगा, पर वही बात जब मैं मैसेज के रूप से मैं आपको लिखूंगी तो आपको बहुत ज्यादा बुरा लग सकता है कि इन्होंने ऐसे कैसे लिख दिया।
1: हाँ,
0: है।
1: हाँ।
0: तो लिखना नहीं, अगर आपको बोलना भी है तो कोई बात आप बोल कर लिखिए, ना कर लिखिए, और जब हम ये लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो इससे बहुत ज्यादा समय की भी बर्बादी होती है।
1: हाँ, हाँ।
0: तो हम ये समय जो होता है ना बहुत अनमोल होता है, तो सोशल मीडिया पर बेवजह बहस करते करते लोगों को पता ही नहीं चलता कि कितना समय व्यर्थ हो गया। समय है जो परिवार, शिक्षा, काम, स्वास्थ्य, स्वयं के विकास में जो लगाया जा सकता है वो हम बिल्कुल पूरे टाइम बर्बाद कर देती हूँ।
1: इससे क्या होता है सोनाली, हमारी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती
0: है, बहुत ज्यादा बिगड़ती है।
1: हमें शांति चाहिए, मानसिक शांति की जरूरत है ना आजकल, बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन हम मानसिक रूप से बीमार से हो जाते हैं, क्योंकि लगातार जो हम इतनी नकारात्मक चीजें पढ़ते हैं, चर्चाएं पढ़ते हैं, इतना विवाद उसमें देखते हैं, तो मन में तनाव और बेचैनी तो आएगी ही, और हम भी अपनी बात लिखते हैं, कई बार हमें भी गुस्सा आ जाता है, हम भी उसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लग जाते हैं। तो सोचिए, हमें लगता है अच्छा मुझे हरा दिया, ये बात मैं ये लिख देती हूँ,
0: चलिए ये तो मेरी बात मैं लिख कर ही रहूंगा। हाँ। रहूंगी, है ना।
1: तो ये जब चीजें आती हैं तो आप अच्छी सोच और सकारात्मक ऊर्जा की जगह क्रोध और निराशा से घिरने लगते हैं,
0: और रिश्तों में दूरी आ जाती है। जहाँ गुस्सा है तो वहाँ पर रिश्तों में दूरी बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, और यह ऑनलाइन विचारों का मतभेद व्यक्तिगत संबंधों को भी प्रभावित कर देता है। हमें याद रखना चाहिए कि रिश्ते बहस जीतने से नहीं बल्कि समझ और सम्मान से मजबूत होते हैं।
1: बिल्कुल सही। और एक बात और है कि हम हर विषय पर अपनी टिप्पणी पर अपनी बात कहना बहुत जरूरी समझते हैं, या अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं तुरंत, ये बहुत गलत आदत है। आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए,
0: थोड़ा सोचे समझे। संयम से काम
1: है। वो संयम यहाँ काम आता है कि हमें क्या कहना है। समझदारी इसी में होती है सोनाली, कि कौन सी बात महत्वपूर्ण है जिस पर हम अपनी राय दें, या समय की बर्बादी तो नहीं है, हम किससे बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, ये सब भी हमें समझना होगा।
0: और मंदाकिनी जी, एक और बात है, इतने ज्यादा अपशब्दों का इस्तेमाल होता है कि यानी घृणा मन में उत्पन्न होने लगती है। बहुत कड़वे, बहुत गंदे, बहुत भद्दे, अभद्र भाषा का बहुत
1: इस्तेमाल होने लगता है।
0: तो वो एक गलत है। वो क्या है, एक को देख के दूसरा भी उसी तरह
1: जी, उसे आप देखिए ना, समाज में कितना गलत संदेश जाता है। हमारे बच्चे जब इसे पढ़ते हैं तो वो भी यही भाषा सीख रहे हैं, उनके मन में भी वो सम्मान और आदर नहीं होता। कई बार स्त्रियों की फोटो होती है, लोग उस पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे होते हैं, तो जो बच्चा है वो भी यही देख रहा होता है, पढ़ रहा होता है, उसे भी लगता है कि ये सब आम बात है और ऐसा कर देना चाहिए। बड़ा होकर वो भी उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करने लगता है।
0: सोशल मीडिया के इतने फायदे हैं कि उसका उपयोग हमें ज्ञान बढ़ाने के लिए, अच्छे विचार फैलाने के लिए, नई चीजें सीखने के लिए और समाज में जागरूकता लाने के लिए किया जा सकता है, पर हो रहा है उल्टा।
1: हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये विवाद का मंच नहीं है, संवाद का माध्यम है। आप संवाद करिए, समय का मूल्य समझिए, समय जीवन की जैसा कि सबसे कीमती संपत्ति है, इसको आप जाने, और जो समय एक बार चला जाता है वो वापस नहीं आता, ये हम सभी जानते हैं। तो आप सोशल मीडिया में लिखिए।

0: लोग लिखते हैं लगातार, लेखक हैं, बहुत अच्छी बातें लिखते हैं, इतनी अच्छी जानकारियां देते हैं लोग, और आप अपनी बनाइए एक ऐसी जहां पर आप अपनी बात कह रहे हैं, अपनी मन की बात, और फिर लोगों के विचार आमंत्रित करें, तो अपनी ऊर्जा उन कामों में लगाएं जो आपके जीवन को, आपकी भावनाओं को, आपके दिमाग को बेहतर बनाती है।
1: यानी सोशल मीडिया स्वयं अच्छा या बुरा नहीं, उसका उपयोग हमारी सोच पर निर्भर करता है। यदि हम हर छोटी बात को विवाद बनाने के बजाय समझदारी और संयम से काम ले, तो यही माध्यम ज्ञान, जुड़ाव और सकारात्मक बदलाव का साधन भी बन सकता है।
0: बिल्कुल, बहुत ज्ञान है। आप जब सोशल मीडिया पे जाते हैं तो नई नई जानकारियां, हमें अच्छी अच्छी जानकारियां भी मिलती हैं। हम उस पर अगर अपना ध्यान लगाते हैं तो यकीनन आपको बहुत सारी जानकारी पढ़ने को मिलती है, बहुत ज्यादा ज्ञान आपको मिलता है।
1: पुराने जमाना याद कीजिए ना, जब सोशल मीडिया नहीं था तो हमें कितनी सारी किताबों को रेफर करना पड़ता था कि इस किताब में इस लेखक ने इतनी अच्छी बात लिखी, उस किताब में,
0: लाइब्रेरी में जाना होता था, लाइब्रेरी में बैठकर पढ़नी पड़ती थी किताब।
1: आज तो एक क्लिक पर इतनी सारी यानी ज्ञान का भंडार खुला है,
0: बैठे हुए मिल जाता है। और मुझे तो ये भी याद है सोनाली कि कई बार हमें ऐसे टॉपिक्स पर संवाद लिखने होते थे स्कूल कॉलेज में, कि हमें अपने पास या अपने माता पिता के साथ साथ पड़ोसी लोगों के पास भी जाकर कई बार विचार जानने पड़ते थे कि अंकल आप इस विषय के हैं, हमें क्या इस पर कुछ लिखा पाएंगे, है ना। तो ये सब बातें भी हमारे जीवन में हुआ करती थी जब सोशल मीडिया नहीं था। आज तो सब कुछ आपके पास, उसका सदुपयोग करना,
1: उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए कि भाई जो अच्छा है वो अच्छा है, नहीं जो अथाह महासागर है इसमें के हीरे मोती हमें चुनना है, ना कि उसकी जो गंदी चीजें या गलत बातें उसे हमें अनदेखा करना है।
0: इसका मतलब ये नहीं हुआ सोनाली कि हम वाद विवाद से बचें, लेकिन अच्छी बातों पर वाद विवाद हो, सार्थक, उसका अंत सार्थक होना चाहिए,
1: और उसमें बहुत ज्यादा समय की बर्बादी
0: नहीं करनी चाहिए, है ना। इसलिए इससे जुड़े लेकिन सार्थक कामों के लिए। और अब हम एक छोटा सा
1: ब्रेक लेते हैं।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है सखी सहेली और मंदाकिनी जी गाना सुनवाते हैं श्रोताओं को, उसके बाद में फिर हम श्रोताओं के कमेंट्स भी लेंगे।
1: बिल्कुल सही कहा सोनाली, पहले सुन लेते हैं ये गीत।

0: ऊर्जा और समय की हानि, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की जाने वाली बहसें किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती जिससे आपका कीमती समय और मानसिक ऊर्जा व्यर्थ होती है। और इसके अलावा मानसिक तनाव, क्रोध अलग होता है। इन्होंने इसको साइंटिफिक तरीके से लिखा है और इसके साथ ही जो है इन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया कितना हानिकारक है, हमारे विशेषज्ञ इस पर अपनी राय देते हैं। गलत सूचनाओं का प्रसार होता है, ऑनलाइन बहसों में अक्सर बिना पुष्टि किए तथ्य साझा किए जाते हैं जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। और समाज में सोशल मीडिया के प्रभाव के लाभ और हानियां भी बहुत हैं। आप उसका उपयोग करें, सीमित करें, और सबसे अधिक किस एप्स पर आप समय बिताते हैं ये भी आपको जानना होगा। और इस पर वो बहुत सारी बातें लिखते हैं।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, आए दिन सोशल मीडिया झगड़े का अखाड़ा बन चुका है। किसी बात को लेकर दो गुटों के बीच झगड़ा होता है। साथी एक लिखते हैं, सोशल मीडिया पर वाद विवाद करके खुद के दिमाग खराब करने बराबर होता है, क्योंकि इस मंच पर विभिन्न देश या प्रदेश से अलग अलग दिमाग वाले लोग जुड़े मिलेंगे जिससे हम कभी जानते ही नहीं, तो उनसे ऐसे बेकार में वाद विवाद हमें क्यों उलझना चाहिए। आप उनके पोस्ट ध्यान से पढ़ ले, अगर वो व्यक्ति और उसके प्रश्न जवाब देने लायक है तो उनसे जुड़े, वरना दूर ही रहे, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं, नौबत भी आ सकती है।
0: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और एक श्रोता लिखती है कि सोशल मीडिया पर वाद विवाद में उलझना अधिकतर समय की बर्बादी है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म सार्थक चर्चा के बजाय भोसे और प्रतिक्रियाओं से उलझने उन्हें बढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ बहस करने से मानसिक तनाव बढ़ता है और आप का समय जो है व्यर्थ होता है। मानसिक तनाव और ऊर्जा का ह्रास होता है। ऑनलाइन बहस में अक्सर लोग अपनी मर्यादा भूल जाते हैं। कटु शब्दों और आलोचनाओं को पढ़ने से मानसिक शांति हमारी भंग होती है, नकारात्मकता हावी हो जाती है। सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट के जवाब में तर्क वितर्क करने में घंटों निकल जाते हैं। इस समय का उपयोग किसी रचनात्मक कार्य में, पढ़ाई में, कौशल सुधार में किया जा सकता है। बहुत बार लोग जानबूझकर कुछ ऐसी बातें डाल देते हैं जिसे लोग और उत्तेजना में आकर लिखते हैं और धीरे धीरे उस जगह से फिर हट जाते हैं।
1: वहीं एक साथी लिखते हैं कि सोशल मीडिया आज के दौर में संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग समय की बर्बादी का कारण बन सकता है। लोग घंटों तक बिना किसी उद्देश्य के वीडियो देखते, पोस्ट स्क्रॉल करते और अनावश्यक चर्चाओं में लगे रहते हैं। इससे पढ़ाई, काम और परिवार के लिए समय कम बचता है। कई बार सोशल मीडिया की लत व्यक्ति की एकाग्रता और उत्पादकता को भी प्रभावित करती है। इसलिए सोशल मीडिया का उपयोग सीमित और सार्थक उद्देश्यों के लिए करना चाहिए ताकि समय का सदुपयोग हो सके, जीवन में संतुलन बना रहे।
0: बिल्कुल, एक श्रोता ने लिखा है कि सोशल मीडिया एक मंच है, यहाँ सोच समझकर ही अपने विचार रखें। अंधाधुंध कुछ भी बोलते रहते हैं लोग, कभी कभी घातक सिद्ध हो जाता है। लोग बदले की भावना रखते हैं और परिणाम स्वरूप कई बुरे काम भी हो जाते हैं।
1: वहीं एक साथी लिखते हैं कि इन मंचों पर लोग विचार खुलकर व्यक्त करते हैं, लेकिन इन मंचों पर होने वाले वाद विवाद अक्सर ऐसी दिशा में ले जाते हैं जहां सार्थक चर्चा की बजाय समय और ऊर्जा की बर्बादी होती है। लोग अपनी बात को सही साबित करने के लिए घंटों तक तर्क वितर्क करते रहते हैं। अंत में चर्चा किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के बजाय आरोप प्रत्यारोप और कटुता में बदल जाती है, और ऐसे वाद विवाद हमारा मानसिक तनाव भी बढ़ाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा सोनाली इन्होंने। और एक बात हम भी कहेंगे कि बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं सोनाली जो व्यक्तिगत द्वेष को भी उस पर निकाल लेते हैं। मसलन किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हमें कुछ कहना है तो हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने लग गए हैं आजकल, और उनके बारे में अभद्र टिप्पणियां, अभद्र बातें करने लग गए हैं। तो इस तरह से कितना बुरा लगता है, आप सोचिए कि जब हम किसी व्यक्ति विशेष को लेकर भी टीका टिप्पणी करने लग जाते हैं और अपना मन का विकार इस रूप में निकालते हैं, इससे बड़ी कायरता और क्या हो सकती है।
1: और क्या होता है ना कि ये जो समय इतना मूल्यवान है कि जिस उम्र में हमें अपना करियर बनाना है, कुछ अच्छा पढ़ना है, अच्छे संस्कार हमें अपने अंदर समाहित करना है, उस वक्त हम इन सब बिना काम की चीजों में उलझे हुए हैं, फिर ये समय तो फिर नहीं आएगा ना।
0: बिल्कुल, कभी समय लौट कर नहीं आता, बल्कि आप ही बाद में जो है एक तरह से दुख करते हैं कि हम धोखा खा गए, समय निकल गया और अब पछताई हो गया जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यहाँ पर ये बात आती है जो हमने आज का विषय रखा है ना, संयम, वो यहाँ काम आता है ना, कि जीवन में संयम का कितना ज्यादा स्थान है और किस तरह से हमें हर विचार को एकदम तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसके लिए वो संयम रखना चाहिए। तो हमारे श्रोता लिख भी रहे हैं कि भाव, विचार, वाणी और व्यवहार ये संयम के चार स्तंभ हैं। संयम का सही अर्थ है आत्मनियंत्रण, धैर्य और संतुलन। ये किसी भी परिस्थिति में विशेषकर उकसावे, गुस्से या लालच के क्षणों में अपनी भावनाओं, इंद्रियों और इच्छाओं को काबू में रखने की एक मानसिक क्षमता है।
1: एक साथी लिखते हैं कि मन, वचन, इंद्रियों और वाणियों पर आत्मनियंत्रण ही संयम है। भगवद गीता में कहा है कि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी है। जिसने मन जंग को जीत लिया उसके लिए मन मित्र है, और जिसने ऐसा नहीं किया उसका मन शत्रु है। तो भैया अपने मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है।
0: वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि संयम मतलब मन वाणी और कर्म पर स्वयं का नियंत्रण। मन जब कुछ गलत चाहे, जुबान कुछ गलत बोलना चाहे या शरीर कुछ अनर्थ करने की कोशिश करे तब खुद को रोक लेना ही

0: संयम है, संयम हार नहीं ठहराव है। बहुत अच्छा लिखा है। देखिए, गुस्से में बोला गया एक भी गलत शब्द जीवन भर के रिश्ते को खत्म कर देता है और संयम से बोली गई बात रिश्तों की मिठास को कायम रखती है। जिसने संयम साध लिया मतलब उसने खुद को जीत लिया।
1: क्या बात है। एक साथ ही लिखते, संयम वो खामोशी है जिसमें जल्दबाजी नहीं होती लेकिन समझदारी की आवाज साफ सुनाई देती है। हर ताकत दिखाई नहीं देती, कुछ ताकतें संयम बनकर भीतर रहती है, सही समय पर अपना प्रभाव दिखाती है। संयम का फल सिर्फ सफलता नहीं मन की शांति भी होता है। जो व्यक्ति अपने शब्दों भावनाओं और निर्णयों को संतुलन रखता है उसके व्यक्तित्व में अलग ही गरिमा दिखाई देती है। संयम जीवन की पतंगी की वो डोर है जो उसे ऊंचाइयों तक भी ले जाती है और बिखरने से भी बचाती है। नदी की गहराई और इंसान का संयम दोनों शोर नहीं करते लेकिन उनकी शक्ति बहुत दूर तक महसूस होती
0: है। क्या बात है, बहुत सुंदर लिखा है, बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि संयम वो शक्ति है जो मनुष्य को परिस्थितियों का दास नहीं बल्कि उनका स्वामी बनाती है। आज की तेज रफ्तार जीवन में हर कोई तुरंत परिणाम चाहता है, ऐसे समय में संयम हमें सिखाता है कि बड़े लक्ष्य धैर्य मेहनत और प्रतीक्षा से प्राप्त होते हैं। एक बीज भी जब वृक्ष बनने में समय लेता है उसी प्रकार जीवन में उपलब्धियां भी समय और निरंतर प्रयास मांगती है। बिल्कुल, हम कई बार अपना आपा खो देते हैं, मेहनत करते हैं और हमें फल नहीं मिलता ना, तो हम अपना संयम खो देते हैं।
1: एक साथी ने लिखा है कि कई बाधाएं कई कठिनाइयां कई कांटे मुझे मिले जीवन के पथ पर, परंतु मैंने संयम रखा, हिम्मत न हारी और माता रानी पर अटूट विश्वास रखा और आज इस मुकाम पर पहुंच गए हूं कि शादी के बाद मेरे संयम को कायम रखने में मेरी धर्म पत्नी ने बहुत सहयोग दिया। मेरा सभी सखियों सखाओं से यही कहना चाहूंगा कि अपने इष्ट पर विश्वास रखे और संयम रखते हुए कठिनाइयों का सामना करें, सफलता जरूर मिलेगी।
0: बिल्कुल सही कहा, और संयम का तो बहुत बड़ा स्थान होना चाहिए जीवन में। आपने देखा होगा सोनाली, अभी कई बार हम पढ़ते हैं जिसका जिक्र हम कई बार करते हैं कि एग्जाम नहीं हुए, एग्जाम में कोई दिक्कत हो गई, हम पास नहीं हुए, उतने नंबर नहीं मिले, तो बच्चे जो है सुसाइड कर ले रहे हैं, आत्महत्या की ओर चले जा रहे हैं। तो ये वही है कि वो संयम जो आपा खो रहे हैं, धैर्य खो दे रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें संयम से काम लेना चाहिए। आज
1: इस
0: नहीं
1: साल
0: तो
1: नहीं तो अगले साल आपको परीक्षा में सफलता मिल ही जाएगी,
0: जिंदगी
1: और इतना सुंदर जीवन मिला है,
0: हम खत्म कर देते
1: जी। तो बच्चों को ये हमें कि और क्या होता है ना, इसमें हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं कि बच्चों ने किसी चीज की जिद की तो हम तुरंत उन्हें ले देते, उन्हें संयम अंदर से सीखने की चीज है कि वे बोला कि आज ही चाहिए ये डिश, आज ही बनना चाहिए, तो तुरंत मम्मियों का प्यार उमड़ पड़ता है कि नहीं आज मांगा है तो आज ही दे देना है, आज उन्होंने कोई खिलौना मांगा है तो आज ही लाकर देना, आज उन्होंने कोई कपड़े की जिद की है तो वही हम लाकर देते हैं। तो हमें भी उन्हें थोड़ा सा संयम से काम लेने के लिए कहें कि ठीक है आज टाइम नहीं है तो हम कल जरूर लाकर देंगे या दो चार दिन बाद लाकर देंगे। तो बचपन से ही उन्हें इस
0: ये
1: तरह
0: संयम सिखाया जाए। दूसरा वही कि परीक्षा में अंक लाना महत्वपूर्ण है लेकिन अपनी जान से ज्यादा नहीं है, उनको संयम में रहना सिखाएं। कोई बात नहीं बेटा, इस बार आपके नंबर कम आ गए, आप उतने नंबर नहीं ले पाए, अगली बार मेहनत करिए, ना कि आप अपने जीवन को ही
1: समाप्त
0: कर ले, है ना। तो ये संयम हर जगह जरूरी है और अब हमें संयम हमें भी रखना चाहिए बोलने का,
1: कि गाना सुनाना चाहिए।
0: सुना

0: मंदाकिनी जी, हमारे बहुत सारे साथियों ने, हमारे सखियों ने जो ना अचार और मुरब्बे की बहुत सारी रेसिपीज लिखकर भेजी है। तो आम का मुरब्बा, कच्चे आम इन्होंने लिखा है, कैरी 1 किलो कतलों में कटे हुए, गुड़ 800 ग्राम से 1 किलो बारीक कुटा हुआ, सौंफ 1 छोटा चम्मच, हल्की दरदरी और कलौंजी 1/2 छोटा चम्मच, इलायची 1 पाउडर 1 छोटा चम्मच, उसके अंदर भुना जीरा 1 छोटा चम्मच, काला नमक 1 छोटा चम्मच और लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटा चम्मच। बनाने की विधि है कि आम के कतलों को उबाल ले, अब एक कढ़ाई में बारीक कुटा हुआ गुड़ और 1/2 कप पानी डाले और पकने दे। गुड़ की चाशनी बनाने पर इसमें उबले हुए आम के कतले डाल दे, इसे मध्यम आंच पर पकने दे। आम के टुकड़े गुड़ की चाशनी को सोख कर एकदम रसीले और पारदर्शी हो जाएंगे। इसी समय इसमें सौंफ, कलौंजी, काला नमक और लाल मिर्च पाउडर भी मिला दे। जब चाशनी शहद की तरह गाढ़ी और एक तार की हो जाए तो इसमें इलायची पाउडर और भुना हुआ जीरा पाउडर डालकर मिला ले। आम का गुड़ वाला मुरब्बा तैयार है। ठंडा होने पर कांच की बरनी में रखे, इसे पराठे के साथ, पूरी के साथ, रोटी के साथ
1: खा सकते हैं। इसका मतलब हमारी सभी बहनें प्रेस करने में नहीं लगी है ना
0: कुछ मुरब्बे और अचार
1: बना रही है। मुझे तो डर था कि आज हमें अचार और मुरब्बा खाने को मिलेगा भी कि नहीं, क्योंकि एक सखी ने लिख दिया था कि वो तो प्रेस कर रही है
0: और एक सखी कह रही है कि हम बैठ के सुन रहे हैं,
1: तो फिर हम क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे ये अचार और मुरब्बे। तो इसका मतलब हमारी सखियां जो है हमारे साथ कार्यक्रम से जुड़ी हुई है और लगातार जो है मुरब्बा और अचार बनाने की तैयारी भी कर रही है ना। तो मैं पहले एक संदेश सुना दूं, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं
0: जी।
2: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
3: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
2: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
3: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
2: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
3: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
2: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
1: तो सोनाली, हमारे सभी सखी और सखा जान गए होंगे कि आज के मेहमान कार्यक्रम में 4 बजे ये बातचीत वो सुन सकते हैं।
0: हम भी सुनेंगे उनके साथ में।
1: बिल्कुल, हम तो सुनेंगे ही और साथ में कैरी का अचार या मुरब्बा भी खाते जाएंगे। ठीक है। तो वही एक सखी लिखती है कि गुड़ और कैरी का गुजराती स्टाइल का अचार है। इसमें कच्ची कैरी है यानी कच्चा आम, 1 किलो गुड़, 1 किलो छोटे टुकड़ों में कटा हुआ होना चाहिए गुड़, चीनी 1 कप गुड़ के साथ मिलाने से अचार का टेक्सचर अच्छा होता है। अचार का मसाला 200 से 250 ग्राम, राई की दाल, मेथी की दाल, सौंफ, दरदरी, कुटी धनिया का मिश्रण, कश्मीरी लाल मिर्च, 2-3 बड़े चम्मच हल्दी पाउडर, 3-4 छोटे चम्मच नमक, स्वादानुसार चम्मच आपको हींग लेनी है, तेल लेना है।

0: मूंगफली का या राई का एक कप गर्म करके ठंडा किया हुआ लौंग और काली मिर्च भी आपको लेनी है, साथ में 10-12। ठीक है, आम को तैयार करना है। कच्चे आम को धोकर अच्छी तरह सुखा लेना है। इसके बाद इसे छीलकर मध्यम आकार के टुकड़ों में काट ले, क्यूब्स जैसे बना ले। आम के टुकड़ों में 2 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी डालकर अच्छी तरह से इसे मिला लें और इसे ढककर 5-6 घंटे या रात भर के लिए आप छोड़ दें। अगले दिन क्या होगा कि आम के टुकड़ों को छानकर हमें अलग कर लेना है और जो पानी उन्होंने छोड़ा है वो हटा देना है। आम के टुकड़ों को सूती साफ कपड़े पर फैलाकर 3-4 घंटे के लिए पंखे की हवा देनी है ताकि उनके अंदर जो नमी होती है ना वो खत्म हो जाए। फिर मसाला तैयार कर लें। एक बर्तन में अचार का मसाला डालें, हल्दी हींग भी डाल लें, इसके ऊपर हल्का गरम किया हुआ तेल डाल दें और ढककर कुछ देर के लिए छोड़ दें। मसाले को पूरी तरह ठंडा होने दें। अब इसमें भुना हुआ नमक डालें, कश्मीरी लाल मिर्च डालें, लौंग डालें, काली मिर्च डालें, इन सबको मिलाना है। फिर अचार को कैसे मिलाना है, एक बड़े और सूखे कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन में जो सूखे हुए आम के टुकड़े हैं और तैयार मसाला है उनको डालकर अच्छे से मिला लेना है। अब इसमें गुड़ और चीनी डाल दें। सभी सामग्रियों को साफ हाथों से या सूखी चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर दें। बर्तन को सूती कपड़े से बांधकर 2-3 दिन तक धूप या छाया में रखें और दिन में 3-4 बार अचार को चम्मच से ऊपर नीचे या हिला लें। 3-4 दिनों में गुड़ और चीनी पिघल कर चाशनी बन जाएगी और आम के टुकड़ों के साथ मिलकर गाढ़ा रसा तैयार हो जाएगा और आप एक गुजराती जो है ये गुड़ कैरी का अचार खा सकते हैं।
1: मेरे तो मुंह में पानी आ गए। थेपले के साथ में कितना अच्छा लगेगा ना।
0: क्या बात है, तुम्हें तो थेपले की भी याद दिला दी है।
1: अब मुरब्बा बनाने की सरल विधि है तो इन्होंने कहा है कि 1 किलो फल जैसे आंवला है या फिर कोई भी फल ले सकते हैं और 1.25 किलो चीनी है, 4-5 कप पानी है, 4-5 इलायची। फलों को अच्छी तरह से धो ले और फलों को कांटे से गोंद ले ताकि चाशनी अंदर जा सके। हल्का सा उबाल ले उन फलों को और फिर बर्तन में चीनी और पानी मिलाकर एक तार की गाढ़ी चाशनी तैयार करें। चाशनी में फल डालकर धीमे आंच पर पकाएं। जब फल पारदर्शी दिखने लगे और चाशनी गाढ़ी हो जाए तब इलायची पाउडर डालें। ठंडा होने पर साफ सूखे कांच के बर्तन में भरें। मुरब्बा जितना पुराना होगा उतना स्वाद और उतना ही अच्छा होगा।
0: हाँ, वही एक सखी ने लिखा है कि हम जो सिंपल सा अचार बनाते हैं वो बता देते हैं। बिल्कुल, सिंपल सा अचार भी बहुत अच्छा लगता है। अभी आम का अचार डालने का सही समय है, वो कह रही है। हम नाप तोल कर नहीं बनाते, बस सबसे पहले कैरी को धोकर सुखा लेते हैं, उसमें थोड़ा नमक हल्दी डालकर उसको रख देते हैं। दूसरे दिन उसका पानी हटाकर थोड़ा सुखा लेते हैं। बस फिर कढ़ाई में सरसों का तेल गरम कर लेते हैं, जब थोड़ा ठंडा हो जाए उसमें अचार मसाला डालकर मिला लें और उसमें इन कैरियों को डालकर मिला लें और साफ सूखी कांच की भरनी में डाल दें। कुछ दिनों तक उसे रोज बार बार हिलाएं, तेल ऊपर तक होना चाहिए ताकि अचार जो है खराब नहीं होगा। अगर तेल ज्यादा नहीं डालना हो तो मसाले थोड़ा ज्यादा डाल दें और कैरी को अच्छे से सुखा कर उसमें डालना है और लगभग हिलाते रहना है जब तक कैरी पक नहीं जाती है।
1: और अब क्या करना है?
0: अब तो हमें बहुत अचार खिला दिया है श्रोताओं को हमने।
1: अचार और मुरब्बा खा लिए तो मीठा मीठा गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल सुन लेते हैं।

0: हमारे एक साथी लिखते हैं कि ये एकदम गलत बात है, ये गीत आप ऐसे वक्त सुनाते हो जब जाने का समय हो जाता है, अभी न जाओ छोड़कर। एक सखी ने लिखा, अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, काम करते करते अब संयम खो दिया और फोन लेकर बैठ गई।
1: लेकिन आपने सही कहा, हमें तो जाना होगा, इसलिए हम कहेंगे कि अब रुकेंगे नहीं नहीं
0: नहीं। तो इजाजत लेते हैं आप सभी को सोनाली पाठक
1: और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आज के मेहमान में मशहूर चित्रकार अखिलेश वर्मा से ममता सिंह की बातचीत। दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो में हाजिर हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने एक ऐसे कलाकार को, एक ऐसे आर्टिस्ट को बुलाया है जो कला में माहिर है,

0: जो रंग भरते हैं, जो अपनी पेंटिंग में रंग भरते हैं, जिंदगी में रंग भरते हैं। अखिलेश जी की पेंटिंग्स आधुनिक अमूर्त कला और लोक संवेदनाओं का अनूठा संगम है। उनकी कृतियों में रंग केवल सजावट नहीं होते, बल्कि वे भावनाओं की भाषा बन जाते हैं। वे कैनवास पर ऐसी आकृतियां और रेखाएं रचते हैं जो पहली नजर में थोड़ी रहस्यमय लगती है, लेकिन धीरे धीरे दर्शक को अपने भीतर के अनुभवों और स्मृतियों से जोड़ देती है। बहुत सारी बातें अखिलेश जी के बारे में हम आपको बताते रहेंगे इस कार्यक्रम में, आज के मेहमान में। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला और अपने देश के जाने माने पेंटर अखिलेश जी का विविध भारती के स्टूडियो में हम स्वागत करते हैं। अखिलेश जी नमस्कार, स्वागत है
1: जी। नमस्कार,
0: कैसा लग रहा है आपको विविध भारती के स्टूडियो में आकर?
1: विविध भारती एक ऐसी चीज़ है जो बचपन से आपकी स्मृति में है और हम लोग बहुत जब छोटे थे जब से विविध भारती सुनते आ रहे हैं, और ख़ास तौर पे हमारे पिता वो शास्त्रीय संगीत का जो कार्यक्रम आता था
0: संगीत सरिता
1: अभी भी आता है। उसमें हाँ, उसको हम लोग बहुत सुना करते थे, और वो समय कुछ ऐसा था कि आप उस वक्त अपने आप रेडियो के पास होते थे और संगीत सरिता का वो कार्यक्रम सुनते थे। तो हमारे यहाँ वो एक ज्वाइंट फैमिली होने से 10 बच्चे थे, तो सभी के भीतर विविध भारती के साथ एक गहरा संबंध बहुत शुरू से अनजाने ही बना।
0: जी जी, और पिता का जिक्र किया, आपके पिता खुद ड्राइंग शिक्षक थे, मेरे ख्याल से पहले स्वर्ण पदक विजेता, तो आपने क्या चित्रकला की जो पहली तालीम होती है उन्हीं से ली?
1: ऐसा कहा जा सकता है कि मैं जब छोटा था तो हमारे घर में पिता के कारण सारे जो बच्चे थे सभी लोग पेंटिंग करते थे, तो उस दौरान मेरे को पेंटिंग करने में कोई रुचि नहीं थी क्योंकि सब लोग एक ही काम कर रहे हैं।
0: अच्छा।
1: तो इसलिए मैं बिल्कुल नहीं करता था। और मैंने फिर 11th क्लास में पेंटिंग सब्जेक्ट लिया और उसके साथ मैंने अपना जीवन शुरू किया, और फिर अगले साल मैंने कॉलेज में फाइन आर्ट्स कॉलेज इंदौर का जो बड़ा प्रसिद्ध फाइन आर्ट्स कॉलेज है वहाँ एडमिशन लिया और विधिवत कला शिक्षा प्राप्त करना शुरू करी। तो वहाँ हमारे प्रिंसिपल होते थे चंद्रेश सक्सेना, हमारे टीचर होते थे रामनारायण दुबे, इन लोगों से भी मैंने बहुत कुछ सीखा और इन लोगों ने एक्चुअली आंखें खोलने का काम किया कि चित्रकला क्या है। हमारे पिता जो थे वो मिनिएचर के मास्टर थे, मतलब मिनिएचर की उनकी बड़ी गहरी समझ थी और वो उसके बारे में बताया करते थे, और हमें अजंता एलोरा ले जाना, खजुराहो ले जाना, इस तरह के जो ऐतिहासिक स्थल हैं, जो बड़े मंदिर हैं, वहाँ ले जाया करते थे, और उन सब की शिक्षा वो दिया करते थे, उनके बारे में बताया करते थे। मगर जो कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट का जो समझ पैदा हुई मेरी कॉलेज में आने के बाद भी
0: जी, वहीं से पेंटिंग से आपका जुड़ा हुआ।
1: जी हाँ।
0: तो आपके बारे में ये बात प्रसिद्ध है कि 20 बरस की उम्र में ही आपकी पेंटिंग की प्रदर्शनी लग गई थी और बहुत बड़ी पेंटिंग आपने बनाई थी, वो क्या बात है हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: जी, जब मैं 20 साल का था तब मैं कॉलेज के तीसरे वर्ष में पढ़ रहा था, और उस वक्त कोई स्टूडेंट वन मैन शो करे ऐसा संभव नहीं होता था, मतलब उसके लिए रास्ता नहीं था कि आप, किंतु मेरे पिता चूंकि खुद चित्रकार थे उनका मेरे को बहुत सपोर्ट था और उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ तुम करना चाहते हो तो जरूर करो। और फिर मैंने एक ड्राइंग का शुरू किया जो कि 110 फीट लंबा अकेला एक ड्राइंग था, जिसको देख करके जाहिर है इंदौर के उस वक्त के जितने हमारे कलाकार दोस्त थे और हमारे वरिष्ठ कलाकार थे उन सभी लोगों को एक अलग रोमांच की बात थी कि गैलरी में आप घुसें और ड्राइंग शुरू हो और गैलरी से जब आप बाहर निकले तो ड्राइंग खत्म हो,
0: क्या बात है।
1: तो वो एक शुरुआत थी और मैंने सोचा कि जब हमको एंट्री लेना है आर्ट फील्ड में यही करना है या यही रहना है तो फिर एक कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आपकी एक इमेज बने या बनना शुरू हो।
0: जी, तो ये जो इमेज बनाने वाली बात है, फिर आपने अपनी इमेज बनाने के साथ साथ आप एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की ओर झुका हुआ आपका, तो ये किसी ने आपको सलाह दी या आपने खुद चुना, क्या था आपके मन में?
1: उस वक्त हमारे कॉलेज में एक विषय होता था जो कंपलसरी सभी को करना होता था, वो था कॉपी एनी वेस्टर्न मास्टर। तो चूंकि मैं बचपन से ही मिनिएचर पेंटिंग के किताबें और हमारे पिता के कारण से मेरा एक बड़ा गहरा संबंध था, कांगड़ा वैली के या भसौली या बूंदी या इन सारी कलम से बहुत ही परिचित था मैं, तो मैंने हमारे टीचर से कहा कि मैं एक इंडियन मास्टर को कॉपी करना चाहता हूँ बजाय वेस्टर्न मास्टर के, तो क्या मुझे ये परमिशन होगी, और मैं चाहूंगा कि मुझे नंबर भी उसी पे मिले।
0: जी जी।
1: और अगर आप कहें

0: तो मैं दो वेस्टर्न मास्टर की कॉपी भी बना के दे दूंगा, मगर मैं चाहूंगा कि मेरे को जांचा परखा इसी से जाए जो मिनीचर। तो फिर उन्होंने सिलेबस में चेंज किया और मुझको अलाउ किया कि हाँ आप मिनीचर बनाए। तो उस दौरान मैंने बहुत सारे मिनीचर उनका गहन अध्ययन किया कि कौन सा बनाना चाहिए। तो उसमें जो मैंने चुना था उसमें तो 200-300 इमेजेस थी, आकृतियां थी, किंतु उसी वक्त एक पेंटिंग मेरे मिनिएचर ध्यान में आया कि इसमें एक अभिसारिका जो है जंगल से गुजर रही है और अपने प्रेमी से मिलने जा रही है। तो जो नायिकाओं के भेद है उसमें अभिसारिका वो नायिका है जो खुद अपने प्रेमी से मिलने जाती है। तो जंगल में शेर चीते और जंगली जानवर और सब चारों तरफ खड़े हैं, भूत प्रेत और चुड़ैल भी हैं, मगर इन सब से निडर निर्भीक, इन सब की तरफ कोई ध्यान न देते हुए वो अपने चली जा रही है। तो मैंने सोचा कि इतने गहरे अंधकार में वो अपना रास्ता कैसे देख रही है। तो वो उसके हाथ में न कोई प्रकाश का स्रोत है, न कोई लालटेन है, न कोई दिया है, और वो चली जा रही है। तो फिर ध्यान गया मेरा ऊपर, बादलों में बिजली कड़क रही है, तो बिजली की रोशनी में वो अपना रास्ता देख रही है। तो जब मैंने बिजली की तरफ देखा तो वो बिजली भी बिजली नहीं थी, दो लहराते हुए सांप बने हुए थे सुनहरे रंग के, मतलब बिजली भी नहीं कड़क रही थी। तो वो अपने कामना के प्रकाश में अपना रास्ता देख रही थी। तो ये जो एब्सेक्शन था ये मेरे लिए बहुत ही दिमाग को
1: मंथन करने
0: हिला देने वाला था, और मेरा ध्यान फिर चित्रकला में अमूर्तन की तरफ गया कि भई हमें अमूर्तन की तरफ ही जाना चाहिए, सोचना चाहिए, अपने को बरतना चाहिए। तो इस तरह से मैंने फिफ्थ ईयर से अमूर्तन में काम करना शुरू किया, जब फाइनल ईयर होता था हमारा, और उसमें फाइनल ईयर की जो परीक्षाएं होती थी उसमें एक विषय दिया जाता था, उसको आपको बनाना होता था। तो हम लोगों को विषय था पनिहारिन, और वो पनिहारिन जो है वो उसमें पांच फिगर बनानी होती थी, और वो कुआं और ये सब जो पानी भर रही है इस तरह का कुछ मैंने उस वक्त फिर बनाया, जो चित्र था एब्स्ट्रैक्ट बनाया कम्प्लीटली। और मैंने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा मुझे फेल करेंगे और क्या होगा, किंतु मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात थी कि मैं अकेला सारे छात्रों में, हमारे उस वक्त हमारे इंदौर ग्वालियर जबलपुर सबकी एग्जाम एक जगह होती थी, तो हम लोगों की एग्जाम ग्वालियर में हुई थी, तो मैं अकेला फर्स्ट डिवीजन पास हुआ था, बाकी सारे लोग सेकंड डिवीजन में थे।
1: क्या बात है।
0: तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि मेरे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में मुझे नंबर मिले।
1: जी जी।
0: और हमारे जो भी देखने वाले थे, जांचने वाले थे, उन्होंने ये ख्याल रखा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तो वो एक शुरुआत थी मेरी अमूर्तन की तरफ जाने की।
1: अखिलेश जी, आप जब ये बता रहे थे कि ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में ये सारे चित्र उकेरते हैं कि जंगल है और वहां पर जंगल में वन प्राणी है और ये सब, तो मेरी आंखों के सामने वो दृश्य पैदा हो रहा है। ये शब्दों के माध्यम से दृश्य पैदा करना थोड़ा आसान होता है, लेकिन पेंटिंग में किस तरह की चुनौती होती है? ये सारे दृश्य आप बता रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन एक पेंटिंग को एक आम दर्शक देखता है तो कैसे इनको ग्रहण करता है? तो आपके लिए बहुत सारी चुनौतियां होतीगी, किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, किस तरह की कोशिश आप करते
0: हैं? मैं तो इस तरह की कोई कोशिश नहीं करता हूं कि लोगों को ये समझ में आए, मगर जब हम चित्र देखते हैं तो हम लोग दरअसल पहले से जो हमारे पूर्वग्रह है उनसे संचालित होकर के चित्र देख रहे होते हैं। चित्र देखने का एकमात्र ढंग जो है वो समर्पण भाव से देखना है। अगर आप उसको पूरी तरह से अपनी जो भी समझ है उसको छोड़ करके एक मनुष्य की तरह देख रहे हैं, क्योंकि जो आंख मुझे मिली है वही आंख एक दर्शक के पास भी है, और जितना मैं देखता हूं उतना वो भी देखता है, तो मैं उनके देखने पे संदेह नहीं करता हूं, और मैं चाहता हूं कि उनका देखना जागृत हो। और उसमें जो चुनौतियां होती हैं चित्र बनाते वक्त, वो चुनौतियां दूसरी तरह की होती हैं, जिसमें रंग एक चुनौती है अपने आप में, फॉर्म एक चुनौती है अपने आप में, और रेखा एक चुनौती है कि आप इनका कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं, आप किस रंग के साथ कौन सा रंग लगाएं कि दोनों रंग जो है आपस में संवाद करते दिखें। तो ये जो चीजें होती हैं वो दूसरी तरह की चुनौतियां हैं, जो चित्रात्मक चुनौतियां हैं कायदे से देखा जाए तो। और ये जो सामाजिक चुनौतियां हैं देखने की और समझने की, इसके लिए एक पूरा अलग व्यापार है जो उसको फॉलो करना चाहिए देखने वाले को, या उसको। मैं तो देखता हूं कि जो हमारे जंगल में रहने वाले आदिवासी कलाकार हैं, जब वो भारत भवन आते हैं और भारत भवन की आधुनिक कला दीर्घा

0: में वो प्रवेश करते हैं और तो मैं देखता हूँ कि वो लोग तो सारे चित्रों को खुशी से एंजॉय करते हैं।
1: क्या बात है।
0: तो उनके पास ऐसा कुछ पहले से प्री कंसीव्ड आइडिया नहीं है चित्र का, तो जो चित्र देख रहे हैं उसके साथ वो एकाकार हो जाते हैं तत्काल ही, जैसे कि वो प्रकृति के साथ एकाकार रहते हैं। तो ये जो उनका एक समर्पण भाव है जिसमें वो अपने देखने को पूरी तरह से बरतते हैं, तो मुझे लगता है कि हर मनुष्य ये कर सकता है कि वो अपने देखने को जागृत करके अपना देखना वैसा ही निर्दोष रखे जैसा कि होता है।
1: जी जी, चित्रकला और संगीत का बड़ा गहरा संबंध है। हमने कई पेंटर्स के बारे में सुना है कि वो साथ में रेडियो लगा देते हैं, रेडियो बजता रहता है और चित्रकारी करते हैं। बहुत बड़े बड़े पेंटर्स ने खास तौर से विविध भारती के लिए कहा है, आपने भी इसका जिक्र किया। अभी इस वक्त कौन सा गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवाएं?
0: मैं सुनाना चाहूंगा किशोर कुमार का एक गाना है, वो शाम कुछ अजीब थी।
1: इस गाने से जुड़ी हुई कोई खास याद है क्या आपकी?
0: इस गाने से जुड़ी हुई नहीं, ये गाना मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। किशोर कुमार की जो आवाज है उसमें जो कशिश है वो एक इस गाने को खास बनाती है और उसमें एक विचित्र किस्म की उदासी फैलती है, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती
1: जी,
0: है।
1: जी, और किशोर कुमार हमने सुना है कि आपके घर भी आया करते थे।
0: किशोर कुमार मेरे पिता के साथ पढ़ते थे और क्रिश्चियन कॉलेज में वो लोग पढ़ाई करा करते थे, तो जब वो पहली बार हमारे घर आए तो मेरे दादाजी का एक पायदानी हारमोनियम था घर में, तो उसको देख के किशोर कुमार बहुत ही खुश हुए और फिर एक नियमित वो हो गया कि वो अपना कॉलेज खत्म करके हमारे घर आ जाते थे, फिर देर रात को ही जाया करते थे। वो सिर्फ गाना गाते थे और उस वक्त वो इतना शर्माया करते थे, ऐसे हमारे पिता बताते हैं, कि वो कोई अगर बाहरी व्यक्ति आ जाए तो गाना बंद कर देते थे।
1: ओह क्या बात है। तो ऐसी तमाम यादें होती हैं, हमें लगता है कि जब आप रंग भरते होंगे तो इन यादों को का भी समावेश करते होंगे। फिलहाल हम ये गाना सुनते हैं।

0: गाने के बाद हम आते हैं उस मुद्दे पर। अखिलेश जी, आपकी पेंटिंग में, आपकी चित्रकारी में मध्य प्रदेश की आदिवासी संस्कृति, लोक जीवन और बहुत कुछ देखने को मिलता है, एक पूरी परंपरा देखने को मिलती है मध्य प्रदेश की। तो ये बताइए हमें कि ये आपकी खुद की कल्पनाशीलता है या फिर आप जाते हैं, रिसर्च करते हैं, उन आदिवासी लोगों से मिले, उनकी संस्कृति को जाना, खंगाला, बताइए विस्तार से।
1: हाँ, ये हुआ मेरे साथ जब मैंने भारत भवन में ज्वाइन किया और वहाँ पर हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने एक नया देखना इंट्रोड्यूस किया था जिसमें उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और वो साथ साथ एग्जिबिट थे एक ही छत के नीचे। तो उस तरह से मेरा भी संपर्क जो है आदिवासी कला से वहां से शुरू होता है और उसके बाद उन सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर उन के गांव जाना, उनके गांव में जा करके उनके साथ काम करते हुए समय बिताना, ये सारा चीज जो है उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में। तो वो उनका जो देखना है वो इतना निर्दोष है और उनका जो देखना है उतना गहरी आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, वो मुझे लगता है कि एक शहरी कलाकार के लिए एक बड़ी चुनौती है कि वो अपनी इस आस्था को कहाँ से अपने चित्रों में प्रकट करें। तो ये जो देखना था और ये मेरा जो उनके साथ संपर्क था, उनके साथ का एक बिताया हुआ समय था, उन सब ने मुझे प्रेरित किया अपनी सीधी साधी अप्रोच की तरफ। तो उसका एक प्रभाव पड़ता ही है और फिर हम देखते हैं कि अगर पॉल क्ले के चित्र देखें या पिकासो के आखिरी चित्र देखें तो वो लोग भी इसी सिंप्लिसिटी की तरफ आखिर में जाते हैं। जो हुसैन हो चाहे वो चाहे रजा हो, वो अपने मनुष्य होने का एहसास धीरे धीरे जब उन्हें होता है तो वो उसी सादगी, उसी आस्था और उसी मूल जो हमारी भावनाएं हैं उनकी तरफ चले जाते हैं। तो ये चीजें जो है बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज है जिसका रियलाइजेशन आपको पेंटिंग करने के दौरान ही होता है,
0: मिलता है। कोई यादगार घटना या कोई यादगार बात आपके जहन में आ रही है इस समय कि आप कहीं गए हो और किसी विशेष घटना से प्रभावित होकर कोई विशेष पेंटिंग बनाई हो?
1: वैसे तो मैं घटना से प्रभावित होकर के या प्रेरित होकर के चित्र नहीं बनाता हूं क्योंकि ये प्रेरणा के जो स्रोत हैं वो बदलते रहते हैं, वो बदलते रहे हैं और अब मेरे लिए जो प्रेरणा का स्रोत है, इसके पहले तक ये था कि मेरा पिछला चित्र ही मेरे प्रेरणा का स्रोत होता था, अब मेरे लिए जो रंग है वो प्रेरणा के स्रोत हैं। वो बहुत ही बड़ी चुनौती भी है, मैं देखता हूँ कि हर रंग अपने में एक प्रश्न है जिसको रिजॉल्व करना के लिए पूरा एक जीवन चाहिए है। मतलब आप रंग के स्वभाव को जब जानना शुरू करते हैं तो वो खुद आपको चमत्कृत करते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। उदाहरण के लिए जैसे मैंने एक कैनवस पे रंग लगाया मेटेलिक ऑरेंज, जो कि बहुत ही ब्राइट और बहुत ही चमकता

0: और इतना, और वो इतना ज्यादा चमकीला और इतना ज्यादा ब्राइट था कि मैं खुद 3 दिन तक उस पर कुछ काम नहीं कर पाया, और रोज सिर्फ बैठ करके उसको देखा करता था कि अब इसके साथ ऐसा कौन सा रंग लगाया जाए जो उसकी मदद करे, उसको आगे बढ़ने में, चित्र को आगे बढ़ने मेरी सहायता करे। और 3-4 दिन के बाद मैंने उसके ऊपर एक फ्लोरोसेंट कलर ऑरेंज का डॉट लगाया, और मेरे लिए ये बहुत ही बड़ा चमत्कार जैसा था कि वो जो पिछला पूरा मेटेलिक ऑरेंज था वो ब्राउन कलर में बदल गया। और तब मुझे एहसास हुआ कि इसके अंदर एक ब्राउन कलर भी छिपा हुआ था जो एक दूसरे रंग के संपर्क में आने से प्रकट हो गया। तो ये जो रंग अपने भेद खोलते हैं किसी एक दूसरे रंग के संपर्क में आने से, ये मेरे लिए सच में बहुत ही एक आश्चर्य की बात होती है और मेरे लिए चमत्कार। आप खुद ही चमत्कृत हो जाते हैं कि ये क्या है। तो इसने मुझे दिशा में डाला कि मैं रंगों के स्वभाव को समझने के लिए उनके साथ लगातार एक प्रयोगात्मक अप्रोच रखूं।
1: क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक चित्रकार रंगों से कैसे प्रयोग करता है, कैसे खेलता है। हमारे बहुत सारे ऐसे श्रोता भी हैं जो चित्रकला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन बारीकियों के बारे में बताइए कि ये जो रंगों की बात की, तो आप रंग और रेखा के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं, किन रंगों का ज्यादातर प्रयोग करते हैं और किन रंगों को मिलाकर कौन सा रंग पैदा होता है, आपके पसंदीदा रंग कौन से हैं?
0: हाँ, मेरी पहले तो मेरे पसंदीदा रंग की बात करें तो शुरुआती तौर पे मेरे को लाल रंग बहुत ही पसंद था, और वो एक बहुत बड़ी चुनौती भी था, किंतु अब मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे हर ही रंग एक बड़ी चुनौती है। पीला रंग लगाना सबसे मुश्किल काम है।
1: हम अपने श्रोताओं को यहाँ बताना चाहेंगे हरा रंग आपको पसंद है और अखिलेश जी हरे रंग की शर्ट पहन के आए हैं, एकदम डार्क हरा, होता हरा, और बहुत खिल रहा है इन पर ये रंग जी।
0: हाँ, तो मुझे मतलब फिर रंग बरतते वक्त कैनवास पे मुझे ये भी लगा कि मुझे उसे अपने जीवन में भी बरतना चाहिए, तो फिर मैं अपने कपड़ों में भी उनको ले आया, और उस तरह से बहुत ही रंगों से जो डरते हुए लोग हैं, मतलब मैं उस तरह से डर के निसंकोच उनका प्रयोग करने लगा। तो ये जो रंग से आपको प्रेरणा मिलती है, ये मेरे ख्याल से सभी दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए महत्वपूर्ण है कि आप रंग को जब देखते हैं तो ध्यान से देखें तो आपको उसके अंदर और भी चीजें नजर आने लगती हैं, कई रूप भी नजर आने लगते हैं, कई रेखाएं भी नजर आने लगती हैं। किंतु हम अपने देखने पे हमेशा इतना संदेह करते हैं कि हम उसको समझना चाहते हैं, जो कि एक गलत रास्ता भी हो सकता है। किसी चित्र को समझने की जरूरत नहीं है, उसे देखने की जरूरत है। तो जब आप देखना शुरू करते हैं तो वो आपके साथ उसका एक संवाद शुरू होता है, और वो चित्र खुलना शुरू हो जाता है आपके साथ धीरे धीरे। आप अपने घर में लाके उसको लगाते हैं तो आप उसको रोज अगर देखते हैं तो रोज आपको एक नई कुछ उसमें चीजें नजर आने लगती हैं। तो वो एक तरह से ग्रो भी होता है आपके साथ रहते रहते, जैसे हम लोग भी ग्रो होते हैं वैसे चित्र भी विकसित होता रहता है लगातार। तो ये जो चीजें हैं हर दर्शक को ख्याल रखनी चाहिए।
1: जी बिल्कुल, यहाँ पर हमें भी ख्याल रखना चाहिए कि एक गाना आना है, तो कौन सा गाना सुनाएं?
0: मैं चाहूंगा कि भूपेन का एक गाना, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत की रात दिन,
1: मौसम फिल्म का गाना है
0: जी। हाँ,
1: सुनते हैं यही गाना।

0: गाने से पहले बात चल रही थी रंगों की, रंगों की बहुत सारी बातें आपने बताई और एक बात आपने और कहा कि भारत भवन ज्वाइन किया, इंदौर में आपने शिक्षा ली, तो इंदौर से भोपाल की यात्रा के बारे में संक्षेप में बताइए।
1: इंदौर से भोपाल में सीधे नहीं आया था, मैंने दो इंटरव्यूज दिए थे, एक बैंगलोर में दिया था एक भोपाल में दिया था, और संयोग से दोनों जगह मेरा अपॉइंटमेंट मतलब हो गया था। भारत भवन में अपॉइंटमेंट करने में थोड़ा सा टाइम था, तो उन्होंने कहा कि भी 3-4 महीने लगेंगे, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं 3-4 महीने बेंगलोर चला जाता हूँ। तो फिर मैं बेंगलोर चला गया था और वहाँ से फिर मैं भोपाल आया। तो 82 में जब भारत भवन की शुरुआत हुई उसी वक्त फिर मेरा भोपाल आना हुआ, और फिर मैंने लगभग 22 साल भारत भवन में काम किया और प्रदर्शनी लगाना, कलाकारों से मिलना, बात करना, तो ये मेरे लिए भी एक बड़ा वो था। और वहाँ के जो निदेशक थे जगदीश स्वामीनाथन, जो हिंदुस्तान के बड़े चित्रकार हैं और बड़े विचारक भी हैं, जिन्होंने चित्रकला के लिए अपना जीवन भी बिताया, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। तो उनके सानिध्य में रह करके भी चित्रकला का संसार प्रकट हुआ
0: जी। और एक हमने घटना सुनी है कि आपकी पेंटिंग की प्रदर्शनी थी और कोई अमेरिकन व्यक्ति आया और उन्होंने आपकी सारी पेंटिंग खरीद ली थी, वो क्या घटना है जरा बताइए।
1: वो मेरा पहला वनमंच शो था बंबई में जहांगीर आर्ट गैलरी में, और ओपनिंग में चस्य हविस करके एक अमेरिकन कलेक्टर थे जो कि सालों से हिंदुस्तान आते थे और हिंदुस्तानी कलाकारों की चित्र खरीदा करते थे, तो वो संयोग से मेरे एग्जीबिशन में आ गए थे। और मैं चूंकि अमूर्त चित्र बनाता हूं, तो उन्होंने मेरे एग्जीबिशन से 4-5 चित्र खरीद लिए, जिसको देख करके मतलब जाहिर है एक अलग तरह का वो फैला, और वो पूरा एग्जीबिशन जो है मेरा आधे घंटे में सेल आउट हो गया था। तो ये मेरे लिए भी एक बड़ी चमत्कार की बात थी। और फिर दूसरे दिन चस्य हविस आए, उन्होंने फिर अपने को इंट्रोड्यूस करा और बताया कि भाई मैं हूँ मेरे कलेक्टर और मैं ये काम करता रहता हूँ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, एक छोटा सा इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। वो और उनकी पत्नी डेविडा दोनों थे, और फिर उन्होंने हमसे बात बात करी, तो काफी रुचि पूर्वक उनसे बात हुई। फिर मुझे बाद में पता चला कि वो हिंदुस्तान के जितने भी खास कलाकार थे उन सब के चित्र जो है वो खरीदा करते हैं, और उनका एक बड़ा कलेक्शन उनके पास था।
0: तो हम सब के लिए कितनी गौरव की बात है, हम सब हिंदुस्तानियों के लिए, कि विदेश से एक बंदा आकर अपने देश की चित्र को

0: अपने देश की कला को ले जाते हैं, तो हम सबके लिए फख्र की बात है और बहुत अच्छा लगा ये जानकर। मकबूल फिदा हुसैन से आपका नाता रहा है, और तो इनके बारे में बताइए, इनसे कुछ खास बारीकियां सीखने को मिली या आपने पिताजी से ही सब कुछ सीखा आपने?
1: हाँ नहीं, हुसैन साहब से तो बहुत ही कुछ सीखने को मिला, और हुसैन साहब के साथ एक ऐसा संबंध बना बाद में जा करके कि उनकी मैंने जीवनी भी लिखी, और उनकी जीवनी जब पढ़ी उन्होंने और लंदन में मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो बोले यार हमारी ऑटोबायोग्राफी से आपकी बायोग्राफी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है, क्योंकि उसका 6 महीने में दूसरा एडिशन छपा था, तो इतनी ज़्यादा वो बिकी थी। तो हुसैन साहब इस बात से बहुत ही खुश हुए थे, फिर उन्होंने मुझसे कहा कि इसका अंग्रेजी में अनुवाद कराओ तो अपन लंदन में रिलीज करेंगे। और फिर वो अनुवाद इतने धीमी गति से हुआ, बाय दैट टाइम जब तक वो अनुवाद पूरा हुआ हुसैन साहब दुनिया में नहीं रहे, तो वो उनकी ख्वाहिश अधूरी रही। एक उनकी दूसरी भी ख्वाहिश थी, उनका 1956 में पहला वन मैन शो हुआ था प्राग में, और वहाँ पर उनके साथ उनकी जो इंटरप्रिटेटर थी मारिया, उनके साथ उनका प्रेम शुरू हुआ, और फिर बाद में उनसे वो शादी भी करना चाह रहे थे तो वो हो नहीं सके, और मारिया ने जब ये शादी करने के लिए गए उन्होंने मना कर दिया कि भाई आप दूसरी संस्कृति से आते हैं, मैं दूसरी संस्कृति को बिलोंग करती हूँ, तो शायद ठीक से नहीं होगा। तो हुसैन साहब ने उस दौरान उन 4-5 सालों में 3 वन मैन शो किए थे प्राग में, और तीनों उनको डोनेट कर दिए थे, गिफ्ट कर दिए थे। तो कई साल बाद 2002 में मैं जब दुबई गया तो हुसैन साहब ने मुझे बताया कि मारिया आजकल ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं और एक बड़े फोटोग्राफर से शादी कर ली है उन्होंने, और मैं अभी उनसे मिलने गया था तो उन्होंने मेरे 80 चित्र वो जो उनको मैंने भेंट करे थे वापस लौटा दिए, और वो उन्होंने 80 चित्र जो है अपने घर के कमरे में पूरे डिस्प्ले कर रखे थे, और वो बहुत महत्वपूर्ण चित्र इसलिए भी थे कि वो सारे चित्र 1956 के पहले के थे
0: जी,
1: और हुसैन साहब का हुसैन बनना 1956 में बिटवीन स्पाइडर एंड द लैंप नाम की पेंटिंग से होता है, उसके बाद हुसैन हुसैन बनते हैं, मगर ये सारे काम जो है 50 से लेके 55-56 तक के सारे काम थे और बड़े खूबसूरत काम थे। ये उस चरनी को दिखा रहे थे जो हुसैन साहब ने तय की थी अपने को पाने तक की। वो चाहते थे कि मैं हुसैन और मारिया के प्रेम प्रसंग पर एक नॉवेल लिखूं, तो मैंने कहा कि भाई उसके लिए मेरे को प्राग जाना होगा और आपके साथ ही जाना होगा। तो हुसैन साहब बोले कि हाँ ठीक है, तो तुम अक्सर अक्टूबर नवंबर में आते हो, अगले साल तुम जून में आना, तो मैं जून में फ्री रहता हूँ, तो अपन दोनों चले चलेंगे प्राग, और फिर मैं आपको उन सारी जगहों को ले जाऊंगा जहाँ हम लोग मिले थे और जो हुआ था। मगर नेक्स्ट ईयर जून 10 को उनकी डेथ हो गई, तो वो हो नहीं पाया,
0: ख्वाहिश अधूरी रह गई।
1: तो उन्होंने जितना मुझे बताया था उसके आधार पर मैंने एक नॉवेल की शुरुआत का अंश लिखा हुआ है जिसका नाम है हुसैन और हसीना
0: जी। तो हम शुभकामना करते हैं कि वो उपन्यास पूरा हो, क्योंकि अब हमारी भी दिलचस्पी बढ़ गई है कि हम पढ़ना चाहेंगे। लेकिन जब आप ये बता रहे थे कि उन्होंने सारी पेंटिंग वापस कर दी।

0: यहाँ पर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि बाबा कारंत की ऑटोबायोग्राफी भी आपने लिखी है। अब लेखन की बात चली है तो आपके लेखन के पक्ष को भी हम उजागर करना चाहते हैं। अपने श्रोताओं को बता दें कि अखिलेश जी बहुत बढ़िया और इनके भी तो सुंदर कलम की ताकत है, बहुत बढ़िया लेखक भी है, तो आप इसके बारे में बताइए कैसे बाबा कारंत की ऑटोबायोग्राफी लिखने की बात मन में आई, प्रेरणा मिली आपको?
1: हाँ, मैंने है ना ऑटोबायोग्राफी लिखी है हुसैन साहब की और रवि साहब की और जगदीश स्वामीनाथन की, और जो बीबी कारंत थे उनकी ऑटोबायोग्राफी उन्होंने अपने जब आखिरी दिन थे, बीमारी के दिन थे, उस दौरान कन्नड़ की एक प्रसिद्ध राइटर है वेदेही, उन को बोल करके अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखवाई थी कन्नड़ में, और उसमें ये हुआ कि उसका एक अंग्रेजी अनुवाद हुआ, और अंग्रेजी अनुवाद तो बाबा कारंत जो है भारत भवन में थे और हम लोगों की बड़ी अच्छी उनके साथ दोस्ती थी और उनके साथ काफी गहरे संबंध भी थे, तो मैंने कहा कि भाई उन्होंने जीवन भर काम जो किया है, ज्यादातर काम जो है हिंदी नाटकों में किया है, हिंदी भाषा में किया है, और स्कंदगुप्त जैसा नाटक किया है, चंद्रगुप्त जैसा नाटक किया है, ये जयशंकर प्रसाद के इतने कठिन नाटक हैं कि जिसको करने के लिए किसी भी डायरेक्टर की हिम्मत नहीं हुई थी, मगर बाबा कारंत एक ऐसे विलक्षण व्यक्ति थे कि उन्होंने स्कंदगुप्त में से स्कंदगुप्त नाटक क्या है वो ढूंढ निकाला, और अगर आप पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद का ये नाटक तो शायद आप, मैं भी नहीं समझ पाया कि इसमें नाटक कहाँ है, ही वॉज ब्रिलियंट माइंड एक्चुअली। तो उनकी ऑटोबायोग्राफी का मैंने हिंदी में अनुवाद किया और वो अभी छपने के प्रोसेस में है
0: जी।
1: तो वो इस वर्ष आ जाएगा। ऐसे ही एक मार्क शागाल बड़े पेंटर हुए हैं रशिया के, जो पेरिस चले गए थे, और फिर बहुत ही जो तीन बड़े चित्रकार हैं जिन्होंने काफी बड़े बदलाव लेके आए चित्रकला के संसार में, उसमें मार्क शागाल, पिकासो और मातिस का नाम लिया जाता है, तो उनकी भी जो ऑटोबायोग्राफी थी लावी मतलब द लाइफ, उसका मैंने अनुवाद किया है आप बीती नाम से
0: जी जी।
1: और ये तो आप बीती सबको पढ़नी चाहिए, इसलिए भी कि मार्क शागाल ने अपने को इतने ऊपर से देखा है, इतना ऑब्जेक्टिवली देखा है कि आपको भरोसा नहीं होता ऐसा कि कोई व्यक्ति अपने से बाहर रह करके अपने बारे में इस कदर लिख सकता है। वो यहूदी थे तो यहूदियों पर उस वक्त रूस में जो जुल्म हो रहे थे उन सबका उन्होंने वर्णन किया, उनके परिवार पे जो संकट आते थे यहूदी होने के नाते, यहूदी होने के नाते उनको कई चीजों से वंचित रहना पड़ता था, मास्को में नहीं जा सकते थे यहूदी लोग बगैर परमिशन के, और अगर जाएंगे तो उनके पास एक नौकर का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि मैं नौकर हूँ, ये सारा उन्होंने भुगता, मगर पूरी किताब में शिकायत का एक स्वर नहीं है। ये बहुत बड़ी बात थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी उसको पढ़ते वक्त, वो एक सीधे कविता की तरह उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जो कि बहुत अच्छी है, तो मुझे लगता है कि वो हर किसी को पढ़ना चाहिए
0: जी,
1: कि कोई व्यक्ति अपने को अपने से बाहर रह करके कैसे देख सकता है इतने ऑब्जेक्टिवली।
0: ये बहुत बड़ी बात है और एक वैचारिक समृद्धि भी मिलती है इस तरह की किताबें पढ़कर, तो हम सबको पढ़नी है ये किताब। और आपका जो लेखन पक्ष है उसमें और भी बहुत कुछ है, अचंभे का रोना और दरस पोथी और शीर्षक नहीं, इन किताबों में क्या दर्ज है हमारे श्रोताओं को?
1: ये जो मेरी किताबें हैं इन सारी किताबों में मैंने चित्रकला पे और चित्रकारों पे जो बातचीत करी है वो है इन सारी जगह में, और उसमें कई चीजें ऐसी भी हैं जो मतलब पहली बार किसी ने चित्रकला में उसको छुआ है और उस पर बात करी है, तो ये सारे निबंध हैं जो अलग अलग समय पे अलग अलग चित्रकारों के ऊपर भी हैं और चित्रकला के प्रश्नों पर भी हैं, तो ये मेरे निबंधों की किताब है एक तरह से जो 5-7 है, एक उनके बारे में भी है शीर्षक नहीं दरस पोथी और अचंभे के रोने के अलावा, तो इस तरह से मतलब काफी लिखने का मेरा कोई पैशन नहीं है, मतलब मैंने जितना भी लिखा है हमेशा किसी के कहने पे लिखा है
0: जी जी,
1: जैसे हुसैन साहब की बायोग्राफी भी उनके कहने पे मैंने लिखी
0: जी,
1: वैसे ही मतलब कभी किसी ने कहा कि स्वामीनाथन पे लिख दो तो फिर स्वामीनाथन की बायोग्राफी मैंने उन पे लिखी
0: जी,
1: तो ये सारे जो आर्टिकल्स या जितना भी मेरा लेखन का पक्ष है वो मतलब किसी के आमंत्रण पे है वो
0: जी जी। तो दोनों में से कौन सा आपका पसंदीदा शौक है, पेंटिंग या लेखन?
1: मेरे लिए तो पेंटिंग ही है, मतलब लिखना तो

0: कभी कभार है, मतलब मैंने ऐसा कुछ खास नहीं। अभी इन दिनों में एक किताब लिख रहा हूँ स्वामीनाथन के साथ, मेरे जो पर्सनल संबंध थे इतने साल, 9-10 साल मैंने उनके साथ काम किया भारत भवन में, उसके बाद 14-15 साल उनके साथ संपर्क रहा, तो एक लंबा संपर्क था और मेरे लिए भी बहुत आश्चर्य की बात थी स्वामी से मिलना और स्वामी जी को जानना। क्योंकि जब हम लोग 74 में पहली बार दिल्ली गए थे तो वहां पर ट्रिनाल देखने गए थे हम लोग, इंटरनेशनल एग्जीबिशन थी और बहुत एक्साइटेड थे। जब रात को लौट रहे तो वहां कैनॉट प्लेस पे एक हमने बैनर देखा, 6 हू डिक्लाइन ट्रिनाले, तो बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसे भी 6 लोग हैं, 6 कलाकार हैं जिन्होंने ट्रिनाल को जो है कैंसिल आउट किया। तो धूमिमल आर्ट गैलरी में वो एग्जीबिशन थी, तो हम लोग धक्का मुक्की करके जैसे तैसे अंदर घुसे तो हमें स्वामीनाथन ही दिखे एक चित्रकार की तरह। तो उनसे मतलब ऑटोग्राफ लेने के लिए हमारे सीनियर लोग जो थे, तो मैं तो उस वक्त सेकेंड ईयर में ही था, तो मैं तो सबसे जूनियर था तो सबसे पीछे ही था, तो मैंने भी अपनी स्केचबुक आगे जब बढ़ाई तो स्वामी जी ने एक ऐसे पलट के देखा, मेरे ख्याल से फ्रिक्शन ऑफ सेकंड हमारी नजरें मिली होंगी, उन्होंने ऑटोग्राफ करके लौटा दिया और फिर हम लोग चले भी आए
1: जी।
0: फिर जब 81 में मैं इंटरव्यू दे रहा था, इंटरव्यू देने के लिए बैठा था, तो स्वामी जी मेरे पास सीधे आए और बोले हम लोग पहले मिल चुके हैं।
1: क्या बात है,
0: तो मेरे लिए तो एकदम से मतलब
1: आश्चर्य हुआ,
0: बहुत ही आश्चर्य था, क्योंकि मुझे तो याद रहना चाहिए था कि मैं स्वामीनाथन से मिला हूँ, मगर स्वामी जी को वो इतनी सी झलक उन्होंने देखी, ठीक से देखा भी नहीं होगा शायद, इतनी भीड़ थी, इतना सारा क्राउड था, बस उन्होंने वो स्केचबुक लौटाते वक्त एक जो होता है देखना होती सी नजर, बट ही रिमेम्बर वेरी क्लियरली कि हम लोग पहले मिल चुके हैं
1: जी। यहाँ पर याद कीजिए कोई गाना, कौन सा गाना सुनवाया?
0: मैं यहाँ पर मोहम्मद रफी का एक गाना, फिर मिलोगे कभी
1: इस बात का वादा कर लूं, सुनते हैं ये गाना।
0: फिर मिलोगे कभी इस बात

0: गाने से पहले आपके लेखन पक्ष की बात हो रही थी, कुछ अनुवाद भी आपने किए हैं बहुत सारे, तो उन अनुवाद की किताबों के बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: तो एक तो मैं बता चुका हूँ मार्क शागाल की, मैंने ऑटोबायोग्राफी का अनुवाद किया। दूसरा एक बाज बहादुर और रूपमती की प्रेम कथा की एक छोटी सी किताब है, तो उसका मैंने एक अनुवाद किया था। एक स्वीडन के नॉवेलिस्ट हैं अग्निता प्लायल, उनका एक नॉवेल है डॉग स्टार, वो बहुत ही बढ़िया नॉवेल है। और उसमें भी वही बात है कि वो सारी झंझटों तकलीफों और मुसीबतों के जिक्र के बावजूद भी उसमें शिकायत का कोई स्वर नजर नहीं आता है उसकी जो नायिका है उसका। तो एक मैंने उसका अनुवाद किया, और ये जो बाबा कारंत की ऑटोबायोग्राफी है उसका अनुवाद। तो इस तरह से अनुवाद का कर्म जो है, मैं मतलब अपने पढ़ने के ही एक ढंग को विकसित करने का तरीका है।
0: जी जी बिल्कुल। अखिलेश जी, आपकी पेंटिंग्स बहुत सारे बड़े बड़े संस्थानों में संग्रहित हैं, देश में विदेश में, यहाँ तक कि फ्रांस, ललित कला अकादमी, महात्मा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान वर्धा और भारत भवन में तो है ही। तो ये जो इतनी सारी पेंटिंग्स का संग्रह है आपके पास, हमारे श्रोताओं को बताइए तकरीबन कितना बड़ा संग्रह है और कैसे किया ये सब मुमकिन? एक आम जिंदगी में, एक आम चित्रकार के खाते में नहीं आता है।
1: नहीं, मेरे ख्याल से सभी चित्रकारों के खाते में आता है, और वो बस ये है कि उनको अपने काम पर भरोसा होना चाहिए और उसको लगातार दिखाते रहना चाहिए। मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे अच्छे चित्रकार मेरे दोस्त हैं और अभी भी इंदौर में रहते हैं, बढ़िया काम करते हैं, और सच में वो इतना अच्छा काम करते हैं कि मेरे को उनके काम को देख करके रश्क होता है कि काश मैं भी ऐसा कर सकता था, मगर वो लोग कभी दिखाते नहीं है। तो ये जो एक दिखाना है, प्रदर्शन करना है, ये एक बहुत जरूरी पक्ष है। अदरवाइज कुछ ऐसा हो जाएगा कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। मतलब हमें ये तो देखना ही चाहिए कि भाई हम जो काम कर रहे हैं तो लोगों तक पहुंचे कैसे। तो वो जो पहुंचना है उसी का एक रास्ता है जिसमें इन सारे संग्रह में वो कलाकृतियां जा पाती हैं, या उसमें लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, तभी वो आपके चित्र को खरीदना चाहते हैं। तो इस तरह का अनुभव भी मेरा रहा है कि जब भी मैंने कहीं शो किया है तो लोगों ने उसको पसंद किया है और उसमें से कई चित्र जो है ऐसे महत्वपूर्ण कलेक्शन में गए हैं।
0: और ये लोगों के लिए सीखने के लिए भी एक
1: जरूरी है कि हम जो भी काम कर रहे हैं तो उसको हम अगर दिखाएंगे नहीं तब उसके बारे में हम कैसे कुछ तय कर सकते हैं। हाँ, मतलब वो दर्शकों की प्रतिक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना अपना बनाना। तो वो जो बनाना है, खाली वहीं पर चित्र खत्म नहीं होता है, चित्र पूरा होता है जब एक दर्शक उसे देखता है।
0: सही बात है। तो भारतीय संस्कृति और कला का बड़ा ही गहरा संबंध है, और आप अपनी पेंटिंग में भारतीय संस्कृति को और परंपराओं को भी उकेरते हैं, तो ये कैसे होता है उन तमाम श्रोताओं के लिए बताइए जो सीख रहे हैं।
1: हाँ, मुझे ये लगता है कि ये जो कुछ भी हमारी चित्रों में आता है या हमारे स्वभाव में या हमारी बातचीत में या हमारे लिखने में, वो आपके उसी अनुभव से पैदा होता है जो आपने यहाँ रह करके उसको जाना, समझा और भूगा है। तो ये जो संबंध आपका जो बना है अपनी परंपरा से और जो अपनी सामाजिक परिस्थितियों से और जो अपने दृश्य से, जो अपने रंगों से, वो ही आपकी एक स्थायी स्मृति में अनकॉन्शियसली चित्र बनाते वक्त काम करते हैं। तो मुझे हमेशा ये लगता है कि भाई हमें बहुत जागरूक करके, एक अच्छा चित्रकार जो है वो बहुत कीन ऑब्जर्वर भी होता है, बहुत ध्यान से देखने वाला, वो एक एक चीज समझने वाला, मतलब अपनी तरह से उसको एब्जॉर्ब करने वाला होता है, और वो सारी चीजें अनकॉन्शियसली बाद में आपके काम में दिखाई देती हैं। तो मुझे ये बहुत ही आश्चर्य हुआ था, मेरे जो प्रदर्शनियां हुई वो जापान से लेकर के कैलिफोर्निया तक, मतलब मेरे ख्याल से तमाम देशों में भी, और उसमें ऐसे भी हुआ कि जर्मनी में शो हुआ तो वहाँ भी पसंद किया गया, और जब फ्रांस में हुआ तो वहाँ भी पसंद किया।

0: और जब लंदन में हुआ तो, मगर ये तीनों देश ऐसे हैं कि अगर एक तरह के चित्र एक देश में पसंद है तो दूसरे देश में नहीं हो सकते हो।
1: जी जी जी।
0: क्योंकि उन लोगों के बीच में अपनी एक जो देखने समझने की फांक है वो बहुत बड़ी है, तो ये नहीं हो सकता कि जो जर्मनी में पसंद किया जा रहा है वो फ्रांस और लंदन में भी पसंद हो, या जो लंदन में पसंद किया जा रहा है वो जर्मन लोग भी पसंद करें। तो मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है,
1: जी,
0: क्योंकि
1: जी।
0: जर्मन आदमी भी मनुष्य हैं और बाकी लोग भी जो देख रहे हैं वो सारे मनुष्य हैं, क्योंकि मेरे चित्र कोई गाय बैल जानवर तो देखते नहीं है। तो फिर धीरे धीरे मेरे को ऐसा लगा कि ऐसा कोई फॉर्म नहीं है मेरे इसमें जो कॉमन फॉर्म है, ऐसे कोई लाइन नहीं है जो कॉमन लाइन है, मगर रंग एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति को आकर्षित करते हैं, तो वो शायद रंग ही है जो मनुष्य को संबोधित है। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही एनलाइटनिंग चीज थी कि मैं उसके साथ अपने चित्रों को भी समझ पाया कि मेरे चित्र में ऐसी कोई ये बात है जो एक मनुष्य को संबोधित है, चाहे वो जैपनीज हो, चाहे वो मतलब जो चित्र न्यूयॉर्क में पसंद किए जाते हैं वो कैलिफोर्निया में बिल्कुल नहीं होते हैं।
1: जी जी।
0: और मेरे साथ ऐसा हुआ कि न्यूयॉर्क में भी उतना ही पसंद किया गया जितना कैलिफोर्निया में। तो ये जो चीजें होती हैं, मतलब इसी ने मुझे बाध्य करा कि मैं अपने चित्रों में उस एलिमेंट को समझने की कोशिश करूं जो एक अलग अलग संस्कृति और अलग अलग विचार और अलग अलग जीवन शैली को जीने वाले लोग पसंद कर रहे हैं।
1: जी जी। यहाँ पर आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनाएं?
0: मेरे ख्याल से हमें वो है जरा खफा खफा।
1: जी, सुनते हैं।

0: इस गाने के बाद हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपके लिए माना जाता है कि आपने पेंटिंग की एक नई परिभाषा गढ़ी है, एक परंपरा को नए सिरे से परिभाषित किया है, तो ये किस तरह से किया है, क्या प्रयोग किए हैं आपने?
1: हम मेरे ख्याल से जो कलाएं हैं, सभी कलाएं जो हैं भविष्योन्मुखी हैं और वो अपनी परंपरा से कुछ लेती हैं और उसको पुनर्परिभाषित कर देती हैं। तो ये जो एक सतत उसका अपना स्वभाव है जो चलता रहता है, हमारी कलाएं जो हैं अतीत में नहीं झांकती हैं, वो अतीत से जो कुछ भी लेना होता है वो ले लेती हैं और अपने भविष्य में अपने विचरण जारी रखती हैं। तो ये जो उनका स्वभाव है कलाओं का, वो अपने आप ही उसको इस तरह का बना देता है जिसमें आप अपनी परंपराओं से बहुत सारी चीजें सीखते समझते और बरतते हैं और उनका एक नया रूप सामने आता है, वो पुनर्परिभाषित होकर के नए ढंग से आपके सामने आती हैं। तो ये एक संबंध जो है उसका अटूट संबंध है और इसीलिए कलाएं जो है हमेशा नई और आकर्षित करने वाली होती हैं।
0: जी, और हमारे उन श्रोताओं के लिए बताइए कि जो सीख रहे हैं, जो पेंटिंग की आपकी बारीकियां हैं, किन बारीकियों का ध्यान रखते हैं? जैसे बहुत सारी बातें हैं जो सीखते हैं, तो किस तरह का पेपर, ब्रश और रंग का मिलान कैसे करें वो सब?
1: ये जो है इसमें बहुत सारी चीजें तकनीकी रूप से भी ऑपरेट होती हैं और मेरे ख्याल से कोई भी चित्रकार अगर एक अच्छा चित्रकार है तो वो पहले तकनीक को अच्छे से जानता समझता है और फिर उसको बरतता है। तकनीक का गुलाम नहीं होता है, तकनीक उसकी गुलाम होती है।
0: जी जी।
1: तो चाहे हम वाटर कलर करें, चाहे हम पेस्टल कलर करें, चाहे एक्रेलिक, चाहे ऑयल, इन सब के करने का जो ढंग है वो अलग होगा। तो उसको जानना समझना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से हर युवा चित्रकार के लिए ये जो पीरियड होता है अपना कॉलेज का समय, उसका 4 साल का 5 साल का, वो इन सब तकनीकों को सिखाने के लिए एक लंबा समय होता है और वो उस वक्त उसको पूरे तन मन धन से ये काम करना चाहिए कि वो अपने को एक विद्यार्थी की तरह बरते। अभी मैं देखता हूँ कि विद्यालय में जाते से ही वो अपने को आर्टिस्ट की तरह बरतने लगते हैं, जो कि एक गलत रास्ता है। आप हमेशा विद्यार्थी रहेंगे तो आप ज्यादा सीख सकेंगे और मुझे ये भी लगता है कि एक चित्रकार जीवन भर एक विद्यार्थी ही बना रहता है, वो लगातार सीखता ही रहता है, दूसरों के चित्रों से भी सीखता है, अपने चित्रों से भी सीखता है।
0: ये कहा जाता है कि एक चित्रकार के लिए ये जरूरी है जानना कि कौन कौन से रंग को मिलाए तो अगला रंग बनता है, जैसे आपने बातचीत के दौरान बताया।
1: हाँ,
0: ये भी थोड़ा सा बताया।
1: ये बहुत ही जरूरी होता है कि है ना, आप रंगों के मेल मिलाप से भी एक नया रंग बनाना सीखते हैं और आप रंगों को पास पास रख कर के भी एक नया रंग का अनुभव पैदा करने में सक्षम होते हैं। ये दोनों चीजें आपको लगातार काम करने से ही आती है। रजा साहब अच्छी बात कहते थे कि चित्रकला वो मुश्किल प्रेमिका है, वो उसके पास चली जाएगी अगर आप 4 घंटे दे रहे हैं तो 6 घंटे वाले के पास चली जाएगी। तो जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं और फिर उसने अपने अनुभव से उसको बरत सकते हैं।
0: एक चित्र को बनाने में कितना वक्त लगता है ये बताएंगे?
1: इसमें दोनों तरह की चीज होती है। कई बार चित्र जो है खुद भी इतने जिद्दी होते हैं कि वो पूरा होने में 3 महीने 4 महीने लगा सकते हैं और कई बार काम शुरू होते से ही आप उसमें इतना रम जाते हैं कि उसी दिन वो चित्र पूरा होता है। ये एक तरह की परिस्थिति पे भी निर्भर करता है कि कब आप किस मूड में किस तरह से उस काम को शुरू किए हैं और फिर इसमें यात्राएं भी बीच बीच में बहुत सारे व्यवधान पैदा करती है। तो एक चित्र आपने बनाया तो चित्र बनाना हमेशा स्थगन का काम है, आप हमेशा अपने विचारों को रोक देते हैं वहां जहां आपने चित्र छोड़ा है। विचार बहुत तेजी से भागते हैं तो आप अगर उनका पीछा करने लगते हैं तो शायद चित्र बिगड़ सकता है, मगर आप रोक कर रखते हैं अपने को, अगले दिन आते हैं फिर वहीं से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद अगले दिन आते हैं तब भी वहीं से शुरू करते हैं जहाँ छोड़ा था। तो ये जो एक मुश्किल प्रक्रिया भी है जिसमें आप अपने को रोक के रखते हैं, भले ही विचार आपके उससे आगे जा रहे हो मगर आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते
0: और वापस उस चित्र में उस यात्रा में वापस लौटना भी मुश्किल होता है।
1: वो
0: जी, इस पूरी बातचीत में अखिलेश जी आपने बड़ी ही काम की बातें और बड़ी ही प्रयोगशील बातें

0: बताई हैं, और इतनी सारी जानकारी के लिए, इतनी दिलचस्प बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विविध भारती परिवार की ओर से नमस्कार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के मेहमान। इसके अंतर्गत हमने सुनी मशहूर चित्रकार अखिलेश वर्मा से ममता सिंह की बातचीत। जाते जाते आपको बता दें, इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग काजल भदरगे, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
3: आज के

अभी आप विविध भारती के कार्यक्रम सुन रहे थे। FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा, लेकिन उससे पहले एक गुमशुदा सूचना। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 18 जून 2026 को एक नाम पता नामालूम नौजवान, जिसकी उम्र करीब 35 साल है, कांडा चौक पर गोल बैंक के पास गिरा होने के कारण अस्पताल में उसको दाखिल कराया गया, जिसकी 23 जून 2026 को इलाज के दौरान LNJP अस्पताल में मृत्यु हो गई। जो नाम पता नामालूम नौजवान की नाश शिनाख्त के लिए 72 घंटे के लिए LNJP अस्पताल के मोर्चरी में रखी गई है, जिसका हुलिया इस प्रकार है। रंग सांवला, गोल चेहरा, कद 5 फुट, उम्र लगभग 35 साल, सफेद कुर्ता डाले हुए है, नीचे डायपर लगा हुआ है, दाएं हाथ पर राजा रानी और प्रमोद शिवा गुदा हुआ है और बाएं हाथ पर ओम गुदा हुआ है। इनके बारे में किसी को अगर सूचना कोई प्राप्त हो तो कृपया इन फोन नंबर पर सूचित करें 7056700123। इसके अतिरिक्त 7056700124। सूचना समाप्त हुई।

गीता संदेश आप सुनेंगे शाम 6:20 पर। इसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे गीता के 6 अध्याय के श्लोक 45 से 47 तक की व्याख्या। प्रस्तुति रहेगी डॉक्टर अशोक कुमार मिश्र की। शाम 7 बजे आप सुनेंगे स्थापना दिवस पर विशेष कार्यक्रम।

रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे हमारे कार्यक्रम चांदनी रातें। इस कार्यक्रम में हम आपको वो सभी गीत सुनवाएंगे जिनकी फरमाइश आपने हम तक लिखकर भेजी है व्हाट्सएप संदेशों के माध्यम से।

हम आपको फिर से याद दिला दें कि शाम 7 बजे आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के स्थापना दिवस पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। और अब से कुछ ही देर बाद यानी शाम 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गाने नए पुराने। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। FM 101.4 MHz पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गाने नए पुराने। श्रोताओं, कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म नया दौर का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाने नए पुराने FM 101.4 MHz पर, यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी।

कार्यक्रम युवाणी लेकर हाजिर हूँ मैं आप सबका दोस्त पुरुषोत्तम कुमार। और आज के इस कार्यक्रम में हम अब चर्चा करेंगे कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस विषय पर। प्रतिवर्ष 24 जून को ये मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2022 में अपने 76वें सत्र के दौरान एक प्रस्ताव पारित किया और इस दिवस की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक कूटनीति में महिलाओं के योगदान का सम्मान करना और निर्णय लेने के सभी स्तरों पर उनकी समान भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। इसके जो उद्देश्य हैं, ये दिवस राजनयिक भूमिकाओं में महिलाओं की उपलब्धियों को स्वीकार करने और सराहने का अवसर प्रदान करता है। इसका लक्ष्य कूटनीति में महिलाओं के सामने आने वाली संरचनात्मक बाधाओं, लैंगिक रूढ़िवादिता और कम प्रतिनिधित्व को दूर करना है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार शांति निर्माण और सतत विकास लक्ष्यों, विशेषकर लैंगिक समानता को प्राप्त करने के लिए कूटनीति में महिलाओं की समान भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। इसके अनुसार अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक रूप से कूटनीति में पुरुषों का वर्चस्व रहा है, लेकिन स्थिति में सुधार का प्रयास जारी है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में कैबिनेट मंत्रियों का केवल 22.9% हिस्सा ही महिलाएं हैं। लगभग 25 देशों में महिला राष्ट्राध्यक्ष और सरकार प्रमुख के रूप में ये कार्यरत हैं और संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधियों में महिलाओं की भागीदारी लगभग 21% है। यह दिन सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करता है कि महिलाओं को वैश्विक मुद्दों और शांति प्रक्रियाओं को आकार देने वाले निर्णय में समान रूप से भाग लेने के अवसर प्रदान किए जाएं। अब आइए कार्यक्रम को हम बढ़ाते हैं आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।

0: मैं विश्राम कुमार मीना, उपायुक्त कुरुक्षेत्र, सभी कुरुक्षेत्र वासियों को आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के 35वें स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आकाशवाणी और हम लोगों का जुड़ाव ऐसे ही रहे, घर घर न्यूज़ पहुंचे, घर घर अलग अलग तरह की गवर्नमेंट की स्कीमें पहुंचे और हम उससे लाभान्वित हों, और ऐसे ही आप लोगों का सहयोग आकाशवाणी के साथ बना रहे।
1: मेरे प्यारे कुरुक्षेत्र वासियों,

आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के 35 वर्ष पूर्ण होने पर मैं समस्त श्रोताओं, कलाकारों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पिछले 35 वर्षों से आकाशवाणी कुरुक्षेत्र ने समाचार, संस्कृति और लोक परंपराओं को जन जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। आकाशवाणी कुरुक्षेत्र ने जनमानस के मनोरंजन के साथ साथ हरियाणा की संस्कृति, लोक भाषा और कुरुक्षेत्र की आध्यात्मिक विरासत को सहेजने का सराहनीय कार्य किया है। मुझे विश्वास है कि यह संस्थान आने वाले वर्षों में भी आधुनिक तकनीक के साथ आगे बढ़ते हुए जन जागरूकता का यह अभियान निरंतर जारी रखेगा। एक बार फिर आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के 35 सफल वर्षों पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।

श्रोताओ, अब कार्यक्रम की अगली चर्चा है। आज है 24 जून और आज है भारत की चौथे राष्ट्रपति और महान स्वतंत्रता सेनानी वीवी गिरी, वराहगिरी वेंकट गिरी, उनकी पुण्यतिथि। हर साल जो 24 जून को मनाई जाती है, इस दिन श्रमिक कल्याण और राष्ट्र निर्माण के में उनके योगदान को याद कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। उनका जन्म 10 अगस्त 1894 को ब्रह्मपुर ओडिशा में हुआ था। वे भारत के तीसरे राष्ट्रपति और चौथे राष्ट्रपति रहे 1969 से 1974 तक। वे भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति भी थे। उनको उनकी सेवाओं के लिए सन 1975 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनको श्रमिक नेता के रूप में भी याद किया जाता है। उनको मुख्य रूप से श्रमिकों, मजदूर संघों, ट्रेड यूनियंस के अधिकारों के प्रबल समर्थक के रूप में जाना जाता है। अब आइए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे, सुनते हैं ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर, यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। अब आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम।

को नमस्कार। और अगर मैं सीधा ही बात करूं NILM विश्वविद्यालय की, उससे पहले मैं उस भूमि की बात करूंगी जिस भूमि पर यह विश्वविद्यालय स्थित है। कैथल यह सिर्फ एक शहर का नाम नहीं है, यहाँ हजारों साल पुराने इतिहास का एक जीता जागता प्रमाण भी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह वही पावन भूमि मानी जाती है जहाँ महाबली हनुमान जी का जन्म हुआ, इसलिए इसे कपिस्थल कहा जाता था, जो समय के साथ कैथल बना। यानी जिस जमीन पर आप पढ़ने आते हैं वो जमीन खुद ताकत और भक्ति का प्रतीक है। कुरुक्षेत्र के पड़ोस में होने के कारण कैथल महाभारत पीरियड में एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक और कल्चरल सेंटर भी रहा। यहाँ की माटी में वीरता, धर्म और ज्ञान तीनों की विरासत एक साथ मिली हुई है। यहाँ के एंशियंट टेम्पल्स, ऐतिहासिक स्टेपवेल्स और हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स आज भी उस समृद्ध पास्ट की कहानी बड़े गर्व से सुनाते हैं। और आज इस गौरवशाली ऐतिहासिक धरती पर NILM विश्वविद्यालय खड़ी है, जहाँ एक तरफ हजारों साल का इतिहास है, वहीं दूसरी तरफ आने वाले हजारों साल का फ्यूचर शेप ले रहा है। कैथल की यह भूमि जो कभी महाभारत के वॉरियर्स की शौर्य स्थली थी, आज यंग माइंड्स के लिए एक नई जर्नी

0: स्टार्टिंग पॉइंट भी है। यहाँ हर स्टूडेंट एक नया वॉरियर है जो नॉलेज, स्किल्स और वैल्यूज होकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बैटल जीतने निकला है। देखिए, जब एक बीज जमीन को तोड़कर बाहर आता है तो वो सिर्फ एक पौधा नहीं बनता, वो एक बड़े सपने की शुरुआत होती है। और जब एक यंग माइंड एजुकेशन की राह चुनता है तो वो सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं बनता, वो एक फ्यूचर लीडर, एक प्रॉब्लम सॉल्वर, एक चेंज मेकर बनने की जर्नी शुरू करता है। एजुकेशन वो ताकत है जो आपकी ज़िंदगी बदल देती है, जो आपको वो बना देती है जो आप बनना चाहते थे। और इसी एजुकेशन की ताकत को जीवन में उतारने के लिए हरियाणा की जो पावन धरती है उसी कैथल शहर में NLM विश्वविद्यालय ने एक अपनी अमिट छाप छोड़ी है। NILM यानी नॉर्दर्न इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड लर्निंग इन मैनेजमेंट, एक ऐसा नाम जो अपने आप में ही एक पूरा विजन बयान करता है। नॉर्थ इंडिया की इस महान धरती पर इंटीग्रेटेड यानी संपूर्ण लर्निंग को, मैनेजमेंट यानी जीवन और करियर दोनों को बेहतर बनाने के लिए, यही है NILM का असली मतलब और हमारी पहचान। विद्यार्थी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हर बच्चा यूनिवर्सिटी में आने वाला यूनिवर्सिटी के लिए एक एसेट है, और उन्नति को ध्यान में रखते हुए NLM यूनिवर्सिटी में आपको हर कोर्स मिलेगा जो आप सोच सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा से लेकर PhD तक। बट यहाँ पर UGC और गवर्नमेंट बॉडीज़ की गाइडलाइन के हिसाब से ही आपको हर कोर्स अप टू मार्क करिकुलम फ्रेमवर्क के अंडर UG एंड PG एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 उसको फॉलो करते हुए काउंसिल कोर्सेज के अप्रूवल्स के साथ, वेदर इट इज़ फ्रॉम बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वेदर इट इज़ फ्रॉम फार्मास्यूटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, वेदर इट इज़ ऑफ AICTE, सो इन सारे कोर्सेज और काउंसिल्स अप्रूवल्स के साथ ही आपको यहाँ पर करिकुलम के साथ अंडर ग्रेजुएट और PG के कोर्सेज अवेलेबल मिलेंगे। देखिए, अगर हम अप्रूवल्स की बात करते हैं तो NILM यूनिवर्सिटी UGC के पोर्टल पर अवेलेबल है। अगर किसी को किसी तरह का संशय है अबाउट द अप्रूवल ऑफ द यूनिवर्सिटी तो वहाँ जाकर आप NILM यूनिवर्सिटी के अप्रूवल को चेक कर सकते हैं। इट इज़ ड्यूली अप्रूव्ड बाय द UGC।
1: एक अच्छी और बेहतर शिक्षा के लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना ज़रूरी है, तो आप हमें NIILM विश्वविद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताएं।
0: देखिए, एक अच्छी एजुकेशन के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है, और NILM में आपको वो सब मिलेगा जो एक टॉप यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। जब हम बात करते हैं वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो हमारे इंस्टेंटली जो विजन आता है हमें स्मार्ट क्लासरूम्स का, विद डिजिटल बोर्ड्स, प्रोजेक्टर्स, इंटरेक्टिव लर्निंग टूल्स, ताकि पढ़ाई बोरिंग ना लगे बल्कि एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग बने। और यही मोटिव के साथ NILM विश्वविद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया गया है। एडवांस्ड लेबोरेटरीज जहाँ पर आप सिर्फ थ्योरी ही नहीं पढ़ते, आप खुद एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, मिस्टेक्स हैं उनसे सीखते भी हैं, रियल स्किल्स डेवलप करते हैं। इंजीनियरिंग लैब्स हैं, फार्मेसी लैब्स हैं, ये सभी स्टेट ऑफ द आर्ट हैं जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास बनाते हैं। सेंट्रल लाइब्रेरी में लाखों में किताबें हैं, और ऑनलाइन ई रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जर्नल्स अवेलेबल हैं ताकि 24/7 बच्चा कुछ भी पढ़ सके। रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर है जहां अगर हम बात करें तो नए नए आइडियाज़ वहां पर जन्म लेते हैं। अगर आपके माइंड में कोई आइडिया है तो वहां पर उसे शेप भी मिलती है। एक बच्चा अपने तरीके से जो है अपने इनोवेशन को, अपने आइडियाज़ को अपने करिकुलम के अकॉर्डिंग किस तरीके से जनरेट करके उसको और इंटरेस्टिंग बना सकता है, वैल्यूएबल बना सकता है, जो कि आज इंडस्ट्री की अप्रोच है, और उसी इंडस्ट्री मार्केट के लिए स्टूडेंट को तैयार करना NILM का उद्देश्य है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है। हॉस्टल फैसिलिटीज़ की बात करें हम तो सेफ, कंफर्टेबल, क्लीन एनवायरनमेंट है। बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल्स हैं, यहाँ तक कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो हमारे, उनके लिए भी हमने अलग से हॉस्टल्स जो है स्टूडियो अपार्टमेंट्स बनाए हैं जो उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को और कंफर्टेबिलिटी को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए हैं। कैफेटेरिया है, बंक स्पॉट के नाम से NILM विश्वविद्यालय में कैफेटेरिया है जिसमें हेल्दी और टेस्टी फूड इज़ अवेलेबल एवरी टाइम, एंड इवन मेडिकल सपोर्ट 24/7 ऑल्सो अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स, एंड बिकॉज इंस्टीट्यूट इज ऑल्सो बिलीविंग इन हेल्थ इज द अपर मोस्ट प्रायोरिटी। तो पूरा कैंपस वाईफाई इनेबल्ड है हमारा, इको फ्रेंडली है, कम्प्लीटली सेफ है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है इंडोर एंड आउटडोर, दोनों

0: फैसिलिटीज़ यहाँ पर उपलब्ध हैं। और ये एक सिर्फ कैंपस ही नहीं है, स्टूडेंट के लिए अपना एक दूसरा घर भी है।
1: आपके विश्वविद्यालय का विजन और मिशन क्या है?
0: देखिए, अगर हम विजन और मिशन की बात करते हैं हमारी यूनिवर्सिटी की, NILM की, तो NILM सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं है, यह एक वादा है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो यह बिलीव करता है कि हर स्टूडेंट के अंदर कुछ स्पेशल है, बस उसे सही डायरेक्शन, सही एनवायरनमेंट और सही अपॉर्चुनिटी चाहिए। हमारा विजन है ऐसे ग्रेजुएट्स तैयार करना जो नॉलेज में शार्प हों और वैल्यूज़ में भी स्ट्रॉन्ग हो, अपने करियर में किसी से पीछे ना रहें, चाहे वो इंडिया में काम करें या वर्ल्ड के किसी भी कोने में। हमारा मिशन है क्वालिटी एजुकेशन को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करना, रिसर्च और इनोवेशन को कल्चर बनाना और हर स्टूडेंट को यह कॉन्फिडेंस देना कि कुछ भी अचीव करना इम्पॉसिबल नहीं है। यहाँ बुक से ज़्यादा थिंकिंग पे काम किया जा रहा है और मार्क्स से ज़्यादा कैरेक्टर पर दबाव डाला जा रहा है और डिग्री से ज़्यादा एक कम्प्लीट पर्सनैलिटी तैयार की जाती है। नेशन बिल्डिंग जो है वो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है NILM विश्वविद्यालय की, जिसमें आने वाले कल के लिए जो हम लीडर्स तैयार कर रहे हैं वो हमारे विजन और मिशन में प्लस साथ ही साथ स्किल्स के ऊपर भी अपनी स्किल ओरिएंटेड होते हुए इस तरह के स्टूडेंट्स जो हैं जब हम इंडस्ट्री को प्रोवाइड करें, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं कम्पीट कर पाएं ग्लोबली, तो NILM विश्वविद्यालय इसी तरह के विजन और मिशन पर काम कर।
1: विश्वविद्यालय में छात्रों को किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं?
0: अगर हम बात करें जो हमारे SC/ST स्टूडेंट्स हैं और उनके लिए हमारी यूनिवर्सिटी में SC/ST स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है, यहाँ तक कि बच्चों की फैसिलिटी के लिए हमारी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जो आसपास के गांव से, आसपास के शहरों से अंडर द रेडियस ऑफ 100 किलोमीटर जो है स्टूडेंट्स के लिए बस फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। साथ ही साथ इवन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। कैंपस टोटली इको फ्रेंडली है, साथ ही इंडोर आउटडोर गेम्स अवेलेबल हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। वेल इक्विप्ड लैब हैं और आई थिंक अभी हम जिस लैब में बैठे हैं वो मीडिया लैब है और आप देख पा रहे हैं कि वो टोटली इक्विप्ड है सभी टूल्स के साथ।
1: डॉक्टर एकता चहल, आपने NILM विश्वविद्यालय के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। उम्मीद करते हैं हमारे श्रोताओं को इस जानकारी से बहुत लाभ मिलेगा।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NIIIM यूनिवर्सिटी, आपके सपने हमारा लक्ष्य। FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। शाम के 6 बजे आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। शाम 6:05 पर आकाशवाणी दिल्ली से ही अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे और उसके पश्चात प्रादेशिक समाचार आप सुन पाएंगे आकाशवाणी रोहतक से शाम 6:10 पर। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गई। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार के बावजूद भारतीय नागरिकों को जारी नए परामर्श में अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने को कहा है। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जैमिसिन ग्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत त्रिपुरा में 96 सड़क परियोजनाओं के निर्माण के लिए 211 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। इस परियोजना से राज्य में 160 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण होगा। इन परियोजनाओं से राज्य की 96 बस्तियों को पहली बार हर मौसम में सुगम सड़क संपर्क प्राप्त होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया है कि ये कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार की जा रही है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को अधिक सुरक्षित, सुगम और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाना है। प्रवर्तन निदेशालय ने बेंगलुरु और मुंबई में राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड से जुड़े 9 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई कल शुरू की गई। ये जांच राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के कथित उल्लंघन के मामले में की जा रही है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारा तला में आज निर्माणाधीन गोदाम ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। घायलों का SSKM अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए दुर्घटना स्थल पर हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, पुलिस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं तथा स्थानीय लोग बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। इसके साथ ही ये समाचार

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री से जुड़े कथित वायरल वीडियो प्रकरण फर्जी रिपोर्ट मामले में कार्रवाई होगी। राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने फर्जी रिपोर्ट से संबंधित पूरे मामले में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच की मांग की। हरियाणा सरकार ने कहा, क्लर्क के पद पर सभी नियमित नियुक्तियां मानव संसाधन विभाग द्वारा की जाएंगी। हरियाणा डाक परिमंडल द्वारा चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में एन जनरेशन थीम पर आधारित आधुनिक डाकघर का उद्घाटन किया गया और अंबाला दूरसंचार सर्कल के प्रधान महाप्रबंधक कृष्ण बिहारी मीणा ने ग्रामीण युवाओं से भारत नेट उद्यमी योजना से जुड़कर आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री से जुड़े कथित वीडियो प्रकरण से संबंधित फर्जी रिपोर्ट मामले में कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने आज पटियाला के रोड़ेवाल स्थित गुरुद्वारा साहिब में संत बलवंत सिंह जी की बरसी पर आयोजित समागम को संबोधित कर रहे थे। गुरुद्वारा साहिब में नतमस्तक होने के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया।
1: गुरुआ ने जिन्हां नूं सानूं मान बख्शे वो साडे सिर दे ताज ने। मैं ओहदे उपर इस ते वड्डी और कोई गल नहीं कहना चाहना, क्योंकि साडे ताज ने जिन्हां ने पूरे परिवारां ने अपने धर्म और समाज की रक्षा लई कुर्बानियां दी। ये बड़ी गल है, साडे इक लिए नहीं है, ये सारी मानव जात के लिए कि हमनूं बड़े पद्धर ते सोचने की गल।
0: उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और पूरे प्रकरण की गहन जांच कराई जा रही है। प्रारंभिक जानकारी में हरियाणा की एक प्रयोगशाला का नाम सामने आया है, जिसके आधार पर कथित रिपोर्ट तैयार होने की बात कही जा रही है।
1: देखिए, मैंने रात जानकारी लिखी है कि किसी ने एप्लीकेशन दिखती थी कि आपके इतने यहाँ पर कोई लेबोरेटरी थे रिपोर्ट आई है और वो गलत है, तो पूरी जानकारी ली। जानकारी बीच तथ्य सामने आए से दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार का जेड़ा हुआ है अपनी कमी छुपाने लगे, तो दुर्भाग्यपूर्ण।
0: जांच के माध्यम से यह पता लगाया जा रहा है कि इसके पीछे कौन लोग हैं और इसका उद्देश्य क्या था। दोषी पाए जाने वाले के खिलाफ नियम अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी इतनी निम्न स्तर की राजनीति नहीं करती कि गुरुओं के नाम पर लोगों की आस्था, विश्वास और भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि भाजपा गुरु परम्परा का सम्मान करने वाली पार्टी है। राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े कथित वायरल वीडियो प्रकरण तथा उससे संबंधित सामने आए गंभीर आरोपों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूरे मामले की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच की मांग की है। चंडीगढ़ स्थित विधायक दल कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सुश्री रेखा शर्मा ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक और पंजाब का युवा चिट्टे और अन्य नशों की भयावह समस्या से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर राज्य की सर्वोच्च धार्मिक संस्थाओं की गरिमा को लेकर विवाद उत्पन्न किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया रिपोर्टों में सामने आए तथ्यों और शिकायतकर्ता जसप्रीत सिंह द्वारा सार्वजनिक रूप से लगाए गए आरोप अत्यंत गंभीर हैं। गौरतलब है कि गत 16 जून को गुरुग्राम स्थित एक होटल में लुधियाना के पुलिस आयुक्त स्वपन शर्मा तथा पुलिस अधीक्षक जशनदीप गिल कथित रूप से शिकायतकर्ता को मिले थे। सार्वजनिक रूप से सामने आए दावों के अनुसार इस का उद्देश्य मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े विवादित वीडियो को लेकर एक अनुकूल फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार करवाना था। मीडिया रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि बैठक के सीसीटीवी फुटेज मौजूद हैं तथा कथित व्हाट्सएप चैट्स भी सामने आई हैं, जिनमें रिपोर्ट के विभिन्न हिस्सों में बदलाव, निष्कर्षों को संशोधित करने तथा रिपोर्ट को विशेष दिशा देने संबंधी चर्चाएं दिखाई गई हैं। हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया है कि हरियाणा लिपिकीय भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम 2026 के लागू होने के बाद क्लर्क के पद पर सभी नियमित नियुक्तियां मानव संसाधन विभाग द्वारा की जाएंगी। इनमें सीधी भर्ती के माध्यम की जाने वाली नियुक्तियों के साथ साथ अनुकंपा आधार पर की जाने वाली नियुक्तियां भी शामिल होंगी। मुख्य

0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। हरियाणा डाक परिमंडल द्वारा चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आज एन जैन थीम पर आधारित नवीनीकृत डाकघर का उद्घाटन किया गया। मुख्य महा डाकपाल सचिन किशोर ने कहा कि यह डाक सेवाओं के आधुनिकीकरण तथा युवा पीढ़ी को डाक विभाग से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस डाकघर में बच्चों के लिए फ्री वाईफाई की सुविधा है। स्पीड पोस्ट में उन्हें 10% की छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पहल की शुरुआत की थी। आज यह आधुनिकीकृत डाकघर कृषि विश्वविद्यालय में जनरेशन एन को समर्पित किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलदेव राज कंबोज ने कहा कि समय के साथ आए बदलाव को भारतीय डाक विभाग ने भी अपनाया है। आज डाकघर द्वारा पासपोर्ट सेवा से लेकर ई पुस्तकालय, मुफ्त वाईफाई व कैफे जैसी अनेक सुविधाएं दी जा रही हैं।
1: माननीय मंत्री जी का जो सपना है अपनी युवा पीढ़ी को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ते हुए यहाँ पे डिजिटलाइजेशन और जितनी भी सेवाएं हैं वो सभी को दे सके, और इसकी शुरुआत जो है वो विश्वविद्यालयों से स्कूलों से की गई है। भारत सरकार का प्रयास है कि 500 से अधिक इस प्रकार के आधुनिकृत और सुधारीकृत डाकघर जो है वो पूरे देश में बनाए जाएंगे।
0: अम्बाला दूरसंचार सर्कल के प्रधान महाप्रबंधक कृष्ण बिहारी मीणा ने ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं से भारत नेट उद्यमी योजना से जुड़कर आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया है। प्रधान महाप्रबंधक ने कहा कि भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने तथा युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत नेट उद्यमी योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भारत नेट उद्यमी ग्रामीण क्षेत्रों में BSNL सेवाएं उपलब्ध कराने वाले एजेंट के तौर पर काम करते हैं।
2: भारत नेट उद्यमी हमारे बेसिकली ग्रामीण क्षेत्र में सर्विसेज देने वाले एजेंट होंगे, और ये लोग जब हमसे 4B एग्रीमेंट के साथ जुड़ते हैं तो 50% इनको कमीशन दिया जाएगा। और इस स्कीम से अभी भी हमारे बहुत से उद्यमी 2 से 2.5 लाख का जो है कमीशन उठा रहे हैं। तो मेरा सभी नवयुवकों से अनुरोध रहेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा इसके साथ जुड़े और एक आत्मनिर्भर भारत के तहत वो अपना स्वरोजगार स्थापित करके आत्मनिर्भर बने।
0: उन्होंने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच मौजूद डिजिटल अंतर को कम करना है। भारत संचार निगम लिमिटेड ने ग्रामीण उपभोक्ताओं को सस्ती एवं बेहतर इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नया ब्रॉडबैंड प्लान शुरू किया है। इस योजना के तहत मात्र 259 रूपये प्रतिमाह में 25 MBPS की हाई स्पीड इंटरनेट सेवा तथा 700 GB डेटा उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को एक OTT सेवा भी निःशुल्क प्रदान की जाएगी। यह जानकारी देते हुए अम्बाला दूरसंचार सर्कल के प्रधान महाप्रबंधक कृष्ण बिहारी मीणा ने कहा कि यह प्लान विशेष रूप से ऑनलाइन शिक्षा, वर्क फ्रॉम होम, डिजिटल भुगतान, वीडियो स्ट्रीमिंग तथा अन्य ऑनलाइन सेवाओं की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। सरकार समर्थित इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी और नागरिकों को बेहतर इंटरनेट सेवाएं प्राप्त होंगी। हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम वाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा पंजाब के मुख्यमंत्री से जुड़े कथित वायरल वीडियो प्रकरण फर्जी रिपोर्ट मामले में कार्रवाई होगी। राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने फर्जी रिपोर्ट से संबंधित पूरे मामले में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच की मांग की। हरियाणा सरकार ने कहा क्लर्क के पद पर सभी नियमित नियुक्तियां मानव संसाधन विभाग द्वारा की जाएंगी। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए सुनते हैं गीता संदेश।

श्रोताओं नमस्कार। गीता संदेश कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता के छठें अध्याय के श्लोक संख्या 45 से आगे के श्लोकों की व्याख्या। ऐसे योगाभ्यासी योगभ्रष्ट की परम गति प्राप्ति का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्विषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परांगतिम। भगवान वासुदेव अर्जुन से कहते हैं, परंतु अनेक जन्मों की साधना से अंतःकरण शुद्धि रूप संसिद्धि को पाया हुआ तथा इस जन्म में प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी समस्त पापों से अच्छी तरह से शुद्ध हो जाता है, उसके पश्चात परम गति को प्राप्त हो जाता है। यहाँ बता रहे हैं कि परम सिद्धि एक जन्म की साधना के फलस्वरूप नहीं मिल जाती है, उसके लिए कई जन्मों तक साधना करनी पड़ती है। हर अगला जन्म पिछले जन्म के साधना संस्कारों को तभी आगे बढ़ाता है जब उसे अगले जन्म में भी प्रयत्नपूर्वक अभ्यास किया जाए। मात्र पूर्वाभ्यास पर अपने को नहीं छोड़ देना चाहिए। पूर्वाभ्यास तो मनुष्य को रुचि प्रवृत्ति मात्र देता है, यदि स्वयं प्रयत्न न किया जाए तो धीरे धीरे वह प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। हम जन्म पर जन्म साधना के संस्कारों के कोष को बढ़ाते रहते हैं और एक जन्म ऐसा आता है जब हमारा सारा समय योगाभ्यास में ही बीतता है, पर अपनी किसी भूल या दोष के कारण अंत में लक्ष्य से च्युत हो जाता है। यही योग भ्रष्ट की अवस्था है। अगले जन्म में हम अपने समस्त पूर्व योगाभ्यास के संस्कारों को लेकर नवीन उत्साह से प्रयत्नपूर्वक अभ्यास में लग जाते हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि प्रयत्नात् यत्मानः की टीका करते हुए श्रीधर स्वामी लिखते हैं, उत्तरोत्तरम अधिकम योगे यत्नं कुर्वन्, अर्थात योगासन उत्तरोत्तर अधिक प्रयत्न करते हुए फलस्वरूप हमारे चित्त की समस्त अशुद्धि धुल जाती है और हम परम गति को, परम पद को, परम धाम को, नैष्ठ की शांति को, परब्रह्म परमात्मा को, योग के लक्ष्य को, जीवन के उद्देश्य को, परम सत्य को प्राप्त हो जाते हैं। इतना सब बतलाने से के पश्चात अब भगवान इस योग की महिमा का वर्णन करते हैं। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्योपि मतोधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। शब्दों का अर्थ है, योगी तपस्विभ्यः तपस्वियों से अधिकः श्रेष्ठ है, ज्ञानिभ्यः ज्ञानियों से अपि भी अधिकः श्रेष्ठ मतः माना गया है, चा और कर्मिभ्यः कर्मियों से योगी अधिकः श्रेष्ठ है, तस्मात् इसलिए अर्जुन तुम योगी हो। भगवान श्री वासुदेव अर्जुन से कहते हैं, बुद्धि के समत्व को प्राप्त हुआ योगी तपस्वियों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। फिर शास्त्र का सैद्धांतिक ज्ञान रखने वाला परोक्ष ज्ञानियों से भी वह श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वाले वैदिक स्मार्त तंत्र मतानुयायी कर्मियों से भी ऐसा योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन तुम योगी बनो। तपस्वियों में तप का अहंकार होता है और शास्त्र ज्ञानियों में अपने पांडित्य का अहंकार होता है। यहाँ पर ज्ञानी का अर्थ वह व्यक्ति है जो सैद्धांतिक अर्थात वाचिक शास्त्र ज्ञान का अभ्यास करता है और फलस्वरूप पांडित्य के अभिमान से पीड़ित होता है। जो यथार्थ का तत्वज्ञानी है उसकी चर्चा ही यहाँ नहीं है। वैसे ही कर्मी से सकाम कर्मियों का बोध होता है। इस समत्व योग की साधना में न तप के अहंकार का डर है न पांडित्य के अभिमान का। यस प्रतिष्ठा रूप फल वासना भी न होने के कारण यह समत्व साधना यज्ञ यागादि सकाम कर्मों से भी बढ़कर है। यदि व्यक्ति को बुद्धि की क्षमता प्राप्त हो जाती है जहाँ जीवन के सुख दुख उसे प्रभावित नहीं कर पाते तो वह सर्वोच्च स्थिति है। भगवान कृष्ण इसीलिए अर्जुन से कहते हैं कि तू योगी हो, तस्माद् योगी भवार्जुन। योग शब्द का अर्थ हमने स्थान स्थान पर स्पष्ट किया ही है। यह कहा है कि जहाँ भी वह बिना किसी विशेषण के प्राप्त हो

आता है वहां उसका अर्थ कर्म योग है, जिसे समत्व रूप बुद्धि योग कहकर भी पुकारा गया है। यद्यपि यह छठा अध्याय ध्यान योग या आत्मसंयम योग के नाम से प्रसिद्ध है तथा यहां पर ध्यान योग की विशेष प्रवृत्तियां भी दर्शित हैं, फिर भी उसका तात्पर्य समत्व योग प्राप्त करने से है। ध्यान योग से चंचल चित्त स्थिर होता है और स्थिर चित्त ही समत्व योग का आधार है, अतः समत्व योग में मन का नियंत्रण बहुत आवश्यक है। उपसंहार करते हुए भगवान श्री कृष्ण अपनी दृष्टि से श्रेष्ठ योगी का लक्षण बता रहे हैं। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। शब्दों का अर्थ है सर्वेषां समस्त योगिनाम योगियों में अपि भी यह जो श्रद्धावान श्रद्धा संपन्न योगी मद्गतेन मुझ में लगे हुए अंतरात्मा अंतःकरण से माम मुझे भजते भजता है, सह वह मुझे में मुझे युक्त तमः परम श्रेष्ठ मतः माना गया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं समस्त योगियों में जो श्रद्धा संपन्न योगी मुझ में लगे हुए अंतःकरण से मुझे भजता है वह मुझे युक्ततम परम श्रेष्ठ मान्य है। परम तत्व की प्राप्ति के लिए गीता में कितने ही पथों का वर्णन हुआ है। चौथे अध्याय में 24वें से लेकर 30 श्लोक तक कई प्रकार के यज्ञ बतलाए गए हैं और 32वें श्लोक में यह कहा गया है कि ये सारे तथा अन्य जितने भी यज्ञ हैं वो कर्मज हैं। फिर 33वें श्लोक में यह बताया कि समस्त कर्मों का अवसान ज्ञान में होता है। तात्पर्य यह है कि इनमें से प्रत्येक यज्ञ योग की चरम स्थिति ज्ञान को ही पाने का एक रास्ता है। इस प्रकार हर यज्ञ अपने आप में योग का ही एक प्रकार है। अतएव इन पथों का अवलंबन करने वाले योगी हुए, इसी दृष्टि से भगवान यहाँ पर सर्वेषां योगिनाम ऐसा कहकर बहुवचन में योगी शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसे सब योगियों में उनकी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ योगी वह है जो भगवान के प्रति श्रद्धा संपन्न होकर उनमें अपने मन प्राणों को पूरी तरह से लगाकर उन्हें भजता है। यह भजन शब्द भज धातु से निकला है जिसका अर्थ होता है सेवा, तो भजन का अर्थ है सेवा। सामान्यतः भजन का अर्थ हम उपासना या नाम संकीर्तन आदि से करते हैं। वास्तव में भजन वह सेवा है जिससे सेव्य अर्थात हमारे आराध्य प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार श्रेष्ठतम योगी के तीन लक्षण यहाँ भगवान ने बताए। पहला है वह परमात्मा के प्रति श्रद्धा संपन्न होगा, बिना श्रद्धा के वह उनसे जुड़ नहीं पाएगा। संसार में भी हम जिनसे जुड़ते हैं उनकी पहली शर्त है उनके प्रति श्रद्धा संपन्न होना। फिर श्रद्धा गुणों की जानकारी के बाद पैदा होती है, इसी प्रकार भगवान के गुणों के चिंतन से उनके प्रति श्रद्धा जन्म लेती है, वह पहला लक्षण है। दूसरा है वह अपना मन और प्राण भगवान में समर्पित कर देता है, हम उसी में अपना मन प्राण लगाते हैं जो हमें अत्यंत प्रिय होता है। अतः श्रद्धा के बाद दूसरा सोपान है अनुराग, परमात्मा के प्रति तीव्र अनुराग का बोध होना। संसार में जिसके प्रति हमारा तीव्र अनुराग होता है उससे वियोग हमें सह्य नहीं होता है, हम सदैव उनके पास रहना चाहते हैं। इसी प्रकार भगवान के प्रति भी हमारा ऐसा ही आत्मीय बोध होना चाहिए। तीसरा है वह भगवान का भजन, उनकी सेवा करेगा, ऐसी चेष्टाएं करेगा जिससे परमपिता उसके परमाराध्य प्रसन्न हो। इन तीन लक्षणों से जो युक्त है वह भगवान की दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ योगी है। यहाँ पर माम कहकर भगवान अपने दिव्य पुरुषोत्तम स्वरूप का ही निर्देश कर रहे हैं। इस प्रकार यह छठा अध्याय समाप्त होता है। ऐसी बात प्रचलित है कि गीता के प्रथम 6 अध्यायों में कर्मयोग का, उसके बाद के 6 अध्यायों में भक्ति योग का और अंतिम 6 अध्यायों में ज्ञान योग का व्याख्यान हुआ है। यह भी माना जाता है कि महावाक्यों में महावाक्य का अभिप्राय है तत्त्वमसि, यह महावाक्य है। इस महावाक्य में 3 पद हैं, तत्त्वम असि वह तुम हो। इस महावाक्य में जो तुम है वह पहले 6 का व्याख्यान करता है, पहले 6 अध्याय तुम पद का व्याख्यान करते हैं, दूसरे 6 अध्याय नहीं पहले 6

0: छह अध्याय तत्पद का व्याख्यान करते हैं, उसके बाद के छह अध्याय तुम पद का व्याख्यान करते हैं यानी प्रतिपादन करते हैं, अंतिम छह अध्याय असी पद का व्याख्यान या प्रतिपादन करते हैं। कहने का अभिप्राय यह हुआ, गीता तत्त्वमसि महावाक्य से भी संदर्भित है। श्रोताओं, गीता संदेश कार्यक्रम में आज आपने श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय के श्लोक संख्या 45 से 47 अर्थात छठवें अध्याय की समाप्ति तक का व्याख्यान सुना।
1: अभी आप सुन रहे थे गीता संदेश, FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अन्नदाता।

कार्यक्रम अन्नदाता सुननीय सारे बाण भाइया ने चतुरू भाई की ओर तय राम राम। भाई आजकल के मौसम की अगर बात करें तो आजकल आप देखने लाग रहे हो कि किते किते तो धूल भरी आंधी जो है वो पूरा खखड़ उठ रहा है, और कई जगह तो ऐसा भी हो रहा है कि जो तापमान है वो शिखर न छून लाग रहा है। कहने का मतलब ये है कि मौसम जो है उसकी जो तपस है वो पूरे गात ने जुड़सान ला रही। ऐसे में फिर खेत क्यार का भी काम है, डंगर डोर का भी काम है, पशु पसेरे का भी काम है, गम गमीने भी जाना है, और फिर रही बात आगे फसल की, तो भाई धान की जो फसल है उसकी बुआई भी करनी है, खेत भी तैयार करना है, खेत में जो है फिर हमने ट्रैक्टर भी चलाना है, और ट्रैक्टर चला के फिर खेत में कद्दू भी करना है, ताकि हम जो धान की फसल है उसकी उससे अच्छा उत्पादन हम ले सकें। और भाई कई बार तो ऐसा भी एक प्रयोग जो है वो सफल होया है कि जो धान की सिद्धि बिजाई, और धान की जो सिद्धि बिजाई है उसमें हम बात करें कि जो हमारे कुछ जिले हैं उनके अंदर जो है अच्छी सफलता जो है हमने मिली है। और इसमें यह भी देखा गया कि बिजाई से पहले खेत को समतल होना जरूरी है, और इससे पानी की भी बचत होगी, और कई जगह जो पानी की समस्या कई जगह हो जाए, चोवा जैसे नीचे बैठ गया और फिर हमने दोबारा से वहाँ ट्यूबवेल का वो करा तो चोवा जो है वो ऊपर नहीं आया। तो और धान की फसल में हम सब जान रहे हैं कि पानी की अगर कमी होगी तो न्यू सोच लो कि उत्पादन की कमी होगी। दूसरा फिर जहां जमीन चिकनी है, भारी है, पानी में नमक की चास है, और वहां सूखी बिजाई

0: हम करें तो तुरंत जो है हमने पानी देना है। और जहां दोमट मिट्टी है, जैसे पंजाब के लागते हुए कुछ हिस्से हैं, जैसे गुलाची का है या इस उनका जो क्षेत्र है, वहां बदतर है, यानी कि पहले से ही थोड़ा पानी है। और बिजाई के तुरंत बाद जो है, जो सिफारिश की गई खरपतवार नाशक जो दवाई है उसका हमने प्रयोग करना है। और जरूरत पड़ने पे फिर 20 से 25 दिन के बाद दोबारा जो है हम उन खरपतवार नाशक जो दवाई है उनका इस्तेमाल कर सकें। ये हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो सिफारिश करें। इसके अलावा वो जरूरत पड़ने पे हम 2.5% यूरिया और 0.5% जिंक सल्फेट की दो स्प्रे भी अगर हम कर दें तो भी हम धान की जो सीधी बिजाई है उसको हम बहुत उससे हम अच्छा उत्पादन ले सकें। बीमारी और कीड़ों की बात आवे है तो उसमें जो सिफारिशशुदा जो किस्में हैं उनको अगर हम लगा लेंगे तो जो कीड़े हैं और बीमारियां हैं उनसे हम रोकथाम अपने फसल में कर लेंगे। फसल में कई बार जो है पत्तों के ऊपर भूरे धब्बे दिखाई पड़े हैं, उसके लिए हमने जो दवाई है जो कृषि वैज्ञानिक सिफारिश कर रहे हैं वो है मैंकोजैब। और मैंकोजैब जो है वो दवाई हमने 600 ग्राम जो है लेनी है और इसमें पानी जो है वही 250 से 200 लीटर पानी मिला के और अच्छी तरह घोलनी जरूर है। कई बार जब हम एक गोल मारे हैं और छोड़ दें हैं, कई बार दवाई जो है वो अच्छी तरह से घुल नहीं पाती, तो इसलिए हमने दवाई अच्छी तरह घोल कर एक एकड़ के लिए ये काफ़ी रहेगी। इसके अलावा वही धान की अब जब सीधी बिजाई में हमने जो बकानी बीमारी है उसमें ना के बराबर या बहुत कम अगर दिखाई दे है तो इसमें जो है यानी के बकानी में बालियों में जो पकते टाइम पे जो लकवा नाम की जो बीमारी है वो कई बार आ जाए, लेकिन हम अगर सीधी बिजाई करें हैं तो ये बीमारियां जो है उनमें नहीं आती। तो इस तरह से हम अपने जो धान की जो बिजाई है सीधी बिजाई है उसको अगर हम सही करेंगे तो उससे हमने काफ़ी फायदा भी मिल सके। और इसके अलावा हम अगर प्रमाणित बीज जिन भैया ने लगा लिया है, जिन्होंने नर्सरी लगा रखी है, तो भाई वो नर्सरी का भी ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपने नर्सरी सही ढंग से नहीं लगाई तो उत्पादन जो है उस पर भी असर पड़ेगा। इसलिए नर्सरी जब भी आप लगा रहे हैं जो आप जिन भैया ने लगा रखी है तो ख़ास तौर पर नर्सरी का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नर्सरी में थोड़ा भी उक चुक करोगे तो भी उत्पादन में कमी आ जाएगी। तो ये तो रही कुछ बातें जो धान की अगर हम सीधी बिजाई करें तो हमने कौन कौन सी सावधानियां हमने अपनानी। अब बात आवे है कि एक संदेश की, तो आइए सुनते हैं ये संदेश। और ये संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के माध्यम से आप
1: जलवायु साक्षरता निष्कर्ष यूनेस्को का एक संदेश। जलवायु परिवर्तन एक वास्तविकता है और इसे नज़रअंदाज करना इंसानों और धरती दोनों को खतरे में डालता है। तापमान तेजी से बढ़ रहा है, मौसम और पर्यावरण तेजी से बिगड़ रहे हैं। अब कुछ करने का समय आ गया है। असली बदलाव सिर्फ नीतियां बनाने वाले कमरों में नहीं बल्कि समुदायों, स्कूलों और घरों में भी शुरू होता है। यूनेस्को ने 10 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ मिलकर सबके लिए कई भाषाओं में जलवायु साक्षरता से जुड़ी सामग्री तैयार की है। जलवायु विज्ञान को समझना हमें कार्यवाही करने की शक्ति देता है। आप भी जलवायु की रक्षा करने में मदद कर सकते हैं। हमें सुनने के लिए धन्यवाद। आइए ज्ञान, एकता और आशा के साथ बेहतर भविष्य के लिए मिलकर काम करें। यह यूनेस्को का संदेश था। अधिक जानकारी के लिए

0: तो भाई ये तो सुना हमने संदेश, और मौसम की जानकारी लेकर आ रहे हैं मंजीत।
1: तो मौसम विभाग के अनुसार आज का जो अधिकतम तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान है 29 डिग्री सेल्सियस, और कल का अनुमानित तापमान है 38 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और न्यूनतम है 29 डिग्री सेल्सियस। तथा आज का और कल का मौसम की जानकारी।
0: और भैया अब कल के कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो कल वीरवार है, और कल हम अपने कार्यक्रम में आपके लिए लेकर आएंगे कि जो कीट प्रबंधन है, कीट प्रबंधन में सहायक कृषि क्रियाएं, और इसके साथ साथ हम बातचीत करेंगे धान की रुपाई में कौन कौन सी सावधानियां हमने बरतनी है, और इसके साथ साथ हम एक और जानकारी लेकर आएंगे आपके लिए भूमि का वृक्षारोपण द्वारा सुधार हम कैसे कर सकें। तो ये तो रहे कल के कार्यक्रम की बातचीत, और अब समय हो रहा है आपके मनोरंजन का। तो आइए सुनते हैं उमेश सिंह टिटोलिया और साथियों की आवाज़ में या रागनी।

दूध मलाई खा लेना। भाई याद आवे हैं जिन भैया ने दूध मलाई खा रखी है। और भाई आजकल के गाबरू जो है दूध मलाई ने के जाने, वे तो जानेंगे चाउमीन बर्गर और वो एक थोड़ी थोड़ी और हो अगर कि खैर खान पान जो है अपना आप ठीक रखो ताकि आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहे और शरीर भी ठीक रहे। अब बात कर लें कद्दू वर्गीय जो सब्जियां हैं उनमें जो मुख्य कीड़े और बीमारियां हैं उन पर नियंत्रण भी रखना जरूरी है, क्योंकि जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं उनमें लौकी है, कद्दू है, तुरई है, करेला, टिंडा, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा। और क्योंकि कद्दू वर्गीय जो सब्जियां हैं वो इन दिनों में काफ़ी गर्मी के कारण जो है कई बार बेल जो है वो मुरझा जाए,

लेकिन ज़्यादा नमी और तापमान के कारण जो है इनमें कीड़े और रोग वो ज़्यादा लगते हैं। घने सारे कीड़े और रोग जो हैं वो कद्दू वर्गीय सब्जियों में जो उत्पादन है उसको कम करते हैं। यानी कि हमने एक बेल तय मान लो कोई 20 किलो अगर तोरी उतरनी है तो कीड़े और बीमारियां लगा लोगों का उसमें कम से कम हमने 5 किलो मिले। तो इसलिए कीड़े और बीमारियों पर रोकथाम रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आय का जो साधन है वो हमारा खेत ही है और सब्जियों की जो बेलें हैं या फिर दूसरी फसलें हैं, तो इसलिए उनका हमने ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे जो कीट हैं, कीड़े हैं और लालड़ी जिसने हम कहते हैं वो कद्दू वर्गीय सब्जियों में मुख्य कीट है। और जब ये बड़ा हो जाए तो 12 मिलीमीटर जो है वो लंबा हो जाए, धोले रंग का हुआ है और एक आयताकार सी अपने एक कूप सी बनाकर 5 से 30 मिलीमीटर या लंबी हुआ है और इसके ऊपर जो है चमकीली नारंगी लाल रंग की जो है वो ऊपरली सतह है और निचली सतह जो है काले रंग की हुआ है और छोटे धोले धोले बाल भी हुए हैं। कई बार तो इसने हम कंबल भी कहते हैं, जो कि काफ़ी नुकसान जो है वो कद्दू वर्गीय सब्जियों में ये कीड़ा पहुँचा, लालड़ी जिसने हम कहते हैं, लाल रंग भी कहते हैं इसने। और ये जो कीड़ा है ख़ास तौर पे इन दिनों में काफ़ी नुकसान जो है पहुँचा है और नियंत्रण के लिए हमने जो उपाय करने हैं, एक तो फसल जब भी हम ले रहे हैं तो सबसे पहले जो टाइम पे फसल की बुआई करनी है और खरपतवार और फसल अवशेष अगर खेत में हैं तो दिक्कत घनी आ जाए, इसलिए साफ खेत हो और कोई पिछले बार की कोई घास फूस या फिर लकड़ी हमने जमा कर रखी है कि इकट्ठी कर रखी है तो वो ना करें, जिसके कारण जो है हमने जो कीड़े हैं उनमें जाके पनपेंगे और वो कीड़े जो है फसल को नुकसान पहुंचाएंगे। लालड़ी की लट से बचाव के लिए हमने 1.6 लीटर क्लोरोपाइरीफास 20 cc की ताकत वाली वह लेनी है और बिजाई के 1 महीने बाद सिंचाई के गिरले 25 मिलीलीटर साइप्रोमेथ्रियन 25 cc की ताकत वाली या 30 ml फेनवेल रेट 20 cc की ताकत वाली ये दवाइयां जो है वो बड़े कीड़े के लिए काफ़ी रहेगी। और इसमें दवाइयों में हमने जो पानी मिलाना है वो मिलाना है 100 लीटर और 100 लीटर पानी में हमने इनमें से कोई भी एक दवाई लेनी है वह मिलानी है। न्यू नहीं कि भाई हमने साइप्रोमेथ्रियन भी ले ली, क्लोरोपाइरीफास भी ले ली और फेनवेल रेट भी ले ली, तीनों ने घोल बना के उन्होंने बढ़िया तरिया इसका घोल बनाया ताकि कीड़ा जो है ना कीड़े की जड़ भी नहीं बचनी चाहिए, लेकिन ये गलत है। दवाई हमने एक ही इस्तेमाल करनी है चाहे आप कोई सी भी दवाई इस्तेमाल करें। फल की माखी है जिसने कुकर बीटा भी कहते बीटी भी कहते हैं, या जो है एक ये लट्टे पैर जो है उस दिखेंगे और धोली लट की लट जो है इसमें दिखेंगी और जब यह बड्डी हो जाए तो एक कीड़ा हा दिखेगा जो कि 9 से 10 मिलीमीटर लंबा हुआ है और बीच में 2 मिलीमीटर जो है चौड़ी हुआ है और बड्डी जो व्यस्क है वो मक्खी जो है वो लाल भूरी और उसकी छाती पर जो है पीले रंग के निशान पाऊंगा, बहुत ज़्यादा नुकसान करे है। ख़ास तौर पर जो खीरा है, खीरे की सब्जी में खीरे की जो फसल है उसके अंदर यह मक्खी काफ़ी नुकसान पहुँचावा है और फल की मक्खी जो है यह साल भर अपना काम करती रहे, लेकिन जब जड्डे का मौसम आवे है तो यह जो है अपना

जीवन जो है अपना उसमें बड़ा होना जो है वो विकसित होना जो है शुरू हो जाए, और जड़े के दौरान जो है यह फल की मक्खी जो है वो पेड़ पे और जो पत्तियां हैं उनके निचले भाग में रहे है, और जब मार्च का महीना आवे है तो ज़्यादा नमी होने के कारण जो है यह मक्खी जो है अपना काम शुरू कर दे। बेल वाली सब्जियों के साथ साथ यह टमाटर मिर्च अमरूद में ज़्यादा नुकसान पहुँचाओ, और फल की मक्खी जो है जो मैगेट जिसने हम कहते हैं कीड़ा जो है वो फलों के गुद्दे को खा के और फल को जो है बिल्कुल खराब कर दे। और इससे बचने के लिए हमने जो है फल की मक्खी के प्रकोप से बचने के लिए मेलाथियन जो 50 सीसी की ताकत वाली 400 मिलीलीटर 200 से 250 लीटर पानी में या फिर 1.25 किलोग्राम इसमें गुड़ मिला के एक एकड़ के हिसाब से हमने छिड़काव करना है। और फिर भी अगर न्यू देख ले कि भाई मक्खी का प्रकोप फिर भी हो रहा है, फल जो है वो काणे होते जान लग रहे हैं या फिर पत्ते के ऊपर जो है अपना असर छोड़ते जान लाग रही है मक्खी, तो 10 दिन का बिचाड़ा देख है एक बार फिर जो है छिड़काव हम कर सकें। और इसी तरह से हम अपना जो दूसरे कीड़े हैं उनको भी हम इसी तरह से उनका उन पर भी नियंत्रण कर सकें। अब बात आवे है एक कद्दू वर्गीय सब्जियों में एक रोग हो जाए है जिसने तुलसीता यानी कि डाउनी मिल्ड्रू रोग भी कहते हैं, और इस रोग के कारण जो है पत्तियों के निचली सतह के ऊपर धोली भूरे रंग की फफूंदी सी उड़ जा है और वो साफ दिखाई दे है, जिससे जब पत्तियों की निचली सतह पर बैंगनी भूरे रंग के धब्बे पड़ जाए हैं और जिससे ऊपर वाला भाग जो है वो पीला हो जाए। इन धब्बों के कारण जो है इन धब्बों के ऊपर जो है चूर्ण सा दिखन लग जाए है और टाइम टाइम पे ये धब्बे बड़े होकर पूरा का पूरा पत्ता जो है वो गल जाए। और इस रोग के कारण जो है पत्तियां पीली पड़ जाए हैं, और जो के खाना बनाने में पौधे का भोजन बनाने में जो सहायक हुए हैं वो खत्म हो जाए हैं और जिसके कारण पत्ता जो है वो भोजन नहीं बना पाता। नियंत्रण इसका हमने कैसे करना है, जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं उसमें एक तो खरपतवार हमने नहीं होने देने चाहिए, दूसरा खेत को जो है पहले की जो फसलें हैं जो अवशेष पड़े हैं उनसे भी हमने उनको बचाना, और भाई इसी तरह से अगर हम अपने जो फसल है उसकी देखभाल हम सही टाइम पर करेंगे तो हमने अच्छा मुनाफा मिलने की उम्मीद हो जाए, नहीं तो उम्मीद हमने बिल्कुल कम रह जाएगी और फसल जो है वो कीड़े और बीमारियों के कारण फसल जो है वो ख़त्म होती चली जाएगी और हमने कुछ नहीं मिलेगा। आखिरकार फिर वही बात है कि हम हाथ मलते रह जाएंगे और वही कहावत हो जाएगी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुगी खेत, यानी कि खेत के अंदर जो कीड़े हैं मकोड़े हैं वो फसल को चट कर देंगे। इसलिए समय के अनुसार हमने फसल की बुआई करनी है, फसल के टाइम टाइम पर खरपतवार नियंत्रण भी करना है, और इस तरह से हम अपनी फसलों को बचा सकें। और अब घड़ी भी कह रही है कि चतुर्वाई समय समाप्त हो गया कार्यक्रम का, तो भाइयों से ले इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अन्नदाता, FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। अब आइए सुनते हैं आकाशवाणी कुरुक्षेत्र स्थापना दिवस पर विशेष कार्यक्रम।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज 24 जून है, यानी कि आकाशवाणी कुरुक्षेत्र का स्थापना दिवस।

0: 36वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। तो भाई दिन तो खास ही हुआ ना, और ऐसे विशेष दिन को यादगार बनाने के लिए आज हमने स्टूडियो में अपने बहुत से श्रोताओं को आमंत्रित किया है। श्रोताओं से बातचीत तो करेंगे ही, लेकिन पहले आपको बता दें कि इस कार्यक्रम संचालन में मेरा साथ दे रही है मेरी सहेली अनुराधा। तो अनुराधा चले स्टूडियो में?
1: जी हाँ बिल्कुल,
0: स्टूडियो में जहाँ हमारे श्रोता हमारा इंतजार कर रहे हैं।
1: जी हाँ, क्योंकि उन्हें हमने आमंत्रित किया है, निमंत्रित किया है उनकी रचनाओं के साथ, उनके गीत कविताओं और कहानियों के साथ।
0: तो चलते हैं स्टूडियो में, चले
1: जी।
0: अरे वाह, कितना प्यारा रंग फैला है आज, तो गुलदस्ता सा लग रहा है हमारा स्टूडियो। इसमें तरह तरह के फूल खिले हैं, कितना मजा आ रहा है ना देखते हुए।
1: जी बिल्कुल, हमारे जो श्रोता वर्ग है ना सभी यहाँ पर आए हुए हैं। नन्हे बच्चों को देखिए, हमारे युवा साथियों को देखिए, और हमारे बुजुर्ग साथी जो है ना श्रोता, वो भी आए हैं अपनी रचनाएं लेकर।
0: अरे वाह क्या बात है, तो एक बार फिर से तालियों के साथ स्वागत। तो सभी श्रोताओं को शशि बाला और
1: अनुराधा का प्यार भरा नमस्कार।
0: और सबसे पहले आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के स्थापना दिवस की आप सभी को ढेरों बधाइयां।
1: जी
0: अनुराधा, आप
1: जी
0: दो।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको।
0: और अब ये बताओ कि कार्यक्रम का आरंभ कैसे किया जाए?
1: जी कार्यक्रम का आरंभ करना है तो भाई सबसे पहले तो हमारे जो इस आकाशवाणी केंद्र का संचालन और देखरेख जिनके साथ होता है उन्हीं के संदेश के साथ करें।
0: अरे क्या बात है, क्या कहने हैं आपके। तो चलते हैं अपनी स्टेशन डायरेक्टर मैडम विनयश्री के पास।
2: FM 101.4 MHz पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। ये आवाज आप सभी के साथ हम पिछले 35 वर्षों से साझा करते आए हैं, यही हमारी पहचान है। आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के स्थापना दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आज का यह दिन मेरे लिए और हम सब के लिए बेहद खास है। आकाशवाणी कुरुक्षेत्र आज अपने 35 वर्ष पूरे कर रहा है, और जब इस यात्रा को पीछे मुड़कर देखते हैं तो मन भावनाओं से भर जाता है। 35 साल पहले जब इस केंद्र की स्थापना हुई थी तब शायद सोचा भी नहीं था कि एक दिन यह कुरुक्षेत्र की पहचान बन जाएगा। आज आकाशवाणी कुरुक्षेत्र केवल एक प्रसारण केंद्र नहीं है, बल्कि इस पावन धरती की आवाज़ है, गीता की भूमि की आवाज़ है। यह यात्रा संभव हुई है तो केवल एक वजह से, और वो है आप, हमारे श्रोता। आपका प्यार, आपका विश्वास और आपका साथ हमारी सबसे बड़ी ताकत है। चाहे गीता संदेश हो, सुबह सवेरे हो या किसान वाणी हो, हर कार्यक्रम को आपने अपना बनाया और तभी हम यहाँ तक पहुँच सके हैं। आप सभी श्रोताओं को मेरा हृदय से धन्यवाद। इसके साथ ही अपनी पूरी टीम को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिनके कारण हम इन ऊँचाइयों को छू पाए हैं। चाहे वो तकनीकी विभाग हो, प्रशासनिक विभाग हो, सभी उद्घोषक हो या मेरे कार्यक्रम के साथी हूँ, बिना सबके सहयोग के हम इन ऊंचाइयों को नहीं छू पाते। आज इस डिजिटल युग में हम न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से आपसे जुड़े हैं, और अब उससे भी आगे सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपसे जुड़े हैं। गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रमों से हम इसी तरह आपसे जुड़े रहेंगे और एक से बढ़कर एक कार्यक्रम आपके लिए लाते रहेंगे। इसके साथ ही एक बार फिर से आप सभी को आकाशवाणी कुरुक्षेत्र की स्थापना दिवस की ढेरों शुभकामनाएं, धन्यवाद।
0: तो धन्यवाद मैडम विनयश्री, आपने इतना अच्छा संदेश दिया। और अब अनुराधा कहाँ लेकर चलोगी हमें?
1: जी भाई, तकनीक के बिना तो हमारा ये रेडियो जन जन तक पहुँचे, हमारे सभी श्रोताओं तक पहुँचे ऐसा संभव ही नहीं। तो चलिए हम चलते हैं हमारे तकनीकी विशेषज्ञ
0: इंजीनियरिंग हेड राजेंद्र कुमार जी के पास। वहीं लेकर जा रही हो ना?
1: जी बिल्कुल,
0: चलते हैं उनके पास।
3: आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के 35वें स्थापना दिवस के अवसर पर श्रोताओं को हार्दिक बधाई। तकनीकी विभाग के लिए इस अवसर का विशेष महत्व है। प्रसारण की गुणवत्ता, निर्बाध सेवाएं, आधुनिक ट्रांसमीटर, डिजिटल तकनीकी का समावेश एवं श्रोताओं तक स्पष्ट और विश्वसनीय प्रसारण पहुंचाना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। हमारे अभियंताओं और तकनीकी कर्मचारियों की मेहनत एवं समर्पण के कारण ही आकाशवाणी की सेवाएं निरंतर रूप से संचालित हो रही हैं। विगत वर्षों में तकनीक ने तेजी से परिवर्तन किया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और नई प्रसारण प्रणालियों के माध्यम से आकाशवाणी ने स्वयं को समय के अनुरूप विकसित किया है। हमारा लक्ष्य है कि हम आधुनिक तकनीक को अपनाते हुए अपनी विश्वसनीयता और जनसेवा की परंपरा को और अधिक सशक्त बनाएं। मैं अपने सभी वर्तमान एवं सेवानिवृत्त अभियंताओं, तकनीकी कर्मचारियों, कार्यक्रम और प्रशासनिक सहयोगों को उनके अमूल्य योगदान के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं। आपकी मेहनत और निष्ठा ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। आकाशवाणी कुरुक्षेत्र यूं ही लोगों की सेवा करता रहे। हमारी कोशिश रहेगी कि तकनीकी रूप से कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार करेंगे और आपकी सेवाओं में तत्पर रहेंगे। आप सभी को आकाशवाणी के 35वें स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।
0: बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी का भी हम करते हैं। और अब अनुराधा, इस अवसर पर उपायुक्त कुरुक्षेत्र श्री विश्राम कुमार मीणा जी ने भी हमें शुभकामनाएं भेजी हैं, संदेश भेजा है।
4: मैं विश्राम कुमार मीणा, उपायुक्त कुरुक्षेत्र, सभी कुरुक्षेत्र वासियों को आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के 35वें स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आकाशवाणी और हम लोगों का जुड़ाव ऐसे ही रहे, घर घर न्यूज़ पहुंचे, घर घर अलग अलग तरह की गवर्नमेंट की स्कीमें पहुंचे और हम उससे लाभान्वित हों, और ऐसे ही आप लोगों का सहयोग आकाशवाणी के साथ बना रहे।
0: अनुराधा, कुछ गणमान्य व्यक्तियों ने हमारे स्थापना दिवस पर हमें अच्छे अच्छे संदेश भेजे हैं, अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं। इनमें से पहला संदेश हम आपको सुनवाते हैं अशोक अरोड़ा जी का, जो कि विधायक थानेसर और पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार हैं। इन्होंने लिखा है, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के 35वें स्थापना दिवस के पावन अवसर पर सभी श्रोताओं और प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आकाशवाणी कुरुक्षेत्र ने पिछले 35 वर्षों से अपनी उत्कृष्ट प्रसारण सेवाओं के माध्यम से संस्कृति, साहित्य, शिक्षा, कृषि एवं जनहित से जुड़े विषयों को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये संस्थान समाज को जागरूक करने और देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का एक सशक्त माध्यम रहा है। मैं कामना करता हूँ कि आकाशवाणी कुरुक्षेत्र भविष्य में भी इसी प्रकार अपनी गरिमामयी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्र एवं समाज की सेवा करता रहे। हार्दिक शुभकामनाओं सहित अशोक अरोड़ा जी। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक अरोड़ा जी। और अगला एक और संदेश हमें मिला है, ये हैं रामकरण जी, विधायक शाहबाद एवं पूर्व चेयरमैन शुगर फेड हरियाणा। ये लिखते हैं, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के 35वें स्थापना दिवस पर सभी श्रोताओं को और देश प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। आकाशवाणी कुरुक्षेत्र ने पिछले 35 वर्षों से अपनी उत्कृष्ट जो प्रसारण सेवाएं हैं इनकी, उनके माध्यम से जनहित से जुड़े सभी विषयों को लेकर ये जन जन तक पहुंचे भी हैं और इन्होंने जागरूक भी किया है पूरे समाज को। आकाशवाणी कुरुक्षेत्र अब भी लोगों की निरंतर सेवा कर रहा है और आगे भी इसी तरह से करता रहेगा। सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का ये एक सशक्त माध्यम है और मैं कामना करता हूँ कि आकाशवाणी कुरुक्षेत्र भविष्य में भी इस प्रकार आगे बढ़ता रहे और समाज की सेवा करता रहे। ये जो जश्न है ये सिर्फ हमारा तो है नहीं
1: जी, बिल्कुल, ये तो हमारे
0: श्रोताओं का है
1: जो हमारे स्टूडियो में आए हैं जी, अपनी रचनाएं लेकर।
0: जी बिल्कुल, और आकाशवाणी कुरुक्षेत्र की गूंज अधूरी है आप सबके बिना। हम श्रोताओं से मुखातिब हो लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये हम कह रहे थे कि आज हमने कुछ ऐसा खास इनके लिए किया है जिससे इनका और हमारा रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। पूछो क्या
1: जी, बताइए क्या।
0: बताई देते हैं आपको कि हमने ऐसा खास क्या किया है। आज हमने इन्हें इनकी रचनाओं के साथ, कविताओं के साथ और इनकी प्यारी प्यारी बातों के साथ, इनके अनुभवों के साथ इन्हें यहाँ आमंत्रित किया है। इससे दूरियां मिटने वाली हैं और हमारे स्टूडियो

0: की रौनक कई गुना बढ़ने वाली है।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे सभी श्रोता आ चुके हैं हमारे स्टूडियो में अपनी रचनाओं के साथ। तो शुरुआत करें।
0: शुरुआत तो कहते हैं कि भगवान के नाम से करनी चाहिए अनुराधा।
1: जी बिल्कुल, और ऐसा ही एक नाम हमें अपने आए हुए श्रोताओं में भी मिल गया है।
0: ओहो क्या बात है, क्या नाम है उस बच्चे का?
1: विनायक, जो भगवान गणेश का एक नाम है, वही हमारे एक श्रोता, नन्हे श्रोता हमारे पास आए हुए हैं, हमारे साथ आए हुए हैं अपनी रचना लेकर।
0: देखते हैं क्या सुनाएंगे। विनायक जी स्वागत है आपका, एक बार सभी छोटे बच्चे के लिए तालियां बजाइए। जी विनायक जी,
2: आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं कैथल से आया हूँ।

0: विदा।
1: वाह वाह भाई, क्या बात है, एक बार तालियां हो जाए छोटे बच्चे के लिए।
2: इन्होंने तो शुरुआत भी बिल्कुल वैसी ही की जैसा इनका नाम है।
1: जी जी, और कहते हैं कि अगर भगवान के नाम से आरंभ हो जाए ना कार्यक्रम का, तो फिर कार्यक्रम की सफलता निश्चित है। तो भाई, आज का ये रंगारंग जो कार्यक्रम है, इसकी सफलता तो हमने पहले ही सुनिश्चित कर लिया अनुराधा
2: जी। बिल्कुल,
1: अब कहाँ लेकर जाओगी हमें?
2: अब फिर हम अपने श्रोताओं को हमने आमंत्रित किया है, तो हमारे अगले श्रोता, उन्हें हम बुलाना चाहेंगे उनकी रचना के साथ।
1: जी,
2: हमारे अगले श्रोता आ रहे हैं, हमारे नियमित श्रोता माघीराम सैनी जी।
1: माघीराम सैनी जी, आपका स्वागत है।
3: मैं माघीराम सैनी, गांव प्रतापगढ़, जिला धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, आकाशवाणी की पूरी टीम को, सभी श्रोताओं को आकाशवाणी के स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उन श्रोताओं को भी मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा जो शायद हमसे भी ज़्यादा रेडियो सुनते हैं। वो हमारे बुजुर्ग हैं, गांव में हैं, शहरों में भी रहते हैं, और शायद हमसे भी ज़्यादा बहुत बड़ी शिद्दत से आकाशवाणी कुरुक्षेत्र को बढ़ावा देने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो उनको भी हम दिल से, और आकाशवाणी की पूरी टीम जो इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम पेश करती है, प्रोग्राम पेश करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उसमें एक एक अगर इंसान कोई गलती किसी से ना हो, कोई ऐसे ना हो, ऑब्जेक्शन उसमें ना उठे, तो उसके लिए बहुत बड़ी मेहनत करते हैं हमारे आकाशवाणी के उद्घोषक और रेडियो स्टेशन के जितने भी ये संस्थापक हैं, तो उनकी मेहनत को मैं भी सत सत नमन करता हूँ। मैं इस विषय पर, इस स्थापना दिवस पर एक भजन बहुत पहले रेडियो में आता था महेंद्र कपूर जी का, आज भी शायद आता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पहले बहुत ज्यादा आता था। तो प्रस्तुत है थोड़े से उसके शब्द।
1: स्वागत है।
3: बंद कर

पंछी उड़ जाना कर ले यत्न हजार, पंछी उड़ जाना रे पंछी उड़ जाना। महल धरे के धरे रहेंगे,

उड़ जाना जप ले कृष्ण मुरार, पंछी उड़ जाना रे पंछी उड़ जाना, कर ले कुछ तो नेक कमाई,

0: उड़ जाना रे पंछी उड़ जाना। जय हिंद।
1: बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा।
2: बहुत ही धन्यवाद माघीराम सैनी जी, आपने जीवन की ये सच्चाई अपने इस भजन में सुनाई हमें और संदेश दिया आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के नाम।
1: तो अनुराधा, हमारे बहुत ही पुराने श्रोता जो महेंद्र शाह जी हैं रोहतक से, वो हमारे साथ हैं और आपको पता ही होगा कि उन्हें फिल्म्स की कितना ही ज्यादा ज्ञान है। वो सिर्फ एक गीत की फरमाइश नहीं करते हैं, वो साथ ही साथ हमें बताते हैं गीतकार कौन है, संगीतकार कौन है, किस पे फिल्म आया गया, कौन से सन में फिल्म आई थी।
2: उन्हें अगर हम फिल्म का इंसाइक्लोपीडिया कहें ना, बिल्कुल गलत नहीं होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए,
2: वरिष्ठ श्रोता महेंद्र शाह जी का स्वागत है।
3: सबसे पहले तो आकाशवाणी 35 वर्ष जान से मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से आपको, आपके सारे आकाशवाणी परिवार को, सभी श्रोताओं को बहुत बहुत मुबारक। मैं महेंद्र शाह रेडियो श्रोता रोहतक से बोल रहा हूँ सर। मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आकाशवाणी कुरुक्षेत्र दिन धुनी 24 हरे तो शेर अर्थ कर रहा हूँ है, आजू के डल है गजल बन जाऊँ है, आजू के डल है गजल बन जाऊँ, शायद उदास लम्हों में वो कभी गुनगुना लिया करे, कयामत तक रहो शादा, कयामत तक रहो शादा, यही दिल की तमन्ना है, गरीबो वक्त मिल जाए हमें भी याद कर लेना, एहसास के मानिंद ताबिंदा रहे, राह दुनिया ने हमें सताया फिर भी हम जिंदा रहे, बीह भी मांगी तो ऐसी शाने खुदाई के साथ, देने वाला खुद जिंदगी भर हमसे शर्मिंदा रहे, मुकद्दर की जो सख्ती थी वो मरकर भी नहीं निकली, लहर को दी गई मेरी तो पथरीली जमीन निकली, गुलशन से गुलफाम भेजा है सितारों ने आसमां से सलाम भेजा है, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र सदा रहे सलामत, हमने तय दिल से ये पैगाम भेजा है, मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से सभी, आप सभी आकाशवाणी परिवार को, श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार, बहुत बहुत मुबारक।
1: तो महेंद्र शाह जी का हम धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने इतनी अच्छी कविता हमें सुनाई। और अनुराधा, अब आपकी गाड़ी हमें कहाँ लेकर जा रही है?
2: जी बिल्कुल, हमारे श्रोताओं के साथ साथ हमारे जो प्रस्तुतकर्ता साथी हैं वो भी स्टूडियो में हैं।
1: नजर तो आ रहे हैं।
2: जी बिल्कुल, उनकी बात भी तो हम सुनेंगे।
1: जी बिल्कुल, क्यों नहीं।
2: तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी हमारी साथी ज्योतिष्मा जी को।
1: ज्योतिष्मा, स्वागत है आपका, क्या सुनाने जा रही है ज्योतिष्मा आज?
4: देखिए क्या सुनाएंगे वो तो आपके आगे आने ही वाला है, लेकिन सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जो आकाशवाणी का 35वां बर्थडे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं
1: जी,
4: उसके लिए जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, जितने भी हमारे को प्रेजेंटर्स हैं, उन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, ढेरों सारी। और जो मैं लिख करके लाई हूँ, जो मैं कहना चाह रही हूँ वो ये है कि कुछ रिश्ते नामों से नहीं धड़कनों से पहचाने जाते हैं। मेरा और आकाशवाणी का जो नाता है वो शायद कुछ ऐसा ही है, जब मेरे होठ ये बोलते हैं कि FM 101.4 MHz हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं, तो आप ये मानिएगा कि ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो सिर्फ आसमान में नहीं गूंज रही हैं, वो कहीं दिलों में भी झनकृत हो रही होती हैं। ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं है, मेरी पहचान है, बहुत सारे लोगों की ये साधना है और बहुत सारी जो है वो होठों की मधुर अनुगूंज है। और कहते हैं कि किसी को मंच नहीं मिलता और कुछ मंच ईश्वर स्वयं चुनकर देते हैं, और मेरा विश्वास है कि आकाशवाणी तक पहुंचना जो मेरा रहा है वो ईश्वर के विशेष आशीर्वाद का ही परिणाम है। और यहाँ आकर केवल हम कार्यक्रम नहीं देते हैं बल्कि अनगिनत संवेदनाओं से, जो अपने श्रोताओं से जो एक अनकहा सा रिश्ता बना पाते हैं, उसी का ये परिणाम है कि आकाशवाणी का हम आज 35वां जन्म दिवस मना रहे हैं। और आगे यही इच्छा करेंगे कि बहुत सारे और ऐसे मौके आए, बहुत सारे ऐसे सुअवसर आए जब हम सब लोग इस तरीके के प्रोग्राम्स का आयोजन करें और कुछ खास दिनों पर अपनी कुछ खास यादों को संजो पाए। धन्यवाद।
1: धन्यवाद ज्योति, बहुत ही सुंदर शब्दों में इन्होंने

0: अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। और अनुराधा एक बात बताइए
1: जी,
0: जो आपका अपना अनुभव रहा है आकाशवाणी में वो कैसा रहा है भाई, अपने बारे में भी तो बता दीजिए।
1: जी बिल्कुल, जैसे ही ज्योतिषमय जी ने बात करनी शुरू की मुझे भी अपने वो दिन याद आने लगे जब आकाशवाणी को देखकर मुझे भी कौतूहल होता था कि ये आखिर ये टावर है ये है क्या। लेकिन जब यहाँ आई, अंदर आने की कोशिश की, तब तो मुझे पहली दफा में आना अलाउड नहीं हुआ क्योंकि मुश्किल रहता भाई, इसी आसानी से थोड़ी ना आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद थोड़े ही दिनों में जब घर पर मैंने रेडियो में सुना कि आकाशवाणी के लिए फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं, तब एक मौका हुआ मुझे आकाशवाणी में आने का। और उसके बाद ऑडिशन और यहाँ की दुनिया, जिससे बहुत कुछ सीखने को हमें मिला और ये हमारे जीवन में वरदान जैसा है, आशीर्वाद जैसा है।
0: जी तो अब अनुराधा हमें कहाँ लेकर जा रही हो?
1: जी हमारे जो ये नन्हे बाल श्रोता है ना, ये हमें बहुत देर से बैठे देख रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हमारी बारी कब आई, तो बुलाए हम।
0: बिल्कुल,
1: तो बुलाते हैं हमारे ये नन्हे श्रोता हनीश को।
0: तो हनीश जी स्वागत है आपका, प्यारे प्यारे ये बच्चे हैं छोटे से। क्या हनीश कहाँ से आए हैं आप?
2: नमस्कार, मेरा नाम हनीश गुप्ता है और मैं कुरुक्षेत्र से आया हूँ।
0: कुरुक्षेत्र से ही आए हैं, तो क्या सुनाओगे?
2: गायत्री मंत्र।
0: गायत्री मंत्र स्वागत है, सुनाओ।
2: ओम।

0: यो न प्रचोदयात। ओम शांति शांति।
1: वाह भाई वाह,
0: धन्यवाद।
2: तो भाई देखिए कितना प्यारा इस बच्चे ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया है, और छोटा सा बच्चा,
3: कितनी प्यारी सी आवाज, मासूमियत इतनी, है ना।
2: जी जी, कितना अच्छा लगा ना हमें
3: जी,
2: है ना। और अब क्योंकि हनीश ने तो सुना दिया हमें गायत्री मंत्र, एक और भी प्यारी सी बच्ची है जो आपकी तरफ देखे जा रही है।
3: जी बिल्कुल, ये हनीश की बहन है, ये देख रही है भाई की बारी आ गई, मेरी बारी कब आएगी।
2: हाँ बिल्कुल, तो चलिए इन्हें भी आमंत्रित कीजिए। क्या नाम है इनका?
3: जी लिसाना जी, बिल्कुल आइए, स्वागत है आपका।
4: नमस्ते, मेरा नाम लिसाना है, मैं कुरुक्षेत्र से हूँ। आज मैं त्र्यंबकम मंत्र सुनाऊंगी।
3: जी स्वागत है।
4: ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षेमामृतात्।
2: क्या बात है, तालियां बजाइए छोटे से बच्चे के लिए। और अनुराधा, देखा आपने कि संस्कृत में ओम त्र्यंबकम आपको भी याद नहीं होगा, कि याद है? सच्ची सच्ची बताओ।
3: जी सच्ची सच्ची बताऊं तो याद है।
2: याद है, चलिए आप भी इंटेलिजेंट हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। लेकिन सच में इस मंत्र का शुद्ध उच्चारण करना और इतने छोटे बच्चे के मुख से इसको सुनना, एक अपने आप में ही अलग खुशी सी नहीं मिलती है। तो ये इनके माता पिता के संस्कार हैं, तो हर माता पिता को इसी तरह से अपने बच्चों को संस्कार देने चाहिए। तो अब कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने का आप सोच रही हैं, लेकिन आप साथ साथ ये भी सोच रही हैं कि जो शशि है अपनी बातें क्यों मारती रहती हैं।
3: जी बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं सोच रही मैं, बातें क्यों करेंगे ना।
2: बिल्कुल, तो आपने बोल ही दिया था, हम सब समझते हैं
3: भाई। आपने भी अपनी कोई ऐसी जीवन की बात नहीं बताई ना जो रेडियो से जुड़ी, वो भी हम आपसे जानेंगे ना।
2: बिल्कुल, हम तो आपको बता ही देंगे, लेकिन पहले आप हमें अपनी ट्रेन में बिठाकर जहाँ पर लेकर जा रही है ना, वो जगह बताइए कहाँ लेकर जा रही
3: है। हंसी के फुहारों के लिए भी हमारे श्रोता हमारे पास आए हुए हैं, और
2: सच्ची
3: वो जो फुहारे है ना, यानी चुटकले, वो हमारे श्रोता हमें सुनाएंगे। और हम आमंत्रित करते हैं शिव कुमार कौशिक जी को।
2: स्वागत है श्री शिव कुमार कौशिक जी का।
5: नमस्कार, मेरा नाम शिव कुमार कौशिक, सपड़ा कॉलोनी कुरुक्षेत्र से आया हूँ। और मैं सभी श्रोताओं को, इनका अधिकारियों को, सुनने और जो दूर दूर बैठे सुन रहे हैं उनको बधाई देता हूँ। और मैं 1991 से ही इनका श्रोता रहा हूँ। और एक जोक सुनाना चाहता हूँ, सुनो। एक आदमी किसी को मिलने घर गया, उस आदमी ने देखा कि बैग तैयार करके बैठा है वो आदमी जिसको मिलने गया। वो कहा, उदास कैसे बैठे हो? उदास कहा, ये टेलीविजन वाले भी बड़ा बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। क्या हुआ? उनको ये खबर सुनाई इन्होंने दिल्ली से, और उनका कह रहे आइए आपको सीधा दिल्ली लिए चलते हैं, मैं सुबह का बैग तैयार करके बैठा, अभी तक नहीं कोई आया उनका लेने।
2: क्या बात है।

0: धन्यवाद
1: जी। शिव कुमार जी, आपने तो पूरी महफिल लूट ली एक चुटकुले में, और ये तो भाई मजा ही आ गया। हाँ, दिल्ली लिए चलते हैं, ठीक है ना? तो ये इस तरह से अगर दिल्ली ले जाने लगे अनुराधा तो कितना मजा ही आ जाए
2: भाई। फिर तो मैं कहाँ जाना चाहूंगी, मैं भूटान जाना चाहूंगी।
1: चलिए, भारतवर्ष से बाहर भूटान में जाना चाहेंगी आप, है ना? चलिए, अब फिलहाल आप अपनी गाड़ी को कहाँ लेकर जा रही हैं, जिसमें हम बैठकर देखें कि अब अगले कौन से श्रोता को आप आमंत्रित करने वाली हैं।
2: जी, हमारे श्रोता हैं सुनील दत्त जी।
1: सुनील दत्त जी, क्या बात है सुनील दत्त जी, स्वागत है आपका, एक बार जोरदार तालियां। क्या सुनाएंगे आज सुनील दत्त जी?
3: शुभकामनाएं देनी है मैम।
1: शुभकामनाएं तो आपकी हैं ही। आप हमें ये बताइए पहले कि आप आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से कितने वर्षों से जुड़े हैं?
3: मैं आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से 2009 से रेगुलर श्रोता रहा हूँ।
1: 2009 से आकाशवाणी सुन रहे हैं
3: जी। मेरे पास में FM प्लेट है, मैं उससे लगातार सुनता हूँ, पूरा परिवार सुनता है
1: जी। क्या
3: और सुप्रभात तो हम प्रतिदिन सुनते ही हैं, जिसमें आपके द्वारा जो प्रश्न पूछा जाता है उसे हम बड़ी उत्सुकता से सुनते हैं और उसका जवाब भी देते हैं।
1: क्या बात है, और हमें बड़ी खुशी होती है ये जानकर कि हमारे श्रोता इतने प्यार से, इतनी शिद्दत से हमारे साथ जुड़े हैं। तो आपका ये बताइए, अनुभव कैसा है आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के साथ? कहने का तात्पर्य है कि आपको कार्यक्रम कौन कौन से अच्छे लगते हैं?
3: कार्यक्रम तो देखिए, मुझे, मैं टीचर हूँ, मुझे समय कमी मिल पाता है, फिर भी सुप्रभात जो कार्यक्रम सुबह आता है,
1: उसका नाम बदल गया है, सुबह सवेरे हो गया है।
3: सुबह सवेरे जी
1: जी
3: जी,
1: हाँ जी। तो सुबह सवेरे आप सुनते
3: जी? सुबह सवेरे सुनते हैं मैम
1: जी, जी जी जी। तो बहुत अच्छी बात है, अब आप अपनी शुभकामनाएं दे सकते हैं।
3: मैं सुनील दत्त, इतिहास प्रवक्ता कैथल से, और आप सभी को आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के 35वें स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। जो आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है, इसकी स्थापना 24 जून 1991 को हुई थी, और वैसे तो हरियाणा में कई रेडियो स्टेशन हैं, पर जो कुरुक्षेत्र आकाशवाणी है वो अपना अलग ही कुछ पहचान रखते हैं। यहाँ पे जो कार्यक्रम जो सुबह दिए जाते हैं या इवनिंग में, वो बड़े ही अच्छे, यहाँ पे कार्यक्रम देने वाले जो एंकर होते हैं, वो उनकी जो सुरीली आवाज़ है जो श्रोतागणों को बड़ी मंत्र मुग्ध करती है, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। और आप किसी काम को करते करते भी आप रेडियो सुन सकते हैं, क्योंकि आजकल समय की बड़ी बाउंडेशन है, तो आप रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप देश विदेश की जानकारी, अपने आसपास की जानकारी, जिले की जानकारी, अपने राज्य की जानकारी, ये सभी आप उसमें सुन सकते हैं आप। तो कोई भी इसको, चाहे वो रेडी लगाने वाला हो या कोई अपनी फैक्ट्री में काम करने वाला हो या कोई भी हो, या फिर आप बस में जा रहे हैं या फिर आप रेल में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं आप, और इसमें आपका कोई ज़्यादा नेट भी नहीं लगता है। आजकल एक ऐप आई हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, न्यूज ऑन AIR, तो मैंने वो मोबाइल में भी डाउनलोड की हुई है, और आप सभी भी कर सकते हो। गवर्नमेंट के द्वारा ऐप लॉन्च की गई है और आप सभी इसको अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं, ना कोई वायर का चक्कर है, आप उसमें डायरेक्ट आप उसके द्वारा आप सुन सकते हैं। आप कहीं बैठे हैं तो पहले वायर लगानी पड़ती थी जिसकी वजह से सिग्नल कट हो जाता था, लेकिन अब आप बड़ा अच्छा इसका लुत्फ उठा सकते हैं। और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर मुझे आज यहाँ पे दूसरी बार स्थापना दिवस पर आने का मौका मिला है, और आगे भी मैं लगातार इसी तरह से आता रहूँगा। तो मैं एक राजकुमार का डायलॉग सुनाना चाहता हूँ।
1: बिल्कुल, स्वागत है।
4: जानी, हम तुम्हें मारेंगे, जरूर मारेंगे, वो जगह भी हमारी होगी, वो पिस्टल भी हमारी होगी, हम तुम्हें मारेंगे, जरूर मारेंगे
1: जी। क्या बात है,
4: क्या नहीं, ये तो हमारी एक छोटी पीने वाली पाइप का माल था, अगर कहीं बोल कर भी तो इस रुमाल को छू लेते, उस आग में चलकर राख हो जाते।
3: तो मैं यही चाहता हूं कि आप सभी लगातार रेडियो सुनिए और उसका लुत्फ उठाइए, चाहे वो कृषि से संबंधित जानकारी हो, शाम के समय जो आती है। इसके साथ में सभी देशवासियों को स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।
1: धन्यवाद सुनील दत्त जी, आपने बहुत ही चंद शब्दों में इतनी अच्छी अच्छी अपने अनुभव भी बताया आपने, और अच्छी जानकारी भी दी श्रोताओं को कि न्यूज ऑन AIR ऐप जो है वो डाउनलोड कीजिए, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र सुनिए, कहीं पर भी, कभी भी, किसी भी वक्त।
2: जी बिल्कुल, इन्होंने तो हमारे श्रोताओं को बिल्कुल कह दिया कि आप ऐप डाउनलोड कीजिए और सभी जगह हमारे कार्यक्रम आराम से सुन सकते
1: इसी
2: हैं।
1: तरह से ये जो श्रोता है ना, यही तो हमारे कार्यक्रमों को दूर दराज क्षेत्रों में लेकर जाते हैं।
2: जी बिल्कुल, इनकी बात कहें तो भाई, ये केवल इनके जज्बात नहीं है, ये वो मोती हैं जो हर किसी के पास नहीं होते।
1: अरे वाह अनुराधा, आपके लिए तालियां तो मैं भी बजाऊंगी जरूर। क्या कहने आपके। और अब एक प्रस्तुत करता है, वो देख रही है मेरी तरफ।

0: बार बार कि तुम मेरी सखी हो या दुश्मन हो जो मुझे नहीं बुला रही हो।
1: जी बिल्कुल दुश्मन तो नहीं है,
0: दुश्मन तो है नहीं, हम देखो ना कैसे देख रही है हमें।
1: नहीं नहीं तो हम ऐसा करते हैं, उन्हें बुला ही लेते हैं।
0: बुलाइए
1: तो आइए गेशना जी।
0: गेशना जी का स्वागत है, गेशना जी का तालियों के साथ स्वागत करते हैं।
2: सभी को आपकी रेडियो दोस्त गेशना का प्यार भरा नमस्कार।
0: गेशना आप यहाँ पर आई हैं माइक पर कुछ सुनाने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ।
2: जी बिल्कुल पूछिए।
0: आपके नाम का मतलब क्या है?
1: जी बिल्कुल, ये तो हमारे सभी श्रोता भी जानना चाहते हैं, क्योंकि जब गेशना जी कार्यक्रम प्रस्तुत करती हैं तो वो जरूर पूछते हैं कि गेशना जी इनके नाम का मतलब भी हमें पता चले।
0: जी जी,
2: वैसे देखिए ये संस्कृत का शब्द है गेशना, पर क्योंकि साथियों को समझ ही नहीं आता तो इसे गेशना कर दिया है, वो फिर भी कृष्णा और पता नहीं न जाने क्या क्या नाम बना देते हैं।
0: तो
2: गेशना का मतलब होता है गायिका।
0: गायिका?
2: हाँ।
0: फिर आप गाना गाती हैं?
2: गुनगुना लेती हूँ, देखिए रेडियो पर तो आ ही गई हूँ।
0: जी जी जी, तो गुनगुनाहट भी आपकी जरूर सुनेंगे, लेकिन पहले जो आप तैयार करके आई हैं सुनाइए।
2: चलिए वो एक कविता ही है, तो आवाज तो आपको सुन ही जाएगी।
0: जी
2: कविता है आवाज जो दिलों तक जाती है। आवाज जो दिलों तक जाती है, एक छोटे से यंत्र में भी दुनिया सिमट सी जाती है। एक छोटे से यंत्र में भी दुनिया सिमट सी जाती है।
0: क्या बात है।
2: आकाशवाणी की मधुर ध्वनि हर दिल तक पहुंच जाती है। आवाज जो दिलों तक जाती है, कहीं गीतों की सरगम है कहीं खबरों का संसार। कहीं गीतों की सरगम है कहीं खबरों का संसार। कहीं संस्कृति की खुशबू है कहीं ज्ञान का भंडार। न चेहरों की जरूरत होती न दिखावे का साथ होता। न चेहरों की जरूरत होती न दिखावे का साथ होता। सच्ची आवाजों का रिश्ता ही दिल से दिल तक होता। समय बदलता रहता है तकनीक नए रूप लाती है। समय बदलता रहता है तकनीक नए रूप लाती है। फिर भी रेडियो की अपनी धुन हर पीढ़ी को भाती है। आवाज जो दिलों तक जाती है, यह केवल यादों का हिस्सा नहीं, यह आज भी प्रेरणा देता है। हर नई सोच हर नई प्रतिभा को आगे बढ़ने का हौसला देता है। कुरुक्षेत्र की इस पावन धरती से जो स्वर निरंतर गूंजते हैं, कुरुक्षेत्र की इस पावन धरती से जो स्वर निरंतर गूंज रहे हैं, वे केवल शब्द नहीं बल्कि नए सपनों को बुन रहे हैं। आज स्थापना दिवस के इस अवसर पर हम सब मिलकर यह ठाने, ज्ञान संस्कृति और सकारात्मक सोच को हर घर आंगन तक पहुंचाएं। आज स्थापना दिवस के इस अवसर पर हम सब मिलकर यह ठाने, ज्ञान संस्कृति और सकारात्मक सोच को हर घर आंगन तक पहुंचाएं। आवाजों का यह कारवां यूं ही आगे बढ़ता जाए। आकाशवाणी का स्वर्णिम सफर हर मन को प्रेरित करता जाए। आवाज जो दिलों तक जाए।
0: क्या बात।
2: और अंत में एक श्रोता के रूप में मैंने इसे सुना है, एक प्रस्तोता के रूप में मैंने इसे जिया है। आकाशवाणी केवल प्रसारण नहीं, मेरे लिए सीखने और आगे बढ़ने की निरंतर यात्रा है। एक बार फिर से आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद।
1: बहुत सुंदर, क्या बात है गेशना जी, बहुत सुंदर,
0: बहुत ही प्यारा। आपने अपने भावों को इतने अच्छे से व्यक्त किया, बहुत अच्छा लगा सुनकर। लेकिन गेशना जी आप कुछ कह रही थी जो अपनी प्रस्तुति देने से पहले हमें, कि कुछ गुनगुना कर हमें दिखाएंगी, कुछ सुनाएंगी।
1: बिल्कुल, अपने नाम को सार्थक भी तो करेंगी ना।
0: जी तो कुछ तो गुनगुनाना होगा आपको।
2: चलिए मैं आपको सुनाती हूँ, आप लोग मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं।
0: जी जी जी जी, भी गा सकते हैं साथ में।
2: किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द

0: वाह भाई वाह, क्या बात है, धन्यवाद। तो अपने नाम का मतलब भी साकार कर दिया हमारी गेशना ने।
1: जी बिल्कुल।
0: और अब हम अनुराधा कहाँ पर चलें, अपनी शम्मा को लेकर यानी कि माइक को लेकर किस श्रोता के पास लेकर जा रही हैं?
1: भाई आज तो हम अपने श्रोताओं से बाहर दूर कहीं जा ही नहीं सकते, क्योंकि ये अपनी बारी का निरंतर इंतजार किए जा रहे हैं। अब हमारे श्रोता हैं वो देख रहे हैं कि हमारी बारी कब आएगी।
0: जी, और रोज तो ये हमारी आवाज सुनते हैं, आज हमें मौका मिला है इनकी आवाज सुनने का।
1: इन्हें भी मौका मिला है अपनी बात, अपनी आवाज हम तक पहुंचाने का, तभी तो ये कार्यक्रम हमने आयोजित किया है।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो अब किस श्रोता की तरफ आप लेकर जा रही हैं हमें?
1: हमारे निमिष श्रोता हैं मुरादगढ़ से, रमेश कुमार काम्बोज जी।
0: स्वागत है रमेश कुमार काम्बोज जी आपका। और ये पहले हमें ये बता दीजिए कि आप सुनाएंगे क्या
2: आज? मैडम

0: आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के स्थापना दिवस के ऊपर ही कुछ सुनाएंगे।
1: अच्छा, ये बताइए, आपका जब भी फोन कॉल यहाँ लगता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा कश्मकश सी आ जाती है। रमेश कुमार काम्बोज, दो रमेश कुमार काम्बोज, एक देखो श्रोता भी जान रहे हैं, श्रोता भी हमें बता रहे हैं कि एक चमरौड़ी से हैं, आप कौन से वाले हैं?
0: जी, मैं मुरादगढ़ करनाल से।
1: मुरादगढ़ करनाल वाले हैं ये, तो चलिए आपका स्वागत है।
0: धन्यवाद मैडम। आकाशवाणी कुरुक्षेत्र को समर्पित कविता है, 35 वर्षों का सफर सुहाना, जन जन तक पहुंचा हर तराना, ज्ञान संस्कृति और संदेशों का बन गया है सुंदर खजाना।
1: जी,
0: सुबह सवेरे जब स्वर गूंजे, मन में नई उमंग जगाए, सुपर फास्ट एक्सप्रेस की रफ्तार हर श्रोता को साथ मिलाए, युवा वाणी की नई सोच से युवा मन को राह मिलती है, किसान वाणी की बातों से धरती भी मुस्कुराती है।
1: क्या बात है।
0: गीत गजल चर्चा और वाणी, हर कार्यक्रम है अनुपम प्यारा, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र ने ज्ञान का दीप सदा उजियारा, नमन सभी उन कर्म योगियों को, नमन सभी उन कर्म योगियों को जिनसे यह पहचान बनी, श्रोताओं के प्रेम और विश्वास से यह गौरवमयी उड़ान बनी, जन्मदिन पर यही कामना, यश की गाथा गूंजे हर द्वार, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र अमर रहे, बढ़ता रहे इसका सम्मान अपार, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आकाशवाणी कुरुक्षेत्र। धन्यवाद।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया है रमेश कुमार काम्बोज जी, और बड़े ही अच्छे ढंग से आपने आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के लिए अपनी शुभकामनाएं दी हैं स्थापना दिवस पर, तो अच्छा लगा। और इसी तरह से हमारे कार्यक्रमों के साथ आगे भी जुड़े रहिए, पर एक बार तो हमें ये बता दीजिए कि आप आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से कब से जुड़े हैं?
0: मैं मैडम सन 1998 से जुड़ा हूँ आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से।
1: 1998 से?
0: हाँ जी।
1: क्या बात है,
0: पहली बार आपके साथ ही रिकॉर्डिंग हुई थी हमारी स्टूडियो में इसी स्थापना अवसर पर, और यार दूसरी बार होगी आपके साथ।
1: जी जी
0: जी, पता नहीं आप कहाँ गायब हो गई थी।
1: हम आते ही रहते हैं और अक्सर आप हमारी आवाज तो सुनते ही होंगे।
0: आवाज सुनते हैं, लेकिन बीच में बहुत लंबा अरसा छूट गया था आपको।
1: हाँ, उन दिनों आकाशवाणी का स्थापना दिवस पे तो हम हर बार हुए ही हैं, हर बार हमने ये किए ही है रिकॉर्डिंग, और हो सकता है कि आगे पीछे हम लेट आए हों, थोड़ा सा हमने थोड़ा देरी से ज्वाइन किया हो, या आपसे पहले चले गए हो, आप लेट हो, ये भी तो हो सकता है ना।
0: जी।
1: तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और आपसे जानकर कि 1998 से ये जुड़े हुए हैं, और सही बात है कि पहली रिकॉर्डिंग जो स्थापना दिवस की, मतलब उससे पहले भी करते थे हम, लेकिन आप हमसे पहली बार 1998 में स्थापना दिवस के माध्यम से जुड़े थे, हमने एक दूसरे को देखा था, रूबरू हुए थे हम आपसे।
2: चलिए, हमारे श्रोताओं को कार्यक्रम इसीलिए आयोजित किया जाता है कि हम उन्हें रूबरू हो सके, उनके साथ
1: देख
2: पाए, आवाज सुनते रहते हैं लेकिन पर्दे के इस पार आकर वो हमें देख सकें, हमसे मिल सकें, और हम भी अपनी जिन श्रोताओं को माध्यम से सुनते रहते हैं कि वो फ़ोन हमें लगाते हैं या फिर फ़ोन इन कार्यक्रम में फ़ोन करते हैं, अपनी भागीदारी बनाते हैं, ये हमारे पास भी एक अवसर होता है जब हम अपने श्रोताओं से मिल पाते हैं।
1: जी जी, बिल्कुल, तो आपने सही कहा। तो अब कार्यक्रम थोड़ा और आगे बढ़ाएं?
2: जी बिल्कुल, हमारे श्रोता
1: कुछ चुटकुला सुनवा दो प्लीज।
2: जी बिल्कुल, आप चुटकुले की बात कर रहे हैं तो हमारे करनाल से श्रोता हैं ज्ञान भूषण शर्मा जी।
1: जी,
2: रावर करनाल के हमारे श्रोता ज्ञान भूषण शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: स्वागत है जी। ज्ञान भूषण शर्मा जी, आपसे भी एक प्रश्न पूछ लें।
3: हाँ बिल्कुल, पूछिए।
1: मुझे ये बताइए, ज्ञान भूषण शर्मा सोमनाथ कालिया,
3: हाँ जी,
1: ये इकट्ठे ही आप अपना नाम, मुझे तो कभी कभी ये लगता है जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी है ना, तो उसी तरह से ये आपके दोस्त हैं, भाई हैं, क्या हैं?
3: देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम 5वीं से लग के,
1: ओहो,
3: और मैं और सोमनाथ कालिया इकट्ठे स्कूल में 10वीं तक की, फिर कॉलेज में भी इकट्ठे ही रहे।
1: अरे,
3: ये भी मैं बात बताऊं, हम फर्स्ट ईयर में इकट्ठे फेल भी इकट्ठे ही हुए। और ये असलियत है, जब हम फेल हुए तो हमें घर वालों ने ना पढ़ाई करानी बंद कर दी, फिर हम खेती करने लगे। और सोमनाथ जी कालिया का और हमारा जो है ना, वो एक तो भाई का रिश्ता होता है ना
1: जी।
3: भाई का रिश्ता, वैसे हम दोस्त है, पर ऐसा हमारा रिश्ता है कि मैं आपको बताऊं, हमारे खेत भी बिल्कुल
1: पास पास हैं,
3: बिल्कुल इधर इनके हैं, इधर हमारे हैं, और हमारा बिल्कुल पारिवारिक भाई हमारा नाता है। और एक और मैं बताता हूँ,
1: राजदार भी होंगे एक दूसरे के?
3: राजदार हमारा कोई भी ऐसा ना, पारिवारिक ना फाइनेंशियली कोई भी ऐसा राज नहीं है, जो इनका राज मैं ना जानता हूँ, और ये मेरा राज ये ना जानता।
1: देखिए, अब आपकी धर्म पत्नियां सुन रही होंगी, और जरूर पूछिएगा धर्म पत्नियों से, मेरा आग्रह कि कौन से राज इन्होंने छुपाए हैं दिलों में।
3: और शशि जी, एक बात और बताऊंगा कि

0: हम अपनी पत्नियों के साथ इतना नहीं घूमते जितना हम दोनों दोस्त घूमते हैं।
1: क्या बात है, तभी तो मैंने कहा है कि धर्म पत्नियों से मेरा आग्रह है, वो जरूर अब आपसे ना पूछने वाली है इस कार्यक्रम के बाद कि क्या भाई क्या राज छुपा रखे हैं। शैतानियां भी इकट्ठी की होंगी आपने, तो कोई एक ऐसी शैतानी का जिक्र कर दीजिए छोटी सी जो आप दोनों ने इकट्ठी की, पकड़े भी गए जी।
0: लेकिन मैं उससे पहले सर्वप्रथम मेरी ओर से, रावर करनाल से, ज्ञान भूषण शर्मा की ओर से आप सबको प्यार भरी नमस्कार। आज आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के 35वें स्थापना दिवस के ऊपर आप सभी श्रोताओं को, सभी उद्घोषकों को और सभी कर्मचारीगण को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और परमात्मा करे ये जो हमारा आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है ये आकाश में सूरज की भांति जगमगाता रहे और हम श्रोता तारों की भांति टिमटिमाते रहें, मेरी यही भगवान से शुभकामनाएं हैं
1: जी।
0: और जैसे कि सभी जानते हैं कि आकाशवाणी ने 90 वर्ष पूरे किए हैं, तो मैं इस 90 वर्ष पूरे होने पे एक थोड़ी सी कविता सुनाना चाहूंगा।
1: जी जी
2: जी, स्वागत है।
0: 90 वर्ष की गौरव गाथा जन जन तक पहुंची जिसकी परिभाषा, 1936 से लेकर आज 2026 तक आकाशवाणी ने जोड़ा भारत को पल पल कदम कदम तक, कभी गांव की चौपाल में इसकी तान, कभी खेतों में पहुंचा किसान का ज्ञान, कभी सीमा पर वीर जवानों का हौसला बनी, कभी बच्चों की मुस्कान और कभी बुजुर्गों की साथी बनी, समाचारों से देश दुनिया का परिचय कराया, संगीत साहित्य और संस्कृति का दीप जलाया, शिक्षा स्वास्थ्य और जागरूकता का संदेश दिया, हर वर्ग हर भाषा को सम्मानित परिवेश दिया। फिर आया एक नया अध्याय, फिर आया एक नया अध्याय नई बातों के साथ, जब प्रधानमंत्री जी लेकर आए अपनी मन की बात, रेडियो के माध्यम से संवाद का सेतु बना, रेडियो के माध्यम से संवाद का सेतु बना, देश के कोने कोने को एक सूत्र में पिरोता चला, नमन आकाशवाणी को, नमन आप सब की वाणी को, 90 वर्ष के इस अमर यात्रा और जनसेवा की कहानी को। और आज जैसे स्थापना दिवस है आकाशवाणी कुरुक्षेत्र का
1: जी,
0: तो आज स्थापना दिवस के अवसर पर सब मिलकर उत्सव मनाएं, प्रेम सद्भाव और संगीत के दीप हर दिल में फिर से जलाएं, श्रोता और उद्घोषक संग संग खुशियों के गीत सुनाएं, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के यश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं, विनय श्री जी के कुशल निर्देशन में बढ़ता इसका सम्मान, महिंदर मोहन शर्मा जी के सहयोग से खिलता कार्यक्रम का उद्धान, स्नेहित रेडियो लिसनर क्लब की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, ज्ञान भूषण शर्मा सहित सभी सदस्यों की यही है मंगल कामनाएं।
1: क्या बात है, बहुत ही सुंदर।
0: आपने जैसे पहले बोला था कि चुटकला सुनाएंगे
1: जी,
0: तो मैं एक हरियाणवी चुटकला पेश करना चाहूंगा।
1: अरे स्वागत है।
0: देखो जी, मेरे जैसा एक पंडित था, बिल्कुल पतला सा मरिया हुआ सा, और बजिंदर जान जैसे झोटे की तरह पढ़ रहा ना ऐसे था। उसने अपने दादा का कराना था श्राद्ध, और बजिंदर जान आ गया मेरे पास, भाई पंडित जी दादा का श्राद्ध कराना है, कितने पैसे लगेंगे? मैंने कहा अभी ऐसे हैं, रुपये लगेंगे 2000 और श्राद्ध होएगा फर्स्ट क्लास। ये बजिंदर जान था कंजूस, बोलिया ना जी इतने पैसे तो नहीं लगते, कोई छोटा काम सस्ता कर दो। मैंने कर कुर के यूं बता दिया भी चल कोई बात नहीं, 1500 में श्राद्ध कर दूंगा। कहो ना, माने नहीं। लास्ट में फिर मैंने कहा भी तू एक काम कर, श्राद्ध ना करवा तो श्राद्धी करवा ले। उन्होंने कहा कितने पैसे लगेंगे? मैं पैसे लगेंगे सिर्फ 500 रुपए। उन्होंने कहा ठीक है पंडित जी, श्राद्धी कर दो। मैं अपना जिस दिन निश्चित होया मैं इनके घर चला गया। इन्होंने नीचे थाली थोड़ी मैंने रख रुक के, मैं कहा भाई बजिंदर बोलिया भाई बना करना क्या है पंडित जी? मैं कहा जिस तरह मैं बोलूं और जिस तरह मैं करूं तना उस तरह ही करना, और कुछ नहीं करना। उन्होंने कहा ठीक है। मैं बोलिया मैं ओम बुरबुआ तत्वित्र वरिण्यम, बजिंदर भी बोलिया ओम भूर्भुवः स्वः तत्वितर वरेण्यम, मैं चंद्रमा नमः स्वाहा, चंद्रमा नमः स्वाहा, सूर्य नमः स्वाहा, सूर्य नमः स्वाहा, सारा हो गया जी। मैंने कहा लाओ बच्चा
1: दक्षिणा
0: दो, वो कह रहा लाओ बच्चा दक्षिणा दो। मैं कहा ओ भाई दक्षिणा दे, वो बोलिया ओ भाई दक्षिणा दे। मैं कहा हद होगी यार तेरी, जब 500 में बात हुई थी 500 दे। आगे बजिंदर भी बोलिया हद होगी तेरी भाई, जब 500 में बात हुई थी तो 500 दे। मैं कहा मेरे को लगता तो न्यू नहीं मानेगा। वो कह बोलिया बजिंदर बोलिया मेरे को लगता तो न्यू

0: मानेगा। मैं फिर तू गुर्रे खा के ही मानेगा। वो बोलिया तू भी गुर्रे खा का मानेगा। मैंने तो बजिंदर को एक दरिया पेट में मुक्का, बजिंदर ने भी एक दरिया। मैंने बजिंदर को उठाकर नीचे फेंक दिया, बजिंदर ने मुझको नीचे फेंक दिया। इब मैं था जमी पतला और बजिंदर था तगड़ा। बजिंदर ने मार मार का मेरा कचुम्बर काट दिया। और जब मैंने देखा भाई पंडित तो मरेगा, मैं बजिंदर को बोलिया बजिंदर बस। कवा बस जी? कवा हाँ जी। कवा होगी सराधड़ी? कवा होगी। बजिंदर बोलिया शुक्र है पंडित जी मना श्राद्ध नहीं करवाया, नहीं तो तेरे मेरे मत आज एक मर जंदा पक्की बात।
1: बहुत बढ़िया।
2: तो शशि जी जैसे ही बात कर रहे थे कि ज्ञानभूषण शर्मा और सोमनाथ कालिया, आपने कहा कि ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी जैसी है, धर्मवीर की जोड़ी जैसी है
1: जी।
2: तो भाई ज्ञानभूषण शर्मा जी तो आ गए, तो क्यों ना हम अब अपने अगले श्रोता सोमनाथ कालिया जी को बुलाएं।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है सोमनाथ कालिया जी का तालियों से।
3: नमस्कार जी।
1: नमस्ते।
3: आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के स्थापना दिवस पर मैं सोमनाथ कालिया पूरे अपने आवाज की दुनिया के दोस्तों को सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, साथ में पूरे अधिकारियों को सबको शुभकामना देता हूँ। भगवान इसी तरह इसको तरक्की करता रहे, इसकी इसके लिए दो लाइनें लिख के लाया हूँ
1: जी। स्वागत है।
3: आवाज का यह संसार यूं ही महकता रहे, जन जन के दिलों में अपना अपना स्थान सदा खुला रहे। स्थापना दिवस अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आकाशवाणी कुरुक्षेत्र का यश हर दिन यूं ही बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे।
2: जी बिल्कुल,
1: धन्यवाद इतनी अच्छी और प्यारी सी शुभकामनाएं देने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अनुराधा, लफ्जों के इस सफर में आइए एक रंग और घोलते हैं
2: जी।
1: सीधे दिल से निकली एक और रचना सुनते हैं
2: जी।
1: आमंत्रित करते हैं यहीं की प्रस्तुतकर्ता, युववाणी कार्यक्रम में जो अक्सर आती हैं, जिनकी आवाज़ सुनकर सब बहुत तारीफ भी करते हैं और सुनना भी चाहते हैं। आमंत्रित करते हैं माइक पर
2: कविता को अपनी कविता के साथ
1: जी।
4: आकाशवाणी कुरुक्षेत्र की पूरी टीम और सभी श्रोताओं को कविता कश्यप मुंडाखेड़ा की तरफ से स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं यही दुआ करती हूं कि आकाशवाणी कुरुक्षेत्र हमेशा उन्नति करता रहे, इसी तरह श्रोताओं के दिलों पर राज करता रहे। तो प्रस्तुत है मेरी एक कविता आकाशवाणी की मधुरता। सुनिए कुरुक्षेत्र की पावन धरा से उठती यह मधुर वाणी, जहाँ सुर मिलते हैं संस्कृति से और शब्द बनते हैं कहानी। 24 जून की यह सुनहरी शुभ घड़ी जब आती है, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र अपना जन्मदिन मनाती है। मीठे सुरों की मधुर लहर हर दिल को छू जाती है, सुबह की पावन बेला में नई रोशनी लाती है। मधुर स्वरों की यह धारा मन को शीतल कर जाती है, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र जन जन की आवाज कहलाती है। वंदना से दिन की शुरुआत भक्ति का दीप जलता है, हर एक स्वर में जीवन का संदेश छलकता है। शांति स्नेह और अपनापन हर कोने में फैलाता है, यह रेडियो का स्वर हर दिल से रिश्ता बनाता है। गीता संदेश की अमर धारा जीवन अर्थ समझाती है, कर्म धर्म और सत्य की राह हर मन को दिखलाती है। किसान वाणी खेतों की मिट्टी से रिश्ता निभाती है, मेहनत कश हाथों को नया विश्वास दिलाती है। फरमाइशी गीतों में जब सुरों की महफिल सजती है, हर दिल की चाहत संगीत बनकर हवा में बहती है। युवा नेक्स्ट सपनों को उड़ान का साहस देता है, संघर्ष के पथ पर आगे बढ़ने का विश्वास जगाता है। महिला मंच नारी शक्ति का उज्जवल स्वर सुनाता है, आत्मसम्मान और साहस का दीप निरंतर जलाता है। FM 101.4 MHz की तरंगे जब जब लहराती हैं, ज्ञान संस्कृति और संगीत की खुशबू फैल जाती है। गांव शहर हर गली द्वारा जहां इसका स्वर जाता है, हर दिल में अपनापन बनकर चुपके से बस जाता है। सेवा समर्पण और स्नेह इसकी पहचान बन जाती है, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र हर जन का अभिमान कहलाती है। मीठे सुरों की यह धारा मन को शीतल कर जाती है, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र जन जन की आवाज कहलाती है। कविता कश्यप भी यही

0: नेहे दिल गीत सुनाती है, 24 जून की यह गाथा दोहराती है आकाशवाणी कुरुक्षेत्र जब अपना जन्मदिन मनाती है। धन्यवाद।
1: बहुत ही
2: बहुत ही अच्छे ढंग से अपने भावों को आपने प्रस्तुत किया कविता।
1: और अब अपनी कविता के माध्यम से इन्होंने हमारी जो पूरी कार्यक्रम की रूपरेखा है, पूरा विवरण है, वो भी दे दिया।
2: जी जी बिल्कुल।
1: अब हम अपने श्रोता रवि कुमार राहुल जी को बुलाना चाहेंगे।
2: जी स्वागत है रवि कुमार राहुल जी का। रवि कुमार राहुल जी को आपने आमंत्रित किया है, लेकिन उन्हें लेकर आ रहे हैं महेंद्र मोहन जी। देखिए तो सही जरा।
1: जी बिल्कुल।
3: जी रवि जी के बारे में एक बात कहना चाहूंगा, कभी आवाज ना आए
2: जी
3: या नाम छूट जाए।
2: ओहो,
3: रेडियो पे कभी आवाज ना आए या नाम छूट जाए तभी तुनक जाते हैं। बड़े भोले हैं, सादगी भरे, हर दिल अजीज आप हैं रवि कुमार राहुल बराड़ा वाले।
2: क्या बात है।
4: धन्यवाद।
2: धन्यवाद महेंद्र जी। हाँ जी, रवि कुमार राहुल जी के बारे में महेंद्र मोहन जी ने चंद खूबसूरत लफ्ज कहे हैं, तो अब आप बताइए कि आप आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के लिए क्या लेकर आए हैं।
4: मेरी तरफ से सिर्फ थोड़ी सी शुभकामनाएं जी।
2: थोड़ी सी नहीं, ज्यादा सी दीजिए।
4: जी जी जी जी जी। एक तो अपने 35वें स्थापना दिवस की जितना भी मेरा आकाशवाणी कुरुक्षेत्र का स्टाफ है और जितने भी आकाशवाणी को सुनने वाले मेरे बहन भाई श्रोता हैं, सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं। और ये कहता हूं, रेडियो के साथ उड़ता हूं, इसी के साथ सोता हूं। जी रेडियो के साथ उड़ता हूं, इसी के साथ सोता हूं। जब सुनता हूं नाम अपना तो बहुत खुश होता हूं।
2: क्या बात है।
4: कभी फरमाइश पूरी ना हो। जी मैडम जी, अनुराधा जी,
1: जी।
4: कभी फरमाइश पूरी ना हो, मायूसी में आपा खोता हूँ
1: जी।
4: मेरा नाता ही कुछ ऐसा है रेडियो से। शशि जी,
2: जी
4: मेरा नाता ही कुछ ऐसा है रेडियो से। जी हाँ मैं रेडियो श्रोता हूँ। जी हाँ प्रोमिला जी, मैं रेडियो श्रोता
2: हूँ। क्या बात है।
1: कहा तो रवि कुमार राहुल जी ने ये था कि थोड़ी सी शुभकामनाएं, लेकिन शुभकामनाएं तो हमें चाहिए ढेरों
2: ढेरों।
1: हमारे श्रोताओं की शुभकामनाओं के लिए ही तो हमने इन्हें यहाँ बुलाया, आमंत्रित किया है, क्योंकि ये जो अवसर है ना ये इन्हीं का है
2: जी।
1: और इन्होंने कहा कि श्रोता हैं और अपने जो भाव है ना वो भी व्यक्त कर दिए कि अगर रेडियो पे एक बार इनका नाम ना आए ना, क्योंकि हमारे कान लगे रहते हैं कि अब हमारा नाम आने वाला है, प्रस्तुतकर्ता अब हमारा नाम बोलने वाले हैं, अगर वो ना हो तो थोड़ी सी मायूसी तो आ जाती है।
2: पर मायूसी में ये आपा खो देते हैं, इन्होंने बोला है। मायूसी में तो, लेकिन हम साथ साथ ये भी जरूर कहेंगे कि देखिए गुस्सा वही होते हैं जो प्यार बहुत करते
1: जी,
2: हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और इनका ये स्नेह ही तो है, इनकी ये जज्बात ही तो है जो इन्हें हमेशा हमारे पास ले आते,
2: जुड़े रखते हैं। जी जी। तो अनुराधा जी, अब एक बच्चे को बुला लिया जाए, बाल कलाकार को।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हम स्वागत करते हैं हमारी ये नन्हे श्रोता
2: चैतन्य। चैतन्य जी स्वागत है आपका। और बड़े प्यारे श्रोता हैं, देखो कितने छोटे से हैं, एक बार तालियां बजा देते हैं इनके लिए। चैतन्य सुनाइए, क्या सुनाएंगे आज?
5: कविता।
2: कविता सुनाएंगे, चलिए सुनाइए, स्वागत है।
5: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चैतन्य पांडे। आज मैं आपको सबको सुनाऊंगा परिवार के ऊपर एक कविता। आओ तुम्हें दिखलाता हूँ एक जगह मैं ऐसी, नई दूसरी दुनिया में कोई भी उसके जैसी। ये है मेरे मम्मी पापा, ये है मेरा भैया, नाच रही वो छोटी बहन करके ताता थैया। ये सारी दुनिया अच्छी है, अच्छे हैं सब गांव शहर, लेकिन सबको प्यारा लगता, सबको अपना अपना घर। धन्यवाद।
2: क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारी कविता।
1: की और कितनी जोशीली आवाज में हमारे नन्हे श्रोता ने हमें अपनी कविता सुनाई,
2: मंत्रमुग्ध कर दिया हमें।
1: जी बिल्कुल।
2: और हमारे सारे श्रोता भी मंत्रमुग्ध हो गए इस प्यारी सी कविता को सुनकर। अब अनुराधा, हमें कहाँ लेकर जाएंगी आप, किस श्रोता के पास?
1: जी आपने हमारे श्रोता राजेंद्र कुमार उगाला जी को हम आमंत्रित करना चाहेंगे, क्योंकि
2: उगाला जगह का नाम है। राजेंद्र कुमार उगाला जी, ये कौन है?
1: ये तो हमारे श्रोता ही बताएंगे।
2: चलिए इन्हीं से पूछते हैं। राजेंद्र कुमार जी, उगाला जगह का नाम है या आप अपने नाम के साथ लगाया है?
6: ये जगह का नाम है।
2: जगह का नाम है अनुराधा, मैं ठीक थी बिल्कुल।
1: जी बिल्कुल। तो फिर हम अपने श्रोता राजेंद्र कुमार जी को हार्दिक स्वागत करते हैं इनका, जो उगाला से आए हैं।
2: जी क्या सुनाएंगे

0: आज
1: मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा जी।
0: शुभकामनाएं दीजिए, उनकी तो बहुत जरूरत रहती है, क्योंकि आपकी शुभकामनाओं से ही ये स्टेशन जो है आकाशवाणी कुरुक्षेत्र जो है वो दिन प्रतिदिन तरक्की की राह पर अग्रसर है। स्वागत है
1: आवाज की दुनिया के प्यारे दोस्तों को। राजेंद्र कुमार गांव उगाला की ओर से प्यार भरी राम राम नमस्कार जी।
0: नमस्ते।
1: आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के स्थापना दिवस 24 जून की आप सभी अधिकारियों, उद्घोषकों और सभी श्रोताओं को मेरी ओर से हार्दिक अनंत शुभकामनाएं। मेरी परम पिता परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि आकाशवाणी कुरुक्षेत्र भविष्य में दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करे और ऐसे ही हम सभी का स्वस्थ मनोरंजन, सूचना और शिक्षा करता रहे। हमें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आप सभी महानुभावों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं जल के ऊपर एक कविता लेकर आया हूँ
0: जी।
1: पानी है जीवन की धार, जिससे जुड़ा है सबका संसार। पानी बिना हो जाएंगे वीरान, नदी नाले और खेत खलियान। बूंद बूंद मत करो बेकार, इनसे जुड़ी हैं खुशियां अपार। ये है जीवन का आधार, ये है जीवन का आधार। धन्यवाद।
0: क्या बात, दो पंक्तियों में इन्होंने कितना सुंदर जल बचाने के लिए संदेश दिया है, जो कि आज की जरूरत भी है।
2: जी बिल्कुल, क्योंकि पानी के बिना तो हम किसी भी जीवन की कल्पना नहीं कर सकते
0: जी।
2: और पानी को आज बचाना बहुत जरूरी है
0: जी।
2: और इन्होंने अपनी इन चार पंक्तियों में ही हमें बहुत सुंदर संदेश दिया। धन्यवाद
0: जी। और अब अनुराधा की गाड़ी किस श्रोता के पास जा रही है
2: जी? हमारी ये जो नन्ही श्रोता है ना,
0: बाल कलाकार।
2: जी बिल्कुल, बाल कलाकार, इनका नाम है
0: आरती।
2: तो आरती, स्वागत है आपका, क्या सुनाना चाहेंगी?
3: मैं आपको जल के ऊपर कविता सुनाना चाहती हूँ
2: जी।
3: जल ही जीवन है, पानी है गुणों की खान। पानी है तो सब कुछ है, पानी है धरती की शान। रुपया पैसा धन दौलत कुछ काम न आएगा, धरती पर हर इंसान पानी पानी चिल्लाएगा। बच्चे बूढ़े और जवान, पानी बचाओ बनो महान।
0: जी
2: जी बिल्कुल,
0: बहुत ही बढ़िया संदेश। और वही
2: हमारे ये नन्हे श्रोता भी जानते हैं कि अगर हम पानी को बचाएंगे तभी हम जीवन को बचा पाएंगे। और अगर ये छोटे बच्चे भी आज जागरूक हैं,
0: भारत का जो भविष्य है वो उज्जवल है
2: जी। बिल्कुल
0: जी।
2: तो अब हमारे एक श्रोता जो करनाल से आए हैं, सुधीर नूतन जी, ये हमें शेर व शायरी सुनाना चाहेंगे।
0: अरे क्या बात है, यानी कि जो महफिल का रंग है बदलने वाला है, शेर व शायरी की दुनिया में हम प्रवेश करने वाले हैं। सुधीर नूतन जी, स्वागत है, तालियों से।
4: मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, बहुत पुराने लिसनर आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के।
0: कितने पुराने? सन 91 से। अरे क्या बात है, जब आकाशवाणी कुरुक्षेत्र स्थापित
4: हुआ था
0: जी, तभी से आप हमसे जुड़े हैं जी। सुधीर नूतन जी, क्या सुनाएंगे आप?
4: 35वें जन्मदिन की सब दोस्तों को और आरजी को बहुत बहुत बधाई। एक शेर सुनाऊंगा मैं। फूल है गुलाब का तोड़ा नहीं जाता, फूल है गुलाब का तोड़ा नहीं जाता
0: जी।
4: आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से मोहब्बत है, छोड़ी नहीं जाती।
0: क्या बात है,
4: शुक्रिया जी।
0: और हम आपके लिए सुधीर नूतन जी जरूर कहना चाहेंगे कि आवाज हमारी हवा के परों पर सजकर आप तक आती है, पर आपकी मोहब्बत है जो इसे खूबसूरत बनाती है।
2: जी क्या बात है, क्या बात है
0: जी। बहुत खत लिखते थे, पहले खतों का जमाना था, धीरे धीरे तकनीक विकसित होती जा रही है अनुराधा, और अब ईमेल, व्हाट्सएप, फोन इन कार्यक्रम।
2: कुल अब तो हमारे श्रोता हमसे लाइव बातचीत करते हैं और ईमेल के माध्यम से अपनी प्रतिक्रियाएं, जो भी बात होती है, हम तक पहुंचा देते हैं
0: जी
2: जी।
0: और अब चलें अगले श्रोता की तरफ जी, बाल कलाकार हमारे इंतजार कर रहे हैं।
5: मेरा नाम पार्थ है,
0: पार्थ।
5: मैं कैथल से आया हूं। आज मैं आपके सामने दोहों को प्रस्तुत करना चाहूंगा।
0: स्वागत है।
5: जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कदरी सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन। जैसी संगते बैठे वैसी फल दीन। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए।
0: क्या बात,
5: धन्यवाद।
0: तो आकाशवाणी भी इसी लिए है कि ऐसी वाणी बोलिए जिससे कि सब खुश हो जाएं।
2: जी बिल्कुल, और हमारी सभी की कोशिश भी रहती है कि हम अपने श्रोताओं तक वही जानकारी, मनोरंजन, गीत संगीत और पूरी दुनिया की बातें अपने श्रोताओं तक पहुंचाएं
0: जी।
2: लेकिन अभी हमारे एक श्रोता अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए बड़े आतुर हैं। तो अब हम बुलाना चाहेंगे हमारे श्रोता विजेंद्र जयजान जी को।

0: विजेंद्र कुमार जयजान, स्वागत है आपका विजेंद्र कुमार जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी।
0: जी
1: और जी, मैं सबसे पहले तो आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के 35वें स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और मैंने कुछ लाइन है आकाशवाणी के ऊपर और एक गजल है छोटी सी बाद में जी।
0: जी,
1: 35 वर्षों से गूंज रही है जन जन की मधुर पुकार, 35 वर्षों से गूंज रही है जन जन की मधुर पुकार, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र ने पाया श्रोताओं का अपार प्यार, विनय श्री जी के कुशल निर्देशन में बढ़ता इसका मान, विनय श्री जी के कुशल नेतृत्व में निर्देशन में बढ़ता इसका मान, महेंद्र मोहन शर्मा दीपक जी संग होता नव निर्माण, राजेंद्र कुमार रमेश आर्य ने तकनीक का दीप जलाया, राजेंद्र कुमार रमेश आर्य ने तकनीक का दीप जलाया, हर कार्यक्रम को बेहतर करके श्रोताओं का मन हर्षाया,
0: क्या बात है,
1: सुबह सवेरे की मधुर किरण बन प्रमिला सेनी मुस्काती, सुबह सवेरे की मधुर किरण बन प्रमिला सेनी मुस्काती, सदा बहार के सुरों में प्रदीप यादव के फूल खिलाते हैं, अनुराधा मोहन आरती गुप्ता श्वेता जैन की प्यारी वाणी, अनुराधा मोहन आरती गुप्ता श्वेता जैन की प्यारी वाणी, शशिवाला संधा मिश्रा दीपा पांडे की मधुर कहानी, महक बिखेरे खुशबू अपनी राजीव दे पहचान, महक बिखेरे खुशबू अपनी राजीव दे पहचान, विपिन सहगल कपिल बत्रा संतराम बढ़ाई सम्मान, भारती जांगड़े के स्वर से गूंजे हर पल नई उमंग, भारती जांगड़े के स्वर से गूंजे हर पल नई उमंग, श्रोताओं के मन में भरते खुशियों के अनगिनत रंग, युवाणी की उड़ानों में रूबी नई दिशा, युवाणी की नई उड़ानों में रूबी देती नई दिशा, योग माया रचना सलमा सुल्तान बढ़ाए ज्ञान की परिभाषा, कविता ज्योत्समा राजेश जंगड़ा सरोज शर्मा का योगदान, कविता ज्योत्समा राजेश जंगड़ा सरोज शर्मा का योगदान, नवीन भारद्वाज संघ मिलता युवाओं को नया सम्मान, ऐसा देश है मेरा गाकर पुरुषोत्तम गौरव गाते हैं, ऐसा देश है मेरा गाकर पुरुषोत्तम गौरव गाते हैं, भारत की गाथा सुनकर संस्कृति से जुड़ जाते हैं, किसान वाणी के मंच से फिर गिरधारी ज्ञान बांटते हैं, किसान वाणी के मंच से फिर गिरधारी ज्ञान बांटते हैं, विनोद अनिल किशन मिलकर खेती की राह दिखाते हैं, यह केवल केंद्र नहीं परिवार है भाव संसार, यह केवल केंद्र नहीं परिवार है भाव का संसार, जहाँ शब्दों से रिश्ते बनते मिलता सबको प्यार, जन्म दिवस पर करे प्रण हम बढ़े सदा इसका सम्मान, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र चमके जैसे नवमे उज्ज्वल भान, श्रोताओं के प्रेम ने सींचा यह अनुपम गुलशन प्यारा, श्रोताओं के प्रेम से सींचा यह अनुपम गुलशन प्यारा, 35 वर्षों की इस यात्रा को सत सत नमन हमारा।
0: क्या बात है, क्या बहुत
2: जी, बहुत ही बढ़िया विजेंद्र जयजान जी, आपकी कविता ने तो हमारा मन प्रफुल्लित कर दिया,
0: क्योंकि देखिए ना, इतने सभी जितने भी आकाशवाणी के कार्यकर्ता हैं, प्रस्तुतकर्ता हैं, सभी का नाम इन्होंने लिया, इतना याद रखना, उनके बारे में लिखना, ये कोई एक आम बात तो है नहीं
2: जी, बिल्कुल
0: कुछ खास है,
2: आपने बिल्कुल सही कहा, और उसी से तो हमारे जो चेहरे है ना उन पर एक अलग मुस्कान आ गई है
0: जी। और अब ये कुछ और भी सुनाना चाहते हैं
1: जी, छोटी सी गजल है
0: जी,
2: स्वागत है।
1: सनम की याद बाकी है लबों पर प्यास बाकी है, सनम की याद बाकी है लबों पर प्यास बाकी है, मिलेंगे तोड़ कर बंधन मिलन की आस बाकी है, कभी जो खाई थी कसमें किए थे जो कभी वादे, कभी जो खाई थी कसमें किए थे जो कभी वादे, अभी उन कसमें वादों को निभाना और बाकी है, सता ले अपनी यादों में सनम तू जितना सता सके, सताले अपनी यादों में सनम तू जितना सता सके, अभी तो होना उल्फत में सनम बदनाम बाकी है, न खेलो यूं मिचोली आँख तुम मुझसे दिले जाना, न खेलो यूं मिलो मिचोली आँख तुम मुझसे दिले जाना, अभी तो होना सूरत का सनम दीदार बाकी है, चले जाएंगे दुनिया से किसी दिन तोड़ कर रिश्ता, चले जाएंगे दुनिया से किसी दिन तोड़ कर रिश्ता, मेरे सीने में है जयजान अभी कुछ सांस बाकी है, धन्यवाद।
0: क्या कहने हैं, थोड़ा सा माहौल को गमगीन और गंभीर कर दिया इन्होंने कि चले जाएंगे दुनिया से तो रिश्ते नहीं टूटते हैं, दुनिया से तो हर इंसान ने जाना है, लेकिन रिश्ते जो हैं वो कायम ही रहते हैं, सदियों सदियों तक चलते हैं। जयजान जी, जी अनुराधा, अब आप कौन से श्रोता को आमंत्रित करने जा रही हैं?
2: जी, हमारी एक और श्रोता है और अपनी कविता लेकर वो आई है, आप दीजिए अपना परिचय।
3: मैम पूनम है मेरा नाम।
0: पूनम नाम है आपका, बड़ा

0: प्यारा सा नाम है पूनम, अच्छा लगता है। वो कहते हैं ना पूनम की रात, क्या सुनाएंगी पूनम?
1: मैम एक कविता है।
0: कविता सुनाइए, स्वागत है।
1: आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के सभी स्टाफ सदस्यों और सभी श्रोताओं को पूनम कश्यप मुंडा खेड़ा की तरफ से स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यही कामना करती हूँ आकाशवाणी केंद्र कुरुक्षेत्र हमेशा उन्नति करता रहे। इस अवसर पर प्रस्तुत है एक कविता जिसका शीर्षक है बेटी की आवाज। हम कुछ बोलने से पहले न जाने क्या बोलकर चले गए, वो ऐसे कौन से दिन थे जो रात होने से पहले चले गए। कितनी ममता थी वो माँ की नाज होता था बेटियों को, कितनी ममता वो बिछुड़ गई कि आज तो तबाही ही मिलती है बेटियों को। खुदा रूठ गया बेटियों का, बात ये क्या हुई, जवाब दे ना रहा कोई इसका, बात ये क्या हुई। आज ये कौन सा मंजर है, आज ये कौन सा मंजर है कि केवल बेटियों को ही खाई जा रहा है हर कोई। ऐसा कौन सा खुदा है, ऐसा कौन सा खुदा है जो मेरे मरने के बाद भी मुझे बचाने आ रहा है कोई। उस कंस की बात क्या दोहराऊं, उस कंस की बात क्या दोहराऊं, रहा में मुझे छोड़ गया है कोई। बात कहूं किसकी, बात कहूं किसकी, कफन ओढ़ने से पहले कफन उतार ले गया है कोई। वो कृष्ण सी ममता कहां से लाऊं कि द्रौपदी के अरमानों को समझ सके कोई। कहां से लाऊं वो आंसू, कहां से लाऊं वो आंसू कि मेरे आंसुओं को समझ सके कोई। अब कौन कौन सा इतिहास दोहराऊं कि नारी अबला नहीं है सोई। जहन में उतर कर तो देखिए इतिहास में क्या लिख गया है कोई। कबर पे मेरी दीप जला रहा है कोई, कबर पे मेरी आंसू बह रहा है कोई। अ खुदा मुझे थोड़ी सी जिंदगी और दे दे, मेरी कबर से लौट कर जा रहा है कोई। जय हिंद जय भारत।
2: इतनी कम उम्र में आपने इतनी गंभीर कविता सुना दी हमें पूनम जी।
0: जी बिल्कुल, लेकिन बहुत अच्छा लिखा था आपने। अब जल्दी से बताइए कि अगले किस श्रोता को आमंत्रित कर रही हैं?
2: जी हमारे श्रोता हैं बंसीलाल जी, उन्हें अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे, वे अपनी शुभकामनाएं देंगे।
0: जी बंसीलाल जी स्वागत है आपका, आइए।
3: नमस्कार जी, मैं बंसीलाल।
0: नमस्ते।
3: ग्राम तेजा मोड़ी जिला अम्बाला जी, 35वें स्थापना दिवस की सबको मुबारकबाद।
0: आपको भी?
3: हाँ जी, बस यही मुबारकबाद देना चाहता हूँ।
0: क्या
3: सारे स्टाफ को? एक थोड़ा चुटकुला सुना
2: जी, बिल्कुल स्वागत है।
3: एक बारी हमने एक तरबूज खरीदा।
0: तरबूज?
3: हाँ, खरबूजा पड़ा,
0: खरबूजा,
3: तरबूज,
0: तरबूज।
3: हाँ जी, उसमें से एक जिन निकला।
0: जिन?
3: हाँ जी।
0: अरे बाप रे।
3: और कहा बोलो जाका क्या चाहिए। मैंने कहा भी क्या पूछे यार, मगर जी हमको एक कोठी बनवा के दे दो।
0: अच्छा,
3: मेरे पास कोठी बनवाने का तजर्बा नहीं है, जब कोठी मैं बनवाता मैं तरबूज में क्यों रहता।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
2: और अब हम अपने कार्यक्रम में अपने जो श्रोता हैं जयपाल धीमान जी।
0: जी जयपाल धीमान जी,
2: इनका स्वागत करना चाहेंगे।
0: स्वागत है जयपाल धीमान जी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। तो जयपाल धीमान जी, आज आप हम सबके लिए क्या लेकर आए हैं, क्या सुनाने वाले हैं?
4: आकाशवाणी के 35वें स्थापना दिवस की सारे स्टाफ और आए हुए सभी श्रोतागण को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आजकल ऐसा है भी समय तो किसी के पास इतना है नहीं
0: जी,
4: समय निकाल के कोई आया और बहुत दिनों के बाद हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं
0: जी,
4: ये भी एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। समय के ऊपर एक बात मेरी याद आ गई, वो एक भाई साइकिल पकड़ के यूं और पैदल पैदल भाग रहा, ऊपर नहीं चढ़ रहा, वो पैदल पैदल भाग रहा। एक बोला भाई कहा बात सुनिए, बोला भाई टाइम नहीं आ। अरे कहा थोड़ा सा रुक तो ले, बात तो सुन ले, बोले टाइम होता मैं इस पर चढ़ लेंदा। टाइम नहीं आ बिल्कुल।
0: क्या बात है
4: भाई, टाइम की बड़ी कमी है, क्या करे। वो एक मरीज डॉक्टर के पास गया, बोले जी डॉक्टर साहब मैंने एक के दो दिखा। डॉक्टर ने क्या करे अपने चश्मा उतारा, बोले भाई तुम्हें तो चारों ने एक ही बीमारी है।
2: क्या बात है, क्या बात है, बहुत
0: डॉक्टर साहब से तालियां बजाइए एक बार।
4: एक डॉक्टर की दुकान के गाड़ी खड़ा होगा यूं देख रहे बाहर से, काफी देर हो देख रहे खड़ा, तो अंदर से एक मैडम आई।

0: बेवकूफ,
1: तू इन औरतों ने घूम घूम का क्या देख रहा गोर गोर का? बोले तो मैं तो लिख रखा आई हूँ औरतों ने देखने का टाइम जो है 10 बजे के बाद है।
2: 10 बजे के बाद
1: तो चुटकुले बहुत हैं
2: जी।
1: जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा,
2: वो भारत देश है मेरा। क्या बात है, क्या बात है।
1: जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का नित नित गर्दा डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। एक बस में बैठा संत, तो आ गया कंडक्टर, टिकट ले। बोले टिकट कैसी? मैं संत हूँ, टिकट कैसी? बोले टिकट तो लेना पड़ेगा। देखा ऐसा सुना बात ऐसी है ना, भी देश की सारी संपत्ति मारी है, वो लिख रखा दे गया भाई, देश की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है। फिर बोले जी ये बस मारी है, यो देश मारा, ये सारी संपत्ति मारी है, फिर यो जो है टिकट क्या करेंगे
3: जी? टिकट भी तो आपकी ही है, वो भी ले लीजिए।
1: वो एक सिपाही बैठा था महात्मा उरा नीचा उतर सड़ा तार लिया। बोले क्या कर रहा? कहा यह जी सारी संपत्ति मारी है, यह बस में तो मारी है। कहा चला मेरे गिर। बोले कहाँ? बोले जेल में। जेल में क्या करेगा? बोले जेल भी तो मारी थारे बा। बोले जेल भी तो मारी है। हाँ
2: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।
1: और गाने का तो मेरे को बहुत शौक था, वैसे है, पर कोई ये जाचत गाने गुने की यहाँ नहीं।
2: नहीं नहीं, बिल्कुल आप गाइए, 2 पंक्तियाँ गुनगुना दीजिए। पूरा एक लंबा गाना नहीं, हम वक्त इसकी इजाजत नहीं देगा, लेकिन 2 पंक्तियाँ गुनगुना दीजिए।

0: निशाना ढूंढेगा, अरे मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, दिल का सुना सा तराना ढूंढेगा।
1: क्या बात, क्या बात। इन गीत की पंक्तियों के बिना तो हमारा कार्यक्रम ही अधूरा था। बहुत ही सुंदर आपने ये गुनगुनाई और चुटकुलों से जो आपने हंसी के जो ठहाके यहाँ पर गूंजे हैं महफिल में, भाई धन्यवाद तो बनता है आपका। बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।
2: और हमारी एक प्रस्तुतकर्ता हैं, हमारी साथी हैं, वो अब अपनी रचना के साथ आना चाहती हैं, तो उनका स्वागत
1: दीपा जी का। दीपा जी से जुड़ी ना एक बात मुझे याद आ रही है। एक दफा दीपा और मैं गाड़ी में जा रहे थे, पेट्रोल पंप पे गाड़ी रोक ली इन्होंने, कहने लगी एक रुपए का पेट्रोल डाल दो। तो वो पेट्रोल वाला, और मैंने तो मुंह छुपा लिया कि मैं इन्हें जानती नहीं, लेकिन पेट्रोल वाले ने पूछ लिया, भाई इतना सारा पेट्रोल डलवा कर कहां जाओगी? तो बोली कुछ नहीं, हम तो यूं ही पैसे उड़ाते रहते हैं। तो ये दीपा जी की बात है। चलिए दीपा जी सुनाइए, क्या सुनाएंगी?
3: सबसे पहले तो यहाँ आकाशवाणी परिसर में मौजूद हमारे सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो दोस्त दीपा पाठक का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो नहीं है, बल्कि ये हमारे परिवारों का एक अटूट हिस्सा है। 24 जून का दिन हम सभी के लिए एक बेहद खूबसूरत और ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि यही वह दिन है जब आकाशवाणी कुरुक्षेत्र अपने प्यारे श्रोताओं के दिलों से जुड़ा था। तब से लेकर आज तक यह आवाज आपके सुख दुख सभी की साथी है। आपके बिना हमारा ये सफर अधूरा है, क्योंकि आप श्रोता ही हमारी असली ताकत और पहचान है। और इसी रिश्ते को बयां करती हुई कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाती हूँ।
1: स्वागत है।
3: आकाशवाणी का ये रिश्ता सिर्फ एक आवाज नहीं, बल्कि अपने श्रोताओं से एक गहरा जुड़ाव है। 24 जून का यह पावन दिन जब आकाशवाणी ने कुरुक्षेत्र से नाता जोड़ा था, सच्चे सुरों की लहरों ने हर एक उदास दिल को मोड़ा था। आपके खत, आपकी बातों और आपके ईमेल से आता ढेर सारा प्यार, यही तो है हमारी दुनिया, हमारा संसार। आप हैं तो हम हैं, आपसे ही हमारी हर सुबह हर शाम है। प्यारे श्रोताओं, आपके इस साथ को दीपा पाठक का दिल से सलाम है। आइए इस पवित्र रिश्ते को सदा बनाए रखें। आकाशवाणी कुरुक्षेत्र की इस महफिल को

0: आकाशवाणी कुरुक्षेत्र को ऐसी ऊंचाइयों पर बनाए रखे। एक छोटी सी कविता है, पति और पत्नी में अंतर। मैं सोता हूँ घर में शांति छा जाती है, वो सोती है घर में सूनापन छा जाता है। मैं घर लौटता हूँ घर में शांति आ जाती है, वो घर लौटती है घर में रौनक हो जाती है। मैं सोकर उठता हूँ घर में फरमाइशें गूंजती हैं, वो सोकर उठती हैं घर में पूजा की घंटियां गूंजती हैं।
1: क्या बात!
0: मेरा घर लौटना उसका आत्मविश्वास बढ़ाता है, उसका घर लौटना घर में लक्ष्मी व अन्नपूर्णा का वास होता है। पत्नी चुटकुलों में उपास की पात्र नहीं है, वो मेरी हम सफर, मेरी रक्षक व मेरे परिवार की शक्ति है।
1: क्या बात! बहुत बढ़िया, बहुत ही
2: बढ़िया राजकुमार पुजारा जी। तो आपने तो हमारे जो देश की संस्कृति है उसका जो एक मैसेज है वो हमारे सभी श्रोताओं तक दे दिया कि जिस तरह से आपने अपनी पत्नी, अपने जीवन साथी, अपनी जीवन संगिनी के बारे में कहा है, वैसे ही हमारे जो सभी सुनने वाले हैं वो समझेंगे कि जो ये बात है ना, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ति तत्र देवता,
1: बिल्कुल सही।
2: इसको इसी तरह से सार्थक किया जा सकता है जब अपने जीवन साथी को आप ऐसा मान और सम्मान दें।
1: बिल्कुल। अब अनुराधा जी हमें किस श्रोता के पास लेकर जाएंगी?
2: जी हमारे श्रोता हैं, शुभकामनाएं लेकर आए हैं हमारे लिए रणधीर जी, इनका बहुत बहुत स्वागत है।
1: रणधीर जी आपके खास दोस्त हैं, जब भी आप हमें फोन मिलाते हैं आप उनका नाम बोलते हैं और वो हमें फोन मिलाते हैं तो वो आपका नाम बोलते। इंदर राज जी वो कहाँ है?
3: वो बीमार हो रहे बहन जी।
1: बीमार हो रहे? हाँ। इनकी बातचीत एक बार मैंने अनुराधा जी चुपके से सुन ली
2: जी।
1: क्या बात कर रहे थे इंदर राज जी? इनसे क्या कह रहे थे? यार खिड़की से देखा तो रास्ते पे कोई नहीं था, खिड़की से देखा तो रास्ते पे कोई नहीं था, फिर रास्ते पे जाकर देखा तो खिड़की में कोई नहीं था।
2: जी ये दोनों खिड़की में थे और कभी रास्ते में थे क्योंकि एक दूसरे से दूर तो होते नहीं।
3: नहीं बहन जी, मेरा उसका इसी बड़ा प्यार है। और कहते हैं ना, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार
1: है। जी जी।
3: मैं एक छोटा सा चुटकुला सुनाऊंगा।
1: अरे वाह क्या बात है, सुनाइए।
3: मैं रणधीर सिंह बांगड़, गाँव जिगोड़ी, जिला यमुनानगर से आकाशवाणी परिवार को, सभी श्रोताओं को स्थापना दिवस की बधाई देता हूँ। मैं भक्त तो हूँ नहीं बहन जी, कहते हैं भक्त तो रहेंगे भक्ति में मगन, भक्त तो रहेंगे भक्ति में मगन, सर पर रहे सदा मालिका हमारे गगन
1: जी।
3: गगन का मतलब आकाश,
1: आकाश।
3: भक्त तो भक्ति के लिए करते रहेंगे प्रयास, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र आती रहे हमको रास, हम करते रहेंगे इसको पास
1: जी। क्या बात,
3: धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब अनुराधा जी आपकी जो लिस्ट है उसमें कौन से श्रोता का नाम लिखा है आपने?
2: जी हमारे अगले श्रोता हैं, वो कविता लेकर आए हैं मंजीत जी, और ये हमें अपनी कविता सुनाएंगे।
1: स्वागत है मंजीत जी आपका।
4: धन्यवाद जी, और आकाशवाणी के 35 वर्ष पूरे होने पर शुभकामनाएं, और भारत में 90 वर्ष पूरे होने पर भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं
1: जी।
4: मैं गाँव ज्योतिसर से आया हूँ
1: जी।
4: मैं आपके सामने पहले तो एक छोटा चुटकुला सुनाता हूँ, फिर कविता सुनाती। तो एक मेहमान था, वो घर से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। तो उनके घर वाले ने सोचा कि इसका है ना भाई, ये कैसे जाए, इसको तरकीब बनाई जाए। तो उसने शाम ने वो बतलाया कि आप ने पड़ोसी का लड़का लेके चले जाना और मैं खेत में डिगर जाऊंगा। तो दोनों के दोनों है ना, जब हम आएंगे ना वापिस तो मेहमान अपने आप चला जाएगा। उन्होंने उसी तरकीब के अनुसार गए। तो उन्होंने जब वो गए और फिर वापिस आए तो उन्होंने बोले, मैं मर्द बड़ा होशियार बड़ा कड़के का, मैं बल दाने लेकर गया था खेत में ही बढ़ियासू तड़के का। तो आप कह, मैं वीर घनी होशियार बड़ी कड़के की, मैं छोरा ने लेकर गई थी पड़ोसिया का ये बड़ी सू तड़के की। तो ये आए और फिर जो मेहमान उनका डट रहा था ना, उन्होंने बोला, मैं मर्द घना होशियार बड़ा कड़के का, तारी सारी खीर खाया बेहोश बढ़ियासू तड़के का। तो ये तो इस तरह का भी मतलब बहुत सारी जगह ऐसा देखने को मिलता है। ऐसी एक ने सवारी चढ़ ली चंडीगढ़ की बस में, तो बस स्टैंड पर उतर कर ने बोली, भाई मैंने एक अखबार दे दी। बोला, तो हिंदी का लेगा अंग्रेजी का? उन्होंने बोला, मैं तो कोसा ही दे दे, मैं तो रोटी लपेटनी है। तो 90 वर्ष के ऊपर एक छोटी सी कविता लिखी थी। 90 साल हो लिए भाई आकाशवाणी चालस से, देश प्रदेश की खबर सुनाओ सच्ची बात बताओ से, जब ना टीवी ना मोबाइल ना इंटरनेट का जाल था, रेडियो का एक बटन भाई सारे जग का हाल था
1: जी।
4: सुबह सुबह जब भजन बजे थे मन में जोत जगावे, बुजुर्ग जवान और छोरा छोरी सारे कान लगावे, खेती बाड़ी की नई तरकी किसाना ने समझाई थी, बीज खाद और पानी बचाने की बड़ी आरा दिखाई थी, फौजी भाई सीमा ऊपर जब दुश्मन तक लड़ते थे, आकाशवाणी पहले संदेश उनके उसले बढ़ते थे, रागनी सांग और किस्से कहानी गांव गांव पहुंचाए थे, हरियाणा की मिट्टी गीत

0: में सुनाए थे, कदे लक्ष्मीचंद कदे मांगे और कदे धनपत की वाणी, कदे लोक कला की शान, कदे वीरा की गाथा गाई और बढ़ाया देश का मान। बरखा सूखा आंधी तूफा हर संकट की बात कही, जनता ने जागरूक करके हर सेवा दिन रात करी। 90 साल का यो सफर से छोटी मोटी बात नहीं, जन जन के दिल में बसगी इसी कोई इसकी कोई जात नहीं। आज भी इसकी मिठी बोली सीधे दिल ने जाओ से, भारत माता की आवाज घर घर गूंज सुनाओ से, आओ मिलकर मान बढ़ाओ। इस बुढ़े बरगद का 90 साल हो लिए, छाव मिली से इस जनजन का, दुआ करा भगवान ते भाई उम्र 1000 साल रहे, आकाशवाणी भारत माता की सदा ऊंची ढाल रहे। गांव बावड़ में जामया से एक ज्योति सर इसकी शान से, देसी बोली और देश लोक संस्कृति एक इसके पहचान से, आकाशवाणी की महिमा ने शब्दा में सजाया, रागनीगार मंजीत ने दिल तयू बनाया।
1: बहुत अब मंजीत जी के बाद आप किधर को ले चलेंगी हमें, सफर कहाँ जाएगा अब हमारा, किस श्रोता के पास?
2: जी हमारे श्रोता हैं, कॉल कैथल से आए हैं, अशोक कुमार भारद्वाज जी, इनका स्वागत है।
1: स्वागत है अशोक जी।
3: मैं अशोक कुमार भारद्वाज, गांव कोल, जिला कैथल से आकाशवाणी का नियमित श्रोता। आकाशवाणी स्थापना के 35वें दिवस पर आकाशवाणी के सभी स्टाफ वासियों को और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पहले हम रेडियो पर सुनते थे सभी कार्यक्रम, लेकिन अब मोबाइल ऐप के जरिए देश में नहीं विदेशों में भी इनके कार्यक्रमों की प्रस्तुत किया जाता है। और अंत में ये कहता हूं कि ये कार्यक्रम दिन दुगुनी रात चौगुनी उन्नति करे, सभी प्रस्तुतकर्ता बहुत ही मीठी आवाज में प्रस्तुत करते हैं। मैं एक भी प्रस्तुतकर्ता की तारीफ नहीं करूंगा, सभी प्रस्तुतकर्ता इतनी मीठी आवाज़ में प्रस्तुत करते हैं कि इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। सभी श्रोताओं को और आकाशवाणी स्टाफ को अशोक कुमार भारद्वाज की तरफ से प्यार भरी नमस्कार
1: और धन्यवाद अशोक कुमार भारद्वाज जी।
2: तो हमारे ये श्रोता थे, स्वागत करते हैं हमारी हस्ती मुस्कुराती सखी
1: प्रमिला सैनी का।
4: कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं भावनाओं से बनते हैं, कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं भावनाओं से बनते हैं, कुछ यादें समय के साथ नहीं मिटती बल्कि और भी गहरी हो जाती है। अगर मैं बात करती हूँ रेडियो के साथ रिश्ते की, तो वो मेरा शायद मम्मी के गर्भ से ही है, क्योंकि मेरे पापा फौजी थे तो हम लोग बचपन से ही रेडियो सुन के ही पले बड़े हैं। आकाशवाणी मतलब एक रेडियो नहीं है, आकाशवाणी एक ऐसी चीज है जिससे हम जुड़े हुए हैं, हमारी अंतरात्मा जुड़ी हुई है, ये हमारी जान है। और जैसे हमारे श्याम गुप्ता सर बोलते थे कि जब आप माइक पे बोलते हो तो ये मत सोचो कि आपके आगे कौन है, माइक ही आपकी दुनिया है, उसके साथ खूब बातें करो, खुल जाओ उसके साथ। तो मेरी कोशिश यही रहती है। तो मैंने कविता लिखी थी, कोशिश की है, मेरी जिंदगी मेरा वजूद है आकाशवाणी, मेरी जिंदगी मेरा वजूद है आकाशवाणी, दिल की हर धड़कन में, दिल की हर धड़कन में बस गई आकाशवाणी। बाल मन की बगिया सजती है बाल सभा में, बाल मन की बगिया सजती है बाल सभा में, यौवन की धैर्य पर खड़ी मुस्काती युवाणी। शक्ति में जोश का संचार करे, शक्ति में जोश का संचार करे, गीतों जानकारी की बौछार करे, बहनों का असली मंच है ये, ऐसा अपना शक्ति मंच है ये। दिव्यांग भाइयों का स्वाभिमान है, दिव्यांग भाइयों का स्वाभिमान है, बसा हम किसी से कम में नहीं में, दीपक सर की वो एक पहचान है। साप्ताहिक कार्यक्रम धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे जब चला, अमरीक सिंह सुनाता और हर कोई सुनता चला। किसान भाइयों का अन्नदाता है, किसान भाइयों का अन्नदाता, लोक संगीत से जिसका है नाता, भक्ति भाव से दिन शुरू होता है, रामचरित्र मन मोह लेता है, कान्हा की ओजस्वी स्वर है गीता और देता है वो अपना संदेश, सुबह सवेरे में श्रोता भी होते, प्रश्न का उत्तर देते और चैन में अपना खो जाते। तो आगे है, शनिवार रविवार को संगीत से भर देता जब दिल पुकारता, जोर शोर से फिर बजता नगाड़ा जब आता बाजा ये नगाड़ा, आपकी बात को पहुंचाता आकाशवाणी, हर दिल में बजता आकाशवाणी, संकेत धुन बजती रहे दिलों में, मन में वंदे मातरम चलता रहे। तो इसीलिए आप सबसे हाथ जोड़कर यही विनती है कि आप हमारे साथ यूं ही बने रहें, और जो सारे साथी हैं हम सब मिलकर अपने श्रोताओं के लिए ही हैं। तो आखिर में आप सबको आकाशवाणी कुरुक्षेत्र की 35वें वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: तो बहुत ही अच्छा प्रमिला जी, आपने कविता भी साथ साथ सुनाई, अपने अनुभव भी साथ साथ हमसे साझा किए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अनुराधा जी कहाँ पर लेकर जाएंगी हमें?
2: जी हमारे साथ ही हैं अमन।
1: अमन और अमन की भी एक दोस्ती है पक्की पक्की मनीष से, जानते हैं ना आप,
2: तो वो साथ साथ
1: देखिए साथ साथ बैठे हैं, तो इनकी भी बातें मैंने छुपकर सुनी थी। अमन जी कह रहे थे, बताएं आपको?
2: जी बिल्कुल,
1: आप इंटरेस्टेड हैं सुनने में?
2: अरे मैं नहीं,
1: अमन जी देखो मुझे इशारा कर रहे हैं, नहीं

0: नहीं बतानी बात नहीं, लेकिन अमन जी हम तो बताकर ही रहेंगे। एक दफा क्या हुआ, अमन जी बात कर रहे थे कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को एक गिफ्ट देना है तो क्या दूं, रिंग तो बहुत छोटा सा लगता है। मनीष जी ने क्या सलाह दी पता है आपको, कह रहे हैं MRF टायर दे दे। क्या बात है, ये पक्की दोस्तियां जो होती है ना उसमें इस तरह की चुलबुली बातें चलती रहती है। आइए अमन जी सुनाइए क्या लाए हैं आप हमारे लिए।
1: आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के सभी स्टाफ सदस्यों और सभी श्रोताओं को अमनप्रीत कश्यप पुण्यखेड़ा की तरफ से स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर प्रस्तुत है एक कविता जिसका शीर्षक है सुनते रहिए आकाशवाणी।
0: जी,
1: सुनते रहिए आकाशवाणी, बोलते रहिए मीठी वाणी, शब्दों में हो प्रेम की खुशबू, यही है इसकी सच्ची निशानी। मधुर स्वरों का यह संगम हर दिल को छू जाता है, ज्ञान संस्कृति और संगीत का संदेश सुनाता है। मीठी वाणी से रिश्तों में अपनापन खिल जाता है, कटुता का हर अंधियारा पल में दूर हो जाता है। आकाशवाणी की धुन पर जब नई सुबह मुस्कुराती है, आशा विश्वास और खुशियों की किरणें साथ लाती है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का यही है पावन गान, जन जन की सेवा करना ही इसका सच्चा सम्मान। अधिकारियों की मेहनत से आकाशवाणी कुरुक्षेत्र ने उन्नति है पाई, सेवा और समर्पण की मिसाल यह है बन पाई। सभी उद्घोषकों की मधुर आवाज जब गूंजती जाती है, श्रोताओं के मन पर इसने गहरी छाप है छोड़ी, एक नए इतिहास की जैसे सुंदर रहा है जोड़ी। न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से हर कोने तक है इसकी पहचान, आकाशवाणी की मधुर वाणी ही है महान। आज स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हर्ष अपार है छाया, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र ने जन सेवा का इतिहास है बनाया। सुनते रहिए आकाशवाणी, बोलते रहिए मीठी वाणी, यही है संदेश इसका, यही है इसकी अमर कहानी। एक बार फिर से आप सभी को आकाशवाणी के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर अमन, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया।
2: अपनी बात के साथ साथ, शुभकामनाओं के साथ साथ, आकाशवाणी का जो सफर रहा ना, उसे भी पूरा अपनी कविता में पिरो दिया।
0: जी, और आपने एक चीज नोट की है कि हमारे सभी श्रोताओं ने, सभी प्रस्तुतकर्ताओं ने न्यूज ऑन AIR ऐप का जरूर जिक्र किया है।
2: जी बिल्कुल,
0: इसी के माध्यम से देश विदेश में हमारे श्रोता हमें सुनते हैं।
2: और हमारे जो सभी श्रोता है ना, उनको भी बता दिया, उन्हें जागरूक कर दिया कि आप भी अपने मोबाइल फोन में इस ऐप को डाउनलोड जरूर कर लीजिए और सुनते रहिए आकाशवाणी कुरुक्षेत्र।
0: और साथ ही साथ अपने अपनों को भी जरूर कहिए कि ये ऐप डाउनलोड कीजिए और आकाशवाणी कुरुक्षेत्र को फेवरेट स्टेशन में ऐड कर लीजिए।
2: जी,
0: अब बताइए कि अब हम कहाँ पर जाएंगे।
2: हम जाएंगे हमारी साथी आरती के पास, क्योंकि आरती भी बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रही है।
0: जी,
2: तो आरती जी स्वागत है आपका।
3: मैं एक भजन लेकर आई हूँ और राम नाम का भजन है, तो चाहूंगी आप सब भी साथ साथ गाएं।

0: बहुत ही खूबसूरत आरती, क्योंकि आपका ये चुलबुला रूप तो हमारे श्रोताओं ने बहुत बार देखा है, लेकिन आपने आज अपने भजन से हमें मंत्रमुग्ध कर दिया।
1: जी बिल्कुल, बहुत ही सुंदर भजन था, मेरी सांसों में बसा तेरा नाम रे।
0: जी,
1: और अब आप किस तरफ लेकर जाएंगी अपनी गाड़ी को?
0: भाई हमारे एक श्रोता भी हैं, हमारे साथी भी हैं, मनीष, बहुत देर से उनका भी इंतजार जरा लंबा ही हो गया है।
1: जी स्वागत है मनीष जी का, हमारे बीच उपस्थित हैं, और देखें ये क्या लेकर आए हैं आज।
2: आप सभी श्रोताओं को मेरी यानी मनीष बागड़ी की ओर से प्यार भरा नमस्कार, और आकाशवाणी परिवार को भी मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। आप सभी को आकाशवाणी के 35 वर्ष होने के उपलक्ष में मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जैसा कि मैंने यहाँ युववाणी में 5 साल काम किया, उसके बाद जब मेरा अलविदा कहने का समय आया तब भी आकाशवाणी ने मुझे यहाँ से जाने नहीं दिया, यानी मुझे वापस बुला लिया। तो आज मैं आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के अकाउंट सेक्शन में सेवाएं दे रहा हूँ। तो उसी विषय पे मैं एक गीत सुनाना चाहूंगा आप सबके सामने कि मेरे घर के जैसा है आकाशवाणी, तो घर से ज्यादा समय मैं यहाँ व्यतीत करता हूँ। तो गीत प्रस्तुत है,
1: स्वागत है
2: यहाँ।

आ है किसी शायर की गजल, जो दे रूह को सुकून के पल कोई

0: कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर, जैसे बंजारे को घर। धन्यवाद।
1: बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छे से आपने ये सुनाई गजल, और आपकी आवाज भी बहुत खूबसूरत और मधुर। तो अनुराधा, हमारे साथ हमारे एक बहुत पुराने श्रोता और मौजूद हैं, संदीप सैनी जी। तो देखते हैं ये क्या लेकर आए हैं हमारे लिए और क्या सुनाने वाले हैं। आइए संदीप जी, बताइए।
2: मैं डेर उमाजे संदीप सैनी जी, आप सभी श्रोताओं को संदीप सैनी की ओर से सबसे पहले राम राम, और आकाशवाणी कुछेत्तर को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ इनकी 35वें स्थापना दिवस की। और मैं कहना चाहता हूँ कि आकाशवाणी कुछेत्तर के जितने भी उद्घोषक हैं और जितने भी हम यहाँ पर आते हैं और जितने भी यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं, और जैसे आप यही लगा लो जी, आप जैसे आज ये प्रोग्राम स्थापना दिवस पे है, तो जितने भी यहाँ पर उद्घोषक सब ने मिलनसार और ये प्रोग्राम जो कर रहे हैं सब ने बहुत बढ़िया तरीके से, अच्छी तरीके से, यानी कहने का मतलब है भी अच्छी तरीके से इसको कार्यक्रम को सफल बनाया है। और जितने भी बार बार श्रोता आए हैं उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत या कुछ नहीं आया था कुछ भी।
1: और अनुराधा, अब मुझे लगता है कि सभी श्रोता और प्रस्तुतकर्ता अपनी बातें कह चुके हैं।
3: जी बिल्कुल,
1: आप भी कुछ कहना चाहेंगी क्या?
3: जी बिल्कुल, एक छोटी रचना, एक
1: लग ही रहा था मुझे कि आप भी जरूर कुछ ना कुछ लेकर आई हैं। तो स्वागत करते हैं हम अपनी सखी का, अपनी सहयोगी का, अनुराधा का।
3: जी बिल्कुल, और मैं तो बस ये कहना चाहूंगी कि आज का जो समय है उसमें हम सभी कहीं ना कहीं किसी दौड़ में शामिल होते जा रहे हैं, चाहे अनचाहे
1: जी।
3: लेकिन जब हम अपने लिए कुछ समय निकालना चाहते हैं ना, वो कई बार संभव नहीं हो पाता। तो वही एक मैंने अपनी रचना में अपने उन पलों को याद किया है, वो आप सभी श्रोताओं को सुनाना चाहूंगी।
1: स्वागत है।
3: बहुत बार जब खुद को फोन लगाया मैंने, बहुत बार जब खुद को फोन लगाया मैंने, खुद को ही कहीं बिजी कहीं व्यस्त पाया मैंने।
1: क्या बात है।
3: ये दौड़ धूप, ये कश्मकश, बिना ठहरे जिंदगी का चलना, हर पल जिंदगी को एतशान गवाया मैंने। बहुत बार खुद को जब फोन लगाया मैंने, खुद को ही कहीं बिजी खुद को ही कहीं व्यस्त

0: पाया मैंने।
1: क्या बात है।
0: अब इस जिंदगी के वो पल, वो बचपन की मस्तियाँ, उनको जब कभी याद करते हैं तो फिर ये पंक्तियाँ कहने को दिल करता है। कहाँ गई वो मस्तियाँ, वो छत पर चाय की चुस्कियाँ, वो मस्त गाने, वो ढलती शाम, वो आसमां, वो घरों को लौटते पक्षियों की पंक्तियाँ। यही कहना चाहूँगी एक बार फिर से कि बहुत बार खुद को जब फोन लगाया मैंने, खुद को कहीं बिजी कहीं व्यस्त पाया मैंने। तो आज ये कल जो ये व्यस्तता है ना, इससे हमें फिर अपनी ओर थोड़ा सा लौट आने की जरूरत है, अपने लिए कुछ समय निकालने की जरूरत है, अपने आप को जानने और समझने की जरूरत है।
1: धन्यवाद जी, बहुत सुंदर शब्दों में, बहुत ही सुंदरता से आपने कहा अपने को फोन लगाया और खुद को ही बिजी या फिर व्यस्त पाया मैंने। बहुत ही बढ़िया। तो अनुराधा, अब घड़ी की सुइयां हमें कह रही हैं कि काफी वक्त हो चला है और वक्त अब हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं। और सभी श्रोताओं ने, सभी प्रस्तुतकर्ताओं ने अपनी रचनाएं भी हमें सुनाई हैं और संदेश भी हुए हैं यहाँ पर। तो अब विदा लें अपने साथियों से।
0: जी बिल्कुल, क्योंकि जो अब हमारा आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है वो अपने 36वें वर्ष में प्रवेश कर गया है और हमारे सभी श्रोताओं ने उसकी शुभकामनाएं दी और हमारी भी शुभकामनाएं हमारे इस केंद्र के साथ, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के साथ।
1: जी, और देखिए जैसा कि आपने कहा 36वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं हम, तो भाई समय विदाई का है, लेकिन विदाई नहीं, ये तो एक नए सफर की शुरुआत है, फिर से नए हौसलों की, नई तरंगों के साथ, नई उमंगों के साथ। इसी तरह से हर वर्ष हम अपने श्रोताओं को आमंत्रित करें और उनसे मिलते रहें, ऐसी ही हमारी शुभकामनाएं हैं।
0: जी बिल्कुल, और हमारा ये आकाशवाणी केंद्र इसी तरह दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करता रहे।
1: तो अब हम इस स्थापना दिवस पर स्टूडियो में आए सभी श्रोताओं का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं हम सभी गणमान्य व्यक्तियों का जिन्होंने संदेश के माध्यम से हमें शुभकामनाएं भेजी। इस कार्यक्रम का निर्देशन किया था मैडम विनयश्री ने, स्वर थे शशिबाला और अनुराधा के, तकनीकी सहयोग दिया राजेंद्र कुमार ने और प्रस्तुति थी महेंद्र मोहन शर्मा की। तो एक बार फिर से 35वें स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दीजिए शशि और
0: अनुराधा को
1: अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की।
2: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के स्थापना दिवस पर विशेष कार्यक्रम। FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत एफएम 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को है। आकाशवाणी दिल्ली से अब आप सुनेंगे समाचार संध्या। कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 3 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक तथा प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे

0: के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is really our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा न करें। एक रिपोर्ट।
3: जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण से वहां यात्रा करने जा रहे हैं, उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी होने वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: इस बीच ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के संकट को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ओमान सरकार ने कहा है कि ये पहल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के समन्वय से की गई है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़ी महीनों के व्यवधान के बाद जलमार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को सुगम बनाया जा सकेगा। संगठन के अनुसार क्षेत्र में 11,000 से अधिक नाविक फंसे हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में वीआईपी कल्चर इन इंडिया पावर प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक सत्ता संस्थानों और लोगों के बीच मौजूद दूरी को जन केंद्रित शासन के माध्यम से इस दूरी को कम करने की आवश्यकता पर बल देती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान का उल्लेख करती है।
4: That Bharat is the world's largest democracy and is also called the mother of democracy. Our constitution envisions a society based on justice, equality, liberty and fraternity.
0: उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नीट परीक्षा देने वाले छात्रों को यातायात असुविधा से बचाने के लिए हवाई अड्डे से अपनी उड़ान लगभग 45 मिनट तक विलंबित की थी। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने आज पंजाब के जालंधर में दो महत्वपूर्ण रोड ओवरब्रिज आरओबी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि जालंधर शहर जालंधर कैंट खंड पर गुरु नानकपुरा आरओबी का निर्माण 48 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा, जबकि दूसरा बस स्टैंड गढ़ा रोड आरओबी 63 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से बनेगा। दोनों परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता रेलवे देगी। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की 2026 की बैठक आज बेंगलुरु में संपन्न हुई। विज्ञान प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह समापन सत्र में शामिल हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि दो दिन की बैठक में

0: आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन निगरानी सहित कई विषयों पर चर्चा हुई।
1: We had 26 delegates from
2: इस बैठक में 10 देशों के 26 प्रतिनिधियों के साथ साथ इसरो, इन स्पेस और अंतरिक्ष विभाग के लोग भी शामिल हुए। इसमें ब्रिक्स देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह समूह के इस्तेमाल पर काफी चर्चा हुई, जिसमें आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और दूसरे पहलू शामिल थे। हमने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन तथा अंतरिक्ष अभियानों के सतत संचालन पर भी विचार विमर्श किया।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर सभी पासपोर्ट अधिकारियों की उनकी समर्पित सेवा और नागरिकों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की पासपोर्ट सेवाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025 में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, पासपोर्ट सेवा केंद्रों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को लगभग 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हैं। देश भर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में देश में ऐसे 545 केंद्र कार्यरत हैं। पिछले वर्ष 10 नए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए थे और इस वर्ष भी 10 नए केंद्र खोले जाने की योजना है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी योजना ग्रामीण के मसौदा समन्वय ढांचे पर आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि ये बैठक अगले महीने की पहली तारीख से लागू होने वाले विकसित भारत जी राम जी योजना की तैयारियों के अंतर्गत आयोजित की गई। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन ने राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के सहयोग से गंगा नदी के तट पर शहरी नदी प्रबंधन योजनाओं का विस्तार किया है। ये प्रबंधन योजनाएं नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। अब तक 13 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इस योजना के प्रथम चरण में 27 शहरों और दूसरे चरण में 33 शहरों के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। एक रिपोर्ट।
3: बचाव काम युद्धकालीन तत्परता से जारी है। अब तक 18 श्रमिकों को मलबे की ढेर से जिंदा निकाला गया है। करीब 15 और घायल लोग वहां फंसे रहने का संभावना है। घायलों की इलाज SSKM अस्पताल में हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है उससे भी ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। सेना, NDRF, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और कोलकाता पुलिस मिलकर बचाव अभियान चला रहे हैं। दुर्घटना के कारण पर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक निर्माण के नक्शे में त्रुटि थी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये अभी स्पष्ट नहीं है। काल विधानसभा में इसी विषय पर बयान दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
0: अरुणाचल प्रदेश के की पन्योर जिले के याजागी स्थित पोसा में मूसाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। ताजा खबरों के अनुसार 4 लोग लापता हैं, 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। भूस्खलन के कारण प्रभावित क्षेत्र याजाली और होजपोटिन दोनों तरफ से अब भी संपर्क से बाहर हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों से सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में तेज वर्षा के बाद असम में निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। SDRF, NDRF और अन्य आपातकालीन बचाव दलों को तैयार रखा गया है। मौसम विभाग ने कल देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल तक तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की स्थिति बनी रह सकती है। बिहार में भी अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। दिल्ली में कल बारिश की संभावना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय

0: पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गई। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: भारतीय नौसेना के जहाज उदयगिरी और कवरत्ती दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत वियतनाम के हो चिन मिन शहर से दौरा पूरा करने के बाद रवाना हो गए हैं। इस दौरे पर पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल आलोक आनंद ने हो चिन मिन शहर की पीपल्स कमेटी और वियतनाम पीपल्स नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समुद्री सहयोग, आपसी समन्वय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में INS कवरत्ती पर एक संयुक्त योग सत्र भी आयोजित किया गया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अम्बरीश सक्सेना।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 791 अंक बढ़कर 76,991 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 198 अंक बढ़कर 24,022 अंकों पर जा पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 0.1% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.4% तक बढ़ा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 8 पैसे मजबूत होकर ₹94.66 पर बंद हुआ।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जोगोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेस और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 5 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर की हुए पकाए भूर की।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 में बाबूलाल चतुर्वेदी का यहाँ प्रोग्राम था दिल्ली से आए
0: संगीतकार रवि।
2: उन्होंने भी फोन किया कि यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गाके नहीं एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पूरे पकाए दूर के। मैं उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पूरे पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में को थे प्याली में।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका

करिश्मा कपूर फिल्म इंडस्ट्री के एक बेहद सम्मानित कपूर परिवार की सदस्य हैं। परदादा पृथ्वीराज कपूर, दादा राज कपूर, पिता रणधीर कपूर और माँ बबीता की लाडली बेटी करिश्मा प्यार से पुकारी जाती हैं लोलो। वैसे घर में कोई इन्हें लोलीमा तो कोई लोला भी कहता है।

करिश्मा कपूर परिवार की ऐसी पहली महिला सदस्य हैं जिन्होंने फिल्मों में प्रवेश किया। हालांकि इससे पहले उनकी मां बबीता और चाची नीतू सिंह भी फिल्मों से जुड़ी थीं, लेकिन कपूर परिवार से जुड़ने के बाद उन्होंने फिल्मों से नाता तोड़ लिया। और जब करिश्मा ने फिल्मों में काम करने की बात अपने परिवार के सामने रखी तो उनकी ये बात मानने के लिए कोई राजी नहीं हुआ और तब उनका साथ दिया उनकी माँ ने और इस तरह करिश्मा आ गई फिल्मों में। तब उनकी पहली फिल्म आई प्रेम।

करिश्मा को अपने फिल्मी करियर को संवारने में उनकी माँ बबीता ने हर कदम पर उनका साथ दिया और करिश्मा ने भी अपनी मेहनत और लगन से साबित कर दिया कि फिल्मों में आने का उनका फैसला गलत नहीं था।

करिश्मा कपूर के शुरुआती फिल्मी करियर में आने वाली ज्यादातर फिल्में गोविंदा के साथ आईं और बाकी की फिल्मों में भी करिश्मा के डांसेज और खूबसूरती का करिश्मा उन

करिश्मा कपूर एक संवेदनशील अभिनेत्री हैं, ये बात बताने का मौका करिश्मा को नहीं मिल रहा था। इसलिए वो खुद भी कहीं ना कहीं ऐसे मौके की तलाश में थी और आखिर ये मौका उन्हें दिया श्याम बेनेगल ने। फिल्म थी जुबैदा।

करिश्मा कपूर की कुछ और चर्चित फिल्में थीं अनाड़ी, खुद्दार, राजा बाबू, कुली नंबर वन, बीवी नंबर वन, शक्ति, राजा हिंदुस्तानी, साजन चले ससुराल। आइए सुने कुछ सुरीली झलकें।

करिश्मा के करिश्माई हुस्न और जादुई अदाकारी का दीवाना तो पूरा जमाना है, और शायद ये बात वो भी अच्छी तरह जानती हैं, इसीलिए फिल्मों से नाता तोड़ना वो भी नहीं चाहेंगे।

0: रमेश गोखले द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम के लिए आलेख और स्वर अमरकांत का था। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

अभी आप विविध भारती के कार्यक्रम सुन रहे थे। FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चांदनी रातें।

आज का चांदनी रात कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आप सबका दोस्त पुरुषोत्तम कुमार। और आज के इस कार्यक्रम में हम आपको वो सभी गीत सुनवाने की कोशिश करेंगे जिनकी फरमाइश आपने हम तक लिखकर भेजी है व्हाट्सएप संदेशों के माध्यम से। तो शुरू करते हैं आज का चांदनी रात कार्यक्रम का ये सफर। सबसे पहला गीत जो हमने लिया है उसे हम सुनवा रहे हैं फिल्म ये रात फिर ना आएगी से। और इस गीत को सुनने के लिए हमारे पास से ये फरमाइशी व्हाट्सएप संदेश भेजा है गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा जसवीर जस्सी सीता और गीता। मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर येमेकर प्रमोद येमेकर प्रदीप येमेकर और उनके परिवार के सभी सदस्य। करणवीर हाउस से भूचो कैचिया भटिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा मंजीत कौर जोड़ा करणवीर करण दपिंदर वरिंदर कुलदीप सिमू एकम दमन और अभिजोत। ये संदेश हमारे पास पहुंचा है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा कपिल चीपा।

पा, ईशान छिपा और पूजा परिहार का। मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सपना एमपी से उमंग मलिक और आकांक्षा मलिक इस गीत को सुनना चाहते हैं। नई बस्ती गंजडंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नायजा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी, मोहम्मद कलीम अंसारी। और ये संदेश हमारे पास पहुंचा है ग्राम बहरामपुर टैमा, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से डॉक्टर तिलोक चंद वर्मा, श्रीमती भगवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन मास्टर, समर राज आर्यन, बेबी आरोही, ऐशिका, अंजलि, श्वेता वर्मा। तो आप सभी के पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

0: होगा। ये फादर का बच्चा कौन है?
1: फादर का बच्चा नहीं सन, फादर को बाप बोलते हैं, और तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने खड़ा है।

ए घोड़ा सुना क्या लड़की बोला, बात में बहुत दम है, छाती ठोक ठोक के बोला।

0: अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा, सफल भविष्य की नींव और उज्जवल करियर बनाने के लिए अब प्रवेश लें NIIM विश्वविद्यालय में,
1: जहां अनुभवी शिक्षकों व इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स द्वारा विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।
0: इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, लॉ, IT, साइंस, पत्रकारिता, मैनेजमेंट सहित 100 से अधिक करियर ओरिएंटेड कोर्स उपलब्ध हैं।
1: तो देर किस बात की, अपने सपनों को दे नई उड़ान, आज ही प्रवेश ले NIIM यूनिवर्सिटी कैथल।

0: मैं विश्राम कुमार मीना, उपायुक्त कुरुक्षेत्र, सभी कुरुक्षेत्र वासियों को आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के 35वें स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आकाशवाणी और हम लोगों का जुड़ाव ऐसे ही रहे, घर घर न्यूज़ पहुंचे, घर घर अलग अलग तरह की गवर्नमेंट की स्कीमें पहुंचे और हम उससे लाभान्वित हों, और ऐसे ही आप लोगों का सहयोग आकाशवाणी के साथ बना रहे।
1: शतो कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म घर आखिर घर है से। और इस गीत को सुनने के लिए हमारे पास ये फरमाइशी व्हाट्सएप संदेश पहुंचा है। अजीत नगर मलोट पंजाब से छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह, गगनदीप कौर और रौनकदीप कौर। पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत।

योजना भगत पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशुतासु अर्णव आनंद, सत्यम आनंद, बोड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। छोटा बाजार कुरुक्षेत्र से श्याम शर्मा, मिली शर्मा, चिराग शर्मा, राघव शर्मा, तनु शर्मा, पलक शर्मा और मास्टर उद्देश्य। तो आप सभी की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

0: फिर आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के 35 सफल वर्षों पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
3: कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज में, और फिल्म का नाम है ये रात फिर ना आएगी। और इस गीत को सुनने के लिए हमारे पास से ये फरमाइशी व्हाट्सएप संदेश भेजा है मालियान सरधना मेरठ से, अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन और मास्टर जीबीएम जैन। बीड शहर से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री मैत्री, अंजलि करवा, बाला साहिब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टाउल और पीबी कुल थे। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला और ओम कुमार का यह संदेश हमारे पास पहुंचा है। और ये संदेश आया है बूंदीचक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी का। और आप हैं रोहिदास चौक पंडरपुर शहर से, सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, प्रशांत शिंदे, ऋषि शिंदे और कृष्णा घोड़के का। सेक्टर 18 जगाधरी, जिला यमुनानगर हरियाणा से विनय मोहन खरवान, मीनाक्षी प्लोमा और डॉक्टर ईशानी। नाभा, जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु। रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, रानू, ईशु बाबा, सपना, शिवी, सलोनी और पेंटर बाबू। तो आप सभी की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आइए सुनते हैं फिल्म शहनाई का ये गीत। और इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी ने। और इस गीत को सुनने के लिए हमारे पास ये फरमाइश, ये व्हाट्सअप संदेश आया है रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया। और ये संदेश है जवाहर नगर दुर्ग से सीआर कांबड़े, करुणा, मीना, अश्वनी और विपुल कांबड़े का। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया का संदेश हम पढ़ रहे हैं। और ये संदेश है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, चैतन्य मस्किन, मेगा मस्किन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना और उनके परिवार के सभी सदस्य। गांव मुरादगढ़ से रमेश कुमार कांबोज, पिंकी वंश और भुवेश कुमार कांबोज का ये संदेश हमारे पास पहुंचा है। तो आप सभी की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म शहनाई का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म ऊंचे लोग से हम आपको सुनवा रहे हैं। और ये गीत सुनने के लिए हमारे पास से ये फरमाइशी व्हाट्सएप संदेश आया है। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी, और आप हैं बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता बमारकंडे, संजय मारकंडे और बेबी किट्टू, चोहलदा बागपत से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया। और ये संदेश है चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू महक खुशदिल, सुनीता रानी जिंदल, पप्पू आरजू खुशदिल, हसमुख लाल जिंदल, बुलबुल शक्ति और संजीव। ये संदेश हमारे पास पहुंचा है गांव गोंदर करनाल से किरण पाल बुम्बक, तेजपाल, कृष्ण पाल, सुमन, पूनम, सोनिया, रोशनी देवी और भगत सिंह बुम्बक। तो आप सभी के पसंद पर फिल्म ऊंचे लोग का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दस्तक से, और इस गीत को सुनने के लिए हमारे पास से फरमाइशी व्हाट्सएप संदेश आया है। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा।

मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा और नानक चंद मल्होत्रा। शिवजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुगू भाविक सिक्का। फुलोंग निजामाबाद तेलंगाना से मास्टर वहीद रुमानी, डॉक्टर मोहम्मद जमीर, मोहम्मद फासी, जुनैद, जुबैर, मुकराम, नोमन, फुरकान, जाकिर और मोहम्मद फाजिल। जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून का ये संदेश हमारे पास पहुंचा है। संभाजी छत्रपति नगर से राजेश सांबले पाटिल, राजदीप राजेश, शशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, विशाल खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवांशी खेड़ा और उनके परिवार के सभी सदस्य। सूर्यवाड़ी छत्रपति संभाजी नगर से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा बोरगांवकर, प्रांजलि, सोम और सदानंद, विराज, स्वीटी, अंशुमन और बेबी ओवी। तो आप सभी की पसंद पर फिल्म दस्तक का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।

श्रोताओ, कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म उमराव जान से हम आपको सुनवा रहे हैं और इस गीत को सुनने के लिए हमारे पास ये फरमाइशी व्हाट्सएप संदेश आया है। नगर निगम वार्ड नंबर 28 से नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन डाक बाबू, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान, निखत परवीन। गुमला झारखंड से एसएम जावेद, शगुफ्ता और अंजुम। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गव्वानकर, रही श्रीमती सरिता गव्वानकर, प्रणीता प्रसिद्ध गव्वानकर, प्रिंस एकांश गव्वानकर, अर्जुन गव्वानकर, टुक टुक। और ये संदेश हमारे पास से पहुंचा है कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। संभाजी चौक सिडको न्यू नांदेड़ महाराष्ट्र से सुधाकर गायकवाड़, विकास गायकवाड़, प्रीति गायकवाड़, आशा गायकवाड़, दीपांजलि गायकवाड़, दीक्षा बागमारे और शशांक बागमारे। तो आप सभी की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म उमराव जान का ये गीत।

श्रोताओ, कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म सच्चा झूठा से हम आपको सुनवा रहे हैं। और इस गीत को सुनने के लिए हमारे पास ये फरमाइशी व्हाट्सअप संदेश पहुंचा है लोकू कॉलोनी लोहारू हरियाणा से बिल्लू सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार चिंडालिया, बरखा योगेंद्र कुमार चिंडालिया, नरेश कुमार चिंडालिया और उनके परिवार के सभी सदस्य। ये संदेश हमारे पास आया है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोडानी, अर्चना ताई गोडानी, हीरामन शिंदे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिमा गोडानी का। गांव हरुड़ी चांडिल झारखंड से तुलसीदास महतो, कल्पना महतो, मनोरमा महतो, मनमोहिनी महतो, दीनबंधु महतो। बागपत उत्तर प्रदेश से ममता ढिंगिया, कुणाल ढिंगिया का यह संदेश हमारे पास पहुंचा है। और ये संदेश हमारे पास आया है कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। तो आप सभी की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सच्चा झूठा का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चांदनी रातें FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है आकाशवाणी दिल्ली से। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयं सेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जैमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ नई दिल्ली में बैठक की। श्री गोयल ने भारत अमेरिकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार जुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is really our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के दौरान के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के

निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार के मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वे सुरक्षित रूप से उतरा। मंत्रालय ने बताया कि घटना की सूचना न देने के मामले में संबंधित एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और विमान चालक दल के खिलाफ अंतरिम कार्रवाई की गई है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। घायलों का इलाज सरकारी SSKM मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कोलकाता नगर निगम घटना की रिपोर्ट तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि हादसे की विस्तृत जानकारी कल विधानसभा में दी जाएगी। गुजरात के भुज क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में आज AI आधारित स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया। नई व्यवस्था के अंतर्गत ड्राइविंग टेस्ट से पहले वाहन का पंजीकरण, प्रशिक्षण वीडियो देखना, फोटो स्कैनिंग और RFID सेंसर लगाना अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों के अनुसार इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पूरी प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष बनेगी। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक न हो ईरान की यात्रा न करें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।